0: कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। ये तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा,
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह से ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी।
13: राष्ट्र की सुरक्षा,
0: फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साए में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साए में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस्ट पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अमेरिका ईरान में तनाव के बीच आर्थिक संकट का संकेत, 24 घंटे में पीएम मोदी की दूसरी अपील, सोना और तेल की खपत कम करने की सलाह, कहा विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी। गुवाहाटी में आज होगा हिमंत विश्व शर्मा का राज तिलक, साथ में चार विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सरकार गठन से पहले बोले हिमंता, अभी सिर्फ ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन, मुख्य सचिव बनाए गए मनोज अग्रवाल, बंगाल में संभाली थी चुनाव की कमान, भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी का शिकंजा। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, 600 नंबर के सवाल मैच हुए, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका के अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं ट्रंप, बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

0: भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। भारत की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है और पीएम मोदी ने लगातार 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे कदम देश के लिए इस समय बेहद अहम हैं। उन्होंने एक बार फिर सोना ना खरीदने की अपील की है लोगों के साथ साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी का पूरा जोर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने पर क्यों है, आइए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये क्यों जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर इसलिए क्योंकि विदेशी मुद्रा कम होने पर घरेलू मुद्रा गिरती है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है, रुपए जो है वो बढ़ता जाएगा, डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जाएगा। तो ये पूरी कवायद दरअसल भारत सरकार की है कि रुपए की कीमत गिरने ना पाए, उसको स्थिर रहे। आपको याद रहे रुपए की कीमत को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी होती है। आरबीआई की दखल देने की ताकत भी कम हो जाती है अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए। घरेलू मुद्रा अगर कमजोर हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगता है। आपको याद हो भारत की सियासत में रुपया गिरने को लेकर के पहले भी सियासत थी, आज भी सरकार उस पर कई सफाई देती है तो विपक्ष सवाल पूछता है। तेल की खरीदारी में सबसे ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है। हम दुनिया के जिस भी मुल्क से, खासकर पश्चिम एशिया से जहां से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, भुगतान जो है अमेरिकी डॉलर में करते हैं, तो तेल की खरीद में सबसे ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है। साथ महंगी तेल की खरीद करने से तेल की कीमतें ज्यादा है क्योंकि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत को भुगतान भी डॉलर में करना होगा, अतिरिक्त डॉलर देने होंगे, यानी ज्यादा पैसा देना होगा और इसी की वजह से भारत में भी तेल की कीमतों पर उसका असर है। हालांकि तेल कंपनियां कह रही को लगातार घाटा झेल रही है, तो विदेशों में जो आने वाला कच्चा माल है वो अपने आप महंगा हो जाएगा। फिर चाहे वो ईरान से आ रहे हो, सऊदी से आ रहे हो, यूएई से आ रहे हो, अगर हमने तेल महंगा खरीदा है तो अपने आप महंगा आ रहा है। उसी के साथ उत्पादन लागत बढ़ने से सामान महंगा हो जाएगा। जहां पर भी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो कीमतें पहले ही ज्यादा हैं तो उससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जाहिर है उन उत्पाद की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी और हमारे घरों तक आने वाला सामान भी अपने आप महंगा होगा। आयात महंगा होगा तो महंगाई उससे बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे तो माल ढुलाई महंगी होगी क्योंकि कैरियर, ट्रांसपोर्ट, हर चीज में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, खाने पीने समेत हर चीज महंगी। उदाहरण के तौर पर जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाता है। जहां पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वहां पर भी उत्पाद महंगे होने लगते हैं। यानी इन हर चीज का डायरेक्टली सीधा संबंध है। और उसी के साथ आप सोचिए कि अगर डीजल के किराए बढ़ते हैं तो जो हम सामान की ढुलाई करते हैं, ट्रकों से आवाजाही होती है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन पे उसका असर पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में जैसे ही गिरावट होती है निवेशकों का भरोसा भी कम हो जाता है। ऐसे में वो अपना पैसा हटा करके दूसरे देशों का रुख करते हैं जहां उन्हें लगता है कि रिटर्न अच्छा मिलेगा। निवेशक पैसा निकालते हैं तो शेयर बाजार में भी गिरावट होती है। यानी हर चीज, कहते हैं चेन रिएक्शन होता है, एक कड़ी अगर टूटती है तो सारी कड़ियां बिखर जाती हैं। इसीलिए इन सब का एक रास्ता कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा संसाधन है, उनको बचत किया जाए, विदेशी मुद्रा भंडार देश का कम ना होने पाए। और इसीलिए सरकार अब चाहती है कि जनता कदम उठाए। वो क्या करे कि वो ईंधन ऊर्जा का बचत करे, वो सोना ना खरीदे, विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। और इसी के साथ जब आप विदेश यात्रा भी करते हैं तब भी आप डॉलर खरीदते हैं, आप फॉरेक्स खरीदते हैं और वो फॉरेक्स आप दूसरे देशों में जाके खर्च करते हैं। तो सरकार अब ये चाहती है कि रुपए को अगर बचाना है तो 140 करोड़ लोग अब सामने आए, वो मदद करें क्योंकि वही देश को बचा सके। सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश पर असर पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होती है, निवेशकों का भी भरोसा टूटेगा। इन्वेस्टमेंट इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना निवेश आएगा उतनी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, जितना निवेश भागेगा अर्थव्यवस्था की रफ्तार को उतना ही झटका लगेगा। अगर वो पैसा निकालते हैं तो शेयर बाजार, हम देखिए शेयर बाजार ऊपर जाता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक लगातार इन्वेस्ट करते हैं। तो आखिर 24 घंटे में प्रधानमंत्री को दूसरी अपील इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि इस समय इमरजेंसी का वक्त है और इस समय हालात लगभग उसी तरह हैं कि अब कदम अगर नहीं

0: ने कोशिश की कि स्थिरता लौटे।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें।
0: उधर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के सोना न खरीदने वाली अपील को किंतु परंतु के साथ सही ठहराया, लेकिन चिदम्बरम ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान वास्तविक स्थिति को देश से छिपाए रखा।
2: ही इज नो चॉइस, ही सक्सेसफुली एंड क्लेवरली हिट द ट्रू इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द लास्ट ईयर एंड सर्टनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। बट last year 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion, that is about 6.75 lakh crore rupees. Now the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion, and nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
0: तो जंग अमेरिका और ईरान के बीच हुई, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है। संकट के बादल अभी छटे नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं।

युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है।

0: सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा, मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है, क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है, क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा, कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा। युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हुआ है। ये तब है जब क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और ऐसे में युद्ध काल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों पीएम को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर कीजिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
3: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for every any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve.
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
4: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
5: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
6: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
7: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
8: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से दुनिया भर में आर्थिक संकट के हालात हैं, लेकिन इस वक्त तेहरान में लोगों की जिंदगी कैसी है, किस तरह इंटरनेट को लेकर पाबंदियां हैं, देखिए हमारे सहयोगी गीता मोहन की ग्राउंड रिपोर्ट।
9: हम यहां तेहरान में हैं और मुझे कई सवाल आ रहे हैं कि क्या ईरान में इंटरनेट एक्सेस है लोगों के पास या नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यंगस्टर्स, यूथ यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे पोस्ट शेयर भी होते हैं, लेकिन उनके लिए एक्सेस बाहर के इंटरनेट के लिए बहुत ही लिमिटेड है। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी इंटरनेट है, प्लेटफॉर्म्स है, वो लोकल है, नेशनल है, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जैसे चाइना में है, जहाँ पर वो अपने पोस्ट डाल सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल्स जो है इस देश के, इंटरनेट फायरवॉल इतने स्ट्रांग है कि अगर वो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो पता करना चाहे तो वो एक्सेस उनको यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस, इनको जो प्रोटेस्ट हुए थे वो बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से था, तो ये जो इंटरनेट ब्लॉकेड है, ये प्रोटेस्ट जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे तब से शुरू हुए, बीच में थोड़ी देर के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए कुछ साइट्स खुल गए थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वापस बंद हो गए। अब 10-15% लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो VPN यानी कि प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू करते हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू जो कर सकते हैं वो यहाँ पर बहुत ही कमजोर VPN नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं, जो करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग VPN नेटवर्क्स हैं और बहुत ही महंगाई जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसकी वजह से ये बहुत महंगे VPN जो है कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं या फिर उसको खरीद पाते हैं।
2: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
14: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
13: Learn more at emory.edu.
15: राशियों के लोग बड़े मेहनती और कर्मठ होते हैं, किन राशि वालों के अंदर लापरवाही और आलस्य की मात्रा ज्यादा होती है, कौन से ग्रह करवाते हैं मेहनत और कौन सा ग्रह बनाता है आलसी, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
16: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
17: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
16: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: पश्चिम एशिया तनाव के बीच आर्थिक संकट का संकेत। 24 घंटे में पीएम मोदी की दूसरी अपील। सोना और तेल की खपत कम करने की सलाह। कहा, विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी। गुवाहाटी में आज होगा हिमंता बिश्वा शर्मा का राज तिलक। साथ में चार विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सरकार गठन से पहले हिमंता बोले, अभी सिर्फ ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य सचिव बनाए गए मनोज अग्रवाल। बंगाल में संभाली थी चुनाव की कमान। भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी का शिकंजा। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप। सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश। 600 नंबर के सवाल मैच हुए। राहुल गांधी बोले, नीट परीक्षा नहीं, अब नीलामी है। अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार। आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची बगाई, अमेरिका के अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं। ट्रंप बोले, अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।
1: प्रेजेंटेड बाय पारुल यूनिवर्सिटी, यहां पॉसिबल है। पावर्ड बाय जिंदल स्टेनलेस। Co-powered by Panasonic AC, India का Captain Cool. Co-powered by Vedanta, देश की जरूरतों के लिए. Associate sponsor Shree Cement. Bheem, भारत का अपना payments app.

0: असम में हिमंता बिश्व शर्मा के राजतिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह 11:40 पर हिमंता शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हिमंता शर्मा ने ऐलान किया है कि बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद उम्मीदवार चरजीत दास होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण के दौरान ये एनडीए का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। शपथ ग्रहण से पहले ही हिमंता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2021 से 2026 तक तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा था, 2026 से 2031 में पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। उन्होंने लिखा कि एनडीए 3.0 के लिए तैयार हो जाइए। इस शपथ ग्रहण में 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है। एनडीए असम में लगातार ये तीसरा कार्यकाल होगा। हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ चार और मंत्री भी शपथ लेंगे। तो एनडीए 3.0 के लिए तैयार हो जाए, ऐसा हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है। बम्पर जीत मिली और इसी बम्पर जीत के बाद हिमंता बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2021 से 2026 तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म 2026 से 2031 के एनडीए के तीसरे कार्यकाल में दिखाएंगे। 2016 में पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 2021 में दोबारा जब एनडीए की सरकार बनी, हालांकि उसमें बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं था, तब हिमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में जब इस बार चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर गए, लेकिन एनडीए का आंकड़ा अगर मिला लें तो बहुत ज्यादा। और इसीलिए हिमंता बिश्व शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बार लगातार असम के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह 11:40 पर गुवाहाटी में भव्य शक्ति प्रदर्शन होगा। तो बीजेपी राज्यों के तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। चरणजीत दास, जो कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए इनको उम्मीदवार चुनाया गया है, ये विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता बिश्व शर्मा, उत्तर पूर्व भारत के फिलहाल सबसे बड़े नेता। 11:40 पर जब उनका ये शपथ होगा उसके बाद हिमंता दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम गणमान्य वो लोग हैं जो इनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हिमंता बिश्व शर्मा जो कि रसूख रहा, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े नेता रहे, पहली बार मुख्यमंत्री जब वो नहीं बन पाए, जब सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी तब उन्हें नीडा का अध्यक्ष बनाया गया था, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो हिमंता बिश्व शर्मा के साथ और कौन लोग शपथ लेंगे? रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो मंत्री बनेंगे और अजंता नियोग। ये वो चार लोग हैं जो हिमंता बिश्व शर्मा की कैबिनेट में मंत्री होंगे और यही चार आज पहली बार शपथ लेंगे क्षमता मुताबिक। हालांकि इसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। अब ये देखिए चरण बोरो कौन है, एक एक चेहरों को समझिए। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं, मसबाट सीट से ये विधायक रहनी। सरकार में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है, पूरा जो एनडीए का कुनबा है उनको मौका मिलेगा। इन्होंने जेएमएम को 55,000 वोट से हराया था, तो पूरी कोशिश है कि कैबिनेट में एनडीए का रिफ्लेक्शन दिखे। तो चरण बोरो बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी जो है। अब दूसरा चेहरा अतुल बोरा, ये असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। यानी मैंने कहा, जैसा हमने कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए को भी अकोमोडेट किया गया है इस कैबिनेट में। जो सबसे पहले शपथ हो रहा, बोकाघाट सीट से विधायक हैं, 60,000 वोट से ये जीते हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो पीपुल्स फ्रंट है उसी के साथ साथ एजीपी उसको भी शामिल किया गया है। पूर्व बॉर्डर प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट मंत्री ये रह चुके हैं पहले भी सरकार में और असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम कौन है? अजंता नियोग। ये गोलाघाट सीट से पांचवी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस की उम्मीदवार को 9,000 वोट से इस बार भी हराया। अब कांग्रेस उम्मीदवार को जब हराया उन्होंने गोलाघाट सीट से और उसी के बाद पांचवी बार जब वो विधायक बनी है, तो ऐसे में उनको भी वरिष्ठता के आधार पर कैबिनेट में जगह दी गई है। 9,000 वोट से कांग्रेस को हरा दिया। कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई काम नहीं है, लगातार पांचवी बार वो विधायक चुनी गई है। ये वो चेहरे हैं जो हिमंता बिश्व शर्मा की कैबिनेट में होंगे। अब चौथे मंत्री कौन होंगे? रामेश्वर तेली, जो कि डुलियाजन सीट से विधायक हैं, ये डुलियाजन से और उसी के बाद 10,000 वोट से ये जीते हैं। अब इस जीत के बाद इनको भी शामिल किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ से दरअसल पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो बड़ा चेहरा असम के लिए और उसी के बाद जब फिर जीत करके आए हैं तो इन्हें शामिल किया गया। मोदी सरकार 2.0 के दौरान वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे और अब डुलियाजन सीट से वो विधायक चुने गए हैं और इसीलिए अब इनको कैबिनेट में मौका दिया जा रहा है।
1: मेरी अपनी ओर से असम की जनता को बहुत बहुत बधाई। दो दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली, और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को बधाई।
2: हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत विश्व शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यह हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार दो बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने अपनी आंखों से यहां होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ है उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है, और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्ट लक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं।
3: हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
4: आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
5: मैडम, दिल्ली और असम ज्यादा दूर नहीं, इसको
4: दिल्ली से असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा।
0: उधर पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुजीत बोस को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बोस को देर रात गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर की गई है। आरोप है कि सुजीत बोस ने साउथ दमदम म्यूनिसपैलिटी में अलग अलग पदों के लिए भर्ती के लिए करीब 150 लोगों से पैसे लिए, उनकी सिफारिश की। ईडी आज उन्हें विशेष अदालत में पेश करेगी। बोस अपने बेटे समुद्र बोस के साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके स्थित ईडी सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय पहुंचे थे। समुद्र बोस को भी इसी मामले में तलब किया गया था। ईडी के मुताबिक उस जांच में कई फ्लैट्स और बैंक खातों में भारी कैश डिपॉजिट का पता चला है, जिन्हें कथित तौर पर नौकरी दिलाने के बदले हासिल किया गया। तो इधर चुनाव के नतीजे आए, उधर टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। नगर पालिका में नौकरियों के बदले घूस लेने, पैसे लेने, नगर पालिका भर्ती घोटाले में टीएमसी के नेता पूर्व मंत्री सुजीत बोस देर रात जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, कल से ही लगभग 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई, और 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सबसे ज्यादा चर्चा है 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। दोनों सीएम अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका रहे हैं। आइए देखते हैं।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आत्ताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता।
0: आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
1: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे। मोदी जी पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने, अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए, जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए, अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
2: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।

0: कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
1: ईरान में ट्रंप ने ऐसी जंग शुरू कर दी जिसमें बारूदी धमाके तो थम भी जाएं, मगर दुनिया की जेब में लगी आग थमती नहीं दिखती। और हिंदुस्तान में तो चुनावी महीने निकलते ही कोविड जैसे एहतियात की बारी आ गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2 राज्यों में खालिस जीत, 3 राज्यों में हुकूमत बनाने के बाद पीएम मोदी जब दक्षिण के कांग्रेसी सूबे में पहुंचे तो देश को 8 नसीहतें दे दी।
0: टालना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तो खाने पीने वाले तेल का इस्तेमाल संयम से करें, फिर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी संयम से करें। कोशिश करें कि बस, मेट्रो, ईवी वाहनों से यात्रा करें। दफ्तर के बजाय वर्क फ्रॉम होम करें। एक साल तक ना तो छुट्टी मनाने, ना तो डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में विदेश जाएं। और साल भर तक तो शादी विवाह भी हो तो गोल्ड मत खरीदें, विदेशी ब्रांड के बजाय स्वदेशी सामान खरीदें। और तो और, किसान खाद इस्तेमाल करने की जगह प्राकृतिक खेती करें।
0: फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती माँ को बचा सकते हैं, और यह हमें करना ही होगा।
2: चुनाव तक चंगा सी और चुनाव के बाद नंगा सी, ये रवैया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। वो कहते हैं कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, कम तेल खाओ, सब कुछ कम कर दो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और खुद शाम को 100 कारों का काफिला लेकर जामनगर में रोड शो करते हैं। इनके कौन आर्थिक सलाहकार है वो समझ में नहीं आता।
1: पीएम की अपील पर देशवासी पेट्रोल डीजल, दफ्तर बाजार, सैर सपाटा, खेती बाड़ी सब में सब्र कर ले, लेकिन सोने पर सब्र कैसे करें?
3: हमारे देश में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लोगों के कुछ इमोशंस जुड़े हैं, ट्रेडिशन है और कल्चर जुड़ा हुआ है कि लोग ज्यादातर शादियों में गोल्ड खरीदते हैं।
4: नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो का यूज करने के लिए बोला है, मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे मेट्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन।
5: प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है कि एक साल तक हमें सोना नहीं लेना है, इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ।
6: अगर पीएम मोदी ने कोई हमसे अपील की है देश के हित को ध्यान में रखते हुए, तो हमें उस अपील को सुनना चाहिए।
1: अब जिस मुल्क में सोमनाथ मंदिर तक से गजनवी 6,000 करोड़ का सोना लूट कर भाग गया था, आज भी 300-400 किलो सोना भक्तों ने मंदिरों में मढ़ा रखा है। 35,000 से 40,000 टन के सोने के गहने तो घरों में लॉकर में रखे हैं। 3-4 करोड़ लोग सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हों, वो सोने से सब्र कैसे करें? क्योंकि ये हिंदुस्तान है जहां देश में सोना उत्पादन ना के बराबर है, फिर भी सालाना 800 टन सोना भारतीय विदेशों से मंगा लेते हैं। मतलब कुल इम्पोर्ट बिल में 9-10% का तो हम भारतीय सिर्फ गोल्ड खरीद लेते हैं। पिछले साल ही 6,00,000 करोड़ रुपए का सोना भारतीयों ने खरीदा है। अब पीएम मोदी ने कह दिया कि सोना खरीदने में जो डॉलर खर्च हो रहा है वो सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ईरान की जंग में आम लोगों की जेब भले सलामत दिख रही हो, सरकार की जेब भयंकर जल रही है। क्योंकि एक तो जंग, ऊपर से अब तक हॉर्मुज बंद, तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए, तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि रोज 1,600-1,700 करोड़ रुपए फूक रहे हैं। जंग के बाद से अब तक लमसम 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे तब जाकर कहा जा रहा है कि मामला बराबर होगा, लेकिन सरकार फिलहाल पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव तक तो किसी तरह जंग की तपिश झेलती रही। असर का आकलन करने के लिए पहले 28 मार्च को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, फिर 2 अप्रैल को भी मीटिंग हुई। अब 11 मई को जब बैठक हुई तो लोगों का डर बढ़ गया कि चुनाव खत्म हुआ है, अब तेल के दाम बढ़ जाएंगे।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे। मोदी जी 5 राज्यों का चुनाव

अमेरिका ईरान में तनाव के बीच आर्थिक संकट का संकेत। 24 घंटे में पीएम मोदी की दूसरी अपील, सोना और तेल की खपत कम करने की सलाह, कहा विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी। गुवाहाटी में आज होगा हिमंता बिश्वा शर्मा का राजतिलक, साथ में चार विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सरकार गठन से पहले बोले हिमंता, अभी सिर्फ ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन, मुख्य सचिव बनाए गए मनोज अग्रवाल, बंगाल में संभाली थी चुनाव की कमान। भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी का शिकंजा।

रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आलस्य की समस्या के बारे में। बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी आलसी हो जाते हैं, काम टाल देते हैं और बड़े बड़े मौके उनके हाथ से छूट जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आलस्य किन ग्रहों से पैदा होता है और आलस्य को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

बड़ी भूमिका होती है। जो जल की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, मीन, और जो वायु की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के लोगों के अंदर आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। ये स्वभावतः आलसी होते हैं। अगर कुंडली के ग्रह प्रबल हैं तभी मेहनत करेंगे, नहीं तो इनका बेसिक नेचर आलस्य का होता है। आलस्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

हैं, करियर में सफलता मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि।

कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, अलग अलग राशियों का स्वभाव अलग अलग है, अलग अलग राशियों के अंदर गुण और ताकत अलग अलग है, तो अलग अलग राशियों के लिए आलस्य होता कैसा है, राशियों से आलस्य का क्या संबंध है वो भी समझते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि की राशियां हैं, ऊर्जा बहुत होती है, इसीलिए इस राशि के लोग सामान्यतः आलसी नहीं होते। ये आलस्य तभी दिखाएंगे जीवन में जब इनका स्वास्थ्य खराब हो, अन्यथा ये आलस्य नहीं दिखाते। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले भी आलसी नहीं होते, मेहनती होते हैं, लेकिन इनसे आप एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते। जितना काम दिया जाएगा उतना मेहनत से करेंगे, एक्स्ट्रा काम करने में आलसी हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण काम है, जो जरूरी काम है, वो तेजी से निपटाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग, जो वायु तत्व की राशियां हैं, ये बड़ी आराम तलब, बड़ी

आराम पसंद राशियां हैं। ये सामान्यता आलसी होते हैं और कुंभ वाले लापरवाह और आलसी दोनों होते हैं। तो मिथुन, तुला और कुंभ वाले तभी काम करेंगे जब इनके काम करने की मजबूरी होगी। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल की राशि है। चूंकि जल का स्वभाव स्थिर नहीं होता, इसीलिए कर्क, वृश्चिक, मीन वाले कभी आलसी होते हैं और कभी कर्मठ होते हैं। इनका आलस्य इनके मूड पर डिपेंड करता है। अगर मूड बढ़िया है बहुत काम करेंगे, मूड खराब है, परेशान है, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आलस्य में चले जाएंगे। मजबूरी इनके साथ अक्सर आ जाती है, इसीलिए ये ज्यादा आलस्य दिखा नहीं पाते। अल्टीमेटली अंततः इनको काम करना पड़ता है। आलस्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुधीर जी ने हमें लिखा है और सुधीर जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1973। जन्म का समय रात के 11 बजे। जन्म का स्थान है धूलिया महाराष्ट्र और मेल लिखते हैं मुंबई से। सुधीर जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, कुछ मित्रों के साथ मिल करके। क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? सुधीर जी, आने वाले समय में तो आप व्यापार में जाएंगे ही, लेकिन उसका सही समय जून 2027 के बाद है। जून 2027 के बाद आप व्यापार की तरफ जाइए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा। एक दो लोगों के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा।

हो सकता है शांति बनाए रखें। जून 2027 के बाद आप नौकरी से निकलकर नए व्यापार की तरफ जा सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आलस्य लगातार नहीं रहता, आता जाता रहता है। क्या करना चाहिए? जो लोग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, जल तत्व वाले होते हैं, जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, या कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता है, उनका आलस्य लगातार नहीं रहता। ये आलस्य मन की स्थितियों के आधार पर आता जाता रहता है। मन अच्छा है, बहुत काम करेंगे। मन अच्छा नहीं है, आलस्य में मुंह लपेट कर पड़े रहेंगे। अगर आपका आलस्य आता जाता रहता है, परमानेंट नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में रोज स्नान जरूर करिए और स्नान के बाद तौलिए से शरीर को रगड़ करके अच्छी तरह सुखाइए। सुबह के समय स्नान के बाद मंत्र जप करिए, कम से कम 27 बार या 108 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जप करिएगा। वस्त्र पहनने में नारंगी रंग का प्रयोग करें या नारंगी रुमाल हमेशा अपने साथ रखें। रात का भोजन जितना जल्दी से जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, और रात के भोजन में और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप अगर आप रखेंगे तो अन्न की वजह से या निद्रा की वजह से आलस्य पैदा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा परमानेंट आलस्य रहता है। कारण क्या है, उपाय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आलस्य लगातार रहता है, जिनको आलस्य हमेशा रहता है, हमेशा काम टालने के मूड में, आलस्य के मूड में रहते हैं। क्या कारण होता है, क्या उपाय करें? देखिए, शनि जो है ना वो निद्रा और आलस्य का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि अगर अच्छा होगा तो आप बड़े मेहनती, बड़े कर्मठ होंगे, लेकिन अगर शनि आपका गड़बड़ हो गया तो आपके अंदर आलस्य बहुत होगा, आपको सुस्ती लगेगी, आपको हर समय नींद आएगी। और ऐसे लोग जिनका शनि गड़बड़ होता है, घनघोर आलसी होते हैं, अपना काम टालते हैं और फिर अपना नुकसान करते हैं। अगर आलस्य हमेशा परमानेंट रहता है तो अपना खान पान दुरुस्त करिए, तेल मसाले वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन कम से कम करिए, पानी और जलीय आहार, लिक्विड चीजें, फलों का रस, नारियल पानी, छाछ, लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा लीजिए। बहुत बड़े बाल और दाढ़ी ना रखें। जिन लोगों को जरा भी आलस्य की समस्या है वो प्रातः काल उठ करके सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने बैठकर या खड़े होकर 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें। ऐसे घर में ऐसी जगह पर रहें जहां सूर्य की रोशनी आपको मिलती रहे और तांबे के गिलास से रेगुलरली पानी पीते रहें। ऐसा करने से फायर एलिमेंट बढ़ेगा और जब फायर एलिमेंट आपका बढ़ेगा तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक
राशि फल। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसान।

होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, नारियल तोड़ने की जो परंपरा है वो दरअसल बलि के स्थान पर शुरू हुई थी। पहले पशुओं की, पक्षियों की बलि दी जाती थी, उसको बंद करके उसकी जगह पर प्रतीकात्मक रूप से नारियल तोड़ा जाता था बलि के रूप में। तो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन बलि वाली बात चूंकि नारियल के साथ जुड़ी रही, इसीलिए कहा गया कि महिलाएं नारियल नहीं तोड़ेंगी। हालांकि अगर कोई महिला नारियल तोड़ देती है तो इसका शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जान।

नंबर दो धन लाभ के योग बन रहे हैं, नंबर तीन रुके हुए काम पूरे होंगे, नंबर चार व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, नंबर पांच यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर छह किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, नंबर सात स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर आठ मानसिक तनाव बढ़ सकता है, नंबर नौ करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का, तो आइए जानते हैं कि अगर आज के दिन किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके निकलें कि आपको सफलता मिले। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के मीटिंग में जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो जरा सा सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान।

कुंभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि के लिए चिंताएं कम होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, इसको द्रव्यदा कहते हैं, धन देने वाली तिथि। इसलिए आज जब भी पूजा करें धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। और आज घर के बाहर यम देवता के लिए एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य और आयु की रक्षा होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राजतिलक। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद। गुवाहाटी के खानापारा में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। एनडीए नेता के नाम पर औपचारिक मुहर लगी। असम चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। बीजेपी ने 82 सीटें जबकि एजीपी और बीओपीएफ को 10-10 सीटें मिली हैं। विपक्ष काफी पीछे रहा। हिमंता ने ट्वीट करके लिखा कि 2021 से 2026 सिर्फ ट्रेलर था, 2026-2031 तक पूरी तस्वीर दिखेगी। एनडीए 3.0 के लिए तैयार रहे। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार धाम भवन 3 का लोकार्पण किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुजरात में ये तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो कि समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम भी मौजूद है। पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए सरदार धाम छात्रावास बनाया गया। 2000 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा होगी। पीएम मोदी को सरदार गौरव रत्न सम्मान भी मिला। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया। वडोदरा रैली में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। बोले, वेस्ट एशिया युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। पीएम ने देशवासियों से दोबारा अपील की है कि जहां तक संभव हो तेल का प्रयोग कम करें, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें। मोदी ने कहा कि स्कूलों में कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की सौगात दी। स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक धार्मिक महत्व का जिक्र किया। तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व सीएम एम के स्टालिन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। तमिलनाडु में पलानीस्वामी खेमे के 17 AIADMK विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात की, नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। पंजाब सीएम के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा सीएम सैनी और सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। लुधियाना में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अब अलर्ट है। IGOM की बैठक में राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े फैसले हुए। कांस दौरा रद्द करने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सरकार में IT मंत्री आशीष शेलार ने इसकी जानकारी दी। कहा, सरकारी कामों के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी के 1 साल तक सोना नहीं खरीदने वाले बयान पर ज्वेलर्स अब नाराज हैं। गुजरात बुलियन एसोसिएशन ने आर्थिक नुकसान पर सवाल उठाए हैं। गोवा के गोवेश्वर मंदिर में सोमनाथ पर्व कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने पुर्तगाली शासन में मंदिरों के विध्वंस, हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर रोक का उल्लेख किया। नासिक TCS मामले में आरोपी निदा खान की कोर्ट में पेशी हुई। डिजिटल जांच में मिले 171 इस्लामिक लिंक। राजधानी दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन हुआ। 100 साल का भारत, एक विजन थीम पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री
1: जी एंड इंटेलिजेंस आर नाउ इनसेपरेबल। अ नेशन दैट डज नॉट बिल्ड कैपेबिलिटी इन पीस इज फोर्स्ड टू पे फॉर हिज एक्सपोजर।
0: मध्य प्रदेश के गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रणव अदानी मौजूद रहे।
2: हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है। ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग किया गया। मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा उद्योगी ऊर्जा क्लीन एनर्जी की दिशा में यह बड़ा कदम है। राजस्थान में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी की लहर जारी है। पूरे राज्य में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अकोला, अमरावती समेत पूरे विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। तापमान के लगातार 45 डिग्री के पार पहुंचने से हीट वेव। अकोला में प्रचंड रूप में गर्मी है। गांव में पानी की भारी किल्लत हो रही है। राजस्थान के पाली में 42 डिग्री के पार पहुंच गया पारा। तेज गर्मी के बीच अस्पताल में कूलर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सातारा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 30 फीट ऊंची आग की लपटें देखकर लोगों में खौफ। इंदौर में बस डिपो में आज आग लगी। भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक बस पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी के बाद फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े छात्र की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। ओडिशा के मयूरभंज में कार्यक्रम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़ हुई। गुस्साई भीड़ ने युवक को पेड़ से बांध कर पीटा। रामगढ़ में अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और सामग्री बरामद की गई। रोहतक में सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवकों ने गोली चलाई। जालंधर में युवती में कार से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार भी बरामद की गई। पठानकोट में एयरबेस के पास फर्जी पुलिस आईडी कार्ड के साथ 3 संदिग्ध घूमते गिरफ्तार किए। सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे थे। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 1 करोड़ से अधिक कीमत का प्रतिबंधित पान मसाला ट्रक जब्त किया गया। पुणे पुलिस ने म्यांमार से रेस्क्यू होकर लौटे 3 आरोपियों को साइबर घोटाले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के आनंद में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टेम्पो टकराया। 4 की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। मनाली जाते समय परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बाल बाल बचे 4 सदस्य। संभल के स्कूल में हिंदू छात्रों को टोपी और हिजाब पहनाई। 3 शिक्षक निलंबित किए गए। 2 पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर हथियार से हमला। शिकायत से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।

और आईपीएल से आईपीएल में दिल्ली की टीम ने पूरा किया अपना बदला, पंजाब की टीम को 3 विकेट से मात दी। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान अक्षर पटेल, जेविड मिलकर ने खेली धुआंधार अर्धशतकीय पारी। अक्षर ने 56 रन बनाए और 51 रन की पारी खेली। दिल्ली की टीम ने 5 बदलाव किए गए थे, डेविड मिलर, अभिषेक पुरेल, साहिल पारेख, माधव तिवारी और आकिब नकवी की वापसी हुई है। इस सीजन में पंजाब की लगातार दूसरी हार है, जबकि दिल्ली की जीत ने प्लेऑफ की उम्मीदों को अभी भी बनाए रखा है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी मैच जीतने वाली टीम। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद दूसरे और गुजरात तीसरे पर है। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए। पैट कमिंग्स के लौटने के बाद सनराइजर्स की टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गई है। इस बात की संभावना कम है कि दोनों 11 में खेले। गुजरात को अपने कप्तान शुभमन गिल से काफी उम्मीदें हैं। हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा से आस लगाए बैठी है। 15 जून से शुरू हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्यादा यूजर फीस को लेकर के विवाद बढ़ चुका है। कच्चे तेल और पैकेजिंग लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव बढ़ गया। एचयूएल, डाबर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां बेसिक चीजों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The Tailgate Top 20.
2: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
1: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: Try to keep up.
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
5: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
6: विक्रम एक हिंट तो देते
7: विक्रम
6: हिंट
5: बड़े आराम से
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
9: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
12: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते
13: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से
14: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने
16: जीके मैक्स
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
16: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
19: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है
20: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है
19: आप कैसे कर लेते हो
21: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ
20: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं
20: और म्यूचुअल फंड्स है
19: सही
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
23: बहुत टाइर्ड हो गई
24: Take it, take it, date, not bites.
25: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
24: लायन डेट नट बाइट्स

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है।
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: Like I said before, we better hold the sins.

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint: bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank. Bharose ka prateek. समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल. विमल, बोलो जुबा केसरी.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
2: आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है. 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था. देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए. हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा. दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
8: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
9: कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: विक्रम, एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट।
9: बड़े आराम से।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
11: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए, जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
20: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।
21: कभी अमेरिकी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाकर कारोबार बढ़ाती थी, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल रही है। अब भारतीय कंपनियां भी अमेरिका की जमीन पर बड़ा दाव खेल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि निवेश केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है, इससे भारी संख्या में अमेरिका में नौकरियां पैदा हो रही हैं और वहां सप्लाई चेन भी मजबूत हो गई है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी ब्रेंडन ब्रेमिंगटन ने दावा किया है कि भारतीय कंपनियों का अमेरिका में निवेश लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भारत का एफडीआई करीब 16.4 अरब डॉलर पहुंच चुका है, जिससे करीब 70,800 नौकरियां बनी हैं। वहीं भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $313 मिलियन आरएनजी पर खर्च किए और 1.5 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट मिला। भारतीय कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी का असर अमेरिका के कई बड़े राज्यों में दिखाई दे रहा है, खासकर टेक्सास, जॉर्जिया और न्यू जर्सी में देसी कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही हैं। CII की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में भारतीय कंपनियों का निवेश $9.8 अरब रहा, जबकि जॉर्जिया में $7.5 अरब और न्यू जर्सी में $4.2 अरब तक पहुंच गया। भारत के निवेश की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2023 में CII की रिपोर्ट ने अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों का कुल निवेश $40 अरब बताया था। इसके दम पर करीब 4,25,000 नौकरियां तैयार हुई थी। साथ ही भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर $1 अरब लगाए और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट में $195 मिलियन का योगदान दिया। भारतीय कंपनियों का फिलहाल फोकस हाई वैल्यू सेक्टर्स पर तेजी से बढ़ रहा है, फार्मा से लेकर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर तक भारतीय कंपनियां अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में भारत की सन फार्मास्यूटिकल ने अमेरिका की ऑर्गेनॉन एंड कंपनी को खरीदने के लिए बड़ी डील का ऐलान किया था। अमेरिका में भारतीय कंपनियों की बढ़ती ताकत को लेकर भारतीय दूतावास ने भी बड़ा बयान दिया। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नमज्ञा खंपा ने कहा कि इंडियन कंपनियां अमेरिका की इकोनॉमी में पूंजी ला रही हैं, जिससे नौकरियां बढ़ रही हैं और सप्लाई चेन मजबूत हो रही है। खास बात है कि इसका असर लोकल कम्युनिटी तक दिखाई दे रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि कभी एक दौर ऐसा भी था जब अमेरिकी कंपनियां भारत में मौके तलाशती थी, लेकिन आज भारत की कंपनियां अमेरिका में बिजनेस, रिसर्च और रोजगार का नया नेटवर्क खड़ा कर रही हैं। आदित्य के राणा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान अमेरिका में गहराते युद्ध संकट के बीच देश के नाम पीएम मोदी का एक और अनुशासन पैगाम, सोना और तेल की खपत कम करने की सलाह, कहा विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी। असम में आज से हेमंत सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, चार विधायकों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण। हेमंत बोले, अभी तो ये ट्रेलर, पूरी पिक्चर बाकी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी का शिकंजा, स्पेशल कोर्ट में आज पेशी। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, 600 नंबर के सवाल मैच हुए, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। अमेरिका ईरान में फिर से युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों की वजह से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

0: सभी का आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सांसद अजेंद्र लोधी पर एक बड़ा हमला बोला है। जी हां, योगी ने कहा है कि ये बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर आघात है। पीएम को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन का सबूत है। योगी ने यह भी कहा है कि इस बयान के लिए माफी नहीं हो सकती और जनता समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। ऐसा बयान वैचारिक दिवालियापन का सबूत है। तो प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहे गए थे समाजवादी सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा, अब उस पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर यह गंभीर बयान है और पीएम को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो वही हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट से समाजवादी सांसद ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सांसद का नाम है अजेंद्र लोधी। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर महोबा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे थे। ज्ञापन सौंपने के बाद जब सांसद मीडिया से मुखातिब हुए तो पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए,
1: मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।
0: तो अजेंद्र लोधी का बयान आपने सुना। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, प्रधानमंत्री का इस संबोधन के बाद तमाम ऐसे बयान आए जैसा कि अभी हमने अजेंद्र लोधी का बयान सुनाया, लेकिन जनता इस संबोधन को किस तरीके से ले रही है बताइएगा।
2: निश्चित तौर पर देखिए पूजा, जिस तरीके से पीएम के खिलाफ जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है घोर आपत्तिजनक है और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अक्रॉस पार्टी लाइन इसकी भर्त्सना हुई है। चाहे कांग्रेस ने किया हो, चाहे समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि मुद्दे तो ठीक थे लेकिन उस शब्द को नहीं बोला जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा है कि उनको खेद जता देना चाहिए लेकिन मुद्दे में दम है। खैर, ये एक बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ट्वीट करके इसे अक्षम्य कहा है, हाँ ये जरूर कहा है कि इसकी माफी भी नहीं हो सकती लेकिन जवाब जनता देगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक मुद्दा भी बन गया है उत्तर प्रदेश में और घेरने की कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी को भी घेरने की कोशिश होगी। आप देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई भी अपशब्द बोला गया है तो वो एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सियासी मुद्दा बनता है और जिस तरीके से अब चूंकि आने वाले 8-10 महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, ये मुद्दा भी बीजेपी से जमीन तक ले

0: तो असम में हिमंत बिस्व शर्मा के राजतिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज सुबह 11:40 पर हिमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हिमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद उम्मीदवार चरणजीत दास भी होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। वहीं गुवाहाटी में शपथ ग्रहण के दौरान एनडीए का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। शपथ ग्रहण से पहले ही हेमंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2021 से 2026 तो सिर्फ ट्रेलर था, 2026 से 2031 में पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि एनडीए 3.0 के लिए तैयार हो जाइए। इस शपथ ग्रहण में 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है। एनडीए असम में ये लगातार तीसरा एनडीए का कार्यकाल है।
1: मेरी अपनी ओर से असम की जनता को बहुत बहुत बधाई। दो दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली, और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को बधाई।
2: हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिस्व शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यह हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार दो बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने अपनी आंखों से यहाँ होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ है उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्ट लक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं।
3: हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
4: आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
5: मैडम, दिल्ली और असम ज्यादा दूर नहीं, इसको लेकर
4: दिल्ली से असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा।
0: तो वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि छोटे छोटे कदम देश के लिए बेहद ही अहम है। उन्होंने एक बार फिर से सोना ना खरीदने की अपील की, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की भी बात कही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी का पूरा जोर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने पर क्यों है, ये समझिए।

0: तो देखिए, निवेश पर काफी असर पड़ा है। विदेशी मुद्रा कम होने पर घरेलू मुद्रा गिरती है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। विदेशी मुद्रा कम होगी तो घरेलू मुद्रा भी कमजोर होगी।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें।
0: तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर क्या कुछ कहा है, सुनिए।
2: Now all of us, especially gents who are all here from industry, everybody should take it as a national mission. It is not only Prime Minister's task, it is a task for all of us. I am confident we have to take up in a big way. Always crisis, it is a challenge. Every challenge will generate opportunity. Now, after this crisis, I am confident India is unstoppable. India will emerge as a global giant.
0: तो पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की सोना ना खरीदने वाली अपील को किंतु परंतु के साथ सही ठहराया। लेकिन चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान वास्तविक स्थिति को देश से छिपाए रखा।
3: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion, and nearly little more than half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
0: तो ईरान और अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर। अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ईरानी विमान को अपने हवाई अड्डों पर खड़ा किया था। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस के ऊपर पनाह दी थी। CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके तुरंत बाद ही ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेज दिए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान ने जिन विमानों को नूर खान एयरबेस में तैनात किया था उनमें ईरानी वायुसेना का एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपने बचे हुए सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में छिपाया हुआ था, जिससे उन्हें अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अपने नागरिक विमानों को भी अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अफगानिस्तान में खड़ा किया। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से दुनिया भर में आर्थिक संकट के हालात हैं, लेकिन इस वक्त कैसी है तेहरान में लोगों की जिंदगी, किस तरह इंटरनेट को लेकर पाबंदियां हैं, देखिए मेरी सहयोगी गीता मोहन की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
4: हम यहां तेहरान में हैं और मुझे कई सवाल आ रहे हैं कि क्या ईरान में इंटरनेट एक्सेस है लोगों के पास या नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यंगस्टर्स यूथ यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे पोस्ट शेयर भी होते हैं, लेकिन उनके लिए एक्सेस बाहर के इंटरनेट के लिए बहुत ही लिमिटेड है। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी इंटरनेट है प्लेटफॉर्म्स है वो लोकल है, नेशनल है, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जैसे चाइना में है, जहां पर वो अपने पोस्ट डाल सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल्स जो है इस देश के, इंटरनेट फायरवॉल इतने स्ट्रांग है कि अगर वो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो पता करना चाहे तो वो एक्सेस उनको यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस, इनको जो प्रोटेस्ट हुए थे वो बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से था, तो ये जो इंटरनेट ब्लॉकेड है, ये प्रोटेस्ट जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे तब से शुरू हुए, बीच में थोड़ी देर के लिए बहुत ही कम वक्त के लिए कुछ साइट्स खुल गए थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वापस बंद हो गए। अब 10-15% लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो VPN यानी कि प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू करते हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स के थ्रू जो कर सकते हैं वो यहाँ पर बहुत ही कमजोर VPN नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं, जो करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग VPN नेटवर्क्स हैं और बहुत ही महंगाई जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसकी वजह से ये बहुत महंगे VPN जो है कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं या फिर उसको खरीद पाते हैं।
0: इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today. Sokudo.
13: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
14: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
15: लायन डेट नट बाइट्स।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
18: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
19: विक्रम, एक हिंट तो देते।
20: विक्रम!
19: हिंट?
18: बड़े आराम से।
21: और वही कहाँ गए थे घूमने?
22: जीके मैक्स।
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट।
23: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
24: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
27: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
28: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
29: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा दे,
30: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
31: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
7: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
8: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
7: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
8: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
9: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
10: नहीं
8: और म्यूचुअल फंड्स है
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन द स्किल्स।
16: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: In association with
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Summer Cool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
1: Vimal, bolo zuban kesri.
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
5: मध्य एशिया में तनाव के हालात का असर पूरी दुनिया पर है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं है। और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए, ऊर्जा की बचत की जरूरत है, खासकर पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम एक साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं, उसको कोशिश करें। और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके। तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है, और खासकर पिछले डेढ़ महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है। खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है, और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो, क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके। लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है। विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संकट तो डेढ़ महीने से गहरा रहा था। जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी तरफ इस पर सियासत है। इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है, जो विश्व वैश्विक संकट है, भारत भी अब उसकी चपेट में है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: युद्ध संकट के बीच देश के नाम पीएम मोदी का एक और अनुशासन पैगाम, सोना और तेल की खपत कम करने की सलाह, कहा विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी। असम में आज से हेमंत सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, चार विधायकों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण, हेमंत बोले अभी तो ये ट्रेलर, पूरी पिक्चर बाकी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के हवाले, यूपी बिहार से हुई है तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, 600 नंबर के सवाल मैच हुए, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। अमेरिका ईरान में फिर से युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। चलिए यहां वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर, हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। जी हां, राज्य सरकार की मांग पर सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया है, सीबीआई की एक टीम आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएगी, सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस ने अब तक इस मामले में यूपी बिहार से तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, राज्य की मांग पर इस हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का,
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: असम में हैट्रिक के बाद आज हेमंत बिस्व शर्मा का होगा राजतिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, गुवाहाटी के खानापारा में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, बीजेपी विधायक दल की बैठक में जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे, एनडीए नेता के नाम पर लगे औपचारिक मुहर, असम चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत, बीजेपी ने 82 सीटें जीती जबकि एजीपी और बीओपीएफ को 10-10 सीटें मिली, विपक्ष काफी पीछे रहा, हेमंता ने ट्वीट कर लिखा 2021-26 सिर्फ ट्रेलर था, 2026-2031 में पूरी तस्वीर दिखेगी, एनडीए 3.0 के लिए तैयार रही। वडोदरा में पीएम मोदी ने सरदार धाम भवन 3 का किया लोकार्पण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे, गुजरात में तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो कि समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया, 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं, परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम भी मौजूद, पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए बना है सरदार धाम छात्रावास, 2000 छात्र छात्राओं के लिए रहने की सुविधा, पीएम मोदी को मिला सरदार गौरव रत्न सम्मान, पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर किया नमन, वडोदरा रैली में पीएम मोदी का संबोधन बोले वेस्ट एशिया युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है, प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, जहां तक संभव हो तेल का प्रयोग कम करें, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दे बढ़ावा, पीएम मोदी ने कहा स्कूलों में कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, वर्क फ्रॉम होम को दें प्राथमिकता, पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की दी सौगात, स्मारक टिकट और सिक्का किया जारी, सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का जिक्र किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व सीएम एम के स्टालिन से उनके आवास पर की मुलाकात, तमिलनाडु में पलानीस्वामी खेमे के 17 एआईएडीएम के विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर से की मुलाकात, नेतृत्व परिवर्तन की मांग, पंजाब सीएम के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल, हरियाणा सीएम सैनी और सुनील जाखड़ ने ज्वाइन कराई पार्टी, लुधियाना में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बढ़ा तनाव, पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अलर्ट, आईजीओएम की बैठक, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े फैसले, कांस दौरे का रद्द करने का ऐलान किया, महाराष्ट्र सरकार में आईटी मंत्री आशीष शेलार ने दी जानकारी, कहा सरकारी कामों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल और विभाग की सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। पीएम मोदी के एक साल तक सोना नहीं खरीदने वाले बयान पर ज्वेलर्स नाराज हुए, गुजरात बुलियन एसोसिएशन ने आर्थिक नुकसान पर उठाए सवाल। गोवा के गोवेश्वर मंदिर में सोमनाथ पर्व कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत का संबोधन। मुख्यमंत्री ने पुर्तगाली शासन में मंदिरों के विध्वंस और हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर रोक का किया उल्लेख। नासिक टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान की कोर्ट में पेशी, डिजिटल जांच में मिले 171 इस्लामिक लिंक, न्यायिक हिरासत में भेजी गई निदा खान। राजधानी दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन, 100 साल का भारत एक विजन थीम पर चर्चा। मिडल ईस्ट संकट पर गौतम अदाणी बोले, एनर्जी और डिजिटल सिक्योरिटी ही अब देश की असली ताकत।
3: एनर्जी एंड इंटेलिजेंस आर नाउ इनसेपरेबल। अ नेशन दैट डज नॉट बिल्ड कैपेबिलिटी इन पीस इज फोर्स टू पे फॉर हिज एक्सपोजर इन क्राइसिस।
0: मध्य प्रदेश के गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव, सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रणव अदानी रहे मौजूद। एमपी में अडानी ग्रुप करेगा 1060 करोड़ का निवेश, प्रणव अदानी बोले ये लोगों पर भरोसे का इन्वेस्टमेंट।
4: ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है, ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। वहीं राजस्थान में हीटवेव और लू का अलर्ट, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी की लहर जारी, पूरे राज्य में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में तेजी की बढ़ोतरी। अकोला और अमरावती समेत पूरे विदर्भ में भीषण गर्मी का प्रकोप, तापमान के लगातार 45 डिग्री के पार पहुंचने से हीटवेव का असर। अकोला में अपने प्रचंड रूप में है गर्मी, गांव में पानी की भारी किल्लत, महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाने को मजबूर। पाली में 42 डिग्री के पास पहुंचा पारा, तेज गर्मी के बीच अस्पताल में लगे कूलर, नगर निगम ने की सार्वजनिक प्याज की व्यवस्था। महाराष्ट्र के सातारा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 30 फीट ऊंची उठी आग की लपटें और धुआं। इंदौर में बस डिपो पर अचानक से लगी भयंकर आग से अफरातफरी मची, सर्विस रोड पर खड़ी 5 बस जलकर खाक हुई। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने की वजह से पलटी बस, एक यात्री की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल। फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, पत्थरबाजी के बाद फायरिंग में 3 घायल। बिहार के मोतिहारी में दिनदहाड़े छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, कॉलेज गेट पर सैकड़ों लोगों के सामने वारदात का लाइव फुटेज आया सामने। ओडिशा के मयूरभंज में कार्यक्रम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। रामगढ़ में अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में निकली नकली विदेशी शराब और सामग्री बरामद, 2 गिरफ्तार। रोहतक में सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवकों ने दुकान के पास बरसाई गोलियां। जालंधर में युवती से कार में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इस्तेमाल की गई कार भी बरामद। पठानकोट में एयरबेस के पास फर्जी पुलिस आईडी कार्ड के साथ घूमते 3 संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को दे रहे थे चकमा। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से अधिक कीमत का प्रतिबंधित पान मसाला से लदा ट्रक भी जब्त किया गया। पुणे पुलिस ने म्यांमार से रेस्क्यू होकर लौटे 3 आरोपियों को साइबर घोटाला में दोबारा गिरफ्तार किया, मौके से डिजिटल उपकरण और बैंकिंग किट बरामद की गई। गुजरात के आनंद में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराया टेम्पो, 4 की मौत और 5 घायल। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, मनाली जाते समय एक परिवार के 5 लोगों की मौत, बाल बाल बचे 4 सदस्य। संभल के स्कूल में हिंदू छात्रों को पहनाई गई टोपी और हिजाब, 3 शिक्षक निलंबित और 2 पर केस दर्ज। आईपीएल में दिल्ली की टीम पूरा अपना बदला लेती नजर आई, पंजाब की टीम को 3 विकेट से दिमाग।

खेले इस मैच में पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने खेली धुआंधार अर्धशतकीय पारी, अक्षर ने बनाए 56 रन मिलकर 51 रन बनाए। दिल्ली की टीम में 5 बदलाव किए गए थे, डेविड मिलर, अभिषेक पोरल, साहिल पारिक और माधव तिवारी के साथ आकिब नबी की हुई वापसी। इस सीजन में पंजाब की ये लगातार दूसरी हार है, जबकि दिल्ली की जीत ने प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी मैच जीतने वाली टीम, फिलहाल पॉइंट टेबल में हैदराबाद दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए, जिसमें जीटी ने 5 बार जीत हासिल की। पैट कमिंस के लौटने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ गई है। इस बात की संभावना कम है कि दोनों टीमें प्लेइंग 11 में किसी तरह का बदलाव करेंगी। गुजरात को अपने कप्तान शुभमन गिल से काफी उम्मीदें हैं, वहीं हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा के बल्ले से आस लगाए हुए हैं। दिल्ली में शुरू हुआ बैरियरलेस टोल सिस्टम, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया सिस्टम। मुंडका बकरवाला टोल पर नहीं रुकेंगी गाड़ियां, अब बिना रुके कटेगा टोल टैक्स, एमएलएफएफ सिस्टम से सफर हुआ आसान। एआई तकनीक से बदला टोल सिस्टम, हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ी गाड़ियां, यात्रियों के समय की होगी बचत। दिल्ली में सीआईआई समिट में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछली सरकारों के गड्ढों को हमने भरा, अब यूपी को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने की जरूरत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज के दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आज के दिन के बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मई 2026, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 2:52 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:25 तक। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में सफलता मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

रखें, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

से अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों की समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि,

बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
3: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
1: एक साल तक सोना खरीदने से बचे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री के ये उस सात सूत्री उपायों में से एक है जो उन्होंने पश्चिम एशिया के युद्ध से पैदा हुए हालात पर सुझाए हैं। सोना खरीद से बचने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, केमिकल फर्टिलाइजर्स की खपत आधा कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने, खाने के तेल का उपयोग घटाने, एक साल तक विदेश यात्रा कम करने, विदेशी ब्रांडेड सामानों का इस्तेमाल घटाने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की।
0: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
1: पश्चिम एशिया के युद्ध से देश के खजाने पर बोझ तो 28 फरवरी से लगातार है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने ये अपील की है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जोड़ने में पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। अखिलेश यादव का बयान है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
2: आम मध्यम वर्ग है, आम लोग है, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेंस एट होम मैं कहना चाहूंगा। मोदी जी तो ये मान रहे हैं कि जब भी संकट आए तो जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, वो जनता की है।
3: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
1: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ना तो नीति सही है और ना नियत। इस बात में दो राय नहीं कि जब देश पश्चिम एशिया के संकट से बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव बाद अचानक प्रधानमंत्री की अपील चौंका जरूर रही है, लेकिन सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
4: आर फॉरेन एक्सचेंजेस कैन बी कंजर्व, फॉर एग्जांपल आर एक्सपेंडिचर ऑन डीजल पेट्रोल, फॉर आर एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल ट्रैवल, फॉर एवरी एनी एक्सपेंडिचर व्हिच कैन हैव इम्प्लिकेशंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज, वी शुड ट्राई एंड कंजर्व।
5: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पश्चिम एशिया के संकट पर हाई लेवल बैठक भी की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं।
6: अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है, हम कार पुलिंग भी कर लेंगे।
7: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
8: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
9: कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास,
10: अगर सोना नहीं लेंगे तो ये अपील गलत है थोड़ी,
8: और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है।
11: ऑलरेडी जो गोल्ड इंडिया में है उसको ही हम सर्कुलेट करेंगे, उससे हमारा रोजगार भी चलेगा और इंडिया की डिमांड्स भी मीट होती रहेंगी।
1: युद्ध के बाद पिछले ढाई महीनों में दुनिया के कई देशों में साफ संकट नजर आया है। अब तक भारत में स्थिति सामान्य है, ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के मायने हर कोई अपने अपने तरह से लगा रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल खरीदने से बचें और कारपूलिंग में चलें। असम में आज से ममता सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, चार मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, पहुंचने लगे बीजेपी के मुख्यमंत्री, हेमंत बोले असली पिक्चर अभी बाकी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर मामले में जांच अब सीबीआई के हवाले, यूपी बिहार से हुई तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, 600 नंबर के सवाल मैच हुए, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। बिल्कुल सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। पश्चिमी दिल्ली में एक मिस्ट्री मैन का खौफ, वो आता है, कॉल बेल बजाता है, दरवाजा खुलते ही वार कर देता है। दिल्ली की सनसनीखेज खबर अब से कुछ ही देर बाद। कोटा में क्यों दम तोड़ रही है गर्भवती महिलाएं, 4 महिलाओं की मौत, 9 की किडनी फेल, कोटा में क्या हो रहा है, इस खबर पर विस्तार से चर्चा। जंग के फिर से मंडराते खतरे के बीच ईरान के बाजार का हाल, आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। एक खास इलाके में ये चर्चा का विषय बन गई है, दिल्ली की ये खबर है लेकिन घटना ये कहीं भी हो सकती है, इसीलिए आप सब इस खबर को ध्यान से देखिए। पश्चिमी दिल्ली के प्रीतमपुरा और केशवपुरम में लोग एक मिस्ट्री मैन से खौफ में है। आपको उस मिस्ट्री मैन का हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। आरोपी है कि ये शख्स कॉल बेल बजाता है, दरवाजा खुलते ही हमला कर देता है। वीडियो देखिए, इसके हाथ में आपको धारदार दराती नजर आएगी। 20 दिन से इस मिस्ट्री मैन का खौफ जारी है, दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बनाई है, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो आपको सावधान करेगा।
1: गौर से देखिएगा इस शख्स को, स्पोर्ट शूज, जीन शर्ट और सिर पर टोपी, बाएं हाथ में नीले रंग की पॉलिथीन में लिपटा हुआ कोई सामान। शख्स बेहद फुर्ती से एक घर का कॉल बेल दबाता है, दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक महिला की आवाज आती है, दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है जो बहुत साफ नहीं है, और फिर वो शख्स दूसरे फ्लैट की ओर चला जाता है। चंद सेकंड के बाद ही दूसरे फ्लैट से शोरगुल की आवाज आती है। फिर सामने आता है वही शख्स बेहद खतरनाक रूप में। ये तस्वीर देखिए, नीले रंग की पॉलिथीन की जगह अब उसके हाथ में दराती है। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरता नजर आ रहा है। 1:15 की ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली में खौफ का सबब बन गई है। बड़ा सवाल ये है कि कौन है ये शख्स, क्या ये कोई साइको क्रिमिनल है, इस तरह दराती लेकर वो कैसे खुलेआम घूम रहा है। दिल्ली पुलिस को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ये शख्स दिन दहाड़े घरों की डोरबेल बजाता है और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है ये शख्स हमला बोल देता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा और केशवपुरम इलाके में इस शख्स की वजह से डर का माहौल है।

0: तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो एसपी सांसद ने जो कुछ कहा हम उसे हुबहू तो नहीं आपको सुना सकते, लेकिन उनसे विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी की अपील को लेकर सवाल किया गया।
1: मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।
0: वहीं सपा सांसद के अपशब्द पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने कहा कि 2027 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अपने सांसद के बयान से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है।
2: खुद अभी तक इस पे अखिलेश यादव का कोई बयान ना आना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इतनी उनकी बौखलाहट है। बंगाल में जो जनादेश मिला है और जिस तरह से जनता ने, तो 27 का भी परिणाम उनको आज ही दिखाई पड़ रहा है। तो अब अगर भाषा पे भी संयत नहीं रहा तो ये तो निश्चित तौर से निंदनीय है। लेकिन इसका जवाब अगर अखिलेश उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस गाली का जवाब जनता 2027 में दे देगी।
3: देश के लिए सम्मान का पद होता है, उनके बारे में किसी तरह से कोई टिप्पणी जो मर्यादा के खिलाफ हो वो नहीं होनी चाहिए।
0: और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की अपील की करेंगे। 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने दूसरी बार अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपनी एक अपील में कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जितना संभव हो सके कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, यानी कि विदेश यात्रा से बचें, कोरोना काल जैसा संकट है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कुछ कहा।
4: जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
5: चौबीस घंटे के भीतर ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से किफायत की अपील कर रहे थे।
4: ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं।
5: देश जब पश्चिम एशिया की जंग की वजह से संकट से गुजर रहा है तो विदेश में शादी और छुट्टी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पीएम ने बेहद दिलचस्प अंदाज में लोगों से अपील की।
4: मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए।
5: पीएम मोदी ने आज के हालात की तुलना कोरोना काल से की है और उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह इस संकट पर भी देश काबू पा लेगा।
4: अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।
5: मोदी ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स,

0: ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पर जोर दिया ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचे।
1: डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जय सरदार। धन्यवाद।
2: अभिभूत है हम। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की वो अपील जो उन्होंने देश की जनता से की है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, यह अपील प्रधानमंत्री द्वारा। एक साल तक विदेश यात्रा से बचें, डोमेस्टिक यात्रा करें। एक साल तक सोना ना खरीदें या कम खरीदें। खाद्य तेल पर कम खर्च करें, खाद्य तेल कम इस्तेमाल करें। उर्वरक का इस्तेमाल कम करें, यानी कि फर्टिलाइजर की जगह अन्य चीजें इस्तेमाल करें। कोविड काल के उपाय अपनाएं। मेट्रो, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करें। ये सब कुछ विदेशी मुद्रा बचाने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा है। वर्क फ्रॉम होम करें ताकि पेट्रोल डीजल बच सके। इसके अलावा वर्चुअल क्लासेस करें, वर्चुअल मीटिंग्स करें, छुट्टी मनाने या शादी करने विदेश ना जाएं, अपने देश को ही प्राथमिकता दें। प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, हर कोई प्रधानमंत्री के इन तमाम उपाय जो उन्होंने सुझाए हैं उसको डीकोड करने की कोशिश कर रहा है। क्या माने कुछ बड़े फैसले एक दो दिन में आ सकते हैं या फिर ये सिर्फ सुझाव ही हैं?
3: देखिए, अभी तक क्योंकि नेहा ये सुझाव के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। पहले हैदराबाद में कहा गया, फिर गुजरात के अंदर कहा गया है। लेकिन एक चीज जरूर है, जिस तरीके के मिडल ईस्ट एशिया के अंदर संकट है, उस संकट से निपटने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, लेकिन पब्लिक अपील का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कम से कम आप जो है पेट्रोल और डीजल के वाहनों का प्रयोग करें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विदेश यात्राओं पर कम जाए, डेस्टिनेशन वेडिंग विदेशों में कम करें, गोल्ड कम खरीदें। पेट्रोल और डीजल का जितना उपयोग जो है वो कम होगा, इसका मतलब यह है कि 85% से ज्यादा जो है वो पेट्रोल और डीजल यानी कि क्रूड ऑयल जो है वो विदेशों से लाया जाता है इंपोर्ट करके। उसके साथ साथ गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो विदेश जो फॉरेन रिजर्व है हमारा उसको जो है बचा के रखना और उसमें किसी भी तरीके की कमी ना है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि आप वर्चुअल मीटिंग करिए, वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल बैठकें कीजिए, जिससे पेट्रोल और डीजल ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है, जरूरी जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कार से जाना है तो ये कोशिश कीजिए कि कार में पूलिंग कर सके और लोगों के साथ जो है वो जा सके। इस तरीके के सुझाव ये है, ये समय समय पे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको डायबिटिक से बचने के लिए, ओबेसिटी से बचने के लिए जो है वो 10% जो है कम फूड ऑयल का यूज करना चाहिए। प्राकृतिक खेती को लेकर वो समय समय पे कहते रहे हैं कि फर्टिलाइजर का उपयोग की जगह प्राकृतिक खेती के ऊपर आप
2: ठीक है। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच प्रधानमंत्री की इस अपील पर चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
4: नाउ ऑल ऑफ अस एस्पेशली जेंट्स हु आर ऑल हियर फ्रॉम इंडस्ट्री, एवरीबॉडी शुड टेक इट एज ए नेशनल मिशन। It is not only Prime Minister's task, it is a task for all of us. I am confident we have to take up in a big way. Always crisis, it is a challenge. Every challenge will generate opportunity. Now, after this crisis, I am confident India is unstoppable. India will emerge as a global giant.
2: वहीं इस अपील पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की सोना ना खरीदने वाली अपील को किंतु परंतु के साथ ही सही लेकिन सही ठहराया है। लेकिन चिदम्बरम ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान वास्तविक स्थिति को देश से छिपाए रखा।
5: ही इज नो चॉइस, ही सक्सेसफुली एंड क्लेवरली हिड द
6: true economic situation, financial position for the last year, and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion. And nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
2: और आज असम में होना है हेमंत बिस्व शर्मा का राजतिलक.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से.
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: आज हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण होना है असम में। हेमंत बिस्वरमा राष्ट्रलक की उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11:40 पर हेमंत बिस्वरमा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउग भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, अगर आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो क्या तैयारियां दिखा सकते हैं हमें?
1: जी बिल्कुल, आज तीसरी बार बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह असम में होने वाला है और हेमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड के पास मौजूद हूं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कैसे सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं और रस्तों को इस वक्त डाइवर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे असम पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। यहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, साथ साथ नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनके, और धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े मेहमान हैं वो सभी आ रहे हैं। लगभग 40 से ज्यादा एनडीए के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ा समारोह होने वाला है और इस बार 5 लोग शपथ लेने वाले हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के अलावा 4 नेता भी शपथ लेंगे जिसमें एजीपी और बीपीएफ के नेता भी शामिल है। और आज ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार मैं कहूं तो बनने जा रही है और पहली बार एनडीए अपने दम पर यानी बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आई है। 82 नंबर एनडीए बीजेपी को मिले और एनडीए की अगर हम बात करें तो 102 सीटें एनडीए इस बार असम में लेकर आई है। तो एक हिस्टोरिकल मैंडेट एनडीए को मिला है और इसीलिए कहीं ना कहीं उम्मीदें भी इस बार हेमंत बिस्वा सरमा से ज्यादा बढ़कर निकल के आ रही हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर गर्भवती महिलाओं की मौत मामले पर अब कोहराम मच गया है। कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत मामले में माहौल गर्मा गया है। एक महिला के परिजन ने कल पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर नवजात बच्चे को गोद में लेकर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की जान गई। 4 महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है। 3 की मौत किडनी फेलियर और 1 की मौत हृदय संबंधी बीमारी से हुई है। 9 महिलाओं की किडनी फेल होने की बात कही जा रही है। गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। स्थायी लोक अदालत ने न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया।
2: ऑपरेशन वहां और भी हो रहे हैं। यदि इन्फेक्शन होता तो सब में फैलता है। हमारे यहाँ नॉर्मल प्रसव भी हो रहे हैं और दूसरे ऑपरेशन भी हो रहे हैं इनके साथ, है ना। तो एकाध महिला में ऐसी स्थिति आती है और महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होता है, एक में हो जाए, दो में हो जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें, सडन प्लेटलेट्स डाउन होना पेशेंट के, सडन पेशेंट के लिवर एंजाइम डिस्टर्ब होना, तो ये तो एक बहुत ही रिसर्च का ही हो गया और मन भी बहुत व्यथित है इस चीज़ों से।
0: शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि अधीक्षक महोदया तो अभी तक रिसर्च और कंफ्यूजन की ही बात कर रही हैं।
3: बिल्कुल नहीं, ठीक कह रही हैं आप। सरकार कंफ्यूजन में है कि ये 4 मौतें हुई कैसे और जो अभी 9 भर्ती हैं 2 अलग अलग अस्पतालों में, उसमें भी 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब पहले कहा गया कि दवाओं के साथ समस्या है, फिर 24 दवाओं को बैन करके जांच की गई, सारे मरीजों को वही दवाएं दी गई थी, फिर कहा गया कि ओटी का इन्फेक्शन है। अब पोस्टमार्टम के बाद भी ये पता नहीं लग पाना, ये समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे एक्सपर्ट जयपुर से गए हैं, जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था जिनके देखरेख में, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, बाकियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सारे डॉक्टर की टीम वहां पर बैठी हुई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौर कोटा में बैठी हुई है। उसके बाद भी सरकार अगर ये कहती है कि 13 महिलाओं में 12 के किडनी फेल हो गए और हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो अपने आप में आश्चर्य की बात है कि ये कैसे हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जो भी इस तरह की स्थिति हुई है कोटा में, 2 अस्पतालों में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन में महिलाएं भर्ती हैं। जो महिलाएं भर्ती हैं उनमें से 5 की हालत कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भी गुस्सा है वहां पर।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात वॉर की करेंगे, ईरान और अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने हवाई अड्डों पर खड़ा किया। पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर पना दी थी। CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेज दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने जिन विमानों को नूर खान एयरबेस में तैनात किया उनमें ईरानी वायुसेना का RC-132 ही विमान शामिल था। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बचे हुए सैन्य विमानों की संभावित अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में उन्हें छिपा दिया था जिससे उन्हें अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचाया जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान ने अपने नागरिक विमानों को भी अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए अफगानिस्तान में खड़ा किया। इस बीच मिडल ईस्ट तनाव को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर है। जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान UAE ने भी ईरान पर हमले किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि UAE ने ईरान पर गुप्त सैन्य हमले किए। इन हमलों में ईरान के लावान द्वीप के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके बाद तेहरान ने UAE और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। UAE ने इन हमलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि UAE विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश को किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार है जिसमें सैन्य कार्रवाई शामिल है। अमेरिका इन हमलों से नाराज था क्योंकि उस समय युद्ध विराम पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। तो अमेरिकी बमबारी में जो तेहरान दहल गया था वो अब संभल चुका है, बाजार की रौनक लौट आई है। देखिए गीता मोहन की वहीं से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।
4: ये है ग्रैंड बाजार, 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है, जहां पे सब कुछ बसता है या फिर या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं वो भी इसी जगह से शुरू होता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पूरे बाज़ार को बनाया गया है। एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है, कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाजार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का। खूबसूरती की बात करें तो तेहरान की का कोई जवाब नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ की जगह, लेकिन यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। जहाँ एक ज़माना था जब यहाँ पे बहुत पर्दा होता था, अब आपको दिखेंगे अलग अलग किस्म के लोग, कुछ जो करते हैं कुछ जो नहीं भी करते हैं, और वो रिलैक्सेशन आया है बड़े ही जद्दोजहद के साथ। What is interesting यहाँ पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आप सामान यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इटालियन ब्रांड है, Videlmi, right? This is Videlmi, इटालियन ब्रांड है जो लाइसेंस के साथ ईरान में बेच रहे हैं। हमने हर जगह जाके देखा, कई सारे मॉल्स में भी देखा, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आराम से अपने लाइसेंस के साथ बेच रहे हैं। तो सैंक्शंस का जो मकसद है वो क्या रहा, जब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, जब हम यहाँ पे फरवरी में आए थे तो हमने आपको दिखाया था और फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ नाम बदल कर कुछ नाम के साथ यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट है ईरान, बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हर ब्रांड आपको ईरान में नजर आएगा।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल खरीदने से बचें और कार पूलिंग में चलें। असम में आज से हेमंत सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, चार मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, पहुंचने लगे बीजेपी के मुख्यमंत्री, हेमंत बोले असली पिक्चर अभी बाकी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर मामले में जांच, अब सीबीआई के सुपुर्द, यूपी बिहार से हुई तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने अरेस्ट किया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएट।
0: 9:30 बज गए हैं, बुलेटिन में वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। असम में हैट्रिक के बाद आज हेमंत का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। गुवाहाटी के खानापारा में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े बीजेपी के नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जेपी नड्डा, नारायण सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद है, एनडीए नेता के नाम पर लगी औपचारिक मोहर। असम चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत, बीजेपी ने 82 सीटें जीती, एजीपी और बीओपीएफ को 10-10 सीटें मिली, विपक्ष पीछे रहा। हेमंत ने ट्वीट कर लिखा 2021-2026 सिर्फ ट्रेलर था, 2026-2031 से पूरी तस्वीर दिखेगी। वडोदरा में पीएम मोदी ने सरदार धाम भवन 3 का किया लोकार्पण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। गुजरात में तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास, छात्रों को मिलेगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं, परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम है। पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए बनाए सरदार धाम छात्रावास, 2006 छात्राओं को मिलेगी इसकी सुविधा। पीएम मोदी को मिला सरदार गौरव रत्न सम्मान, पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर किया नमन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व सीएम एम के स्टालिन से उनके आवास पर की मुलाकात। तमिलनाडु के पलानीस्वामी खेमे में 17 AIADMK विधायकों ने प्रोटियम स्पीकर से की मुलाकात। सीएम विजय का एक्शन, मंदिर स्कूल और बस स्टैंड के 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री पर रोक, विजय सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थल स्कूल और बस स्टैंड के पास 717 शराब दुकानें बंद। कर्नाटक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा बेंगलुरु के निकाय चुनाव जून की जगह अब 30 सितंबर तक करवाने की इजाजत दी जाए।

0: राजधानी दिल्ली में सीआईए वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन। 100 साल का भारत, एक विजन थीम पर चर्चा। मिडिल संकट पर बोले अडानी, एनर्जी और डिजिटल सिक्योरिटी अब देश की असली ताकत है।
1: A nation that does not build capability in peace is forced to pay for his exposure in crisis. Energy.
0: मध्य प्रदेश के गुना में अडानी समूह की नई सीमेंट यूनिट रखी गई। नींव उसके सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रणव अडानी रहे मौजूद। एमपी में अडानी ग्रुप करेगा 1,060 करोड़ का निवेश।
2: ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है, ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है।
0: डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग। मशीनों के कंपन और तापमान बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा। क्लोन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम, क्लीन एनर्जी। खेड़ा में ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग, बड़ा हादसा टला, जांच में जुटा प्रशासन। साबरकांठा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कोटा में घर के पानी से टैंक से निकले 11 सांप, 20 मिनट चले रेस्क्यू से परिवार में दहशत। महाराष्ट्र सतारा में केमिकल फैक्ट्री भीषण आग, 30 फीट ऊंची उठी लपटे। इंदौर में बस डिपो में आग, भयंकर आग से अफरा तफरी। सर्विस रूट पर खड़ी 5 बस जलकर खाक। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटी बस, एक यात्री की मौत, 30 घायल। फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच विवाद, हिंसक रूप लिया, पत्थरबाजी के बाद 3 घायल। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े छात्र की चाकू गोदकर हत्या। कॉलेज गेट पर सैकड़ों लोगों के सामने वारदात का लाइव फुटेज आया सामने। ओडिशा के मयूरभंज में कार्यक्रम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। रामगढ़ में अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और सामग्री बरामद। रोहतक में सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवक ने दुकान के पास बरसाई गोलियां। जलंधर में युवती से कार में गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, इस्तेमाल की गई कार बरामद। पठानकोट में एयरबेस के पास फर्जी पुलिस आई कार्ड के साथ घूमते 3 संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को दे रहे थे चकमा। पदाश के वाशी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की अधिक कीमत का प्रतिबंधित पान मसाले से लदा ट्रक किया गया जब्त। पुणे पुलिस ने म्यांमार से रेस्क्यू होकर लौटे 3 आरोपियों को साइबर घोटाले में दोबारा गिरफ्तार किया। मौके से डिजिटल उपकरण और बैंकिंग किट बरामद। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराया टेम्पो, 4 की मौत, 5 घायल। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, मलल जाते समय एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 4 सदस्य घायल। संभल के स्कूल में हिंदू छात्रों को पहनाई गई टोपी और हिजाब, 3 शिक्षक निलंबित, 2 पर केस दर्ज। राजस्थान के हीट वेव और लू का अलर्ट, राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव। महाराष्ट्र भीषण गर्मी का कहर, पूरे राज्य में हीट स्ट्रोक से मरीजों की संख्या बढ़ी। अकोला और अमरावती समेत पूरे विदर्भ में भीषण गर्मी, तापमान लगातार 45 डिग्री के पार। अकोला में अपने प्रचंड रूप में गर्मी, गांव में पानी की भारी किल्लत, महिलाएं कई किलोमीटर दूर पानी ले जाने को मजबूर। पाली में 42 डिग्री तक पहुंचा पारा, तेज गर्मी के बीच अस्पताल में लगे कूलर। डोडा में तेज बारिश और आंधी का कहर, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में शुरू हुआ बैरियर लेस टोल सिस्टम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया नया सिस्टम। उनका बक्कर वाला टोल पर नहीं रुकेंगी गाड़ियां, अब बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। एआई तकनीक से बदला टोल सिस्टम, हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ी गाड़ियां, यात्रियों के समय होती की होगी बचत। दिल्ली में सीआईए समिट में बोले यूपी सीएम योगी, पिछली सरकारों के गड्ढों को हमने भरा, यूपी में बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ने की बारी। आईपीएल में दिल्ली की टीम ने पूरा किया अपना बदला, पंजाब की टीम को 3 विकेट से हराया। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में पंजाब के 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाए गए। कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने खेली धुआंधार अक्षर के पारी, अक्षर ने बनाए 56 रन, मिलर ने 51 रन बनाए। दिल्ली की टीम ने 5 बदलाव किए गए, डेविड मिलर, अभिषेक पुरेल, साहिल पारिक, माधव तिवारी और आकिब नबी की वापसी हुई। सीजन में पंजाब की लगातार दूसरी हार, जबकि दिल्ली की जीत ने प्ले ऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी मैच जीतने वाली टीम, फिलहाल पॉइंट टेबल में हैदराबाद दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7 मुकाबले खेले गए, जिसमें जीटी 5 बार जीती है। पैट कमिंस के लौटने के बाद सनराइजर्स की टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में, इस बात की संभावना कम है कि दोनों टीमें प्लेइंग 11 में किसी तरह का बदलाव करेंगी। गुजरात को अपने कप्तान शुभमन गिल से काफी उम्मीद, वहीं हैदराबाद टीम अभिषेक शर्मा पर कर रही है रिलाय। अनन्या पांडे लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर आउट, लव इमोशन और अग्रेशन से भरपूर है। करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश का नया रियलिटी शो देसी ब्लिंग ओटीटी पर मचाएगा धमाल। रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह का नया गाना बॉडी रोल रिलीज, नौरा फतेही ने गाने में दिखाए बेहद बोल्ड और स्टाइलिश डांस मूव्स। बॉक्स ऑफिस और बम्पर कमाई के बाद भूत बंगला ओटीटी पर देगी दस्तक, 12 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी लॉन्च। रिलीज से पहले रामचरण जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी ने टिकट की रिकॉर्ड तोड़ा, 4 जून को फिल्म दुनिया भर में होगी रिलीज। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर विध्वंसक हमले की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगी से आज तक की रिपोर्टर गीता मोहन एक्सक्लूसिव बातचीत की।
3: इस्माइल बघाई ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और आज ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और उसके बाद दिए गए ईरान के जवाब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
4: सलाम
5: सलाम।
3: पहले बात प्रस्ताव की, इस बार के प्रस्ताव में क्या अलग था, अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर क्या दिक्कतें थीं और आपका काउंटर ऑफर क्या था, साथ ही ट्रंप ने इसे मंजूर क्यों नहीं किया?
6: मुझे लगता है कि आपको इसे खास संदर्भ में समझना होगा। पिछले 10 साल से ज्यादा समय से अमेरिका के साथ हमारी राजनयिक प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत हमने साल 2012 से पहले भी परमाणु मुद्दे पर वार्ता की, लेकिन 2012 में उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके कारण 2015 में JCPOA का गठन हुआ। फिर 2018 में अमेरिका ने JCPOA से एक तरफा हटने का फैसला किया। ईरान ने लंबा इंतजार किया इस उम्मीद में कि यूरोपीय साझेदार किसी तरह अमेरिकी वापसी की भरपाई करेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मई 2019 में ईरान ने अपनी प्रतिबद्धता कम करने का फैसला किया। हम हर 2 महीने में अपनी प्रतिबद्धताएं घटाते रहे ताकि अन्य पक्षों को इसकी भरपाई करने का समय मिल सके, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। हाल के युद्ध में जब दूसरी बार युद्ध विराम हुआ तब हमने बातचीत की राजनयिक प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की। हमने कहा कि आइए पहली प्राथमिकता पर ध्यान देते हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। हमने युद्ध समाप्ति को लेकर बातचीत पर जोर दिया। हम हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर चर्चा करने को तैयार थे, बशर्ते अमेरिका समुद्री डकैतों की तरह काम करना बंद करे। इस कोशिश का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों को फिर से शुरू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले जरूरी मसलों को हल करना था।
4: इंटरनेशनल मैरिटाइम व्हिच इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड इकॉनमी बट अनफॉर्चूनेटली द यूनाइटेड स्टेट्स।
6: मगर दुर्भाग्य से अमेरिका इस मौके की अहमियत को समझ नहीं पाया। बातचीत से किसी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब आप दूसरे पक्ष की बातों को सुनें और उन पर अमल करने को भी तैयार हों। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। ये सब कुछ उसी अन्यायपूर्ण अभियान का हिस्सा है जो ईरान के खिलाफ युद्ध से शुरू हुआ था। ये हमला पूरी तरह से गैरकानूनी था। फिलहाल अमेरिका की ओर से घोषणा की गई है कि वो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए हमें मौजूदा स्थिति की बेहतर जानकारी मिल सकती है।
4: वक्त
0: एक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
11: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
12: विक्रम, एक हिंट तो देते।
13: विक्रम!
12: हिंट।
14: बड़े आराम से।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट।
17: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते
4: हैं। पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते हैं।
5: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: Like I said before, we better own the sins.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
2: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है.
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
5: हमारे सीमेंट में नहीं है.
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हैं ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
10: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
12: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
13: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
14: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
13: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
15: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर.
12: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर.
16: इन एसोसिएशन विद
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
18: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
19: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
20: आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है. 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था. देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए. हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा. दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे.
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
16: In association with
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
21: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.
22: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
7: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
8: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
9: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
8: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
10: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
7: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
11: इन एसोसिएशन विद
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
15: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
16: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं? ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने न जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल्ड खरीदने से बचें और कार पूलिंग में चलें। असम में आज से हेमंता सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, 4 मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। पहुंचने वाले बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बोले, असली पिक्चर अभी बाकी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के हवाले, यूपी बिहार से हुई है 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन। भीतर भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, 600 नंबर के सवाल मैच हुए, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।

0: तक के सुबह के 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। कच्चा तेल महंगा होने से आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इस संकट की घड़ी में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देशवासियों से संयम और सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे कदम देश के लिए बेहद अहम है। उन्होंने एक बार फिर सोना न खरीदने की अपील की, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही। पीएम मोदी की इस अपील के पीछे मकसद यही है कि कच्चा तेल और सोना खरीद के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता हुआ दबाव कम किया जाए, जिससे महंगाई का संकट ना बढ़े। इससे पहले सिकंदराबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने अमेरिका ईरान जंग को लेकर वैश्विक मुश्किलों की चर्चा की थी। अब दूसरे दिन पीएम मोदी ने देश की जनता से फिर से सहयोग करने की बात कही है।
1: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें।
0: हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग बाधा

0: बरकरार रहेगी, लेकिन आपको जब ऑनलाइन क्लासेस में आप जाएंगे आपको उतना ही डिजिटली रिस्पॉन्सिबल होना है जैसे कि हम पहले के समय में होते थे, जब जब जरूरत पड़ी हम डिजिटली स्विच ओवर हुए हैं।
1: और तो मैम हम ये कब से मान रहे कि आप लोग कब से ऑनलाइन मीडियम की शुरुआत करें?
0: बहुत जल्दी क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं और ये तो एजुकेशन गवर्नेंस जो आ रही है अब आगे आने वाले टाइम में उसके लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए।
1: आप कितना फ्यूल एनर्जी बचा पाएंगे अगर ज्यादातर क्लासेस आप?
0: बहुत, जब बसेस का कंट्रोल हो जाएगा उस पे रोड्स पर, जैसे हमारे स्कूल से 12 बसेस निकलती है, जब 12 बसेस का कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील के थ्रू जो एक दूरदर्शिता है हम उसको कहीं ना कहीं अचीव करेंगे।
1: देखिए कि बसों की संख्या कम होगी तो डीजल बचेगा, स्कूल में आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करते, कुल मिलाकर के ये एक कोशिश है और तमाम सारे स्कूल जो है अपने अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इस अपील का वो हिस्सा बने, शुरुआत हो रही है उसकी।
2: जी बिल्कुल, तो कोशिश है स्कूलों की तरफ से जरूर की जा रही है। शुक्रिया आपका आशुतोष। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का भी कोई असर हो रहा है, ये जानने के लिए रुक करते हैं एक पेट्रोल पंप का, जहां पर मौजूद हैं आज तक के जितेंद्र सिंह। जितेंद्र बताइए, इस वक्त वहां जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है और क्या ये अपील असरदार साबित हो रही है?
3: और देखिए अंजलि, सुबह से ही मैं यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। जब मैं सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचा था तो गाड़ियों की संख्या काफी कम थी और अमूमन वही सिचुएशन जो है अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रही। ये जनपथ रोड का जो है ये पेट्रोल पंप है और 3-4 दिन पहले अगर उस समय की सिचुएशन देखें तो उस दौरान यहाँ पर लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अभी इस तरफ आप देखिए कि पूरा ये पेट्रोल पंप इस वक्त खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की अपील की है उसका असर जनता पर दिखाई पड़ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग अपने काम के लिए, आपसे थोड़ी देर पहले हमने एक रैपिडो चालक जो है उससे बातचीत किया तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्या कार पुलिंग के जरिए या फिर बाइक जो लेकर के आप आ रहे हैं उसमें किस तरीके से मेट्रो से क्या आप यात्रा करते? तो उसने कहा कि हमको काम पर जाना पड़ता है इसलिए हम इस तरीके से कदम नहीं बढ़ा सकते, हमको लोगों को लेकर के जाना पड़ता है तो काम नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो ट्रेवल एजेंसी के लोग हैं उनसे बातचीत हमने किया तो उन्होंने भी अलग तरीके का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका पालन लगातार किया जा रहा है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कारपुलिंग के जरिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम ने अपील किया है कि अब पेट्रोल डीजल का कम उपयोग किया जाए जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और उससे लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी।
4: जी सर, ये सही है, एक तरह से देश के उसमें हम अपना कुछ ना कुछ योगदान दें, जब स्थिति ऐसी है तो उसके अनुसार चलना चाहिए। जी जितना हो सके पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें और मेट्रो का यूज करें और या पोलिंग करें चाहे कार हो चाहे बाइक हो।
3: बिल्कुल, आप लोग भी अब इसी तरीके से आगे कदम बढ़ा रहे हैं?
4: जी बिल्कुल सर,
3: बिल्कुल। आप ये बताइए कि पीएम ने अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम हो जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार इसमें इसकी बचत हो सके, दिक्कत किसी तरीके की ना हो।
5: नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी अपील करी है, हमने भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, अब हफ्ते में एक या दो बार ही इसको यूज कर रहे हैं, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग।
3: बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं और अब कम करेंगे अपनी पर्सनल गाड़ी,
5: शुरुआत भी कर दी है,
3: कम आज से शुरुआत
5: कर दी है।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, आप बताइए कि पीएम ने जिस तरीके से अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें तो अब कब किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं?
6: इलेक्शन के बाद ही क्यों नजर आता है, इलेक्शन से पहले क्यों नजर क्यों नहीं आता? इलेक्शन खत्म, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, खाने का तेल कम यूज़ करो, सोना मत लो, तो ये तो इलेक्शन से पहले सब कुछ काफिला चलता है। कल भी देखो, कल भी काफिला चला है। पहले मोदी जी अपने आप को भी तो देखे ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी भागीदार बने इस चीज का, लेकिन
3: बिल्कुल। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के बयान हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर हमको दिखाई पड़ा, लेकिन लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है
2: बिल्कुल
3: सरकार
2: मूड
3: की अपील
2: क्या है जमीन पर, ये जितेंद्र हमें दिखा रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील। भोपाल में बेअसर दिख रही है। बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पद संभालने पहुंचे। बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर निगम अध्यक्ष बनने के बाद पद संभालने पहुंचे थे और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए जहां वो दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ चले। तो क्या ये पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर बीजेपी के नेताओं पर नहीं हो

0: है जब वो दर्जनों गाड़ियों के साथ इस तरह से हाईवे पर चलते हैं और वो भी अपना पद संभालने के लिए, अपने कार्यभार को संभालने के लिए जब वो रुक करते हैं दफ्तर का, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं भोपाल से, जहां दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे वहां पर बीजेपी के नेता। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दरअसल एक हाईवे के जरिए जा रहे थे, जहां रास्ते में बार बार लोगों ने रोककर इनका स्वागत भी किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं रवीश पाल सिंह। रवीश, सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी के नेता आखिर क्या कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री की अपील पूरे देश में हुई है, और ऐसे समय में जब वैश्विक संकट है, जिसे देखते हुए इतनी बड़ी अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, तो उसका पालन उनकी अपनी ही पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। सौभाग्य सिंह ठाकुर जो है, मध्य प्रदेश में इन दिनों अलग अलग जो प्राधिकरण है, निगम और मंडल है, उनमें नियुक्तियों का दौर चल रहा है। ऐसी कई सारी मंडल और निगम है जिनमें नियुक्तियां हुई हैं, और भोपाल आकर के ये जो नेता होते हैं, ये अपनी पदभार ग्रहण करते हैं। कल जब पदभार ग्रहण करने सौभाग्य सिंह ठाकुर पहुंचे पाठ्य पुस्तक विकास निगम के चेयरमैन के पद पर, तो वो उज्जैन से भोपाल तक दर्जनों गाड़ियों का काफिला, जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वो लेकर के पहुंचे और जगह जगह काफिले का स्वागत भी हुआ। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में थी, और ये तस्वीरें खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली। मतलब पहले तो प्रधानमंत्री की मोदी खुद पे बेअसर साबित थी, और उसके बाद इसका मुजाहरा उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सबके सामने कर दिया, और अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि पाठ्य पुस्तक विकास निगम के चेयरमैन के पदभार ग्रहण करने के दौरान इतना लंबा चौड़ा काफिला लेकर के आधा राजधानी में, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल को संयम से खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऐसे में जो इस तरीके के जो नेता हैं वो सार्वजनिक रूप से लग्जरी गाड़ियों का जो काफिला है वो लेकर भोपाल आते हैं।
0: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी के नेताओं ने अपने प्रधानमंत्री की नसीहत नहीं सुनी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि ये बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर आघात है, ऐसे बयान की माफी नहीं हो सकती, और जनता आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। तो दरअसल पेट्रोल डीजल पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है।
2: मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है, उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम एक साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सके।
3: मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है, और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।
0: तो समाजवादी सांसद अजेंद्र लोधी के बयान को लेकर सियासी भूचाल आ गया है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है।
4: ये अपने आप में उनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता के वो लोग हैं, और जिस पार्टी से वो आते हैं उनको यही करना आता है, गुंडागर्दी मारपीट अभी तक यही अराजकता उन्होंने फैलाई, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी झलकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी एक दायित्वान व्यक्ति है, एक हमारे इतने बड़े पद पे है, प्रधानमंत्री हमारे कहीं ना कहीं हमारी धरोहर है, उनके खिलाफ इतना ही इतनी घटिया तरीके से टीका टिप्पणी करना, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत गलत बात है।
5: देश की जनता का अपमान है, और खुद अभी तक इस पे अखिलेश यादव का कोई बयान ना आना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इतनी उनकी बौखलाहट है। बंगाल में जो जनादेश मिला है और जिस तरह से जनता ने, तो 27 का भी परिणाम उनको आज ही दिखाई पड़ रहा है। तो अब अगर भाषा पे भी संयत नहीं रहा, तो ये तो निश्चित तौर से निंदनीय, लेकिन इसका जवाब अगर अखिलेश उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस गाली का जवाब जनता 2027 में दे देगी।
0: और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
13: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट?
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: एक हिंट तो देते।
17: विक्रम!
16: हिंट।
15: बड़े आराम से।
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा दे,
9: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते हैं।
10: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड द सिंस।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean.
18: Teaching and learning is evolving. A master's degree in education technology and instructional design at WGU puts you at the forefront of that change. Learn more at wgu.edu.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
20: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
21: Skincare brand now.
22: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
23: GK Maxx.
24: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
23: GK Maxx. Best putty.
25: JK Wall Maxx.
23: Best paint.
24: JK Maxx.
23: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Maxx paints. JK Maxx. JK Maxx paints. खुशियों के रंग.
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
15: Like I said before, we better hold the sins.
16: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
0: यार
1: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है,
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
25: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
26: लायन डेट नट बाइट्स।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
7: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल्ड खरीदने से बचें और कारपूलिंग में चलें। असम में आज से हेमंता सरकार की दूसरी पारी का आरंभ, चार मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद, पहुंचने लगे बीजेपी के मुख्यमंत्री, हेमंता बोले असली पिक्चर अभी बाकी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के हवाले, यूपी बिहार से हुई है तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने किया अरेस्ट। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर दर्ज हुआ केस, पीएम मोदी के बारे में कही गई आपत्तिजनक भाषा का हो रहा है जबरदस्त विरोध। अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।

0: दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव पर टिकी हैं। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मचा दी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाली पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस संकट से निपटने के लिए हमें अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। प्रयास यही है कि सोना आयात के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाए। संकट की इस घड़ी में आर्थिक मोर्चे की चुनौतियों से निपटा जाएगा।
1: जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
2: चौबीस घंटे के भीतर ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से किफायत की अपील कर रहे थे।
1: ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाए, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाए, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए।
2: देश जब पश्चिम एशिया की जंग की वजह से संकट से गुजर रहा है, तो विदेश में शादी और छुट्टी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पीएम ने बेहद दिलचस्प अंदाज में लोगों से अपील की।
1: मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए।
2: पीएम मोदी ने आज के हालात की तुलना कोरोना काल से की है और उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह इस संकट पर भी देश काबू पा लेगा।
1: अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।
2: मोदी ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पर जोर दिया ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचे।
1: डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जय सरदार।
0: और अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का, जो इस वक्त दिल्ली के करोल बाग इलाके में मौजूद हैं और ज्वेलरी बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या असर पड़ता दिख रहा है वहां पर?
3: अजली देखिए, दिल्ली में खासतौर पे अगर आप वेडिंग सीजन की बात करें तो जो आने वाला वेडिंग सीजन है और ऑनगोइंग भी जो फेस्टिविटीज है उसमें शॉपिंग के लिए ये सबसे मुफीद समय माना जाता है। हालांकि बाजार लगातार उछाल मार रहा था, उसके बावजूद जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं, सोना चांदी खरीदने वाले लोग हैं, वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो कामकाज आपने स्केड्यूल कर रखा होता है, जो फेस्टिवल्स मनाने हैं या जो जिस शादी में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए तो शॉपिंग करनी ही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एक तरह से जिस करोल बाग के मार्केट में मैं हूं, जहां बड़े बड़े ज्वेलर्स के शोरूम्स भी हैं, जरूर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट जो है वो डाउन हुआ है, चिप्स डाउन हुए हैं, और खासतौर पर ये मोटिवेशनल मॉरल लेवल पे आप कह सकते हैं कि वो वहां कमी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब आप आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील को हम सुन रहे हैं, उस पे कदम भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सोने चांदी का सवाल है उसको एक साल तक नहीं खरीदना ये संभव नहीं होगा। और खासतौर पर जिन घरों में शादियां स्केड्यूल्ड है या कोई फंक्शन स्केड्यूल्ड है वहां पे ये निर्णय लेना इस वक्त बहुत कठिन कार्य नजर आ रहा है। और सुबह से जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है निश्चित रूप से उनके कस्टमर पर्सपेक्टिव से कम अज कम यही जवाब आ रहा है। सराफा मार्केट इंतजार कर रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद किस तरह का असर उनके बाजार पर पड़ेगा और जो ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है, उस पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि कल हमने देखा था कि सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आई थी, पहले से ही मार्केट की स्थिति जो इनसाइडर्स हमें समझा रहे हैं अंजलि की, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महीनों में खासतौर पे सोने की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो आमतौर पे लोग पहले 22 और 18 कैरेट का सोना खरीदते थे, 14 कैरेट पे लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था महंगाई की वजह से, तो पहले से मेकिंग चार्जेस वगैरह जिस इलाके में हम हैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्रोमिनेंट ज्वेलर्स ने भी मेकिंग चार्जेस अपने कम करके रखे
0: हैं। जी तो पहले से क्या आपकी तरफ से कोशिश की जा सकती है कि जाके देखा जाए कि बाजारों में दुकानों में ग्राहक हैं या नहीं?
3: देखिए अंजलि, जिस शोरूम के पास मैं अभी हूँ, बहुत प्रचलित शोरूम है दिल्ली का ये, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सुबह का बहुत अर्ली समय है तो उस लिहाज से भी कस्टमर्स तो अभी नहीं है, आपको खाली ही दिखाई देगा, कस्टमर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अदरवाइज भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि पशुपेश का समय है, लोग सोच रहे हैं आखिरकार क्या करना है, और जो मार्केट इनसाइडर्स हैं वो भी जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मेकिंग चार्जेस कम करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे सेल्स को, अब इस अपील

0: मीटिंग हो, सभी दलों को इस बैठक में बुलाया जाए, ये मांग शरद पवार की तरफ से आ रहा है। आपको बता दें कि ये लगातार विपक्षी पार्टियों का रुख रहा है कि वो प्रधानमंत्री और सरकार को निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर पहले क्यों इस संकट को छुपाया गया, ये आरोप उनकी तरफ से लगा है। और अब शरद पवार का कहना है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। जाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि सरकार की तरफ से उन्हें क्या स्थिति है इसके बारे में अवगत कराया जाए, जो इस वक्त स्थिति बाजार की है या तेल के भंडारों की है
1: का वातावरण है और जिसके वजह से उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में आम लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो या बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफी डर का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते गंभीरता से इस पूरी सिचुएशन को लेते हुए तुरंत प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। इससे पहले की जो दो मीटिंग्स हुई उसमें अमित शाह या राजनाथ सिंह अध्यक्षता इसकी कर रहे थे, जिसके वजह से अपोजिशन का ये मानना था कि प्रधानमंत्री खुद मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं। तो शरद पवार का ये कहना है कि उन्हें खुद इस मीटिंग में आना चाहिए और उसके साथ साथ भी कंसल्टेशन चाहिए कुछ इकोनॉमिस्ट या बाकी क्षेत्रों के एक्सपर्ट से, ताकि इस तरीके की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। ये पहली डिमांड आ रही है अपोजिशन की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैलीज में या गुजरात में जो वडोदरा में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पब्लिक रैलीज में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई नेशन टू एड्रेस या बाकी सारी चीजें नहीं हुई है, खुद सरकार ने अपने लिए कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव डिक्लेयर नहीं किया, जिसके चलते अब अपोजिशन का कहना है कि क्या स्थिति है आज की स्थिति, उस पर ऑल पार्टी को ब्रीफ करना जरूरी है। तो इसके चलते ये मांग शरद पवार की तरफ से रखी गई है।
0: जी शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की अपील को देश के लोगों को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री जी की बात की, उन्होंने एक अपील की है देशवासियों से, जिस तरह की स्थिति वेस्ट एशिया में है उसमें पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, विदेश कम जाएं, आप इस अपील को किस तरह से दें?
3: देखिए ये सारे ऐसे जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ये वो विषय हैं जिसको देश के हर नागरिक को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये किसी से छुपा नहीं है, वैश्विक चुनौतियों से देश दुनिया के हर देश गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रिवेंटिव क्या क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं है देश की जनता को ये बताने के लिए। और अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय में ऐसी चुनौतियों से हम लोग निपट चुके हैं, हमने डटकर उसका सामना किया है और हमारा देश उतनी ही स्थिरता के साथ, आज कई देश जहां पे पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं वहां पे अभी तक हम लोगों ने इसको नियंत्रित करके रखा है। ये एक प्रधानमंत्री जी की सोच ही है जिसने इन सब चीजों को संभव किया है। बट ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर ये परिस्थितियां जैसी हैं ऐसी ही बनती गई तो चीजों को हम लोग को और नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें देश की जनता के साथ की जरूरत होगी और यही आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कल किया।
2: डीजल का अल्टरनेटिव हमको लगता है यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
3: पे ज्यादा जोर, ये जिक्र भी कल प्रधानमंत्री जी ने किया। कैसे हम लोग फॉरेन रिजर्व को हम लोग होल्ड कर सकें, उसके लिए सोना खरीदना पे जो उन्होंने मनाही की है उसके पीछे की सोच यही है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व हम लोग का कम से कम रहे। ऑयल तक का प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया क्योंकि वो भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से मुझे लगता है हम लोग बड़ी लड़ाई जीत पाएंगे।
0: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील को सही ठहराया है, हालांकि उन्होंने सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं।
4: He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion and

0: Nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
1: और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज तक पर जारी है. देखते रहिए आज तक.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
9: सोच बदलो और बैंक भी.
10: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके.
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रोफाइबर है.
11: माइक्रोफाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
11: हमारे सीमेंट में नहीं है?
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
14: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ.
15: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
16: लायन डेट नट बाइट्स.
17: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
18: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
19: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
18: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
20: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर.
17: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर.
2: इन एसोसिएशन विद
3: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
5: and
7: down.
5: And talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: वैश्विक संकट के समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे. ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें. अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें. साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी. आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा.
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: हेल्थ का सच।
1: जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल खरीदने से बचें और कार पूलिंग में चलें। पीएम मोदी की लगातार दो अपील के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। शरद पवार ने कहा बुलाएं सर्वदलीय बैठक, मीटिंग में खुद मौजूद रहे प्रधानमंत्री। राहुल बोले सरकार की नाकामी सामने आई।

असम में आज से हेमंत सरकार की दूसरी पारी का आगाज। चार मंत्रियों के साथ गुवाहाटी में शपथ ग्रहण। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। पहुंचने लगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। हेमंत बोले असली पिक्चर अभी बाकी है।

0: नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा पाठक। हेमंत बिस्वा सरमा की आज बतौर सीएम दूसरी बार ताजपोशी होने वाली है। आज हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण होगा और अब से 40 मिनट बाद लगभग हेमंत बिस्वा सरमा सीएम पद पर दूसरी बार काबिज होने वाले हैं। उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गुवाहाटी के खानपारा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। कई एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच रहे हैं। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत बिस्वा सरमा। आज राष्ट्र तिलक हेमंत बिस्वा सरमा का होगा। उनके साथ चार अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें अतुल बोरा का नाम है जो बोकाखाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामेश्वर तेली दुलियाजान कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, उनकी भी आज शपथ ग्रहण में मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा 2001 से इसी सीट पर हेमंत बिस्वा सरमा लगातार जीतते आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा बयान हेमंत बिस्वा सरमा ने दिया है कि अभी तो पिक्चर बाकी है। अब इसके

0: क्या मायने हैं इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने के लिए कल देर शाम ही गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। वेटरनरी कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह अब से लगभग 37 मिनट बाद शुरू होगा। कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर एनडीए या फिर बीजेपी की सरकार है, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, या फिर यूं कहा जाए कि एक ग्रैंड तैयारी यहां पर की गई है गुवाहाटी में इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए। श्री चरण बोरो, जो कि मजबल कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते हैं, उनका भी आज शपथ ग्रहण होगा। एनडीए शासित कई राज्यों के सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। ये मंच की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर स्वेयरिंग इन सेरेमनी अब से 36 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। लगातार हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच असम में किस तरीके से सरकार का गठन हुआ है, इसको लेकर लगातार तीसरी बार एनडीए ने जीत हासिल की है, वहां पर सरकार बनाई जा रही है। हेमंत लगातार दूसरी बार सीएम बन रहे हैं, शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारियां हैं, और उसके पहले ही हेमंत ने यह बता दिया कि अगले 5 साल के लिए उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में क्या कुछ है।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ खा कौ जो विधिर द्वारा स्थापित ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
2: এক স্বৰ মে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজীক আপোনাৰ নেতা চুনা হয়।

0: प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगले 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम को असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा।
1: असम के विकास की रफ्तार

0: प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगले 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम को असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा।
1: असम के विकास की रफ्तार को तेज करने का वादा है और अब उन वादों को पूरा करने की तैयारी है। आज शपथ ग्रहण के साथ ही हिमंता सरकार 2.0 अपने वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएगी। हिमंता और उनके भावी मंत्री होंगे दूसरे स्टेज पर। पद्म अवार्ड से सम्मानित हस्तियां और कई राजदूत और उच्चायुक्त मौजूद रहेंगे, जबकि सभी सांसद और विधायकों के लिए तीसरा स्टेज तैयार किया गया है।
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी है गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज फील्ड में, जहां पर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे कैसे मंच सज चुका है। और इस मंच पर अब से कुछ देर बाद एनडीए के सभी नेता मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे, गृहमंत्री अमित शाह यहां होंगे, साथ साथ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, लगभग सभी एनडीए के नेता यहां मौजूद होंगे। कुर्सियां लग चुकी हैं, लगभग 40 से ज्यादा एनडीए के जो नेता है वो इस मंच पर बैठने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैसे यहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
1: इस बार एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला है। असम ने 126 सीटों में से 102 सीटें एनडीए को देकर अपना जनादेश सुनाया है। बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर असम के लोकतांत्रिक इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है। सहयोगी एजीपी और बीपीएफ को 10-10 सीटें मिली हैं। वैसे तो बीजेपी असम में अकेले ही सत्ता के जादुई आंकड़े 64 को पार कर चुकी है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि शपथ के बाद हिमंता की प्राथमिकता में 100 दिनों का एजेंडा होगा। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार का इरादा बताया। उन्होंने लिखा कि असम की जमीन, पहचान और भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 1.5 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद एनडीए 3.0 असम के लोगों के लिए और 5 लाख बीघा जमीन वापस दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए जाति, माटी और बेटी पहले है। बीजेपी के वादों पर असम ने इस बार भरोसा जताया है। उन पर खरा उतरना हिमंता के लिए चुनौती भी है। पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, आज तक।
3: तो हेमंत बिस्सरमा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी का मौका उनके परिवार के लिए भी है। पीयूष मिश्रा, मेरे सहयोगी ने खास बातचीत की उनके परिवार से।
2: हिमंता बिस्वा सरमा का पूरा परिवार उनकी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। आप तस्वीरों में देखिए, उनकी माता जी जो है वो यहाँ पर है, साथ में रिंकी जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची है। मैम, कितनी खुशी का दिन है रिंकी जी, अगर आप बताएं, आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हिमंता जी।
4: बहुत ही खुशी का महसूस कर रहा हूँ। इट इज अ सेकेंड टर्म एंड पीपल हैज गिवन कम्प्लीटली ऑन द development process. It's a very happy moment.
2: What do you want personally? What work should be done for the first work of this government?
4: That is the CM to decide after he takes the oath.
2: Okay. How are you feeling? अगर आप बताएं, आप कैसे feeling?
3: तो परिवार को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर आज परिवार की भी मौजूदगी रहने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जिसमें एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। साथ ही नितिन नवीन भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल देर शाम पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने। 4 मंत्री भी हेमंत बिस्वा सरमा के साथ शपथ ग्रहण करेंगे।

0: सीटों के साथ एनडीए। यहां पर बीजेपी ने 82 सीटें हासिल की है, 10-10 सहयोगी दलों ने हासिल की है, कुल मिलाकर 102 सीटें जो बीजेपी ने हासिल करी है इस पूरे स्टेट में। उससे जाहिर तौर पर एक खुशी का माहौल है। दो मंत्री शपथ लेने वाले हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं शपथ ग्रहण से पहले सुनिए।
1: हमारी आदरणीय सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में लास्ट 5 साल जिस ढंग से काम किया था, लोगों ने भारी बहुमत दिया है। मैं हिमंत बिश्व शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन में, अमित शाह जी का मार्गदर्शन में यहाँ पे जितना काम हुई है एनडीए गवर्नमेंट का टाइम, स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स, तो पहले कभी नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस का बाद, तो इसलिए लोग खुश है।
2: सर, इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी ए मेंबर ऑफ डॉक्टर हिमंत बिश्वस कैबिनेट, सो आई गिव माय ग्रेटिट्यूड टू माय लीडर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा एट दिस ग्रेट मोमेंट। आई कैन से दिस ओनली दैट विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट to work for the betterment of our state so that Assam can contribute to the growth and economy of our country.
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, लगभग आधे घंटे का वक्त बचा है, क्या तैयारियां आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर एक मेगा शक्ति प्रदर्शन यहां पर इस स्वेयरिंग इन सेरेमनी में।
3: जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का, और एनडीए का ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार देखने को मिल रहा है। हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब 9 मई को भी शक्ति प्रदर्शन हुआ था और पूरा एनडीए बंगाल में एकत्रित हुआ था और वहां पर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन आज दिन है हिमंत बिश्व शर्मा का, आज दिन है असम में नई सरकार के गठन का। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गुवाहाटी के खानापारा में, जहां पर एक वेटरनरी कॉलेज है और यहां पर सभी तैयारियां कर ली गई है। लगभग 40 से ज्यादा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के वरिष्ठ नेता सब यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, कल रात में ही वो गुवाहाटी आ गए थे और रात में यहीं रुके हैं और कुछ देर में वो खानपारा जो वेटरनरी ग्राउंड है वहां पर पहुंचने वाले। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए जो हुजूम इस वक्त आपको दिख रहा है ये हुजूम है जनता का, जो जनता लगातार पैदल पहुंच रही है वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में और जनता इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन लेना चाहती है। और पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं इसी तरह से लोग जो है वो लगातार चले आ रहे हैं। और इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख की कैपेसिटी है, लेकिन लगातार लोगों का आना जो है वो जारी है। तो हुजूम हमने इससे पहले बंगाल में देखा और अब हुजूम जो है वो असम के गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है, जहां पर हिमंत बिश्व शर्मा शपथ लेने वाले हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और ये खानापारा का वेटरनरी ग्राउंड है जहां पर मुस्कुराते हुए चेहरे यहां से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करती है कि कैसे तीसरी बार एनडीए की सरकार वो असम में बनने जा रही है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पिछली बार के पास उतने नंबर नहीं थे कि वो अपने दम पर सरकार बना सके, लेकिन इस बार बीजेपी ने ना सिर्फ आंकड़ा पार कर लिया है लेकिन 82 सीट्स बीजेपी लेके आई है जो अप्रत्याशित है। और एनडीए 102 सीट लेके आया है जो अपने आप में असम के लिए, असम की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके लिए अपने अपने एक अप्रत्याशित सरकार वो असम में बनने जा रही है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पिछली बार के पास उतने नंबर नहीं थे कि वो अपने दम पर सरकार बना सके, लेकिन इस बार बीजेपी ने ना सिर्फ आंकड़ा पार कर लिया है लेकिन 82 सीट्स बीजेपी लेके आई है जो अप्रत्याशित है। और एनडीए 102 सीट लेके आया है जो अपने आप में असम के लिए, असम की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके लिए अपने आप में एक अप्रत्याशित परिस्थिति है। पूरा समर्थन इस बार असम की जनता ने
0: आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए आशुतोष जी,
4: जरा खर्चे कम करिए। और हालत ये है कि अगर ये सारा कार्यक्रम कहीं ना कहीं किसी अगर प्राइवेट में होता या राजभवन के अंदर होता, लोक भवन में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब इतने लाखों लोग आ रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं,
0: आह्वान करने से पहले ही वेन्यू और तमाम तैयारियां डिसाइड कर ली गई थी,
4: पहले भी हो सकता था,
0: कैंसिलेशन मुमकिन नहीं हो पाता।
4: नहीं, माइकल से लास्ट मिनट कैंसिलेशन हो सकता है मुख्यमंत्री, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं, परसों भी कहा, कल भी कहा, हम सब लोगों से कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलना शुरू करो, सार्वजनिक परिवहन पे
5: पेट्रोल बचाओ
4: का इस्तेमाल करो,
5: पेट्रोल
4: बचाओ, कार पूलिंग करो।
6: अब मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए।
5: लेकिन 40 वीवीआईपी अगर आ रहे हैं तो सब एयर हवाई जहाज से
0: आएंगे। क्या ऐसी सीख लेंगे वो हेमंत अपने पिछले कार्यकाल से, वो गलती कौन सी होनी नहीं होनी चाहिए अब आने वाले 5 सालों में आपके मुताबिक?
4: देखिए, अगर वो जिस तरीके का सांप्रदायिक टेम्परेचर अगर उसको कम कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी वजह से माहौल बिगड़ता है और कहीं ना कहीं उससे जो समाज विभाजित होता है। आप तीसरी बार चुने, बहुत बहुत भारी बहुमत से चुने, अगर पूरे असम के अंदर एक समावेशित विकास की कोशिश करें तो हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे बढ़िया मैंडेट उनको मिल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री का उनको सपोर्ट है और वहां पे डबल इंजन की सरकार है तो एक अच्छी बात है, और साथ ही साथ बोडोलैंड के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, असम गण परिषद के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा असम आज की तारीख में उनके साथ है। समावेशित विकास अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा असम का फायदा होगा।
0: लेकिन जिस तरीके से इस बार जीत हासिल हुई है, प्रचंड जीत, बीजेपी को अपने दम पर वहां पर मैंडेट हासिल हुआ है, जाहिर तौर पर इस वक्त कॉन्फिडेंस से भी वो लवरेज है। तमाम बातें यहां पर कही जा रही हैं कि आज स्वेरिंग इन सेरेमनी को थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए था, इस तरह के विशेष आयोजन की जरूरत नहीं थी। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज कौन कौन वो खास मेहमान है। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और वो इस स्वेरिंग इन सेरेमनी का हिस्सा रहेंगी। हमारे साथ प्रसून आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। प्रसून जी, जिस तरीके से हेमंत दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं, क्या कह रही है असम की जनता, क्या संदेश दिया गया है इस मैंडेट से, और खास तौर पर जिस तरीके की कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से इस वक्त लबरेज हम देख रहे हैं ममता को, 2031 में भी वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं?
7: देखिए, पहले बात मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इस बार कांग्रेस का साथ दो जो पार्टी था, एक तो अखिल गोगोई का जो राज्य दल और एक अहम जो जनता परिषद जातीय परिषद उसका लीडर था लुरुन ज्योति गोगोई, ये तीन गोगोई अपर असम का इकट्ठा हुआ, जैसा गौरव गोगोई, लुरुन ज्योति गोगोई और अखिल गोगोई। तो लोगों का लगा था एक अपर असम का जो प्राइड होता है, जिसका चलते अपर असम का अहमिया लोग जो डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स में, हेमंत बिश्व शर्मा जो जलुकबाड़ी से जीतता है और अपर असम का नहीं है, उसका दबदबा इस बार कम होगा। लेकिन हम अगर नतीजा आया तब देखा, चाहे बोरोलैंड हो, चाहे अपर असम हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे एकदम आपका तिनसुकिया हो या कच्छा डिवीजन हो, हर जगह कमल फूला है। तो वार्ता यही सीधा है, पूरा जो असम का जनता है, अहमिया हिंदू जो है, इवन द बंगाली हिंदू, इस बार उसका मैंडेट का पीछे एक बड़ा कारण था असम में
0: हिंदू वोट कंसोलिडेशन। हमने पश्चिम बंगाल में देखा उसी तरह का कुछ पैटर्न असम में भी, प्रसून जी?
7: हाँ, असम में देखिए, असम में पूरा मान के चलिए 1 करोड़ हिंदू बंगाली आबादी है, उसमें मियां मुस्लिम जिसको कहते हैं, जो मुसलमान है उसको आबादी करीबन 60 लाख होगा, 60, और हिंदू आबादी 40 लाख होगा। इस बार पूरा असम में, चाहे तिनसुकिया से लेके जोरहाट, इसीलिए जोरहाट में गौरव गोगोई हार चुका है, काफी पैमाने पर वहां बंगाली भी है, जैसा डिब्रूगढ़ है, जैसा तिनसुकिया है, हर जगह कमल फूले है। इसका कारण है बंगाली हिंदू जो है, इवन द गुवाहाटी रीजन में वो लोग पूरा इस बार बीजेपी का पक्ष में खड़ा हो गया है, और ज्यादा तो मुसलमान कैंडिडेट जीता है कांग्रेस का, कांग्रेस से एकदम कांग्रेस का 70-80% जो चुना हुआ विधायक है वो लोग मुसलमान है। तो हिंदू, एक अहमिया हिंदू प्लस बंगाली हिंदू, ये दोनों

0: भारी बहुमत पे एकदम तीन जो असम का हिस्सेदार है माने अपर असम लोअर असम और कछार एरिया सिलचर एरिया तीनों जगह से भारी बहुमत हिंदू लोग इकट्ठा होती हो, जैसा बंगाल में हम देख चुका है, चाहे एकदम अलीपुर द्वार से लेके आकर साउथ बंगाल तक माने मिदनापुर तक, पुरुलिया से लेके जंगल महल से लेके कलकत्ता तक, हर जगह बंगाली हिंदू 65% एकदम खड़ा हो गया बीजेपी का पक्ष में। ऐसा ही असम में देख रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था। अपर असम का दूसरा समीकरण होता था जो गोगोई लोग, गोगोई जो ओरिजिनली अहम या हिंदू है, उस बार इस बार
1: ठीक है
0: सोचा था वोट इकट्ठा होगा, नहीं हो पाया।
1: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कौशिक डेका भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कौशिक, ये जो मिनिस्टर आज शपथ लेने वाले हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए अलग अलग नामों की, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नियोग, इनको किस हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन और आज के दिन ही क्यों इनका शपथ ग्रहण हो रहा है?
2: ये एक अलायंस पॉलिटिक्स और जो असम के डेमोग्राफी है इनको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपको याद होगा रामेश्वर तेली लोकसभा एमपी भी हुआ करते थे और चाय बगान एरिया के एक बहुत बड़ा लीडर है और अपर असम से आते हैं। उनको लोकसभा से, सॉरी राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, फिर इस बार उनको विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था, वो जीत के भी आए हैं। टी गार्डन को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन देना था तो इसलिए रामेश्वर तेली का नाम सबसे पहले आया है। इसके बाद अतुल बोरा असम गण परिषद को नेतृत्व करते हैं तो अतुल बोरा को ये इसमें जगह देना बहुत ज़रूरी था। चरण बोरो बीपीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं और अजंता नियोग कांग्रेस से आए हुए नेता है लेकिन पिछले बार हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट में फिनेंस मिनिस्टर रह चुकी है तो अजंता नियोग को महिला के तौर पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये चार नाम इसलिए आए हैं क्योंकि वो डेमोग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर और जो अलायंस पॉलिटिक्स है इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये चार नाम ऐसे हैं जिनमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है और ये सबसे ज़रूरी भी था। इसके आगे हिमंत बिश्व शर्मा को बहुत ध्यान से अपने जो मिनिस्ट्री है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यही वजह है ये इन चार नामों को।

0: गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है, तो अजंता नेओ को महिला के तौर पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये चार नाम इसलिए आए हैं क्योंकि वो डेमोग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर और जो अलायंस पॉलिटिक्स है, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये चार नाम ऐसे हैं जिनमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है, और ये सबसे ज़रूरी भी था। इसके आगे हिमंत बिश्व शर्मा को बहुत ध्यान से अपने जो मिनिस्ट्री है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यही वजह है ये इन चार नामों को चुनने का।
1: ठीक है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी के पास भी मैं लौट रही हूँ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर असम स्वेरिंग इन सेरेमनी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
8: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
9: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं,
9: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: Character, the taste of success.
14: Like I said before, we better own the sins.
4: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है.
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Hint, bade aaram se.
5: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
9: Vimal, bolo zuba kesri.

0: sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our Big Breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
1: Ba-da-ba-ba-ba.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
11: No.
12: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
13: EU
14: सोच बदलो और बैंक भी.
15: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही.
15: आप कैसे कर लेते हो?
17: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ.
16: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
18: नहीं
16: और म्यूचुअल फंड्स है
18: सही.
19: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े.
11: Like I said before, we better hold the sins.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes,

दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, गोल खरीदने से बचें और कार पूलिंग में चलें। पीएम मोदी के लगातार दो अपील के बाद बड़ी राजनीतिक सरगर्मी, शरद पवार ने कहा बुलाएं सर्वदलीय बैठक, मीटिंग में खुद मौजूद रहे प्रधानमंत्री, राहुल बोले सरकार की नाकामी सामने आई।

कैप्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस हुआ दर्ज। पीएम मोदी के बारे में कही गई आपत्तिजनक भाषा का हो रहा है जबरदस्त विरोध। अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई। अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं ट्रंप, बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

संघ के शपथ ग्रहण पर ये विशेष पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब से लगभग 10 मिनट बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। वेटरनरी कॉलेज में इसकी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हम आपको सुबह से वहां से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हिमंत बिस्व शर्मा इस वक्त पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 10 मई 2021 को पहली बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया था। हिमंत के लिए ये दूसरी बार मौका है सीएम बनने का। इसके साथ ही तमाम बीजेपी के नेता भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। आज शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया, उसके बाद वहां पर शपथ ग्रहण में देखा था किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन आज कुछ उसी से हूबहू मिलता हुआ शक्ति प्रदर्शन यहां पर असम में भी दिखाई देगा। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जहां पर रामेश्वर तेली, अतुल बोरा मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी मंत्रिमंडल

0: में जगह दी गई है। तो कुल चार ऐसे मंत्री हैं जो हेमंत के साथ आज शपथ लेने वाले हैं, दूसरी बार आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। खानापारा में स्थित है वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड, जहां पर आज अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और इसके साथ ही नितिन नवीन की भी मौजूदगी है। शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है शपथ ग्रहण समारोह से पहले आपको सुनवाते हैं।
1: कामाख्या का आशीर्वाद इसी प्रकार से असम की जनता पर, समस्त देशवासियों पर बना रहे और माँ कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है। और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उस शुभ कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं।
2: हेमंत जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत दिन से है, वो मुझे बहुत मदद करता है, एक साथ काम करता हूँ, एक उनको देख के भी बहुत सीखना है। रात 1 बजे 1:30 बजे खुद सीएम ने फोन पकड़ता है, रिस्पांस करता है और इतना डाउन टू अर्थ है, इसलिए हेमंत जी का आने वाला दिन को बुना एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनको एक्सपीरियंस में मैं काम में लगाऊंगा।
0: तो चरण बोरो भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले सुनिए।
3: बहुत खुशी महसूस हो रहा है, आज तो एक ऐतिहासिक दिन है, एनडीए का ये 3rd time गवर्नमेंट है असम में और हमारा डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी उनका 2nd term इस बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। तो इस ऐतिहासिक दिन में मुझे भी मौका मिला मंत्री हिसाब से शपथ लेने के लिए, बहुत मन में अच्छा महसूस हो रहा है।
0: तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा सवाल आपसे विनोद जी मेरा यही होगा कि जब अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 82 सीटें हासिल कर ली और कुल उनका वोट शेयर लगभग 37% रहा, तो फिर बीपीएफ और एजीपी के साथ वो चुनाव क्यों लड़ी, क्या मजबूरी?
4: नहीं नहीं, देखिए असम का जो कंपोजिशन है सोशल कंपोजिशन, उसमें ये जो आंचलिक दल है उनका बड़ा महत्व है। कांग्रेस भी अपने दम पर भी वोट ले लेती थी, कई बार सीटें उसकी जो है अपने दम पर उन्होंने बहुमत लिया है, लेकिन फिर भी वो अलायंस बना के चलते थे। और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अलायंस है सहारे, 2016 में भी उसने एक बहुत बेहतरीन अलायंस बनाया था जिससे पहली बार सत्ता में आई, फिर 2019 में भी, 2021 में भी उनका अलायंस जो है वो जीता। इस बार हालांकि उनका अलायंस उतना मजबूत नहीं था जितना कांग्रेस का ज्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी अपने अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के अगर वो चल रहे हैं तो ये असम के लिए भी अच्छी बात है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए एक समय एजीपी जो थी वो भी

0: लिया है, लेकिन फिर भी वो अलायंस बना के चलते थे। और भारतीय जनता पार्टी तो बड़े ही अलायंस से सहारे है। 2016 में भी उसने एक बहुत बेहतरीन अलायंस बनाया था जिससे पहली बार सत्ता में आई, फिर 2019 में भी, 2021 में भी उनका अलायंस जो है वो जीता। इस बार हालांकि उनका अलायंस उतना मजबूत नहीं था जितना कांग्रेस का ज्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी अपने अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के अगर वो चल रहे हैं तो ये असम के लिए भी अच्छी बात है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए, एक समय एजीपी जो थी वो भी अकेले उसने 90 से ज्यादा सीटें जीती थी, और आज एजीपी कहाँ है। तो कोई भी पार्टी अगर ये अहंकार पाल ले कि अब हमें तो पूर्ण बहुमत मिल गया है, अब हमें इन आंतरिक दलों की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके सामने पतन का खतरा भी होता है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये कहीं ना कहीं इनका जमीनी आधार होते हैं, डिवाइड जो है वो लॉर्ड कर्जन ने पैदा कर दिया था, जो उसकी एक जड़ें रही। असम में इस तरह का कभी नहीं रहा, वहाँ अहोम शासन रहा, अहोम प्राइड पर सरकारें बनी, वहाँ बोडो की अलग समस्या थी, अल्फाज की अलग समस्या थी, वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं विविधतापूर्ण समाज है असम का। उसमें हिंदू कंसल्टेशन एक फिलहाल एक टेम्परेरी प्रवृत्ति तो हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे सोचें कि असम में हिंदू कंसल्टेशन भी आप चला ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अकेले हिंदू कंसल्टेशन से काम चलेगा। वहाँ आपको काम भी करना पड़ेगा, दूसरा बॉर्डर स्टेट है, बहुत ज़्यादा आप हिंदू कंसल्टेशन की बात करेंगे। आप देखिए बांग्लादेश ने कैसे रिएक्ट किया वहाँ पर जब हेमंत विश्व शर्मा बयानों पर,
1: कल भी
0: तो आपको ये सब इन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सीमावर्ती राज्य में असम में शांति स्थापित हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। अल्फा का जो पूरा आंदोलन था, अलगाववादी आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन, वो बहुत लंबे समय तक उसने असम को अशांत रखा है। असम की स्थिति एक समय कश्मीर जैसी हो गई थी, लेकिन उसको किस तरह से कंट्रोल किया गया हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, सबने, वो एक बड़ी बात है। तो उसको संभाल के रखना भी हेमंता विश्व शर्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
2: प्रसून जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, हेमंत विश्व शर्मा ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लगभग 11 साल का वक्त अब बीत चुका है। क्या उनकी कार्यशैली में, उनकी सोच में, विचारधारा में, बोलने की शैली में क्या बदलाव आपको नजर आता है जो अब वो दो बार मुख्यमंत्री पद पर कागजोर रहे हैं?
3: देखिए, जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे और हेमंत विश्व शर्मा उसका साथ था, तब इतना ज्यादा मुसलमान विरोधी नहीं था, उतना ज्यादा मुस्लिम विरोधी वो नहीं था। और जुलूकबाड़ी से जब जीतता था तब भी कांग्रेस का टाइम से भी वो उसका मुस्लिम वोट चाहिए था, और बाद में भी जब बीजेपी में आ गया था तब भी वो मुसलमान का वोट कुछ उसका हक तक मिला था। लेकिन जब से वो खुद चीफ मिनिस्टर बना, जैसे शुभेंदु अधिकारी को देखिए, जब तृणमूल में था उसका साथ मुसलमान का अच्छा खासी एकदम मजबूत उसका सपोर्ट बेस था, लेकिन जब से वो सीएम उम्मीदवार मोटा मोटी विरोधी लीडर का रूप से उभरे हुए और पूरा एकदम ज्यादा मुसलमान विरोधी हो गया, कट्टरवादी हो गया, इवन समीक भट्टाचार्य से भी कट्टरवादी। और हेमंत विश्व शर्मा को देखिए, वो सर्बानंद सोनोवाल से भी ज्यादा कट्टरवादी, हिंदू का पक्ष और मुसलमान विरोधी हो चुके थे इस चुनाव का पहले। उसका परिणाम जो है एकदम, जो आसाम में 35% मुसलमान है वो सीधे बोल दिया था उसका वोट नहीं चाहिए, मियां मुस्लिम जो है उसका वोट नहीं चाहिए। और देखिए, मियां मुस्लिम पहले लोकसभा चुनाव में एयूडीएफ से हट के कांग्रेस का पास चला गया, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी उतना वोट नहीं मिला।
2: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको इस बीच। ये देखिए भव्य तैयारियां और किस तरीके से वहां पर पावर पैक्ड ये पूरा का पूरा मंच नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कल देर शाम ही पहुंच गए थे। दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। जालुकबाड़ी से 2001 से लगातार वो इसी सीट से जीतते आ रहे हैं, और अब दूसरी बार जब मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं तो 2031 की भी उन्होंने जीत पहले से ही बता दी है। सीटों के साथ बीजेपी इस राज्य में जीती, 10-10 सीटें सहयोगी दलों के खातों में गई।

बहुत बधाई आपको।

శ్రీ అతుల్ బోరా, మినిస్టర్ డిజిగ్నేట్.

0: মই
1: মই
0: মই
1: মই শ্রী অতুল বৰা।

0: तो रामेश्वर तेली ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि पहले ये राज्यसभा के सदस्य थे और दो बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं, डिब्रूगढ़ से 2014 से 2024 के बीच। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के 2021 और 2024 के बीच। तो एक अहम पोर्टफोलियो इनके पास था और एक बार फिर से एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। अतुल बोरा अब मंत्री पद की शपथ लेंगे, एजीपी के प्रेसिडेंट हैं। अतुल बोरा भी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं, बोकाखाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, एजीपी के प्रेसिडेंट हैं और तीसरी बार बोकाखाट से जीते हैं।
1: चरण बोरो मिनिस्टर डिजिग्नेट।
0: अब चरण बोरो मंत्री पद की शपथ लेंगे, मजबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, बीपीएफ के नेता हैं और 2025 में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी और इन्हें ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड का डिपार्टमेंट दिया गया था।
2: अबंग गोसाईनी बुंगाव समायखिरा लानानै बुंगदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्री महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अन्नाय, मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं शरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्री महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्री महरै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखि जाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा।

0: सुन रहे थे आप, गोलाघाट सीट से चुनी गई हैं, बीजेपी में 2020 में शामिल हुई थी, यानी कांग्रेस के बितुपान से क्या कोहराया है। एक अहम लीडर असम की, और इन्होंने वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला है, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर मानी जाती हैं, और पहली असम की वित्त मंत्री ये बनी थी, पहली महिला वित्त मंत्री असम की अजंता नियोग, जो अब से कुछ ही देर पहले शपथ ले रही थी। तो शपथ ग्रहण समारोह लगभग पूरा हो चुका है। अब हेमंता सरकार में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा मंत्री बन चुके हैं, अजंता नियोग भी शपथ ले चुकी हैं। अजंता नियोग के पहले आपने चरण बोरो को सुना, वो भी अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये चार मंत्री आज हेमंता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। छोटा सा लगभग 20 मिनट का ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम
1: इज नाउ कंप्लीट। विथ योर परमिशन द प्रोसीडिंग्स मे नाउ बी क्लोज। द प्रोसीडिंग्स आर नाउ क्लोज्ड। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम।

0: राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार असम के सीएम चुने गए हैं। एक बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी यहां पर असम में सरकार बनाती हुई, उनके साथ सहयोगी दल भी शामिल। कुल मिलाकर 102 सीटें एनडीए की और 82 सीटें बीजेपी की। ये देखिए किस तरीके से एक पावर पैक्ड मंच यहां पर आपको नजर आ रहा है, जिसमें असम के तो प्रोमिनेंट बीजेपी के नेता हैं ही, इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी खास तौर पर न्योता दिया गया है आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ये प्रधानमंत्री तमाम गणमान्यों की और मंत्रियों को खास तौर पर बधाई देते हुए, चार मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इन सभी मंत्रियों के नाम कल ही हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट के जरिए बताए थे कि श्रीमती अजंता नियोग मंत्री पद की शपथ लेंगी, चरण बोरो इसमें शामिल होंगे, अतुल बोरा होंगे और साथ ही रामेश्वर तेली को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। पहली बार 2021 में हेमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री बने थे। 2015 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तब से अब तक लगातार एक प्रमुख चेहरे के तौर पर हेमंत बिस्वा सरमा, कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्हें सोनोवाल सरकार में दी गई थी और उसके बाद अब एक अहम भूमिका में 1984 में कैसे वो एक बतौर बाल कलाकार फिल्म में भी नजर आए थे, लेकिन अब राजनीतिक पारी 2001 से अब तक की, 2001 में पहली बार वो विधायक चुने गए जालुकबाड़ी से, वहां से लगातार जीतते आए हैं। 2006 में, 2011, 2016, 2021 और अब 2026 में। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, कई अहम पोर्टफोलियोज उनके नाम रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग और डेवलपमेंट, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान, 2002 से 2014 तक 3 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण जोरहाट, बारपेटा और तेजपुर में करवा चुके हैं और 5 अभी भी दीपू, नागांव, धुबरी, नॉर्थ लखीमपुर और कोखराझार में जारी है। आपको याद होगा कि तरुण गोगोई से उनके संबंध खराब होने के बाद उन्होंने सभी पोर्टफोलियो से 2014 में इस्तीफा दे दिया और असेंबली पद से भी 15 सितंबर 2015 में इस्तीफा दे दिया था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसून जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो मंत्रिमंडल हैं जो हेमंत बिस्वा सरमा अपने पास रखेंगे और सहयोगी दल के खातों में कौन से जाएंगे, कोई जानकारी मिल रही है?
1: देखिए, मेरा तो जैसा लग रहा है वो अभी वो अपना जो होम अफेयर है उसका पास रखना उसके लिए जरूरत है, क्योंकि इसका कारण भी है अभी लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति उसको थोड़ा सुधारना है, जो लोगों का मन में थोड़ा डर भी है और खास तरीके से कुछ इलाका जहां हटाया गया था अवैध निर्माण, वो कहते हैं जे जंगल एरिया में अवैध रूप से जो मियां मुस्लिम कब्जा किया है, कोई जगह आदिवासी लोग है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पिछले 1-1.5 साल से देखा है, चाहे गोलाघाट हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे दूसरा जगह पे हो, थोड़ा बिगड़ सकता है। दूसरा बात यही है ये मणिपुर से सटा हुआ इलाका का है और चाहे डिमाहासू और कार्बियांगलांग, ये दोनों का जगह थोड़ा डिस्टर्बिंग हमेशा रहते हुए है, अभी तो थोड़ा शांति बरकरार है। डिमाहासू और कार्बियांगलांग का आदिवासी का चरित्र अलग है और बोरोलैंड का जो भूटान का साथ सटा हुआ है उसका चरित्र भी अलग है, और एक तीसरा जो है अरुणाचल का साथ सटा हुआ नॉर्थ अपर असम का जगह है, तो इसीलिए वो जरूर उसका अपना हाथ में वो तो होम मिनिस्ट्री रखेंगे मुख्यमंत्री का पास बेहतर हुए। और स्वास्थ्य विभाग, चूंकि पहले वो जब सर्बानंद सोनोवाल का मंत्री थे तब भी उनका हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री थे और वो आपका आपका अर्थ मंत्रक वित्त मंत्रक भी उसका हाथ में थे, तो इस बार वित्त मंत्री अगर अंजना जी होगा कि क्या होगा तो आने वाला दिन में देखा जाएगा। एक चीज मैंने बताना चाहते हूँ, प्रद्युत बरदलुई जो नौगांव से कांग्रेस एमपी था, वो रेजिग्नेशन देते हुए चुनाव लड़े थे और दिसपुर से जीता है बीजेपी का कैंडिडेट से। अभी इस मंत्रिमंडल में उसके शामिल नहीं हुआ, वो बहुत सीनियर लीडर है, उसका हाथ में कौन मंत्री पद जाएगा, क्या दफ्तर जाएगा, वो आने वाला दिन में सबके नजर बने रहेंगे।
0: ठीक है, आने वाले दिनों में पोर्टफोलियोज क्लियर हो जाएंगे। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, कई बातें हैं और कई अहम योगदान है यहाँ पर हेमंत शर्मा के, जिस तरीके से एक मैसिव विक्ट्री यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है असम में, लेकिन क्या कुछ उनके अगेंस्ट जा सकता है? जिस तरीके से हिंदुत्व का नारा दिया गया, क्या आने वाले वक्त में वो एक तरीके से हानिकारक है? उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान के वोट हमें नहीं चाहिए, 35% लगभग ये वोट शेयर है।
2: देखिए, अब चुनाव हो चुका है और चुनाव तक तो सारी बातें चलती हैं, हालांकि पहले चुनाव के पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन इधर 10-12 साल से ये चुनाव के पहले तक इस तरह बातें चलने लगी हैं, तो न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन चुनाव के बाद कम से कम अगर वो

0: रहे, तो अब ये भी नहीं है कि सहयोगियों के आगे, दबाव के आगे कुछ वो बड़े फैसले न ले सके, तो बड़े फैसले ले सकते हैं। तो अब ये हेमंता को शो करना है कि इसके बाद जो है वो किस तरह की सरकार चलाते हैं, और अगर वो बेहतर सरकार चलाएंगे, समावेशी सरकार चलाएंगे, तो निश्चित रूप से आसाम के बाहर भी उनकी एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन अगर वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर और हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चढ़े रहेंगे, तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर बीजेपी में भरे हुए हैं, उनसे भी आगे निकलने वाले योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के हैं, वो सबसे बड़े साक्षात हिंदुत्व हैं, उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। हैं अभी शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं और पुराने, और वैसे बताऊं आपको भारतीय जनता पार्टी में एग्रेसिव हिंदुत्व वालों का हाल क्या हुआ। विनय कटियार कहाँ है, कहाँ है उमा भारती, कहाँ है तमाम, ऐसे नाम गिना दूं उस दौर के राम मंदिर आंदोलन के। और आगे कौन बढ़ा, आगे बढ़े नरेंद्र मोदी, आगे बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी, आगे बढ़े वो नेता जो जिन्होंने एक समावेशी विकास की लाइन ली।
1: ठीक है, तो आज ये शपथ ग्रहण समारोह जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत शर्मा के अलावा चार अन्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते, एक तरफ प्रधानमंत्री विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में संयम की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही उसका मॉकहॉल उड़ा रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश सिंह जादौन दर्जनों गाड़ियों के साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंचे। राकेश सिंह जादौन के काफिले में एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दिखाई दी। भोपाल के लिंक रोड पर राकेश सिंह के पोस्टर लगी 15 से ज्यादा कारें और एसयूवी दिखाई दी। सड़क पर खड़ी इन गाड़ियों से यातायात पर भी असर पड़ा। तो कहा यह जा रहा है कि जो नसीहत प्रधानमंत्री दे रहे थे उनके अपने ही नेता उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरीके से यहां पर गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ा, यातायात पर भी असर पड़ा। राकेश सिंह जब भोपाल के लिंक रोड पहुंचे तो दर्जनों गाड़ियां उनके काफिले में दिखाई दी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्थितियों को देखते हुए देश की जनता से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल का बेहद संयमित तरीके से इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का असर उनके अपने ही नेताओं पर पड़ रहा है? जवाब है नहीं। मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को उनकी पार्टी के नेता ही बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने भोपाल आए सौभाग्य सिंह ठाकुर सैकड़ों गाड़ियों के साथ पहुंचे थे। काफिलों की तस्वीरें सबने देखी, लेकिन अकेले सौभाग्य सिंह ठाकुर ही नहीं, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी, और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी, और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ, और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की राकेश सिंह जादौन।
1: तो प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर कल क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं।
0: अच्छी स्टोरी कराई,
3: ठीक है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे।

0: ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे, अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
1: तो क्या बचत से बचेगा देश? प्रधानमंत्री की यही अपील है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके ही अपने मंत्री और नेता काफिले में दर्जनों गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील प्रधानमंत्री ने आपने सुनी, लेकिन लोगों का समर्थन किस तरीके से मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि मेट्रो या फिर कारपूल से चलें, तो क्या वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं इस देश में? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक साल तक सोना ना खरीदें, ये प्रधानमंत्री की अपील है। खाद्य तेल कम खर्च करें, कम खाएं।

0: करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके ही अपने मंत्री और नेता काफिले में दर्जनों गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील प्रधानमंत्री ने आपने सुनी, लेकिन लोगों का समर्थन किस तरीके से मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि मेट्रो या फिर कारपूल से चलें, तो क्या वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं इस देश में, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक साल तक सोना ना खरीदें, ये प्रधानमंत्री की अपील है। खाद्य तेल कम खर्च करें, कम खाएं, और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। किया गया जिसमें गैस पेपर थे और वही गैस पेपर हूबहू इस परीक्षा में दिखाई दिया। ये कहा जा रहा है कि आखिर के दिनों में 30,000 रुपए में पेपर लीक किया गया। अब इसकी जांच भी की जा रही है और एसओजी द्वारा तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो नीट परीक्षा 2026 रद्द। जिन छात्रों ने फेयर तरीके से भी ये परीक्षा दी थी उनके लिए भी ये परेशानी का सबब है। अब नीट परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच चलेगी। 3 मई को इस परीक्षा को छात्रों द्वारा दिया गया था, अब लगभग 9 दिन का समय बीत चुका है और ऐसे में परीक्षा रद्द भी हो गई है। पेपर लीक के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, जिस तरीके से गैस पेपर लीक होने का मामला सामने आया, फिर एक जांच का विषय ये परीक्षा बनी, अब ये जाहिर तौर पर सबको मालूम ही था कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
1: नहीं, आज तक ने कल खुलासा कर दिया था कि किस तरह से बायोलॉजी के सभी 200 पेपर और केमिस्ट्री के सभी 45 पेपर गैस पेपर में थे, और करीब करीब जो एसओजी का मानना था कि 1 महीने से ज्यादा समय से ये पेपर लोगों तक पहुंच गया था। मैंने कल आपसे बातचीत करते वक्त बताया भी था लाइव में कि नागौर से और झुंझुनू से कई लड़के तो महीने भर से आकर बैठ रहे थे कि कब आ रहा है पेपर। ऐसा बताया गया कि जयपुर में ये पेपर छपा था और उसके बाद ये पेपर बड़े तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि इस बार पेपर लीक करने के बजाय गैस पेपर बनाया और गैस पेपर को लीक किया। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नाम आ रहे थे जो कंफर्म नहीं हो रहा था कि उन्होंने टॉपरों के लिए वहां से निकाला है। मनीष यादव का नाम आ रहा है और एक अविनाश लांबा का आ रहा है जिन्होंने जयपुर से पेपर देश के कई हिस्सों में भेजा। आप समझिए कि 1 महीने से ज्यादा समय से अगर पेपर हर जगह कोचिंगों में गैस पेपर के नाम पर पढ़ाया जाता हो तो फिर इस परीक्षा को रद्द करने के अलावा कुछ बचा नहीं था। और यही बार बार एसओजी कह रही थी, कल हम दिन भर बता रहे थे आज तक पर कि एनटीए के जो डीजी हैं अभिषेक सिंह को सारी जानकारी दी जा रही थी और वो जानकारी दे रहे थे शिक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को, और भारत सरकार को इसका फैसला लेना था कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। जब एक बार एक्सपर्ट कमेटी ने देखा और कहा ये तो सारे के सारे पेपर ऐसे ही हैं और क्रम से हैं, फुल स्टैप और कामा भी नहीं बदला है, तो कुछ बचा नहीं था इसमें बचाने के लिए परीक्षा का, और काफी दबाव था। हम कल प्रश्न को उठा रहे थे कि आखिर मुकदमा दर्ज नहीं होगी तो कैसे जांच हो पाएगी। अब बताया जा रहा है 45 से ज्यादा लोग कल से रात से हिरासत में अलग अलग जगह लिए गए हैं और ये बड़ा रैकेट है जो कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले से ये सारे पेपर आ चुके थे पेपर माफियाओं के पास। ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, या जिसने पेपर सेट किया है उसने लीक किया है, दो जगहों से ये बताया जा रहा है। हाथ से लिख कर ये पेपर आउट हुआ है, सारे प्रश्न जो है जब प्रिंटिंग प्रेस में गए हैं वहां से कोई हाथ से लिख कर आउट किया है, और जिसकी वजह से ये गैस पेपर के फॉर्म में जारी था। जी
0: ठीक है, मैं लौटू की आपके पास। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, जिस तरीके से एक एक करके इस पेपर लीक की कड़ियां जुड़ रही हैं, दिल्ली से इसके तार कैसे जुड़ते हैं, यहां से कैसे पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हैं आने वाले वक्त में?
2: बिल्कुल होगा, सीबीआई जांच के अगर आदेश दिए गए हैं तो ये एनटीए के साथ एक बार उन्होंने वो देख चुके हैं, उनके हाथ पहले जल चुके हैं। और इसीलिए सवाल था कि अगर देश की सबसे बड़ी इस तरह की संस्था जिसकी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है उसके नाक के नीचे, आपको पता है जब एग्जाम होते हैं जीपीएस इनेबल गाड़ियां जाती हैं पर्चे लेकर के, और जहां पर्चे होते हैं 5G 4G हर तरह के सिग्नल जाम किए जाते हैं, इस कदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, सब कुछ इस्तेमाल होता है, और उसके बावजूद भी पेपर केरल से लेकर राजस्थान दिल्ली देश के अलग अलग इलाकों में में अगर ट्रैवल करते हैं तो अपने आप

0: में बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर एनटीए के नाके नीचे कैसे हुआ, लेकिन अब उन्होंने जब जांच के आदेश दिए हैं, सीबीआई इस मामले में मुकदमा करेगी, छापेमारी होगी, राजस्थान एसओजी से लीड ली जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन एनटीए ने दरअसल उन छात्रों के लिए भी जानना जरूरी है जो इस समय परेशान है। आप देखिए कि इससे पहले विरोध प्रदर्शन होता, सरकार भी इसको भांप रही थी, और जब एनटीए की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया तो उन्होंने कहा था कि जो भी कदम उठाना होगा हम सरकार से जैसा भी उससे बातचीत होगी उसी के हिसाब से उठाएंगे, और इसीलिए न सिर्फ परीक्षा रद्द की गई बल्कि सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। क्यों? ताकि ये भी बना रहे लोगों के अंदर उम्मीद कि नहीं हर बार इसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, और कम से कम छात्रों का गुस्सा सड़क पर ना उतरे। नीट ये भी कह रही है कि जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है हम जब दोबारा परीक्षा कराएंगे जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, जिन्होंने फीस पे कर दिया रजिस्ट्रेशन फीस वो पैसा उनको लौटा दिया जाएगा, तो अब कोई हर्डल नहीं है। वो एक तरफ छात्रों को भरोसा दिला रहे हैं कि परीक्षा की प्रक्रिया दोबारा होगी लाखों छात्रों की, सरकार ये कह रही है कि अब तो इस मामले में जांच होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये घूम फिर करके है कि बार बार लाखों छात्रों के भविष्य खिलवाड़ क्यों होता है? जिन छात्रों ने तैयारी की, जिन्होंने परीक्षा दे दी, उनके वो फिर दोबारा उसी ट्रॉमा से उसी दबाव से जाएंगे, और इसीलिए अब सीबीआई पर ये पूरा जो है भार आएगा कि वो एसओजी की जांच को आगे कैसे ले जाती है, मास्टरमाइंड इस मामले में कैसे पकड़ा जाएगा, तार इसके एनटीए से लेकर के अलग अलग इंस्टीट्यूट संस्थान, क्या इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, क्या इसमें एनटीए में काम करने वाले शामिल हैं, इससे जुड़े लोग शामिल हैं, पेपर बनाने वाले कौन थे, क्या उनके तार इससे जुड़े हैं, ये कौन सा नेटवर्क है जो बार-बार पेपर लीक
1: के लिए काम करता है, और जाहिर तौर पर उन तक पहुंचने की जरूरत है क्योंकि इसमें संसाधनों की भी बर्बादी हो रही है और उन छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है जो ठीक तरीके से परीक्षा देते हैं और सरे से नकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो देखना ये होगा कि अगली परीक्षा कब होगी और ऐसे में छात्रों को दोबारा ये परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या गिरफ्तारियां संभव हैं ये भी अब सीबीआई जांच का विषय है कि आखिरकार कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी और लगभग 9 दिन बाद इसे गड़बड़ियों और पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है, माफिया इसके लिए काम करते हैं, क्या कभी इस तरह की परीक्षा लीक की बात पेपर होने से पहले की जाती है? पेपर हो गया, 9 दिन बीत गए, अब परीक्षा रद्द हो रही है, जो छात्र इसको फेयर तरीके से दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो दोबारा परीक्षा देंगे?
0: एक स्टूडेंट के नाते हम सब ने अपनी पढ़ाई की थी, हमने अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, एक होता है कि हमने अपनी पूरी साल भर तैयारी की, अब एंट्रेंस एग्जाम दे लिया है, उम्मीद करके बैठे हैं कि चाहे अगर मेरिट में आएगा हम कहीं पर सीट आ जाएंगे, नहीं लगता है, चलिए कुछ तो उम्मीद होती है। अब वो छात्र, लाखों छात्र फिर उसी ट्रामा में होंगे, परीक्षा रद्द हो गई, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, मन में बहुत आशंकाएं होंगी अब कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी। दूसरा, अगर प्रवेश परीक्षा में ज्यादा समय लग जाएगा तो पूरी एडमिशन की प्रक्रिया डिले हो जाएगी, अब आपका जो साल का कीमती समय जो आपके एकेडमिक में जाना है वो एकेडमिक उसमें भी देरी होगी, तो आपको बहुत सारे सिलेबस को जल्दी का उस तनाव को एक छात्र के नाते हम सब समझ सकते हैं। एनटीए क्या है? बाबुओं का बनाया हुआ एक नेटवर्क है, सरकार ने गठित कर दिया, आपको परीक्षा करानी है, ऐसे परीक्षा होती है। जब आपने रख लिया है कि पेपर छपने के बाद गाड़ियां जीपीएस इनेबल होकर जाती हैं, कहीं तो कोई लूप होल, आखिर पेपर कौन है? या तो जो पेपर बना रहे हैं उनको पता होता है, एनटीए के कुछ जो बाबू लोग हैं जिन्होंने एक सिक्योरिटी घेरा, कहते हैं बाकायदा स्कैनर सिक्योरिटी कोड, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो कोई बाहर का आदमी अचानक कैसे आ जाएगा? जब तक कोई ऐसा आदमी जो पेपर बनाने की प्रक्रिया में सवालों के चयन में शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई बाहरी आदमी क्या जिसके हाथ पेपर लगा है? पेपर कौन लगता है? एग्जामिनर के हाथ जाता है, सेंटर पर गया, वहां कड़ी सुरक्षा में खोला जाता है, बच्चों को दिया जाता है, उसमें भी एआई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो अगर ये परीक्षा, देखिए आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है ना, यूपीएससी की परीक्षा होती है, अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि कभी उनकी परीक्षाएं इस तरह।

0: लिया है कि पेपर छपने के बाद गाड़ियां जीपीएस इनेबल होकर जाती हैं, कहीं तो कोई लूप होल। आखिर पेपर कौन है? या तो जो पेपर बना रहे हैं उनको पता होता है, एनटीए के कुछ जो बाबू लोग हैं जिन्होंने एक सिक्योरिटी घेरा, कहते हैं बाकायदा स्कैनर सिक्योरिटी कोड, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो कोई बाहर का आदमी अचानक कैसे आ जाएगा? जब तक कोई ऐसा आदमी जो पेपर बनाने की प्रक्रिया में सवालों के चयन में शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई बाहरी आदमी क्या जिसके हाथ पेपर लगा है? पेपर कौन लगता है? एग्जामिनर के हाथ जाता है, सेंटर पर गया, वहां कड़ी सुरक्षा में खोला जाता है, बच्चों को दिया जाता है, उसमें भी एआई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो अगर ये परीक्षा, आप देखिए आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है ना, यूपीएससी की परीक्षा होती है, अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि कभी उनकी परीक्षा इस तरह।
1: लौटूंगी आपके पास शरद, मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, 551 शहरों और 14 सिटीज जो कि बाहर स्थित हैं, इंडिया से बाहर, वहां पर ये एग्जाम।
2: आपसे कह भी रहा था, आज तक के दर्शकों को बता रहा था कि दो आशंका एसओजी जता रही है कि जिस समय प्रेस में आया छपने के लिए उस समय जो प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्रेस के अंदर का व्यक्ति हाथ से लिखकर ये बाहर लेकर आया है, या फिर जिन्होंने प्रश्न बनाया है उससे ये प्रश्न ले लिया गया है। उसमें भी अब ये आशंका थी नेहा कि तीन सेट बनाए जाते हैं और तीन सेट में पता नहीं रहता है कि कौन सा सेट आएगा। अब जो सेट आया है उसमें से आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के पेपर में जो 45 का 45 हैं, एक से लेकर 36 तक का क्रम छोड़ दीजिए और नीचे से लेकर 45 तक के हूबहू पूरे पेपर आए हुए हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के 200 प्रश्नों में से टोटल 90 प्रश्न लिखे हुए हैं हूबहू, कहीं क्रम भी नहीं चेंज किया गया है ऑप्शन का। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर से ये काम हुआ था, कुछ लोग संलिप्त थे। कौन थे? अब अभी तक हमने कल ये खुलासा किया था कि जयपुर में ये पेपर छपा है, एनटीए की तरफ से अभी तक कोई सफाई आई नहीं कि कहां छपा है, किस तरह से प्रोसीजर का प्रोटोकॉल किया गया है। जो डीजी है एनटीए के अभिषेक सिंह, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, अभिषेक सिंह का बयान अब तक आया नहीं है। और ये बार बार कहा जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था, भारत सरकार की तरफ को सब कुछ बता दिया गया था कि भारत सरकार को यह फैसला लेना था कि क्या करना है। भारत सरकार ने फैसला ले लिया है, ये एग्जाम रद्द करके सीबीआई जांच दे दी गई है। अभी तक एसओजी ये जांच कर रही थी और एसओजी के बारे में कल रात से अब तक एसओजी ने ये जांच बंद नहीं की है। 45 से ज्यादा लोगों को सीकर, झुंझुनू और जयपुर में हिरासत में लिया गया है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि 28 अप्रैल के आसपास ये पहुंच चुके थे जहां पर पेपर मोबाइल में घूम रहा था, मगर इनका मानना है कि
3: बिल्कुल शरद, पेपर मोबाइल घूम रहा था, सवाल लगातार उठ रहे थे और आज तक इन सवालों को उठा रहा था। और अब आज तक के सवाल उठाने के बाद से, आज तक की खबर दिखाने के बाद से बहुत बड़ा असर हुआ है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, इसके पेपर लीक होने को लेकर लगातार विवाद देखने को मिला था, छात्रों का भविष्य चूंकि दांव पर था, और इसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। दिल्ली में प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अनमोल वाली हमारे संवाददाता इस समय उसी जगह पर मौजूद है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। अनमोल, कितनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और क्या कह रहे हैं?
4: राजीव, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यानी कि कांग्रेस का जो युवा विंग है उसके जो कार्यकर्ता हैं, स्टूडेंट विंग के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ शास्त्री भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नीट के मामले को लेकर देखा जा रहा था बहुत विवाद हो गया था 3 मई का। आज नीट का पेपर है सरकार का दे रहा है,
3: इस समय एनएसयूआई का प्रोटेस्ट देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। परीक्षा रद्द कर दी गई है, नीट का पेपर लीक, और उस लीक के मामले में देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो विंग है एनएसयूआई, जो उनका छात्र संगठन है, वो प्रदर्शन कर रहा है। परीक्षा से जुड़े हुए मामलों को स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। ऐसे में अब सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एजेंसी की तरफ से भी कहा गया कि एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष रखने के लिए, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमने कई कदम उठाए गए थे, लेकिन वो कदम कहां है? किस जगह से कहां पर ये पेपर लीक हुआ, किस जगह पर, ये बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि छपने के दौरान, लिखने के दौरान कब ये पेपर लीक हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी। लेकिन नीट पेपर लीक और उसके बाद से परीक्षा रद्द कर देने, यानी कि 22 लाख छात्र

0: सीधा सीधा इस इम्पैक्ट में 22 लाख छात्र जुड़े हुए थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की, साल भर दिन रात एक करके उन्होंने परीक्षा दी, उनके परिवार वालों की उसमें एनर्जी लगी, उनके खुद की उनमें एनर्जी लगी। अब नए सिरे से इसमें परीक्षा होगी। हमारे साथ संवाददाता शरद भी जुड़े हुए लगातार। शरद, लीक तो जो है परीक्षा पेपर रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में किस जगह पर कौन था, कैसे पेपर लीक हुआ और अब परीक्षा होगी कब, इस बारे में जानकारी? शरद, हम अपने संवाददाता शरद से बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन भी चल रहा है। इस बीच में एनटीए ने कहा था 10 मई 2026 के प्रेस रिलीज के क्रम में कि फैसला लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसी को भेजा गया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी कानून प्रवर्तन एजेंसी से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा हुई और पेपर लीक होने को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। एजेंसी ने कहा एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विश्वसनीयता के लिए कदम उठाया गया है और अब दोबारा नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी बाद में किया जाएगा, स्केड्यूल और अन्य जरूरी जानकारियां साझा की जाएंगी। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, आज तक लगातार इस खबर को दिखा रहा था और खबर का इम्पैक्ट हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, यानी कि स्वीकारना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कौन है इसके पीछे, बड़ा सवाल तो यही है अभी।
1: देखिए, कल हमें जो इनपुट मिला है एसओजीसी के, उसके अनुसार ये जयपुर में पेपर छपा था और ये पता चल गया था कुछ यहाँ पर कोचिंग माफियाओं को और जो पेपर माफिया थे उनको। अभी तक दो नाम हमारे पास आए हैं और दोनों नाम ये कहा जा रहा है कि जयपुर और सीकर का तार है, मनीष यादव और अविनाश लांबा, ये दो लोगों का नाम आ रहा है जो इस नेट पेपर लीक में आगे सप्लाई किए हैं। अब आगे सप्लाई करने वाले तक ये एसओजी पहुंच चुकी है, मगर एसओजी को पहुंचना है वो कौन सा गुरु था जिसने ऐसा गेस पेपर तैयार किया था कि सारे के सारे उसी के गेस पेपर के से आए नीट में पूछे गए प्रश्न। उस तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि मुकदमा दर्ज किया जाए और कोई बड़ी एजेंसी जांच करे, क्योंकि दो गिरफ्तारी देहरादून से हुई है, एक केरल से भी कनेक्शन आया था, तो इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी की जरूरत थी। और ये सारी बातें एसओजी लगातार बता रही थी। अभिषेक सिंह जो है एनटीए के डीजी, वो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे भारत सरकार की तरफ से और उन्हें पल पल की जानकारी दी जा रही थी। कल रात को 11 बजे से एसओजी के सारे अधिकारी उठकर यहां से गए हैं, तब तक एनटीए की एक्सपर्ट टीम यहां पर बैठी हुई थी और एक्सपर्ट टीम को देखिए हम जिस तरह।
0: और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीट पेपर रद्द कर दिया गया है, आपका क्या इस पर रिएक्शन है सचिन?
2: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि जिस उम्मीद के साथ एनटीए का गठन हुआ और जो आश्वासन दिए गए थे नौजवानों के भविष्य को लेकर, उसमें अगर इतनी लापरवाही हो रही है और

0: लेकर यहां से गए हैं, तब तक एनटीए की एक्सपर्ट टीम यहां पर बैठी हुई थी और एक्सपर्ट टीम को देखिए हम जिस तरह।
1: और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस समय हमारे साथ जुड़ गए। नीट पेपर रद्द कर दिया गया है, आपका क्या इस पर रिएक्शन है सचिन?
2: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि जिस उम्मीद के साथ एनडीए का गठन हुआ और जो आश्वासन दिए गए थे नौजवानों के भविष्य को लेकर, उसमें अगर इतनी लापरवाही हो रही है और धड़ल्ले से हो रही है और आज लाखों लोगों के अरमानों पर पानी चढ़ाए, तो कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को और खासकर राजस्थान सरकार, जहां पर एक पूरा खुलासा हुआ, तो ये सरकार बाकी अपना ढिंढोरा पीट रही है और अपने इश्तेहार छपवा रही है अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, कि ये जो मूलभूत प्रिकॉशन हैं जो लोगों की आस्था को कायम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें पूरी तरह सरकार फेल हुई है।
1: लेकिन सचिन, आपको क्यों लगता है कि अभी इस मामले में सरकार को छुपा रहे हैं?
2: मुझे लग रहा है क्योंकि राजस्थान में 12-15 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया फॉर्मली, उनपे कोई एफआईआर नहीं करी है, कोई चार्जशीट नहीं करी है, कोई केस दायर नहीं किया, जबकि प्रमाण है पूरा, जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जांपल्स में सारा 130 क्वेश्चन हूबहू कॉमा फुल स्टॉप के साथ आए थे, तो या तो पेपर लिखने वाले ने किया है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रिंटिंग है जयपुर में हुई है, तो ये अगर पहले से पता था तो उस पर प्रिकॉशन नहीं लिए गए, और अब कैंसिल करने से निश्चित रूप से बेमानी रोकने की कोशिश है, लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया उनका क्या होगा? कोई लोग ओवरेज हो जाएंगे, जिन लोगों ने इतना मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव देहात के हैं, उन सबने मेहनत करी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैंसिल करना बड़ा आसान है, आपने कर दिया, लेकिन इसके रिपरकशन क्या है, इसका कौन जिम्मेदारी उठाने वाला है? और ये 2-3 दिन बाद सुर्खियों से खबर हट जाएगी तो फिर अपना वापस चालू हो जाएगा, और पहली बार नहीं हुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार हो रहा है, लगातार हर साल हो रहा है, तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? तो सारी पोल खुल चुकी है मुझे लग रहा है।
1: लेकिन सचिन, एक जिम्मेदारी तो ले ली, कम से कम पेपर रद्द तो कर दिया गया है,
2: अब क्या करेंगे? जब पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, टेलीविजन हर चैनल में चल रहा है कि सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, तो उसकी वैधता क्या रह जाती है? उसकी सैंक्टिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी क्या है एग्जाम की? जब सारा पेपर ही आउट हो गया तो उसमें बाद में जाकर कोर्ट कचहरी में जाता, फिर करना पड़ता सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद, आज कर दिया है अपनी जान बचाने के लिए, तो मुझे लगा है कि इसमें तो बहुत बड़ा मसला है, इसमें तय से जाना पड़ेगा, और मुझे लगा है सरकार इसकी जांच करेगी तो कोई प्रमाण निकलने वाले नहीं है, इसकी तो जुडिशियल जांच हो और इसमें तुरंत टाइम बाउंड जांच हो और जो जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, उदाहरण पेश किया जाए, लिपापोती कर एग्जाम कैंसिल कर अपना पल्ला झाड़ देने से पार नहीं करने वाली।
1: लेकिन सचिन, जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए सीबीआई जांच की अनाउंसमेंट की गई, इससे संतुष्ट है आप?
2: मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो एजेंसी आप सब जानते हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स में काम करती है, वो उनके आका जो बोलते हैं उसी प्रकार कदम उठाते हैं, किसको डिटेन करना है, किसको छोड़ना है, किस पे लीनियंट रहना है, किस पे सख्त रखना है, तो ये बिल्कुल निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट, जब तक एक गवर्नमेंट के बाहर की कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक पता नहीं पड़ेगा, जिसने गलती की है, जिसमें कमियां हैं, अगर वही अपनी जांच करेगा तो क्या प्रमाण आएंगे और उसकी क्या मतलब ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी उस जांच की जो खुद ही आप कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई पे लोगों का विश्वास नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता कि सीबीआई से कोई हकीकत तक पहुंच पाएगी।
1: सचिन, आप इसमें सरकार की ज्यादा गलती मान रहे हैं, क्योंकि एनटीए सारी चीजें देख रहा था, उसकी गलती मान रहे हैं?
2: देखिए, एनटीए का किसने इसका आविष्कार किया? सरकार ने किया था, और ये कहकर किया था कि इससे पूरा पेपर लीक हम बिल्कुल बंदिश लग जाएगी, कभी नहीं होगा, और अगर कोई फूल प्रूफ अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते तो बता देना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे इसको, और हर स्टेट में हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, नीट वाले भी पहले भी इसमें बहुत आरोप लगे थे, तो इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है, पूरे देश भर के लोग इसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, और जो नौजवान बच्चे हैं उम्मीद के साथ अपनी तैयारियां करते हैं, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर किसको आप दोष देंगे? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसमें। अब अधिकांश सरकारें भाजपा चला रही है, केंद्र सरकार आप चला रहे हैं, एजेंसी आप चला रहे हैं, एनटीए आपने गठित करी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी वाह वाही लूटने के लिए आप सबसे आगे आ जाते हैं, और अब इसमें गलत हो रहा है तो देन समबडी शुड बी मेड अकाउंटेबल।
1: थैंक यू सो मच सचिन आज तक से जुड़ने के लिए। आज तक ने खबर दिखाई, उसका इम्पैक्ट हुआ है, नीट पेपर अब रद्द कर दिया गया है। इस बीच में एक बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं, एनटीए की तरफ से बयान आया है, परीक्षा चूंकि रद्द की गई लेकिन नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, और उसकी तारीख, सारी जानकारियां, एडमिट कार्ड सब वेबसाइट पर भी जानकारियां दी जाएंगी अलग अलग माध्यमों से, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें बताया जाएगा। एनटीए ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से भी अपील की है कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही आप यकीन करें, भरोसा करें, नई परीक्षाएं होंगी, नई परीक्षाएं कब होंगी वो बताया जाएगा, और एडमिट कार्ड जारी करने का जो स्केड्यूल है, जो दूसरी जरूरी जानकारियां हैं, वो एजेंसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दे देगी।

0: एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। पेपर लीक में कई माफियाओं के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी तो घेरते हुए भी दिख रहे हैं। वो तो ये कह रही है कि कईयों को डिटेन किया गया है, लेकिन एफआईआर उनके जो है उनके खिलाफ हुई नहीं है। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन पेपर लीक में कुछ माफियाओं के नाम सामने आए हैं और अब तक दो नाम सामने आए। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता शरद, ये जो दो नाम सामने आए, ये कौन है, ये क्या करते हैं, क्या उनका इससे लिंक्ड है इस पेपर लीक से, बताएं। शरद आपका माइक बंद है, एक बार से ऑन कर दें प्लीज।
1: पर कहां से आया है, ट्रैक करते करते ये जब पहुंचे हैं 28 अप्रैल को, तो दो लोग ऐसे पाए गए हैं, एक अविनाश लांबा और एक मनीष यादव, जहां से जयपुर से ये पेपर सीकर गया है। अब इन दोनों को एसओजी ने हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। अब इन्होंने कोई जरूर रात को इनपुट दिया है जो एनटीए को दी गई है, जिसके बाद ये परीक्षा रद्द हुई है, कि क्या ये जहां से पेपर बना है वहां से लेकर आए हैं या कहां से लेकर आए हैं। मगर ये सिर्फ प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग जो इन्होंने बताई थी कि कुछ कोचिंग, अब कौन से कोचिंग वाले हैं, कुछ कोचिंग वालों को इनको देना था ताकि उनके जो जो अच्छे बच्चे हैं उन सारे अच्छे बच्चों को पढ़ा दिया जाए गेस्ट पेपर के नाम पर, और फिर वो बच्चे टॉप करें ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में बताया जाए कि हम यहाँ का कोचिंग सबसे अच्छा है। तो यहाँ ये होना था, लेकिन इसी बीच क्या हो गया, कुछ बच्चों को लालच आ गया, क्योंकि कहीं से उन्होंने सुना था टीचर से कहते हुए कि यही गेस्ट पेपर है, ये पढ़ लो, इस बार आ जाएगा। अब इन्होंने आगे 30,000 रुपए में बेच दिया। जिस 30,000 में बेचा, उसने केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र को सीकर से भेज दिया। कोचिंग वाले हैं, कुछ कोचिंग वालों को इनको देना था ताकि उनके जो जो अच्छे बच्चे हैं उन सारे अच्छे बच्चों को पढ़ा दिया जाए गेस्ट पेपर के नाम पर, और फिर वो बच्चे टॉप करें ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में बताया जाए कि हम यहाँ का कोचिंग सबसे अच्छा है। तो यहाँ

0: प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग जो इन्होंने बताई थी कि कुछ कोचिंग, अब कौन से कोचिंग वाले हैं, कुछ कोचिंग वालों को इनको देना था ताकि उनके जो जो अच्छे बच्चे हैं उन सारे अच्छे बच्चों को पढ़ा दिया जाए गेस्ट पेपर के नाम पर, और फिर वो बच्चे टॉप करें ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में बताया जाए कि हम यहाँ का कोचिंग सबसे अच्छा है। तो यहाँ ये होना था, लेकिन इसी बीच क्या हो गया, कुछ बच्चों को लालच आ गया क्योंकि कहीं से उन्होंने सुना था टीचर से कहते हुए कि यही गेस्ट पेपर है, ये पढ़ लो, इस बार आ जाएगा। अब इन्होंने आगे 30,000 रुपए में बेच दिया। जिस 30,000 में बेचा उसने केरल में MBBS कर रहे एक छात्र को सीकर से भेज दिया कि भाई 30,000 में हमने पेपर खरीदा है, जब तुम्हारे पापा का PG चलता है सीकर में, आप लड़कियों से पूछ लो, 5,000 रुपया में हम उनको दे देंगे, वही आएगा। उस लड़के ने लेते हैं, बेटा ने जब इनको भेजा था वो गेस्ट पेपर, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर NTA को भेजते हैं। NTA उसके बाद 7 मई को IB सेंट्रल IB को ये जांच देती है, और सेंट्रल IB जो है राजस्थान के DGP को देते हैं, राजस्थान के DGP SOG के देते हैं, और SOG जब सीकर पहुंचती है और बच्चों को उठाती है जिनको मिला था, और कुछ लोगों को वहां से जो कोचिंग काउंसलर थे, कैरियर काउंसलर थे, जो MBBS की पढ़ाई करने के बाद MBBS में एडमिशन दिलवाने के नाम पर काम कर रहे थे, ऐसे 13 लोगों को उठाते हैं। वहां से एक व्यक्ति देहरादून को भी भेजा था, देहरादून से भी कुछ लोगों को उठाकर लाया जाता है, और फिर झुंझुनू से, नागौर से कुछ बच्चे पकड़ के लाए जाते हैं। उसके बाद ये खुलासा होता है, जब उनके पास ये बरामद होता है तो पता चलता है कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था या कहने के लिए कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो गेस्ट पेपर से ही
1: बिल्कुल उससे तो क्लियर होता है। लेकिन शरद, जिस कोचिंग सेंटर की पर आरोप अब लग रहे हैं, कौन सा कोचिंग सेंटर, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, जो अपने स्टूडेंट्स को नंबर वन बनाना चाह रहा था।
0: अभी देख, कैरियर काउंसलर ने ये बात कही है, SOG ने कहा कि हम पुख्ता तौर पर नहीं कर सकते हैं उसके बारे में जब तक जांच नहीं होती, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया। 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आ रहे हैं, लेकिन जब तक पुख्ता तौर पर नहीं हो तब तक ये नाम नहीं लिया जा सकता है। ये कैरियर काउंसलरों ने कहा है, और जो ये जो लोग पकड़े गए हैं इन्होंने कहा है कि हमें इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने थे, मगर ये सीकर से केरल, केरल से सीकर, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से नागौर, सीकर से देहरादून, जयपुर से सीकर, इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ था। अब कहने वाले तो कई लोग कहते हैं कि कुछ बच्चों ने दिल्ली भी भेज दिया था। SOG का ऐसा मानना है कि 28 अप्रैल नहीं, ये काफी पहले से अप्रैल में ये पेपर गेस्ट पेपर बन के घूम रहा था, और इसकी ताकीद हो गई है। उसके बाद NTA के पास इसको रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो NTA के DG हैं अभिषेक सिंह, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक्सपर्ट कमेटी इस पेपर को देख रही थी, पहली नजर में ही देखने के बाद साफ साफ लगता है कि ये पेपर लीक का मामला है, ये कोई ऐसे गुरु घंटाल नहीं है जिन्होंने गेस्ट पेपर तैयार कर दिया है और उनके सारे मिल गए हैं,
1: ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोगों तक ये पेपर लीक होकर पहुंच गया, लेकिन मुख्यतः ये पेपर कोचिंग सेंटर्स के लिए लीक हुआ था,
0: ऐसा SOG का मानना है कि जो गिरफ्तार हुए उन्होंने बताया है। अब वो उनकी बातों को अभी तस्दीक नहीं इसलिए कर पाए हैं कि कल जब मैं SOG ऑफिस में था तो इतने सारे लोग यहाँ कमरों में भर कर रखे हुए थे, उन बच्चों के माँ बाप घूम रहे थे कि आप या तो मुकदमा दर्ज कर लो या हमारे बच्चे को जाने दो। 3-4 दिन तो हिरासत में रख नहीं सकते, मुकदमा दर्ज करने की इजाजत इन्हें मिल नहीं रही थी, इसलिए ये काफी उहापोह में स्थिति चल रही थी कि क्या बताएं क्या छुपाएं। इसलिए SOG ने अभी तक पुख्ता तौर पर उन कोचिंग संस्थानों के नाम नहीं बताए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अब ये जा चुकी CBI को जा रही है, और जब एक बार इसकी बात की तस्दीक हो जाएगी कि कोचिंग ही इसके पीछे थे, तभी उन नामों का ऐलान होगा।
1: एक और बात बताएं, जो 12-13 लोग डिटेन किए गए हैं, सचिन पायलट भी सवाल उठा रहे थे भाई उन पर FIR क्यों नहीं हो रही, तो FIR क्यों नहीं हो रहे उन पर? ये स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, काउंसलर हैं, क्या है, क्या काम करते हैं या कोचिंग सेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं ये 13?
0: देखिए 13 तो उसमें करियर काउंसलर हैं, कुछ जो MBBS में एडमिशन कराते हैं वो अलग अलग शहरों के हैं, और दूसरे कुछ बच्चों को डिटेन करके लाया गया था जिनके पास वो पेपर मिले हैं। 2-3 जो जयपुर की बता रहा हूँ मैं आपको, मनीष यादव और अविनाश लांबा, ऐसे लोगों को लाया गया है जिनके पास आखिरी तक ये पेपर पहुंचा है, तो ऐसे कुल लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। मगर ये जो SOG को ये पता चल पा रहा है कि ये काफी पहले से प्लान।
1: शरद मैं आपके पास लौट रहा हूँ, इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई, इस मामले में कार्रवाई भी हुई, अब तक 45 लोगों को पकड़ लिया गया है। अब CBI इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, 45 लोगों को पकड़ा गया है अब तक। इसमें कई कुछ इसमें काउंसिल

0: काउंसलर्स हैं, जो करियर काउंसलर्स हैं, इसमें कुछ बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन तक ये पेपर पहुंचा था। तो कुल 45 लोग अब तक पकड़े गए हैं और एक शहर ने कई शहरों तक इनके अब जो है लिंक सामने आए हैं, अलग अलग शहरों तक ये पेपर पहुंच गया था, फिर परीक्षा में जब बैठे तो हूबहू निकला। आनंद कुमार भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सुपर 30 चलाते हैं। आनंद जी, ये कितना बड़ा लॉस है अभ्यर्थियों का और क्या इससे विश्वसनीयता पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब पेपर लीक होता है और उसके बाद रद्द करना पड़ता है?
1: नहीं, ये तो बहुत दुखद बात है। विद्यार्थियों का हमेशा मनोबल घटता है जब पेपर लीक की बात आती है, लेकिन खुशी की बात थोड़ी ये है, या राहत की बात बोले तो ज्यादा अच्छा है, कि तुरंत पकड़ लिए गए हैं जो इस कारनामे से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बच्चों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप धैर्य रखिए, फिर से तैयारी करिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, सोचिए कि चलो इसी बहाने एक मौका अच्छा और मिला। और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे अपराधी जो इस तरह के मामलों को अंजाम देते उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी सरकार को सख्ती से काम करनी चाहिए।
0: आनंद जी, अभी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन हम एसओजी की कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें कोचिंग सेंटर्स के लिए पेपर लीक हुआ, ऐसी बातें सामने आ रहे हैं, तो क्या हमारे देश के जो कोचिंग सेंटर है अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं?
1: इतना गिर गए कि देखिए, इस पर मार्केटिंग टीम लोग बना के चलते हैं, सेल्स टीम बना के चलते हैं, पूरा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन उन तरह के कोचिंग सेंटरों पर या तमाम कोचिंग सेंटर पर नकेल कसे जाने की बहुत जरूरत है सरकारी तौर पर, वरना इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कुछ भी करने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे पैसे की पाने की चाहत में। इसलिए ये भी हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो कोचिंग के संबंध में कानून बनाए गए थे उस पर पाबंदी के लिए, उस पर लगाम के लिए कई कानून बनाए गए, उसकी सख्ती से उसको लागू किया जाए।
0: क्या उन कानूनों का सही से पालन नहीं होता है? क्या नियमों को नहीं मानते हैं कोचिंग सेंटर्स?
1: जब ऐसी घटनाएं घटती है तो सरकार आती है हरकत में, लोग मानते हैं, फिर धीरे धीरे सरकार के लोग हैं वो भूल जाते हैं, फिर कोचिंग वाले अपने मन के करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

0: तरह की घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कुछ भी करने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे पैसे की पाने की चाहत में। इसलिए ये भी हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो कोचिंग के संबंध में कानून बनाए गए थे उस पर पाबंदी के लिए, उस पर लगाम के लिए कई कानून बनाए गए, उसकी सख्ती से उसको लागू किया जाए।
1: क्या उन कानूनों का सही से पालन नहीं होता है? क्या नियमों को नहीं मानते हैं कोचिंग सेंटर्स?
0: जब ऐसी घटनाएं घटती है तो सरकार आती है हरकत में, लोग मानते हैं, फिर धीरे धीरे सरकार के लोग हैं वो भूल जाते हैं, फिर कोचिंग वाले अपने मन के करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी चाइना में कोचिंग सेंटर्स के प्रति काफी, जब ऐसी घटनाएं घटती है तो सरकार आती है हरकत में, लोग मान।
1: तो क्या कोचिंग सेंटर्स इसके पीछे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ऑपोजिशन को फिर एक बड़ा मौका मिल गया है घेरने का। नीट का पेपर रद्द कर दिया गया, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, NSUI प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अनमोल बाली हमारे संवाददाता वहां पर इस समय मौजूद है। अनमोल, इस समय की तस्वीर दिखाएं।
2: राजीव, पहली बार नहीं कि नीट के मामले को लेकर पेपर लीक की बात सामने आई, 2024 में भी और अब फिर 2026 में देखा जा रहा है कि नीट का जो मामला है, पेपर लीक का जो मामला है, वो फिर गर्म हो गया है। उसी को लेकर जो NSUI के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर शास्त्री भवन के बाहर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इकट्ठे हुए थे। भारी संख्या में जो NSUI के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए थे, जिनको रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। कई जो कार्यकर्ता हैं NSUI के, उनको डिटेन भी कर लिया गया है। जब हमने उन कार्यकर्ताओं से बात की, CBI जांच को लेकर भी उनको बोला और उनसे भी पूछा कि 3 मई का जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया, तो विद्यार्थियों ने, जो कांग्रेस से जुड़ा छात्र संगठन है NSUI के जो विद्यार्थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन लाखों बच्चों के भविष्य का क्या, जिन्होंने पढ़कर तैयारी दी थी, मेहनत से पेपर देने आए थे, उनके भविष्य का क्या, उनके माँ बाप और उनकी मेहनत का कौन जवाब देगा? क्योंकि पहली बार नहीं, 2024 में भी देखा गया था कि नीट पेपर लीक का मामला देखने को मिलता है टेलीग्राम पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो नीट का पेपर है वो लीक हो जाता है, जिसके बाद अन्य जो छात्र संगठन है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या NSUI हो, वो NTA के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं। और अब फिर जो देखा जा रहा है, जो छात्र संगठन है सक्रिय हो गए हैं, वो फिर सड़कों पर उतरा है, क्योंकि जो NTA है वो हमेशा से विफल पाई गई है। ये पहली बार नहीं है मैं राजीव, इससे पहले 2024 का मामला भी नीट का लेकर बड़ा गरमाया था और नीट PG को लेकर भी देखा जाता है छात्रों में बड़ा असंतोष था, जब उनको बहुत दूर दूर तक सेंटर दे दिए जाते हैं और CUT का भी अब एग्जाम चल रहा है, जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहेंगे, UG प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहेंगे, वो बच्चे भी तंग है, क्योंकि कई बच्चों को हजारों किलोमीटर दूर उनके घरों से जो सेंटर हैं पेपर के दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं NTA हर मामले में पिछले कई सालों से विफल पाई गई है, उसी NTA के खिलाफ और उसी एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ जो भारी संख्या में जो NSUI के कार्यकर्ता हैं यहां पर शास्त्री भवन के बाहर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल अनमोल, बने रहे आप हमारे साथ। एक स्वायत्त, एक आत्मनिर्भर संस्थान जिसे शक्ति दी गई, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, लेकिन क्या वाकई वैसा प्रभावशाली काम कर पा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 2024-2026 उसका उदाहरण, पहले भी पेपर लीक, अभी पेपर लीक, वो मोबाइल फोन जो पेपर है वो घूमता रहता है। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शरद, चूंकि जयपुर में एक मेनली इसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी, लेकिन NTA की कार्यप्रणाली भी क्या सवालों में नहीं है? क्या उस पर भी अब सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमने एक संस्थान को इतनी आजादी तो दी है लेकिन वो विफल है, नाकाम है?
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि NTA के जो कार्यप्रणाली है उसमें कहीं सेंध लगी है। ऐसी बात नहीं है कि NTA ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है। इस बार NTA ने जो परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हो रहे थे या फिर रास्ते से पेपर लीक हो रहे थे उसके तो पुख्ता इंतजाम किए थे, मगर शायद NTA सोच नहीं पाया कि प्रिंटिंग प्रेस के प्राथमिक स्तर पर या फिर कोई पेपर सेट करने वाला भी लीक कर सकता है। ये जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोई गलती रही है। आपने जो अब तक सीखा था उसे तो ठीक कर लिया, जो अब तक नहीं सीखा था वहां पर फेल हुए हैं। इसलिए NTA की लापरवाही तो कही जा सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जहां पर राजस्थान पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, भगा दे रही थी, NTA ने तुरंत इसे सेंट्रल आईबी को सौंपा, सेंट्रल आईबी ने DGP को सौंपा, DGP ने SOG को सौंपा, SOG ने NTA को सौंपा, NTA ने HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा, उसके बाद भारत सरकार से विमर्श किया गया, फिर CBI जांच दी गई। तो इसमें ये भारत सरकार ने एक्शन काफी त्वरित लिया है, ये तो कहा जा सकता है, और राजस्थान के SOG ने भी जांच त्वरित की है, मगर कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल होता है पेपर छपने का उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या NTA का कोई शामिल था इसे लेकर SOG एक संदेह व्यक्त कर रही है कि जब

0: तक अंदर का व्यक्ति कुछ बता नहीं पाए, इतनी
1: संदेह सवाल तो बहुत सारे हैं। अब ये बताएं कि सीबीआई को चूंकि इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, सीबीआई कब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, वो कितना समय लेगी? अभी
0: मेरी बात हुई थी एसओजी से, उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, सीबीआई का कॉल जैसे ही आएगा हम सीबीआई को हैंडओवर कर देंगे, सारे लोगों को भी कर देंगे और सीबीआई मुकदमा भी दर्ज करेगी। सीबीआई तो अब सारे मसले को सीबीआई ही देखेगी, एसओजी इस मसले को नहीं देखेगी, क्योंकि कई राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है, उत्तराखंड भी है, केरल भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, तो सीबीआई के पास संसाधन है कि सारे राज्यों में इस नेटवर्क को खंगाल सकता है, क्योंकि अभी यह आशंका जताई।
1: शरद, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, सीबीआई जल्दी इस मामले में मुकदमा दर्ज करने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, नीट पेपर लीक, अब परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो जो लीक में शामिल थे उनको ढूंढने के लिए, उनको पकड़ने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और जल्द ही एफआईआर भी बताया जा रहा है कि सीबीआई दर्ज करेगी। ये बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। ये नीट पेपर विवादों में लगातार आ गया था, जब हूबहू जो क्वेश्चन पेपर था वो लोगों के हाथ में पहुंच गया था अलग अलग स्टेट में, और अब कुछ कोचिंग सेंटर्स पर भी आरोप लगने लगे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सीबीआई को जांच सौंपी गई, एसओजी ने अब तक इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ पकड़े भी गए, डिटेन किए गए हैं अभी तक। और शरद भी हमारे साथ है, शरद जल्द ही बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करेगी और एसओजी से फाइल्स भी अपने हाथ मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें शायद सीबीआई बहुत देरी ना करे।
0: बिल्कुल देरी नहीं करेगी, क्योंकि एसओजी सारे कागजात के साथ, लोगों के साथ तैयार बैठी है सब कुछ बताने के लिए। और देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये सारी कहानियां एसओजी ने इसीलिए मीडिया को बताई भी थी ताकि एक दबाव बने, जिसकी वजह से कम मुकदमा दर्ज हो और जो ये जांच हो वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि चार दिन से ये सारी जांचें रुकी हुई थी, लोग हिरासत में थे और कुछ हो नहीं रहा था। तो अच्छी बात है कि केंद्र सरकार जागी है, जब ये सवाल किया जाने लगा है कि ये कब तक चुप रहेंगे, एनटीए वाले मान क्यों नहीं रहे हैं, एनटीए कह रहे थे एक्सपर्ट कमेटी अध्ययन कर रही है, तो अब कहा जा रहा है कि वो सीबीआई के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही सीबीआई के अधिकारी पहुंचेंगे वो सारा हैंडओवर कर देंगे, उसके बाद सीबीआई इस मामले को टेकअप कर लेगी और जांच करेगी। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तत्परता के साथ एनटीए ने इस मामले में कार्रवाई की है पिछले 7 मई से लेकर अब तक, आज ये 12 मई है, 5 दिनों में एनटीए ने और एसओजी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, माना जा रहा है कि सीबीआई जल्दी ही मुकदमा दर्ज करके इस मामले को जल्दी पकड़ लेगी, क्योंकि कड़ियां जोड़नी है। 28-29 अप्रैल तक तो एसओजी ने कड़ियां जोड़ ली है, बाकी की कड़ियां जोड़नी है और वो काम सीबीआई कर सकती है आसानी से, इसीलिए ये जांच सीबीआई को दी गई है। और राजस्थान सरकार चाह भी रही थी, कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो यही कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार के आदेश का, भारत सरकार शायद ये जांच अपने पास ले ले, तो राजस्थान सरकार से ये जांच सीबीआई को जा रही है। मगर वही बड़ा सवाल है कि कैसे इन लोगों को पता चल गया कि जयपुर में पेपर छप रहा है, कहां छप रहा है, कैसे निकाला गया, क्या कोई पुराना गुट है, क्योंकि देखिए बिहार उत्तर प्रदेश के जितने पेपर माफिया हैं वो सारे पेपर माफियाओं का लिंक राजस्थान से रहा है और वो सारे नीट, माना जा रहा है कि सीबीआई जल्दी ही मुकदमा दर्ज करके इस मामले को जल्दी पकड़ लेगी, क्योंकि कड़ियां जोड़नी है। 28-29 अप्रैल तक तो

0: गई है और राजस्थान सरकार चाह भी रही थी, कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो यही कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार के आदेश का, भारत सरकार शायद ये जांच अपने पास ले ले, तो राजस्थान सरकार से ये जांच सीबीआई को जा रही है। मगर वही बड़ा सवाल है कि कैसे इन लोगों को पता चल गया कि जयपुर में पेपर छप रहा है, कहाँ छप रहा है, कैसे निकाला गया, क्या कोई पुराना गुट है? क्योंकि देखिए बिहार उत्तर प्रदेश के जितने पेपर माफिया हैं वो सारे पेपर माफियाओं का लिंक राजस्थान से रहा है और वो सारे नीट के बड़े माफिया हैं जो यहाँ पर पिछली बार भी एक पेपर माफिया की मौत हुई थी करौली का वाराणसी में, तब भी नाम आया।
1: पूरे मामले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। धांधली केस में आशंका जताई जा रही है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और जांच के लिए जल टीम का गठन सीबीआई करेगी। एसओजी भी इस पूरे मामले में सीबीआई की मदद करेगी। कोचिंग सेंटर के बाहर से रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या कह रहे हैं कोचिंग के संचालक, कितनी बड़ी हानि, कितनी बड़ी क्षति है छात्रों के लिए?
2: बिल्कुल, ज्यादा देर किए बिना हम सीधे आपकी बात करवाते हैं जो कोचिंग संचालक हैं यहाँ पे, अमित, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, कितना बड़ा झटका है छात्रों के लिए और आप जो कोचिंग चलाते हैं उस?
3: काफी ज्यादा, एक बहुत ही मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत से है ना नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग गांव से पेरेंट्स किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन कराने के लिए भेजते हैं और जब बार बार कंटिन्यू 3 ईयर से ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ। 2024 में भी एक स्कैम जैसा हुआ था जिसके ऊपर काफी ज्यादा हद तक मतलब इतने सारे बच्चे 720 out of 720 लेके आते हैं, ये जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट ईयर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड हार्ड आया था कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि IIT के पेपर से भी ज्यादा नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। और इस साल फिर से पेपर तो इंटरमीडिएट आया बट फिर से मतलब थर्ड ऑफ मेरे को एग्जाम हुआ है और आज मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और आज फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि ना 720 out of 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और वो जांच एजेंसियों ने भी पाया है जिस वजह से आज सरकार ने फैसला लिया है।
2: तो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट्स उनसे भी जानते हैं, आप लोग बताइए कि प्रिपरेशन टफ होती है, काफी होती है, लेकिन अचानक से जब ऐसी न्यूज आती है तो क्या प्रेशर आप लोगों के ऊपर आता है या फिर क्या उस वक्त आपको लगता है?
4: सर, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है। ऐसे नीट पे बार बार ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर, थोड़ी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगले साल ऐसा कर देते कि पेपर टफ कर देते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते एनटीए वाले, तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ना कि पेपर टफ करना चाहिए।
2: अच्छा, आप लोग बताइए कि बहुत ज्यादा आप लोग निराश हैं इस खबर के बाद, क्या लगता है कि आपको लगता है कि बहुत इतनी जो मेहनत आप लोग करते हैं लेकिन ना कोई सिक्रेसी हो रही है और आप लोग की मेहनत पे पानी फिर रहा है, वो अलग?
4: हाँ, हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर और हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी सब चौपट हो जाता है, सब पानी में फिर जाता है, तो बहुत दुख तो होता है।
2: ये बताइए कि इसमें कितनी मेहनत लगती है बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप लोग बैठते हैं, नीट की पढ़ाई कितनी देर तक होती है और जब ये इस तरीके की खबरें आती हैं तो फिर क्या आप लोग कैसे परिवार के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं इनके बच्चों के और इन बच्चों को फिर आप समझाते क्या?
5: जी, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, साल भर जो है 12 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं लगातार।
2: 15 घंटे?
5: हाँ, 15-15 घंटे तक जो है बच्चे लगातार मतलब मेहनत करते हैं। कोई कुछ बच्चे तो सोते नहीं लास्ट के कुछ दिनों तक, उनका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलते हैं और उसके बावजूद अगर बच्चों को ऐसा सुनने में मिले कि यार हमारा जो पेपर था जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं वो
2: लापरवाही किसकी मानते हैं,
5: इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो उसके ऊपर नजर रखती है उनकी कहीं लापरवाही है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो है इसकी
2: बार बार लीक क्यों हो रहा है,
5: कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रखी गई है और क्या है कि जो हालात मतलब जो जिनके हाथों में चीज दी गई है शायद वो उसके लिए सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर के कि उन्हें वो किस चीज को संभाल रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।
2: तो आप देख सकते हैं, आपने सुना स्टूडेंट्स को, आपने सुना जो कोचिंग के
1: चलाने वाले लोग हैं। जयपुर से जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। जयपुर से ही दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ, कहां कहां इसके तार जुड़ रहे हैं और कौन से वो मुख्य आरोपी हैं जिन तक अभी पहुंचने की जरूरत है क्योंकि एक लंबा चौड़ा नेटवर्क होगा, जाहिर तौर पर पेपर लीक में एक माफिया काम करता है, इसके बारे में एक संगठित तौर पर पूरा फूल प्रूफ प्लान तैयार किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कह रही है नेहा, 135 सवाल प्रिंटिंग प्रेस से या फिर पेपर लीक करने वाले के पास से ये लीक हुए थे और आज तक ने कल ये खुलासा कर दिया था कि किस तरह

0: सभी 90 के 90 बायोलॉजी और सभी 45 के 45 केमिस्ट्री के सवाल लीक कर दिए गए थे और उसके बाद इसे मुलम्मा चढ़ाया गया गैस पेपर का, और गैस पेपर के नाम पर पिछले कई दिनों से ये सीकर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा रहा था मेधावी छात्रों को ये कहकर कि तुम इसे पढ़ लो, इसी से आएगा। अब इस पे पूरा फोकस है कि इन छात्रों को जब उठाकर लाया गया है तो किन लोगों से मिला है। अभी तक जो शिकायत करता है कोचिंग संचालक सीकर का, वो एसओजी के पास हिरासत में है। उसके पास एक राकेश मोरवड़िया है जो एक बड़े कोचिंग संस्थान के सामने ही एमबीबीएस का काउंसलर है, वो एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। उसने ये पेपर 30,000 रुपए में अपने एक साथी को केरल में जो एमबीबीएस कर रहा था उसे बेचा सीकर से ही। फिर उसने अपने पिताजी को बेचा कि अपने हॉस्टल में जो लड़कियां रह रही है उन्हें दे दो, कि यही आएगा पैसे लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और वहां से सारा मामला खुला, बच्चों के लालच की वजह से ये मामला खुल गया। बच्चों के पास ये गैस पेपर आ गए थे और बच्चों ने आखिरी दिन में 30,000 से लेकर 5,000 तक में बेचना शुरू कर दिया। वरना ये पहले नागौर में जिस लड़के को बेचा गया है वो 28 लाख में बेचा गया है। नागौर का वो लड़का जो है वो सीकर चला गया था 4 दिन पहले, कि हमें फोन आ गया है दिल्ली से कि पेपर आ गया है यहाँ पर, तुम गैस पेपर ले आओ। जिसको पकड़ा है, जिसको हिरासत में लिया है एसओजी ने, तो आप समझिए कितने बड़े नेटवर्क का ये खुलासा है जो पीछे काम कर रहा था। ये सारी चीजें कल सुबह से आज तक बता रहा था और आज तक सवाल भी पूछ रहा था यही कि आखिर इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। यही हम एनटीए से पूछ रहे थे कि बिल्ली के गले में घंटी क्यों नहीं बांधी जा रही है।
1: आपके पास असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से तमाम जानकारी के साथ। मेरे साथ इस वक्त शशि भूषण जुड़ गए हैं पटना से। शशि भूषण, पटना में कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, वो क्या कुछ कह रहे हैं परीक्षा कैंसिल होने के बाद? क्योंकि एक लंबा चौड़ा वक्त प्रिपरेशन में भी लगता है, एक बार फिर से उन्हें तैयारी करनी होगी, फिर से एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक बड़ा लॉस इसे माना जाए।
2: बिल्कुल नेहा, देखिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आएंगी और फिर परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। पटना में एक संस्थान है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां बच्चे तैयारी करते हैं, यहां पर उनके जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम साथ में लाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो भी बात करेंगे, सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ

0: ज्यादा एक बड़ा लॉस इसे माना जाए।
1: बिल्कुल नेहा, देखिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आएंगी और फिर परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। पटना में एक संस्थान है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां बच्चे तैयारी करते हैं, यहां पर उनके जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम साथ में लाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो भी बात करेंगे, सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो
2: से छोटे छोटे जगहों में रहने को मजबूर होते हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट जो बहुत कष्ट करके यहाँ रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर रहते हैं, किसी तरीके से पढ़ाई।
1: इस बार आपके संस्थान से लगभग कितने बच्चे अपीयर हुए थे?
2: हमारे संस्थान से इस बार लगभग 6000 से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे और बहुत अच्छे स्कोर कर रहे थे। 700 से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कोर किया था। अब इतना मेहनत करके जब स्टूडेंट इतना अच्छा स्कोर करता है और थोड़ा बच्चों से मेहनत ही बेकार हो गया।
1: बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। थोड़े बच्चों से बात करें, आपने इस बार नीट की परीक्षा दी, इसमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने एस्पिरेंट्स हैं? जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे क्या लगता है, मतलब नुकसान होगा छात्रों का या फिर एक मौका मिलेगा?
3: नुकसान होगा, हर छात्र का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है, तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट वो नहीं हो पाता है।
1: अच्छा, दूसरे बच्चे भी, उनसे भी बात करते हैं। 2 साल पहले भी इसी तरह की खबरें आई पटना में और हालांकि उसमें परीक्षा कैंसिल नहीं हुई। इस बार जो फैसला लिया गया है, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मन में क्या चल रहा है इस वक्त?
3: सर क्या
1: मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब
3: उस बच्चों के लिए, मतलब कि बहुत बुरा लग रहा है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। उसमें बहुत लोग टॉपर भी तो थे, वो लोग का जिसका मार्क्स कटा होगा वो बहुत मेहनत किए होंगे।
1: और भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चियां हैं उनसे।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास बीच। असीम बस्सी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। असीम, वहां पर छात्र छात्राओं के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। कई बार छात्र को लगता है इतना सरल पेपर था, हो सकता है अगला पेपर जो है वो कठिन आए।
4: जी हाँ, बड़ा सेटबैक रहता है क्योंकि लोग बड़ा प्रिपेयर करते हैं नीट के एग्जाम के लिए, लाखों लोग अपेयर होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सडनली लीकेज होना और कैंसलेशन होना डेफिनेटली एक सेटबैक है। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं एक्चुअली इस पूरी एकेडमी को, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, वहाँ हम आए हैं तो बात करेंगे जो लोग यहाँ पे टीचिंग करते हैं। जी सर, क्या नाम है?
5: मेरा नाम मुकेश सियाल है जी।
4: मुकेश जी, ये बताइए अभी कितना बड़ा सेटबैक है और इस इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे जो है थे उन्होंने अपेयर हुए थे नीट में और ये कैंसलेशन हो जाना कितना बड़ा सेटबैक है?
5: हमारे यहाँ से 2000 प्लस स्टूडेंट्स से अपीयर हुए थे और उन्होंने अपना स्कोर भी लगा लिया था और काफी बच्चे हैं जो सिलेक्शन अपना लेके जा रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि री अपीयर होना अपने आप में उनको अपनी मोमेंटम को दोबारा बनाने जैसा हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि दे आर फाइनली चूजिंग द कॉलेज कि हम इस कॉलेज में जाने वाले हैं, तो इमीडिएटली ऐसी न्यूज आती है कि पेपर कैंसिल हो गया और लीक हो गया, तो एक बड़ा सेटबैक तो सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है।
4: तो ये अब जो कई लोगों ने बड़ा अपीयर, लेकिन आपके लिए कितना कठिन हो जाता है क्योंकि मोटिवेट रखना दोबारा स्टूडेंट्स को?
5: देखो, एक मोमेंटम होता है पढ़ने का, बच्चा वो मोमेंटम लूज कर चुका है, अब उस मोमेंटम को बनाने के लिए ही बच्चे को 10 से 15 दिन लग जाएंगे और अगर नीट बहुत जल्दी हो जाता है तो बच्चा जो ऑलरेडी प्रिपेयर था अपनी इतनी मोमेंटम से वो उतना अच्छा कर नहीं पाएगा। उसके
4: कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, इस तरफ खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
6: रणविजय देओल।
4: तो आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं?
6: हाँ जी।
4: तो कितना बुरा लग रहा है कि लोगों ने अपीयर किया था लेकिन कैंसिल हो गया नीट का एग्जाम?
6: बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत मेहनत कर रहे थे और अब दोबारा री अपीयर होना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट दोबारा करने पड़े।
4: तो कितनी मेहनत लगती है नीट के एग्जाम क्रैक करने में?
6: मेहनत तो बहुत लगती है और जब मेहनत नहीं सफल हो पाती फिर बुरा लगता ही है।
4: तो आप भी तैयारी कर रहे हो?
7: हाँ जी, हाँ जी।
4: तो आपके जो सीनियर्स थे उनका तो कैंसलेशन हो गया क्योंकि लीकेज हुआ, तो ये बार बार जो एग्जाम लीक होते हैं इसको किस तरह लगते हैं?
7: मेहनत तो करते रहते हैं, वो तो फिर लीक होते हैं, फिर मुश्किल तो होती है कि बस।
4: तो ये सेटबैक है, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है?
8: विमल।
4: हाँ विमल जी, आप भी यहाँ पढ़ाते हैं?
8: नहीं।

0: नॉन टीचिंग में है सर यहाँ पे मैनेजमेंट,
1: लेकिन आपके साथ भी बड़ा संपर्क में रहते होंगे स्टूडेंट्स, तो सेटबैक है।
2: ठीक है, मैं लौटूंगी आगे बात शरद, तो मेरे से ये भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से। शरद देखिए, इसे पूरी जांच के प्रोसेस को स्पीड अप करने की भी जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस तरह की धांधली, इस तरह का पेपर लीक जब सामने आता है, तो अगर प्रोसेस स्लो होता है तो जो आरोपी हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, हाइड आउट्स में चले जाते हैं। ये जांच कितनी स्पीड अप हो पाएगी, क्योंकि अब

0: देखिए, जांच बंद नहीं की थी नेहा एसओजी ने। एसओजी कल यही कह रही थी कि हम जांच बंद नहीं कर रहे हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, मुकदमा दर्ज हो चाहे नहीं हो, वो तो डीजीपी साहब से पूछना चाहिए कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। और हम लोग पूछ भी रहे थे डीजीपी साहब से, वो 45 लोगों को अलग अलग इलाकों से, नागौर से, झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर से, अलग अलग थानों में लेकर हिरासत में रखा हुआ है, जिनसे पूछताछ की जा रही थी, मगर चूंकि शो नहीं कर रहे थे इसलिए कि अरेस्ट नहीं हुए हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि काफी स्पीड अप हो जाएगा इस जांच में और जल्दी ही ये सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि ये कैसे ये काम कर रहे थे। क्योंकि देखिए, 22 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे दो साल तीन साल चार साल से, वो अच्छा एग्जाम देकर घूमने गए हैं, उनको सबके फोन आ रहे हैं, माँ बाप टीचर जो टिकट कैंसिल करा के सब वापस आ रहे हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि 3 मई से लेकर और 12 मई हो गया है तो एक गैप हो गया और सब अपने अपने इलाके में घूमने निकल गए, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, वो सब वापस आ रहे हैं। तो भारत सरकार भी जानती है कि ये बहुत बड़ा फैसला था और इसीलिए सब कुछ सोच समझ के फैसला लिया गया है। और निश्चित रूप से ये जो एनटीए के डीजी हैं अभिषेक सिंह, वो लगातार एसओजी से संपर्क में है और कहा जा रहा है कि जयपुर भी आए थे, उन्होंने सारे मसले को समझा है और वो ये करीब पहुंच गए हैं कि पूरा ये लीक का प्रोसेस क्या था, कहां से हुआ था, किन दो जगहों से लीक हो सकता है, उनकी जांच सीबीआई को करनी है। वो कहा जा रहा है कि चूंकि कड़ी पकड़ी गई है इसलिए जल्दी जांच हो जाएगी। जो बच्चे जिन्हें
1: आस्था की खबर का असर हुआ है, दो आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं शरद, उनके बैकग्राउंड क्या है, पहले भी इस तरह का काम वो कर चुके हैं पेपर लीक का?
0: देखिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में कहा जा रहा है अविनाश लांबा और मनीष यादव के बारे में कि ये कोचिंग संस्थानों से संपर्क में थे। अब इनके इनकी इस बात की पुष्टि के लिए बड़े लोगों पर हाथ डालना था, वहां से मुकदमा दर्ज करना जरूरी था, मगर ये कहा जा रहा है कि इनके पकड़े जाने के बाद एक नए तरह के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है जो कोचिंग संस्थान से जुड़ा हो या फिर देश भर के करियर काउंसलर से जुड़ा हो जो MBBS कराने का ठेका लेते हैं। अब ये यही लोग हैं पेपर लीक कराने वाले। इस बार कोई संगठित गिरोह नहीं था कि हम पेपर लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो जयपुर से निकला हुआ है पर और सीकर अड्डा बन रहा है, सीकर कोटा के बाद सबसे बड़ा कोचिंग हब के रूप में निकला है। जब से कोटा में एडमिशन कम हुए हैं, राजस्थान के सीकर में कोचिंग में एडमिशन बढ़ा है और सीकर पहले से भी बदनाम रहा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी बदनाम रहा है। तो सीकर कोई पहली बार इस तरह के काम में नजर आए हो ये नहीं है, पहले भी आ चुका है। तो सारा फोकस सीकर और जयपुर पे है, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा फोकस भी नहीं है, यहीं से बाकी के लिंक भी जुड़ रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी ही सीबीआई इस मसले को खोल देगी। एसओजी ने करीब करीब इस पूरे मसले को समझ लिया है कि कहां से पेपर गया था, जो दो गुंजाइश उन्होंने बताई, एसओजी ने ही बताई है हमें अनौपचारिक बातचीत में, और जो दो नाम बताए हैं वो एसओजी की तरफ से ही पता चला है, वो भी अनौपचारिक बातचीत में पता चला है। अब औपचारिक रूप से जब सीबीआई इस मामले को टेकअप करेगी तो मुझे लग रहा है कि सारा ये खुलासा हो पाएगा, मगर इस मामले में
1: धीरे धीरे पर्चे खुलेंगे, कई और नाम सामने आएंगे। दो अभी नाम सामने आए हैं एसओजी द्वारा, ये नाम दिए गए हैं अनौपचारिक बातचीत में। लेकिन बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आस्था की खबर का असर हुआ है, धांधली दिखाए जाने के बाद नीट पेपर लीक कर दिया गया है। आस्था के पास पेपर लीक के माफिया का भी नाम है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, एमपी में ये पेपर किस तरीके से लीक हुआ, वहां पर भी क्या कुछ सुराग मिले?
2: देखिए, अभी तक तो इसकी जानकारी यहाँ पर फिलहाल लीकेज की नहीं पहुंची है कि मध्य प्रदेश में भी क्या पेपर लीक हुआ था। कहीं जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वहां पर कोई खामी जरूर है, क्योंकि
3: हम हुआ तो काफी ज्यादा टफ हुआ। 2025 का पेपर अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफ आया है, यही इन छात्रों को भी डर रहता है कि एकदम से हमारी जो प्रिपरेशन थी उसका ट्रैक चेंज ना हो जाए। और एनटीए भी इस एग्जाम को जल्द से जल्द कराएगा, अगर रिपीट करा रहा है उसका रीजन ये, अदरवाइज एमबीबीएस का पूरा करिकुलम डिले हो जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर पूरा हॉस्पिटल की पोस्टिंग में भी चेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द कराया जाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द कराने के लिए छात्रों को फिर से तैयारी नहीं मिलेगी।
2: क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई खबरें आ रही है, क्योंकि आप लोग एक बड़ी कोचिंग चलाते हैं, क्या यहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है जिस तरीके राजस्थान में सामने आया?
3: अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है मेरे को, ना मैंने अभी तक ऐसा सुना, लेकिन वो सीकर का ही मामला सुन रहे हैं, मोबाइल पे, यूट्यूब पे सारी चीजें देखने को मिलती है, तो ऐसा मध्य प्रदेश का तो मेरे को अभी नहीं सुनने को मिला है। लेकिन हो सकता है कि मतलब एजेंट और स्कोरर आजकल हर टाइप के सभी जगह है, मध्य प्रदेश तो बहुत फेमस है व्यापक घोटाले के नाम से, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग इस टाइप के रह चुके हैं।
2: अभी आपको क्या लगता है कि आपने बताया कि एक घंटों

0: घंटों पढ़ाई करते हैं, कई कई महीनों की पढ़ाई होती है, और जब एग्जाम हो जाता है तो निश्चित तौर पे वो जो तनाव दूर होता है।
1: शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, बिहार में इस तरह की कोई ट्रेसेस की वहां पर पेपर लीक हुआ है?
2: नहीं, देखिए इस बार तो बिहार में ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन 2024 जिसकी चर्चा हो रही है, उस 24 के जो नीट की एक परीक्षा हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी वो बिहार से ही सामने आई थी, और जो बिहार में संजीव मुखिया का नेटवर्क जो नालंदा ऑपरेटिव एक पूरा किंग पिन रहा उसकी खुद मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे, और उस दौर में लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि 24 में नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए थे बिहार की ईयूयू ने, जो आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई है उसने, लेकिन अब बाद में सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ और सब कुछ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हकीकत सामने नहीं आई, बाद में कई आरोपियों को बेल भी मिल गई। लेकिन हाँ, एक बात जो हमने उस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखी थी नेहा, वो ये कि तब बिहार में जो पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था पेपर लीक को लेकर के, वो नेटवर्क झारखंड तक अपना कनेक्शन जोड़े हुए था, और झारखंड में हजारीबाग के एक प्राइवेट स्कूल से किस तरह से पेपर को आउट कराने की कोशिश हुई थी, किस तरह से तार जुड़े, कितने इंट्रोगेशन हुए, ये हमको याद है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2024 में एनटीए ने नीट की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया, उस वक्त भी सीबीआई को केस पुट अप किया गया था। लेकिन हाँ, इस बार कम से कम पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए नेहा ये कहेंगे कि जो गड़बड़ियां आई राजस्थान से सामने, कम से कम एक एक्शन तो हुआ है कि आप नीट की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है, एनटीए ने खुद ऐलान कर दिया है। भले ही ठीक है, छात्रों के भविष्य पर सवाल है, सेशन डिले होने का हो, या फिर ये उम्मीद कि बहुत सारे छात्रों का पेपर अच्छा गया था, लोग 700 से ऊपर स्कोर करने के स्टूडेंट क्लेम कर रहे थे अपने, उन्होंने जो होमवर्क किया बाद में कि वो कितना उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन इन सबके बावजूद अगर गड़बड़ियां हुई और कोई ऐसा छात्र चुन करके चला जाता जो कि दक्ष नहीं होता, जो एफिशिएंट नहीं होता, तो ये और गड़बड़ी वाली चीजें थी। तो कम से कम एक तो बदलाव यहाँ पे, एक सुधार दिख रहा है कि 24 में जो पेपर लीक एनटीए ने नहीं माना उसको आप 26 में मान रहे हैं, और अब देखिए सीबीआई इंक्वायरी भी करेगी इस मामले में।
1: ठीक है, असीम बस्सी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, चंडीगढ़ के छात्र छात्राएं जाहिर तौर पर परेशान, लेकिन इस बीच सवाल यही बड़ा है कि क्या वाकई अब छात्र छात्राएं किसी भी परीक्षा पर भरोसा कर पाएंगे?
3: जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं किसी एग्जाम के लिए, लेकिन जो रेगुलर लीक्स हैं, कभी किसी स्टेट से हो गया, कभी किसी स्टेट से हो गया, तो डेफिनेटली एक बड़ी सेटबैक होती है उस स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है, आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है, लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो बड़ा सिंसियरली उसको तैयारी करते हैं, लेकिन जिस तरह ये लीकेजेस हो रही हैं और इतने इतने बड़े एग्जाम जो बड़े वाइटल हैं, तो उसको लेकर डेफिनेटली ये रुकने चाहिए, और अगर नहीं रुकेंगे तो एक बड़ा एक सेटबैक है और पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह ये लीकेजेस होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क जो भी है वो भी खड़ा होता है इस प्रोसेस के ऊपर। जी हाँ,
1: तो नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसको लेकर तमाम छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है, दोबारा अब तैयारी करनी पड़ेगी, नए एग्जाम होंगे और पूरे मामले में अब सीबीआई भी शामिल रहेगी। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये इतिहास रहा है कि कई बार जो अहम परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह की धांधलियां सामने आती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक डीप रूटेड माफिया नेक्सस इन सब में शामिल होता है जिनको सिरे से खत्म करने की जरूरत है, और हो सकता है कि आप जिस प्रिंटिंग प्रेस में इस एग्जाम पेपर को प्रिंट करा रहे हो वहां से ही ये शुरू होता हो, ये सब कुछ मिली भगत का नतीजा है। अब देखिए हमारी खास पेशकश, क्या बचत से बचेगा देश?
4: हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें,

0: और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं।
1: नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरी दुनिया इस वक्त चिंता और आशंका में घिरी हुई है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का संकट कब खत्म होगा। युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर साफ साफ दिखने लगा है। पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा होता जा रहा है क्योंकि युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, ये जग जाहिर है, और भारत भी इस असर से अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में देश के नाम दो दो अपील की है। उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये देश को बताया है। अब प्रधानमंत्री के संदेश के निकाले जा रहे हैं, तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश पर कितना बड़ा खतरा है, प्रधानमंत्री के संदेश के आखिर क्या मायने।
0: मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।

0: दी है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का संकट कब खत्म होगा। युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर साफ साफ दिखने लगा है। पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा होता जा रहा है क्योंकि युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, ये जग जाहिर है, और भारत भी इस असर से अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में देश के नाम दो दो अपील की है। उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये देश को बताया है। अब प्रधानमंत्री के संदेश के निकाले जा रहे हैं, तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश पर कितना बड़ा खतरा है, प्रधानमंत्री के संदेश के आखिर क्या मायने हैं।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे।
2: नागरिक से अपील है जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
3: 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने देश के नाम दो दो पैगाम जारी किए। दोनों संदेशों में कमोबेश एक ही बात थी, युद्ध से संकट पर चिंता थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से कैसे निपटा जाए इसका सवाल था। विदेशी मुद्रा कैसे बचाई जाए इस पर गंभीर चिंता थी। पीएम मोदी की इन अपीलों का भी अपना अंदाज था। अनुशासन देशभक्ति से जोड़ते हुए उन्होंने दोनों दिन अपनी अपील में यही कहा।
4: मुझे हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपके शब्द
3: एक साल तक सोने की खरीदारी से बचें, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम से कम करें, तेल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें, मेट्रो में सफर, कार पूलिंग और ईवी गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हर परिवार में खाने के तेल का इस्तेमाल कम से कम हो, रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने की सलाह दी। शादियों, छुट्टियों और विदेश यात्रा टालने को भी पीएम ने देश हित में बताया।
4: जय सरदार, जय सोमनाथ।
3: इन तमाम अपीलों का एक ही मकसद है कि इन पर देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रहा है जिससे आर्थिक असंतुलन हो रहा है, देश का घाटा बढ़ रहा है और इसका असर महंगाई के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी की एक के बाद एक दो अपीलों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या सरकार डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं जो प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए होता है। जंग के बाद से अब तक करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जिसे देखते हुए अलग अलग रिपोर्ट्स में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए लीटर बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है। तेल पर राजनीति का खेल हमेशा से होता रहा है, इस बार भी राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार अनुशासन की बात कर रही है, विपक्ष कह रहा है 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को सरकार तैयार है। लेकिन सबसे परे आज इस शो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था पर वाकई खतरा है, अगर है तो वो कितना बड़ा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ इस वक्त हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ जराबी भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जराबी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस वक्त ये बना हुआ है कि आखिरकार हम प्रधानमंत्री की इस अपील को डीकोड कैसे करें, क्या ये अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि इस तरीके के जो मैसेजिंग की गई है या फिर जो अपील की गई है उससे हम ये माने कि आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। और अगर ये अपील करनी थी तो चुनाव से पहले भी तो की जा सकती थी, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरह का इम्बैलेंस है और उसमें हमारा योगदान आना है तो 2-4 दिन पहले भी अपील हो सकती थी। 24 घंटे के भीतर 2 बार अपील, क्या अलार्मिंग सिग्नल्स हैं?
5: देखिए नेहा जी, कोई अलार्मिंग नहीं है। प्रधानमंत्री जी इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मॉडेस्ट चेंज इन स्पेंडिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं विदाउट डाइल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तीन चीजें हैं, हमें तीन चीजें समझनी पड़ेगी। दुनिया में अभी 3 जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। वेस्ट एशिया रिमेन्स वॉलेटाइल, उसके कारण जो सप्लाई चेन है दुनिया की वो डिसरप्ट हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की वजह से। दूसरा, रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट अभी भी यूरोप की इकोनॉमीज उस पर पड़ता जा रहा है। और तीसरा, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है

0: जिससे कमोडिटी प्राइसेस और कमोडिटी ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीशेप कर रही है. इन तीनों से क्या है कि ऑयल का जो प्राइसेस है वो अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई. आपने अपने शो में ही दिखाया $126 प्रति बैरल तक गई, तो ये 130 भी जा सकती है. दूसरा, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिसमें भारत भी आता है, उनकी करेंसीज अब भयंकर प्रेशर में है. और तीसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसके इकोनॉमिक आउटकम्स बाहर निकलना शुरू हो गए. तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम प्रतिवर्ष FY26 में हमने 12 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल का इंपोर्ट किया. अगर हम इंटेलिजेंटली स्मार्टली इसकी खपत को थोड़ा कम कर सकें, ईवी के प्रयोग से, पूली कार पूलिंग से, मेट्रो के प्रयोग से, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से, अगर 15-20% भी खपत कम हो जाए तो
1: ठीक है
0: हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक
1: ठीक
0: प्रभाव
1: है।
0: नहीं पड़ेगा.
1: आपने जितने भी पॉइंट्स कहे ना उसका जवाब मैं नीलेश शाह जी से लेना चाहूंगी। नीलेश जी, जो गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं कि इस वक्त वीकनिंग रुपी है, लगातार जो इम्पोर्ट कॉस्ट है गोल्ड की वो बढ़ रही है, उस तरीके के जो कैपिटल रिजर्व्स हैं उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए देशवासियों से अपील की गई और इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये बहुत मामूली से बदलाव है, क्या वाकई यही वजह है? और हम ये मान लें कि आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑयल रिजर्व भी ठीक है, लेकिन अचानक से तो तेल कंपनियों को घाटा नहीं हुआ है? तेल कंपनियों को घाटा तो गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं उस समय से हो रहा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो अब इस अपील की जरूरत क्यों है निलेश जी?
2: एक, जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमिक कुंडली में राहु काल चालू होता है. इससे महंगाई बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है जिसकी वजह से रुपये के ऊपर प्रेशर बनता है, कॉर्पोरेट इंडिया के प्रॉफिट में कटौती होती है जिससे इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट होता है. तो कुल मिला के बढ़ती हुई ईंधन की कीमतें भारत की इकोनॉमिक कुंडली का राहु काल है. अब आप इसे गवर्नमेंट फाइनेंस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अगर ये युद्ध कुछ दिनों का होता तो वो स्ट्रैटेजी सही होती. आप इसे कॉर्पोरेट इंडिया से शेयर कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया को पास कर सकते हैं. शायद सरकार को पहले लगा होगा कि ये युद्ध छोटे समय के लिए है तो उन्होंने फिस्कल बैलेंस में एब्जॉर्ब कर लिया. अब लगता है ये लंबा चलने वाला है तो वो कंज्यूमर को पास करेंगे. अपील तो इफिशिएंसी के लिए है, प्रोडक्टिविटी के लिए है. आज तकरीबन वर्ल्ड में 10 मिलियन बैरल या 10% ऑयल की सप्लाई कम हुई है, उसकी वजह से दाम बढ़े हैं. हमारा चैलेंज सिर्फ प्राइस नहीं है, अवेलेबिलिटी भी है. तो एक अपील की गई है नागरिकों से कि आप अपने कंजम्पशन को फिजूल खर्ची में
1: ठीक
2: रोक
1: है,
2: दीजिए.
1: सिद्धार्थ भी हमारे
2: जितना
1: साथ जुड़े हैं।
2: बेहतर कर
1: सिद्धार्थ,
2: सकते हैं
1: कोई
2: बेहतर
1: ऐसा
2: है.
1: काउंटर सवाल जो आप यहाँ नीलेश जी और साथी गौरव वल्लभ से पूछना चाहें, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर?
3: नेहा, दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी. अभी परिस्थिति क्या है और

0: तो इफिशिएंसी के लिए है, प्रोडक्टिविटी के लिए है। आज तकरीबन वर्ल्ड में 10 मिलियन बैरल या 10% ऑयल की सप्लाई कम हुई है, उसकी वजह से दाम बढ़े हैं। हमारा चैलेंज सिर्फ प्राइस नहीं है, अवेलेबिलिटी भी है। तो एक अपील की गई है नागरिकों से कि आप अपने कंजम्पशन को फिजूल खर्ची में
1: ठीक
0: रोक
1: है,
0: दीजिए,
1: सिद्धार्थ भी हमारे
0: जितना
1: साथ जुड़े हैं।
0: बेहतर कर सकते
1: सिद्धार्थ,
0: हैं
1: कोई
0: बेहतर
1: ऐसा
0: है।
1: काउंटर सवाल जो आप यहाँ नीलेश जी और साथी गौरव वल्लभ से पूछना चाहें, उनके जितने भी पॉइंट्स थे उन पर?
2: नेहा, दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। अभी परिस्थिति क्या है और जो आपने एक प्रश्न से ये चर्चा शुरू की, सबसे पहली बात कि जो सीज फायर चल रहा है वो सीज फायर है, परंतु तेल की सप्लाई स्थिति पहली है। दूसरी ये है कि जिस प्रकार से हमने तेल खरीदा पिछले 2 महीने में, वो आनन फानन में जिस दाम पे मिला, जहां से मिला हमने खरीदा, रशिया से भी हमने खरीदा। हालांकि 16 मई की एक डेडलाइन आ रही है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अब रशिया से हमारे तेल की खरीद को लेके क्या रुख अपनाता है। ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी, शायद कहीं ना कहीं पे इस स्थिति का भी हमें आकलन करना बहुत आवश्यक है। और एक छोटी सी और बात हमें इस स्थिति में जोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तेल के संकट को लेके ही नहीं कहा, उन्होंने कई और बड़ी बातें जोड़ी हैं, जहां पे कहीं ना कहीं एक सवाल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्या स्थिति है, सोने को लेके, वर्क फ्रॉम होम को लेके, शादियां, बाहर विदेशी पर्यटन और कई और सवाल जुड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो अर्थशास्त्री हमारी पैनल में है, शायद वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वाकई में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की कोई चिंता है, शायद
1: ठीक
2: ये
1: है,
2: प्रश्न का उत्तर वो देना चाहेंगे।
1: अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और अक्सर हमें अर्थशास्त्र से जुड़े तमाम जो जिज्ञासाएं होती हैं उनका ये समाधान कर देते हैं। अरुण जी, क्या आपको एक सेंस ऑफ पैनिक दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस तरह की अपील और उसमें जो कोरोना काल वाला शब्द इस्तेमाल किया गया, उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। क्या एक सॉफ्ट कैपिटल कंट्रोल यहां पर प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना था, क्या उसका टारगेट ईयर अब शिफ्ट हो सकता है?
3: धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ उसकी वजह से गैस और तेल वहां से नहीं आ पा रहा है, और 20% तेल और गैस दुनिया का वहां से आता था। और भारत एक बहुत लार्ज इम्पोर्टर है, हमारा 85% क्रूड वहां से आता है, 60% गैस आती है। तो यानी कि हमें जो क्रूड मिलना चाहिए, जो गैस मिलनी चाहिए, वहां से बहुत कम आई है। और सिद्धार्थ ने सही कहा कि जहां 10 शिप पहले रोज निकलते थे, तो अभी 75 दिन में 750 निकलने चाहिए थे, मुश्किल से 10-12 आए हैं। और इसीलिए मार्च में जो हमारा इंपोर्ट था क्रूड का, वो 40% घट गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये डेटा अभी पिछले हफ्ते ही आया। तो यानी कि हमारे यहाँ क्रूड की भी शॉर्टेज है, गैस की भी शॉर्टेज है। अब ये जो एनर्जी होती है, इससे आपका उत्पादन होता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो उत्पादन में कमी आएगी, और इससे आपका ट्रांसपोर्ट भी चलता है, इससे आपका खाने पीने की खपत भी चलती है। अब खाने पीने के लिए गैस की कमी होगी तो वर्कर जो है शहर से गांव में वापस जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो यानी कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पे इसका असर है। तो इसलिए आपका जो उत्पादन तो कम होगा ही होगा। आप जहां पे भी कोशिश करेंगे, आप चीन, अमेरिका से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, 42 देशों से लेंगे, पर दुनिया की जो कमी है 10%, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, वो तो कमी है ही, और उसका बड़ा हिस्सा हमें जो चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें तुरंत ही, जैसे ये सारी जो समस्या आई, तो बाकी जैसे जैसे युद्ध लंबे खींचे थे, यहाँ पे भी लंबे खींचने की आशंका थी। तो इसलिए हमको तुरंत अपना ऑयल कंजर्व करना चाहिए था, लेकिन हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं वो 20 से 30% एक्सपोर्ट कर रही थी। यानी हमारा क्रूड का रिजर्व जो 70 दिन का कहा जाता है, वो 20 से 30% तो बाहर ही जा रहा था। उसको रोकना चाहिए था, हमको LRS को रोकना चाहिए था, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो कम हो जाए। और फॉरेन एक्सचेंज का आउट की समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है और एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, क्योंकि 16% हमारा एक्सपोर्ट तो खाड़ी के देशों में जाता है, वहां ना जहाज जा रहे हैं ना हवाई जहाज जा रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट रुक गया। बाकी देशों से भी जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो भी कम हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम तो हमारी इसलिए आई क्योंकि ट्रेड में हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ गया, और दूसरी तरफ हमारा जो कैपिटल फ्लो था वो कम हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, तो इसलिए आपकी जब फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत तो आपकी बढ़ेगी। तो LRS क्यों अलाउ किया गया है? तो 75 दिन लेट प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, जो उन्होंने अनाउंस किया वो जरूरी है।
1: 75 दिन लेट,
3: 75 दिन लेट है, और इसलिए आप देखिए तो हमारा जो क्रूड का रिजर्व

0: है वो काफी कम हो गया है। जो हमारे पास जो ऑयल के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के थे रिजर्व, वो बहुत कम हो गए। इसीलिए पैनिक इस समय हो रहा है कि तुरंत
1: ठीक
0: हमको
1: है,
0: करना पड़ेगा, क्योंकि ये
1: चलिए
0: तो
1: कम से
0: जैसे
1: कम दो
0: आपका
1: बातें आपने क्लियर कर दी। एक तो पैनिक बटन सेट हो गया है, दूसरा ये कि 75 दिन लेट इस तरह की अपील की गई है। गौरव वल्लभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या वाकई ये अपील थोड़ी सी लेट हुई है? क्योंकि इसको इस सेंस में अगर समझें कि अगर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट हमारा बढ़ा है और वाकई हमें कंजम्पशन कम करने की जरूरत है, इसी को लेकर तमाम अपील की गई है कि वर्क फ्रॉम होम करें, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, तो अगर इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा तो क्या आने वाले वक्त में जो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है वो हम ठीक करने की कोशिश में लग गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
2: देखिए नेहा जी, एक एक सवाल का उत्तर देता हूँ कि लेट क्यों। ये लेट नहीं है नेहा जी, पहले जो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मैंने तीन बताए, वेस्ट एशिया के साथ रशिया यूक्रेन और यूएस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता था और दुनिया भर के लोगों को लगता था कि ये 1 महीना 2 महीने के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर अब पैनिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे, ये डिसरप्शन कितने

0: के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: देखिए नेहा जी, एक एक सवाल का उत्तर देता हूं कि लेट क्यों, ये लेट नहीं है नेहा जी। पहले जो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मैंने तीन बताए, वेस्ट एशिया के साथ रशिया यूक्रेन और यूएस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता था और दुनिया भर के लोगों को लगता था कि ये 1 महीना 2 महीने के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर अब पैनिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे, ये डिसरप्शन कितने दिन चलेगा, नोबडी नोज। तो हमने एक प्रधानमंत्री जी ने एक स्मार्टली ये बोला है कि आप स्मार्ट कंजम्पशन करो। हम ये नहीं कह रहे कि कंजम्पशन 10 से 15% हम हमारा कंजम्पशन को कंट्रोल कर लें, वो भले ही फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हो, पेट्रोल डीजल के रूप में हो। हमारा दूसरा बड़ा इंपोर्ट आफ्टर क्रूड ऑयल आता है गोल्ड का, नेहा जी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ FY 26 में। तो प्रधानमंत्री जी ये तो कह ही नहीं रहे कि भाई गोल्ड मत खरीदो, ही वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मॉडेस्ट चेंज करो इस अपनी
0: उन्होंने
1: स्पेंडिंग
0: कहा
1: में।
0: कि गोल्ड की खपत कम करिए, शादी ब्याह शादी
1: करेक्ट
0: में भी
1: करेक्ट
0: कम
1: करेक्ट।
0: खरीदिए,
1: और
0: तब
1: दूसरा
0: ये
1: नेहा
0: नेगेटिव
1: जी,
0: सेंस में नहीं जाएगा, गौरव जी आपको
1: नेगेटिव
0: लग
1: सेंस
0: रहा
1: नहीं नेहा जी, जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ।
0: है।
1: एक मिडिल क्लास शादी होती है, उसमें लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इम्पोर्ट सेंसिटिव स्पेंडिंग होती है। भले ही वो बाहर घूमने जाना हो, भले ही वो डेकोरेशन के रूप में हो, भले ही वो सोने के रूप में हो। अब इस 15 से 20 लाख की इम्पोर्ट सेंसिटिव
0: ठीक है,
1: स्पेंडिंग जो एक मिडिल क्लास शादी में होती है, उसको अगर 10 से 15% भी कंट्रोल कर लिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो मुझे लगता है जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो प्रेशर पड़ना जो शुरू हुआ है,
0: ठीक है। मैं
1: उसको हम
0: चाहूंगी
1: कंट्रोल कर
0: पीसीआर वो
1: सकते हैं।
0: आंकड़े चलाए जिसमें गोल्ड के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, वो दरअसल उस आंकड़ों पर मैं जाना चाहूंगी। और गौरव जी से उसी से जुड़ा सवाल भी पूछेंगे कि सोने का सालाना कारोबार तकरीबन गौरव जी 3 लाख करोड़ का होता है, और हर शादी में औसतन ज्वेलरी 50 से 100 ग्राम किसी एक परिवार द्वारा बनाई जाती है, तो कुल डिमांड करीब 60 से 70% की बिक्री होती है शादी के सीजन में, और हर साल शादियां लगभग होती हैं 40 से 50 लाख। तो ऐसे में जो 30 से 40% बिक्री बढ़ी है गोल्ड की, उस पर नहीं लगता है कि आपको एक डेंट लगेगा? और हमने तो वो आंकड़ा देखा ही था जिसमें कहा गया था कि इंडियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व है, अब आप ये कह रहे हैं कि शादी पर भी खर्च ना करो, तो
1: नहीं नहीं
0: फिर
1: नेहा जी, मैंने ये नहीं कहा खर्च
0: हाँ
1: नहीं करो,
0: कम
1: ना
0: खर्च करो।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा। और दूसरी बात कि आपने शादी का तो एक एक कंपोनेंट है गोल्ड का, टोटल गोल्ड इंपोर्ट लगभग 6.5 लाख करोड़ का हुआ
0: जी
1: FY 26 में,
0: ठीक है,
1: जो गोल्ड बार के रूप में भी हो सकता
2: बट
1: है, जो
2: एक्सपोर्ट भी
1: अन्य
2: होता है
1: फॉर्म में भी
2: वैल्यू
1: हो
2: ऐड
1: सकता
2: करने के
1: है।
2: बाद।
0: एग्जैक्टली
1: तो नेहा जी, स्पेंडिंग ये नहीं कहा कि सोना ना दो ना लो, कह रहे इंटेलिजेंटली स्मार्ट मूव करो। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये तो अच्छी बात भी है ना। 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम वाला सोना की जगह अगर थोड़े दिन बाद कम हो जाए, तो ज्यादा सोना दिया जा
0: आप
1: सकता है।
0: इंडियन माइंडसेट को नहीं बदल सकते, सोना एक अहम
1: नहीं
0: चीज
1: हम
0: होता
1: नहीं,
0: है शादियों
1: अरे
0: की।
1: हाँ
0: खैर नीलेश जी का मैं
1: नेहा
0: रुख
1: जी,
0: करना
1: बदलना भी
0: चाहूंगी।
1: नहीं है।
0: हाँ
1: वी एक एक लाइन बोलूं,
0: ठीक है,
1: हम किसी भी तरह से ये नहीं कह रहे कि इसको रोक दो, इसको रोक दो, इसको रोक दो। हम कह रहे हैं कि टुगेदर अगर देशभक्ति का अर्थशास्त्र हम मिलकर, जैसे हमने कोरोना को हराया,
0: ठीक है,
1: हमने मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, हमने मिलकर GST इंप्लीमेंट करी, तो हम मिलकर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी देश की अर्थव्यवस्था को बाहर बिल्कुल इजीली लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आज भी दुनिया में भारत सबसे तेजी
0: ठीक
1: से
0: है
1: बढ़ती हुई
0: गौरव जी, मैं
1: अर्थव्यवस्था है।
0: लौटूंगी आपके पास। नीलेश जी से मैं गिरते रुपये के बारे में सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार रुपया वीकन हो रहा है नीलेश जी, और ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना देखा गया था, अब रुपया गिरने पर ये सफर 2029-2030 तक इसका टारगेट पूरा हो सकता है। और ये एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं कोट कर रही हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने की जो अपील की जा रही है वो सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या हम ये माने कि अब 2029-30 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे?
3: तो मेरे हिसाब से रुपये की वीकनेस की वजह से भारत ऑलरेडी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एंड अब यहाँ से वापस 5 ट्रिलियन पे पहुँचने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा।

0: और आज की तारीख में जो अनुमान है लोगों का, वो 2031 के साल में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था बन के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा वैसा लगता है। बट नेहा जी, ये सब आंकड़े हैं, काम करना पड़ेगा तब जाके ग्रोथ आएगी। अब जैसे आप मार्च के महीने को देख लीजिए, हम तकरीबन पिछले मार्च में 23 मिलियन टन ऑयल आयात किए, इस बार 18 मिलियन टन हुआ, एक्सपोर्ट्स में 1.5 मिलियन टन कम कर दिया, तो 2.5 मिलियन टन तेल हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कम हुआ, विच इज 10% ऑफ आर लास्ट मार्च डिमांड। अब 10% दुनिया का सप्लाई कम हुआ है तो हमारा भी सप्लाई कम हुआ। अब हमारे हाथ में है कि हम इस सप्लाई को कैसे कॉम्पनसेट करें। स्मार्ट यूज करेंगे तो शायद 90% ऑयल में भी 100% काम निकाल पाएंगे, और फिजूल खर्ची करेंगे तो ये 10% ऑयल की डेफिसिट हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी। तो 5 ट्रिलियन कब होता है उसके ऊपर ध्यान रखने की जगह पे 5 ट्रिलियन कितनी जल्दी कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए।
1: विदेशी मुद्रा भंडार की फिगर हम दिखा रहे हैं जो 27 फरवरी से लेकर अब तक की फिगर है। मेरे साथ अरुण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी का अब ईएमआई बढ़ने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एचएसबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2026-27 में अल नीनो और ऊर्जा संकट के असर से आरबीआई के रेपो रेट में 2 बार बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे में बोझ आम आदमी पर हर प्रकार से, क्योंकि उसको तो लाइफस्टाइल तक बदलने की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप एडिबल ऑयल भी कम करिए, सोना कम खरीदिए, विदेशी यात्रा मत करिए, डोमेस्टिक पर आ जाइए। तो ये लाइफस्टाइल शिफ्ट भी तो है एक तरीके से, ऊपर से ईएमआई की दोहरी मार है, तो हर तरीके से उसका जो जीवन है वो अर्थव्यवस्था से जुड़कर अगर देखें तो जीवन भी बदल रहा है।
0: जी हाँ नेहा जी, ये हमको डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा जो गरीब आदमी है, 90% लोग हैं वो बहुत कम कमाते हैं, 10-11-12 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं। वो ना तो सोना की खपत करते हैं, ना बाकी जो और लग्जरी प्रोडक्ट्स की, ना विदेश जाते हैं। जो इस सोने की बात है और जो लग्जरी

0: ये कहा जा रहा है कि आप एडिबल ऑयल भी कम करिए, सोना कम खरीदिए, विदेशी यात्रा मत करिए, डोमेस्टिक पर आ जाइए। तो ये लाइफस्टाइल शिफ्ट भी तो है एक तरीके से, ऊपर से ईएमआई की दोहरी मार है, तो हर तरीके से उसका जो जीवन है वो अर्थव्यवस्था से जुड़कर अगर देखें तो जीवन भी बदल रहा है।
1: जी हाँ नेहा जी, ये हमको डिसएग्रीगेट करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा जो गरीब आदमी है, 90% लोग हैं वो बहुत कम कमाते हैं, 10-11-12 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं। वो ना तो सोना की खपत करते हैं, ना बाकी जो और लग्जरी प्रोडक्ट्स की, ना विदेश जाते हैं। जो इस सोने की बात है और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो 5-स्टार होटल के विजिट हैं वगैरह, ये तो मुश्किल से हमारे देश के 4-5% लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो किसके ऊपर असर पड़ रहा है? जैसे कि जो गरीब आदमी है, उसकी भी किल्लत है। फर्टिलाइजर में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जैसे गैस में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो फूड के प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है। वो एल्यूमिनियम वहां से आता था, एल्यूमिनियम नहीं आ रहा, तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे असर पड़
0: ठीक
1: रहा है।
0: है।
1: तो आप ये देखिए कि जो गरीब आदमी के जो रोजगार पे असर है और उसकी आमदनी पे असर है, उसके प्राइसेस पे असर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो नरेश जी ने सही कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो समस्या है, उसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आ रहा है, और इन्फ्लेशन इसलिए भी आ रहा है, शिपिंग रेट्स बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस रेट्स बढ़ गए हैं, और
0: ठीक है
1: शिपिंग का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो वो भी बढ़ गया है। तो
0: ठीक
1: अगर आप
0: है।
1: देखें तो गरीब आदमी पे बड़ी
0: शायद
1: जबरदस्त
0: हम
1: असर पड़
0: इस
1: रही है।
0: अपील को अगर डिकोड करें सिद्धार्थ, और अगर कम और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को आप समझा सकें कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट कैसे होने वाला है।
2: देखिए, इम्पैक्ट बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट लाइन प्रकार से देखें कि मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखे हैं, कहीं ऑर्डर नहीं किया गया है, लोगों की चेतना को एक प्रकार से जगाने का प्रयास किया गया है, इसका एक सीधा सीधा असर होगा कि अगर कंजम्पशन कम होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है, ग्रोथ रेट है, वो कम होगी। इसमें कोई
0: तो
2: दो
0: राय
2: बातें नहीं है। सवाल एक बड़ा जो उठ के आता है, तकनीकी है, परंतु अगर हम इसको सरलता से समझने का प्रयास करें कि अगर हम एक तरफ से कंजम्पशन को मॉडरेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तेल और गोल्ड दो ही आइटम्स की हम बात करें, बाहर जो विदेश में भारतीय पर्यटन करते हैं और जो कुछ $16-17 बिलियन खर्च होता है, वो इतना बड़ा कोई विषय नहीं है। इन दोनों को कम करते हुए एक बड़ा विषय हमें शायद कहीं ना कहीं चर्चा में लाना पड़ेगा कि भारत में विदेशी मुद्रा लाने के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इंडिया में पोर्टफोलियो फ्लोज कम हुए हैं और लगातार एक ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगर वो होगा तो जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है,
0: ठीक है
2: हमारी एक्सचेंज रेट है और जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं,
0: ठीक
2: इन
0: है
2: सब पे अच्छा असर आएगा।
0: ठीक है। यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स सभी खास मेहमानों ने सुझाए। तो जाहिर तौर पर दो बार पीएम की अपील और किस तरीके से इसका प्रभाव कंजम्पशन पर पड़ेगा, ये हमने इस खास पेशकश में समझा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, टिकते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Sokudo.
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है
2: आप कैसे कर लेते हो
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
6: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
7: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
7: सही
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
10: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप। यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba.

0: morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
4: just
7: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
9: यार
10: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है.
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की.
13: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
14: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
15: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
13: 4 मई काउंटिंग.
14: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं.
16: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
13: 8 मई सीएम का ऐलान.
17: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
13: 9 मई शपथ.
18: शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते थी जे.
13: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट. सर्च में नंबर 1. गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1. लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.
19: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन

जनों, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
0: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
5: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
6: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
5: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
7: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
0: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर। इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे। मोदी जी, पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
10: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं? ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।

आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर, पेपर लीक का सच दिखाने के बाद नीट 2026 की परीक्षा रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया ऐलान, राजस्थान में पहुंचे पेपर का आज तक ने किया था खुलासा, 45 हिरासत में। सीबीआई के नीट पेपर लीक मामले की जांच, जल्द घोषित होगी परीक्षा की नई तारीख, परीक्षार्थियों से नहीं ली जाएगी अतिरिक्त फीस, दोबारा नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, एनटीए वापस करेगी फीस। दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी की अपील, देशवासियों से फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, गोल्ड खरीदने से बचें। पवार ने कहा बुलाएं सर्वदलीय बैठक, खुद मौजूद रहें प्रधानमंत्री। असम में हुआ हिमंता सरकार के दूसरी पारी का आरंभ, चार मंत्रियों के साथ हिमंता ने गुवाहाटी में ली शपथ, पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री रहे मौजूद, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर दर्ज हुआ केस, पीएम मोदी के बारे में कही गई आपत्तिजनक भाषा का हो रहा है जबरदस्त विरोध।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और जैसे आपसे कहा था दोपहर 2 बजते ही न्यूज रूम लाइव में हम हाजिर होंगे। और न्यूज रूम लाइव में शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। एनटीए की तरफ से आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द हो गई है। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है और नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी के मामले सामने आए थे और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के चलते नीट 2026 पे रद्द कर दिया गया है परीक्षा को, और 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और अब इसको रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया था। एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी। और एनटीए ने बताया है कि 8 मई को 2026 को इस मामले से जुड़ी कई जो जांच है उसको केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा छात्रों के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं परीक्षा के लिए। हालांकि एनटीए की तरफ से कहा गया है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन आप इस बात से समझिए कि 3 मई 2026 को ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी और उसके बाद आप देखिए पेपर लीक का आरोप यहां पर लगता है। अब इस मामले में ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई को अब सौंप दी गई है, फिर से परीक्षा होगी, लेकिन छात्रों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। एनटीए जो फीस है वो छात्रों को वापस करेगी, लेकिन इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े करने शुरू हो गए हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कई सवाल यहां पर खड़े किए हैं और ये बताया कि पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास देखा जाए, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो एक के बाद एक बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जो कि पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी है। और यहां पर अधर में कौन लटका हुआ है? छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और इस दौरान यह भी आपको बता दें, राजस्थान एसओजी को बहुत अहम सुराग मिले हैं इस मामले में, क्योंकि जांच अब इस मामले की शुरू हो चुकी है और राजस्थान एसओजी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अब इनको अहम सुराग मिले हैं क्योंकि जांच तेज कर दी है। छात्रों से जुड़ा मामला है, छात्रों के भविष्य का ये मामला है, तो ऐसे में गंभीरता बढ़ती जा रही है। देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, क्या खबर आ रही है? कौन से अहम सुराग मिले हैं जिससे इस मामले की गहराई तक जा सकती है टीमें?
1: देखिए, एसओजी ने पास एक अहम सुराग मिले थे और अहम सुराग जो मिले थे ये हम आपको बता रहे हैं। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर का रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है। आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था। नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आज तक के दर्शकों को हम अहम जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरी जानकारी एनटीए को दे दी गई है और अभी अभी हमसे ये जानकारी शेयर किया गया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि सीबीआई को ये जांच इसलिए दी गई है कि पूरे देश में पिछले 15 दिनों से नीट का पेपर घूम रहा था। ये इस पेपर तो एक छलावा है, वाकई में पेपर ही आउट था और ये पेपर ही घूम रहा था। किन किन राज्यों का नाम मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बताइए।
1: नासिक से सबसे पहले ये पेपर निकला है, नासिक से ये डॉक्टर के पास।
0: चलिए देखिए, ये बहुत बड़ी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रहे थे, नीट पेपर लीक पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर नासिक से हरियाणा आया, ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पेपर नासिक से हरियाणा आया है, जो रूट है वो आपको बताया जाए, और ये भी बताया गया कि गुड़गांव का एक डॉक्टर था, गुड़गांव के एक डॉक्टर से जानकारी ली गई थी। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, और क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले में, जरा बताइए।
1: देखिए हमें जानकारी जो मिल रही है अभी तक एनटीए के जो डीजी हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं या एसओजी के हैं सब एक साथ मिलकर सुबह से इस ज्वाइंट ऑपरेशन में लग गए हैं और हमें बताया गया है कि ये कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक का मामला है। प्रिंटिंग प्रेस नासिक में था कहा जा रहा है और नासिक के व्यक्ति ने लालचवश या फिर ये गिरोह ने जो है उससे पहले संपर्क कर रखा था। नासिक से वो एक चेन के सिस्टम बटना था, उस चेन सिस्टम में कुछ ब्रेक नहीं होना था, वो चेन सिस्टम से ये गया है गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और गुड़गांव के डॉक्टर के पास से जमा रामगढ़ आया है एक खटीक के पास, वो अपने बेटे के लिए खरीद के लाया था क्योंकि वो गुड़गांव के डॉक्टर के संपर्क में था। वो उसने लालच बस आगे जयपुर बेचा है, जयपुर वाले ने आगे लालच बस सीकर बेचा है और सीकर वाले ने पैसे कमाने के लिए जो हम आपको बता रहे थे सीकर वाले ने 28 अप्रैल से इसको बेचना शुरू किया है और पूरे देश में सबसे पहले सीकर वाले ने जम्मू कश्मीर को बेचा है, जम्मू कश्मीर में गया है, उसके बाद केरल गया है, बिहार गया है और

0: के बाद इन्होंने बता दिया है कि हम जम्मू आरामगढ़ के खटीक से लिए थे, खटीक ने बताया कि हरियाणा के डॉक्टर से लिए थे, गुड़गांव के उसने बताया नासिक से लिए हैं। कल रात को ही हमारी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी और सभी की पहचान कर ली गई है। एक तरह से ये पूरा खुलासा हो चुका है। अब सीबीआई ये एक एक करके नामों का खुलासा करेगी। इनका कहना है कि पूरे नाम हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, मगर जिस तरह से ये पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ था, नीट पेपर लीक की तैयारी काफी पहले से कर ली गई थी, जो एनटीए है वो तो पेपर छापने के बाद किस तरह से इसको बचाएं इस चक्कर में लगा हुआ था, और जो जो पेपर माफिया हैं वो पूरे इस नेटवर्क को बना लिए थे, किस तरह से नासिक से लेकर गए गुड़गांव, गुड़गांव के डॉक्टर ने बेचा जम्मू आरामगढ़ के खटीक को, जम्मू आरामगढ़ के
1: ये आप बड़ी खबर बता रहे कि नासिक में इस पेपर की प्रिंटिंग हुई थी और वहीं से शुरुआत हुई थी पेपर लीक होने की। आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे लिए चलते हैं कोटा। कोटा से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कोटा से इस वक्त हमारे सहयोगी चेतन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चेतन, आपके पास क्या खबर आ रही है? ये अब खबर पुष्ट हो चुकी है कि नासिक में जहां प्रिंटिंग हुई थी इस पेपर की, वहां से लीक होता है और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में ये जाता है।
2: जी देखिए, कोटा कोचिंग नगरी है और पूरे देश से यहाँ पर बच्चे आकर तैयारी करते हैं, साल भर परिवार से दूर रहते हैं और परिवार से समय पर बात नहीं कर पाते, सिर्फ पढ़ाई में वो लगे रहते हैं रात दिन कि कैसे भी उनका सिलेक्शन हो, और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया और अब रद्द कर दिया गया। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इन पर क्या बीतती है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। जी, निर्णय ले लिया कि पेपर रद्द हो गया,
3: ये मतलब मेंटली चैलेंजिंग है एक तरीके से, जैसे फिर से पेपर देना। अभी एक बार हो गया था, फिर मतलब लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, फिर अब पेपर कैंसिल हो गया, फिर से तैयारी करना पड़ेगा सारी चीजों को, एक दो महीने में, एक दो महीने के अंदर अंदर पढ़ना पड़ेगा फिर से, मतलब वही है। और जिनका मतलब दो तीन ड्रॉप हो जाता है, और घर वाले भी मतलब हो जाता है कि अब की नहीं पढ़ा पाएंगे, उनका क्या होगा फिर, मतलब हॉस्टल का फीस, ये कोचिंग का फीस एक्स्ट्रा, ये सब मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत लोग। और
1: बिल्कुल ठीक है, और समर्थ भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, असीम बस्सी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समर्थ का रुख कर लेते, समर्थ बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो जीतोड़ मेहनत करते हैं, जीतोड़ मेहनत करने के बाद नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि रद्द हो गया। आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर?
4: डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी नीट होती है, और नीट को क्रैक करने के लिए इस तरह की एनसीईआरटी की किताबों के एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को याद करना पड़ता है, और जब नीट जैसी परीक्षा रद्द होती है तो आप अंदाजा लगाइए उन बच्चों पर क्या बीतती है जो सालों साल मेहनत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वही बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं इन बच्चों से बात करूंगा और समझूंगा सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्या हैं वो बताएं। आप लोग बताएं मुझे क्या समस्या है। देखिए, नीट का एग्जाम जो है वो रद्द हो गया है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? नीट का एग्जाम जो है वो रद्द हुआ है, आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? नीट का एग्जाम रद्द हो गया है, आप लोग साल भर तैयारी करते, कितना टफ है?
5: इन सब चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, हम लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, हम लोग बहुत अपना देते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सब लोग बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। इट्स जस्ट नॉट द स्टूडेंट हु इज ट्राइंग हार्ड, एंड इतनी मेहनत से, एंड देन देर इज काउंट डाउन गोइंग ऑन ईच ईयर कि नीट आने वाला है, नीट आने वाला है, एंड थर्ड मे को जब नीट होता है, वो जो नीट हुआ वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने अपने सीनियर्स को भी देखा, हम लोग भी जब गए तो हम लोग को एक बहुत रिलैक्स फील हुआ। नीट आने के बाद हम लोग स्कोर हुए, हम लोग ने काउंट करा, टीचर्स ने सारा कलेक्टिव डेटा बनाया, सब ने वो दिया, इतना हार्डवर्क के बाद इतना पेशेंस कि चलो फाइनली वी हैव डन समथिंग गुड। अब ये नीट कैंसिलेशन, नीट कैंसिल हो गया, ये इट्स सच अ शॉकिंग न्यूज टू टेक बिकॉज इतना मेहनत करने के
4: बाद। आपने तमाम जो ये नोट्स बनाए हैं, ये देखिए इनकी आप किताबें बच्चों की देखें अगर, तो ये बकायदा डायग्राम के साथ पूरे नोट्स हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप इस बात को केवल समझे कि जब पहले से ही पता हो सामने वाले को पेपर में क्या है, कुछ चुनिंदा लोगों को, तो इन बच्चों को क्या कसूर जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। और भी देखिए तमाम बच्चे हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं उधर, उन लोगों से ही बात करें, तमाम लोगों से आप लोग बताएं जरा, जो नीट रद्द हुआ आप लोग के लिए कितना बड़ा सेटबैक होता है?
1: बिल्कुल, देखिए हम छात्रों को समझ सकते हैं कि छात्र कितने परेशान होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद जब परीक्षा रद्द होती है पेपर लीक की वजह से, तो सवाल तो पूछने चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में एक रेगुलर केस दर्ज किया जाएगा और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की तरफ से शुरू की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पेपर वर्क करके टीम का गठन करेगी सीबीआई, जो जल्द इस मामले की तफ्तीश शुरू करेगी।

0: रेगुलर केस रजिस्टर्ड करते ही एसओजी से केस फाइल डॉक्यूमेंट्स का हैंडओवर लेगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीएसए भी सीबीआई तमाम जानकारी और दस्तावेज कलेक्ट करके जांच में शामिल करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केस दर्ज होने से एसओजी से फाइल्स डॉक्यूमेंट्स सब ले लिए जाएंगे और उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जारी रखेगी। अब देखिए यहां पर आप ऐसे समझिए खुलासा कैसे हुआ। 15 दिन पहले एक गैस पेपर सामने आता है और जब वो गैस पेपर सामने आता है तो उसमें देखे जाते हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तारीख को जो आयोजित हुई थी नीट परीक्षा उससे मैच खाते हैं। गैस पेपर में 410 सवाल थे, 410 सवाल गैस पेपर में, और उसमें से आप देखिए कि 120 जो सवाल थे वो हूबहू सेम थे। 410 में से 120 सवाल हूबहू बिल्कुल एक जैसे थे। 7 मई को एनटीए को शिकायत मिलती है, एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 7 मई को शिकायत मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे एक पेपर है जिसमें से इतने सवाल हूबहू बिल्कुल सेम है, किससे, जो 3 तारीख को एग्जाम हुए थे नीट यूजी के उससे बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद और भी कई जांच 8 तारीख को जाती हैं, इस मामले की जांच होती है। अब यहां पर आप समझिए 3 मई को क्या हुआ था। 3 मई 2026 देश भर में परीक्षा आयोजित होती है, लाखों छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। 12 मई को क्या होता है, 12 मई को यानी आज ये परीक्षा रद्द हुई है, बहुत से छात्रों को झटका लगा है। सवाल पूछ रहे होंगे सरकार से कि इतनी मेहनत करके परीक्षा देते हैं और उसके बाद पेपर लीक की खबर आती है, परीक्षा रद्द हो जाती है, उनकी मेहनत का क्या होगा, परीक्षा की नई तारीख कब होगी, ये छात्रों के मन में सवाल होगा। तो ये आपको बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तय करेगी कि आगे अब कब परीक्षा होगी। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लाखों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई, कब परीक्षा होगी पता नहीं, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले कुछ सालों में ये रहा है कि कितनी सारी परीक्षाएं रद्द हुई है पेपर लीक की वजह से।
1: जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पहले सुधार कर दूं, आपने कहा 120 प्रश्न तो ये पुरानी खबर थी, कल हमने इसको खबर को ठीक कर दिया था कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 यानी सभी दोनों विषयों के 135 पेपर 135 सवाल आउट थे। ये कल हमने अपडेट कर दिया था कि सभी 135 सवाल बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 आउट थे। अब ये पेपर आउट कर लिया था इन्होंने, पेपर आउट से बचने के लिए गेस पेपर का एक पीडीएफ बनाकर ये भेज रहे थे। इन्होंने जो आपस में ये बातचीत कर रहे थे तो ये अपने कोडवर्ड में सबको बता रहे थे कि कौन कौन सवाल है, मगर जांच एजेंसियों को झांसा देने के लिए ये जो है 410 सवालों का या फिर कह लीजिए कि 80 पेज का एक पीडीएफ बनाया गया था ताकि कोई शक न कर पाए, इसमें घुस अंदर ना पाए। तो ये एक नई तरह का इन्होंने एक व्यवस्था ईजाद की थी और ये पूरा नेटवर्क है। देखियो, हमारे एसओजी के सूत्रों से बात हुई कि ये पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कहीं कोई खुलासा नहीं होना था। अगर जमुआ रामगढ़ के जो खटीक है उन्हें लालच नहीं होता और सीकर वाले को लालच नहीं होता तो ये आउट ऑफ नेटवर्क जाकर पेपर बेचने की कोशिश करने लगे। इन्हें अलग अलग राज्यों में भेजना था मगर साथ साथ अपने जानकारों को 28 लाख में और सौदा करने लगे, आखिरी दिन में 5 लाख में और आखिरी में 30,000 तक सौदा करने लगे, जिसके बाद ये पीजी संचालक की सूझबूझ से खुलासा हो पाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से खून के आंसू रुलाने वाली खबर है।
0: जो आपने शरद अभी बात की, खून के आंसू रुलाती है छात्रों को जो मेहनत से परीक्षा देते हैं, जो पढ़ते हैं। अब सीधे पटना लिए चलते हैं, पटना में एक तस्वीर यहां पर दिखाएंगे जहां पर जो छात्र है वो कितने परेशान है, ये साफ स्पष्ट यहां पर दिखाई देता है। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सहयोगी शशिभूषण। शशिभूषण बताइए, छात्रों पर कितना असर है इस पेपर रद्द होने का?
2: देखिए, छात्रों पर जो गुजर रही है हिमांशु वो छात्र ही बयां कर सकते हैं और इस वक्त हम खान ग्लोबल स्टडीज में हैं, जो खान सर मशहूर हैं उनके कोचिंग सेंटर में। एक बच्ची हमारे साथ जो नीट की छात्रा है, पेपर हुआ 3 मई को, आज 12 मई को पेपर रद्द कर दिया गया। जब ये खबर सुनी मतलब कैसा लग रहा है आप?
3: पहले तो हमने नीट का पेपर देखा, नीट का पेपर बहुत मतलब हमने सुना कि बहुत अच्छा है। हम एग्जाम नहीं दी थी इस बार, पिछली बार दी थी, मैं इस बार सोची कि ड्रॉप लेती हूँ और फिर अच्छे से करूँगी। तो बहुत खुशी हुआ कि हाँ पेपर अच्छा आया, ठीक है जो सर ने पढ़ाया था बताया तो वही आया। बट फिर बाद में 2 से 4 दिन बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, और जब एक स्टूडेंट सुनता है कि पेपर लीक हो गया है या फिर हमें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हमें दुख होता है इस बात का कि हमें फिर पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। और जब हम पढ़ते हैं बैठ के इतना देर तक, उस चीज़ को समझ नहीं आता है, फिर भी उसको ट्राई करते हैं बार बार समझने का, जाके हम इतना प्रेशराइज होके देते एग्ज़ाम, फिर से एग्जाम देना पड़ता है हमें दोबारा से जाके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम एक बार तो दे देते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा से दे के आए हैं, खुश हो जाते हैं हम, फिर सुनने को मिलता है कि लीक हो गया या ऐसा कुछ हो गया है कि हमें एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दुख होता है इस चीज को लेकर।
2: इस वक्त क्या लग रहा है आपको, चूंकि अब तो एग्जाम फिर से देना होगा, आप लोगों ने 3 मई को दिया था पेपर।
4: सर इस बार जो लग रहा है ना, मतलब सर एग्जाम का जो लिमिटलेस हो सकता है लेकिन इमोशन लिमिटलेस नहीं है। सर हम देख चुके हैं इस बार मेरा फ्रेंड लोग दिया है एग्जाम, तो वो सब देखें सर, रात रात मेहनत करता है, 6 घंटा क्लास करता है, उसके बाद घर जाके प्रॉपर सेल्फ स्टडीज करता है, फिर टेस्ट देता है, टेस्ट का एनालिसिस करता है, और फिर एग्जाम जब होता है सर वो लीक हो जाता, तो बहुत डर लगता है सर। इस बार मेरा अगले बार एग्जाम है सर, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अगले बार अगर कहीं एग्जाम सर,
2: मतलब ये डर है मन में, तो लगता है इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए।
5: नेशनल लेवल पर अगर जो इस प्रकार की दिक्कत आने लग जाए तो बच्चा जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम नीट हो या जेई हो या कोई भी पीएससी हो, किस प्रकार से उम्मीद के
0: साथ। ये दर्द साफ बताता है कि छात्रों के ऊपर क्या बीतती है जो साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में खबर आती है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। इस दौरान एक बड़ी खबर बता दें और ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि नासिक में पेपर की प्रिंटिंग हुई और वही एक जगह थी जहां से पेपर लीक होने की शुरुआत हुई और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों तक ये मामला पहुंचा। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपा था। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नासिक में पेपर की प्रिंटिंग हुई थी और यहां से ही कॉपी तैयार हुई और उसके बाद हरियाणा से जयपुर आया था पेपर और फिर अलग अलग राज्यों में पहुंचा, केरला और ना जाने किन किन राज्यों में ये पेपर लीक कराया गया और एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। गुरुग्राम के डॉक्टर के पास भी मिला है शरद, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद अभी तो ये सारी जानकारी मिली है कि नासिक में पेपर प्रिंट होता है, उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य और फिर चौथे राज्य, यानी ये कितना बड़ा नेक्सस है, संगठित अपराध यहां पर ये लोग कर रहे हैं कि अगर वो शख्स जिसके अंदर लालच नहीं आता वो आउट ऑफ लीक नहीं जाता तो पता भी नहीं चलता कि कहीं पर ये नीट पेपर लीक हुआ है और ये बहुत बड़ा लूपहोल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये एनटीए के मुंह पर तमाचा एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके परीक्षा सिस्टम में सेंध हो चुका है। सुबह जब मैं ये लाइव करना शुरू किया था तभी आपसे कहा था कि ये अब तक का जो नीट परीक्षा अब तक हुई है सबसे बड़ा पेपर लीक है, सबसे बड़ा। मुझे कल एसओजी के अधिकारी यही बार बार कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा पेपर लीक है इस देश में, जहां देश के कोने कोने में पेपर भेजा गया है और संगठित नेटवर्क के जरिए भेजा गया है। अभी अभी सीबीआई के एक एसपी आ गए हैं एसओजी में और एसओजी के अधिकारियों का कहना है कि वो पता करने आए हैं कितने लोग हैं जिनको यहां से लेके जाना है हिरासत में और क्या क्या फॉर्मेलिटी है। कहा गया कि 1-2 घंटे में सीबीआई के अधिकारी यहां से आएंगे और जो लोग हिरासत में रखे गए हैं वो और सारे मुकदमे के कागजात लेकर जो केस बने हैं वो सब यहां से लेकर जाएंगे। तो अभी की ये ताजा खबर ये है कि अभी सीबीआई के एक एसपी आए हुए हैं जो पूरे मामले
0: बिल्कुल समझिए, ना जाने कितने ऐसे छात्र होंगे जो जीतोड़ मेहनत कर रहे होंगे और उसके बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn. Ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
6: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
7: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
8: नहीं,
7: और म्यूचुअल फंड से
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
10: Character, the taste of success.
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है?
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
16: Hint, bade aaram se.
15: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
18: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
10: Vimal, bolo zubaan kesri.
19: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, नासिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसी मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नासिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नासिक सिटी कोतवाली की तरफ से बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस के अनुसार नासिक से नीट पेपर हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुंचे थे और इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के एरिया से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिरासत में लिया गया है। नासिक क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। नासिक क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस की जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार एक शख्स को नासिक सिटी पुलिस के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के एरिया से हिरासत में लिया गया। और देखिए, ये सारे तारों को जोड़कर अगर देखा जाए, नासिक ही वो जगह है जहां पर पेपर की प्रिंटिंग हुई थी और फिर यहीं से हरियाणा होते हुए राजस्थान ये पेपर पहुंचा था और उसके बाद और भी कई राज्यों तक ये पेपर लीक हुआ। लेकिन शुरुआत नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से होती है और उसके बाद हरियाणा से राजस्थान और भी कई राज्यों तक ये पेपर पहुंचता है। अब मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान एसओजी इस मामले की जांच में जुट गई है, वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। सीबीआई इस मामले में जल्द ही एक रेगुलर केस दर्ज करेगी और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेगी, जांच शुरू होगी। इस दौरान सवाल उठ रहा है कि छात्रों के भविष्य को लेकर, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं, लाखों की तादाद में ऐसे छात्र हैं जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हुए नीट परीक्षा देते हैं और उसके बाद जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, तो ऐसे में उनके सामने भविष्य का संकट खड़ा होता है। नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, अब कड़ियों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद इस पूरे नेक्सस के तह तक जाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी ताकि पता चल सके कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये गिरोह कहां कहां तक फैला हुआ है, इसके तार कहां तक फैले हुए हैं और इसके पीछे कौन सा चेहरा है। इस दौरान सियासत भी हो रही है, विपक्षी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही के भी आरोप लगे, सरकार पर भी कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में जांच हो रही है, समझिए। नासिक से अभी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि ये कड़ियां जुड़ते जुड़ते देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे और उसके बाद और भी कई लोगों की गिरफ्तारी यहां हो सकती है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शरद, राजस्थान पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी, नासिक पुलिस की तरफ से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, क्या यह माना जाए कि अभी ये हिरासत और गिरफ्तारी का सिलसिला देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगा? शरद, चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी शरद से। लेकिन ये समझिए कि नासिक क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और अभी ये शुरुआत है, क्योंकि अभी जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो बहुत से लोग इसके शिकंजे में आएंगे। फिर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक से ये शुरुआत होती है, उसके बाद हरियाणा गुरुग्राम में एक डॉक्टर और उसके बाद फिर खबर आती है हरियाणा से राजस्थान। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, राजस्थान पुलिस की तरफ से जानकारी मिली, नासिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, क्या यह माना जाए कि यह हिरासत और गिरफ्तारी का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये कई राज्यों तक पहुंचेगा भी?
4: बिल्कुल, ये मैं सुबह से कह रहा हूं कि अब तक के नीट का सबसे बड़ा पेपर लीक है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लीक हुआ है। नासिक में व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और वो कल रात को इनपुट सारा हो गया था, कल रात भर एसओजी के अधिकारी यहां पर बैठे रहे हैं। नासिक के व्यक्ति ने वो कबूल कर लिया है कि उसने गुड़गांव के एक डॉक्टर को भेजा था और जयपुर में गुड़गांव के डॉक्टर ने जमवारामगढ़ में भेजा था, जमवारामगढ़ में वो खटीक नाम का व्यक्ति है जिसके बच्चे परीक्षा दे रहे थे वो लेके आया था, वो सीकर में वो जयपुर भेजा था, जयपुर से सीकर, सीकर से बिहार, बिहार से जम्मू कश्मीर, केरल और भी ये नेटवर्क आगे हो सकते हैं। अभी तक ये एसओजी को पता चल पाया है, जिस नेटवर्क का खुलासा हम आज तक पर कर रहे हैं, बाकी भी ऑल इंडिया में ये हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षा की जो प्रणाली थी उसमें ये सेंध लगा चुके थे और काफी पहले से इन्होंने तैयारी कर ली थी कि पेपर लाना है। और देखिए ये संगठित नेटवर्क है, कोई अनायासी पेपर नहीं जा रहा है। इन्होंने बड़े तरीके से इस बारे का मुलम्मा बनाया गया इस पेपर का, जिसमें इन्होंने प्रश्न पत्रों को रखा, मगर इन्हें पता था कि कौन सा प्रश्न है। पूरे 401 प्रश्नों का एक पुलिंदा है, 800 पेज का पीडीएफ कौन खोले, और इसलिए इन्हें पता था कि उसमें कौन सा सवाल है। इसे लेकर ये पूरे देश में घूम रहे थे, मगर सीकर के व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है, वो 28 लाख रुपए में पेपर बेचने लगता है और वहीं से ये खुलासा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि धन्यवाद देना चाहिए उस सीकर के पीजी संचालक का, जिसने ये अपने हिम्मत रखी और एनटीए तक पहुंचा, इसकी वजह से खुलासा हो पाया। लेकिन ये एनटीए के मुंह पर बड़ा तमाचा है कि पूरी प्रणाली में सेंध लग गई थी, या पूरे देश में पेपर बट रहा था, किसी को पता ही नहीं था
3: प्रणाली में सेंध लगी। सही कहा आपने, लेकिन इस दौरान जैसा कहा था कि विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष सवाल उठा भी रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और ये कहा कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। ये बड़ी खबर नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है और राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युवाओं के खिलाफ अपराध है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है और प्रशासनिक लापरवाही को भी इसमें एक अहम कड़ी बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि 22 लाख छात्रों की मेहनत को कुचल दिया गया। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवीश, हर जगह हर राज्य में छात्रों ने मेहनत की थी, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई है, सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और सरकार से पूछा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कैसे हुआ।
1: बिल्कुल, और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, क्लासेस चल रही हैं, उसके बीच में छोड़ करके छात्र काफी देर तक यहां रुके हैं आज तक पे बात कर रखने के लिए। अपनी ये बताइए, आप लोगों ने परीक्षा दी थी, अब एक बार फिर से दे दी, यानी आप लोग तो इस वक्त रिलैक्स मोड पे रहे होंगे आज सुबह तक तो कम से कम, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको ये सुन करके कि एग्जाम कैंसिल हो गया और अब दोबारा एग्जाम हो?
5: सर, हम लोगों का जो फ्लो था, पहले जब हमने एग्जाम दिया था, हम लोगों ने बहुत फ्लो में दिया था, मतलब हमारी जो पढ़ाई थी वो हम लोग करते थे कंटिन्यूसली। अब क्या हुआ, एकदम से वो रुक गई, हम लोग अपना सब कुछ तो हम लोगों ने जो था वो पढ़ना छोड़ दिया था और एंजॉयमेंट थोड़ा सा चालू कर दिया था, ये सोच के कि इस बार तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर काफी अच्छा गया था और हमारा था कि गवर्नमेंट कॉलेज हम लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अब एकदम से ऐसे सुनने में आया तो ये लग रहा है कि फिर से अब कैसे होगा, क्योंकि जो रीनीट होगा उसमें 2x 3x ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आएगा। अब हमें वो इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रही कि हम लोगों का वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कंफर्मेशन नहीं है।
1: ये बताइए कि इस बार का जो पेपर अभी आप लोगों ने दिया था 3 मई को, वो कैसा था? मतलब इजी लग रहा था, मॉडरेट था, टफ था? और अब जब ये एग्जाम लीक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जो एजेंसी होगी वो पहले से कहीं ज्यादा प्रिकॉशंस भी लेगी और टफ क्वेश्चंस भी रख सकती है, तो क्या आपको लग रहा है कि पूरी मेहनत जो है पिछली बार और नए सिरे से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी?
5: हाँ, नए सिरे से तो करनी ही पड़ेगी। और जो पेपर था वो सच में इजी था, जो हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, वो उससे थोड़ा टफ आता है। मतलब एक तरीके से उनने ऐसा पेपर दे दिया कि ये नीट का एग्ज़ाम ही नहीं है, मतलब इस तरीके का पेपर था, ईजी था बहुत ज़्यादा। और आपने बोला कि नए तरीके से शुरू करना, वो तो बहुत है, बट हम लोग अभी जैसे ने हम लोग पूरा पढ़ रहे थे, पूरे अभी साल पढ़ा, और अभी हम लोग के पेपर आने से पहले 1 महीने पहले से हम लोग एक दिन छोड़ छोड़ के रोज टेस्ट देते थे।
1: समर वेकेशन आपके बीच में खत्म हो गई?
6: हाँ, मतलब जैसे आज तो एकदम से झटका सा लग गया कि मतलब पेपर ही लीक हो गया और रीनीट होने वाला है, तो एकदम बिल्कुल अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तैयारी वगैरह सब छोड़ दी थी हम लोगों ने, बिल्कुल फ्री माइंड से बैठे हुए थे, अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या पता पेपर भी अच्छा ना जाए, इस वजह से तैयारी अच्छे से ना हो।
1: पेरेंट्स वगैरह से आपकी कुछ बात हुई है इस बारे में?
7: हाँ, मतलब पापा लोग भी बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि
1: कब से आप तैयारी कर रहे थे?
7: 2 साल हो गए हमको।
1: 2 साल?
7: हाँ,
1: आप देख सकते हैं ये दो तीन साल से लगातार जो छात्र हैं ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जो भोपाल में क्योंकि राजधानी है और बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान है यहाँ पे, तो यहाँ ये तैयारी करने के लिए पहुंचे थे। और जब इनमें से ज्यादातर छात्रों का यही कहना है कि इस बार परीक्षा जो इन्होंने दी थी 3 मई को वो बेहद सरल प्रश्नों वाली थी और सभी इस बात से बेहद ज्यादा खुश थे कि एक अच्छा जो आउटपुट है वो उनके रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो इनको अलॉट हो पाएंगे। लेकिन अब जब परीक्षा ही रद्द हो गई है और जिन आरोपों के चलते रद्द हुई है, तो जाहिर सी बात है इस बार जब ये परीक्षा होगी तो कहीं ज्यादा कठिन तरीके से हो सकती है, ये डर अब कहीं ना कहीं छात्रों के मन में घर कर गया है।
3: अब बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में भी एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और अब यह मामला, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दें, बड़ी खबर, राजस्थान में एसओजी की तरफ से 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है और अब हिरासत में 45 लोगों को लिया गया है, जिसे जांच तेज गति पकड़ सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है। नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। अब राजस्थान एसओजी जब इस मामले की जांच कर रही है तो 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अभी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि ये कड़ियां जुड़ती जाएं और कई लोगों को और हिरासत में लिया जाए। तो एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। दिल्ली में एनएसयूआई की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, सवाल उठाए गए और साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस की छात्र इकाई की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और ये देखिए, यहां तो मैं पोस्टर लेकर तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन किया गया, बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई और ये एनएसयूआई के छात्र हैं जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्ट व्यवस्था बता रहे हैं और उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में जो पेपर लीक के मामले बढ़े हैं उसी को लेकर ये सवाल एनएसयूआई की तरफ से उठाया गया।
8: की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है उनके जो कार्यकर्ता है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नीट यूजी पेपर लीक मामले को वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो और साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको घेरते हुए दिख रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेकर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर चोर गड्डी छोड़ अभी इस मामले में देखा गया है कि नीट का जो 3 मई को पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जो जांच पहले राजस्थान पुलिस कर रही थी अब सीबीआई को इसकी जांच करने के लिए बोला गया। उसी बीच में आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा सेंट्रल दिल्ली की कि कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहां पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग करके रखी गई है ताकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो ये जो बैरिकेडिंग है वो पार ना कर सके। इसी बीच में तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो विनोद जाखड़ है एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट वो भी यहां पर मौजूद है। तो अभी अभी देखा गया इस मामले की जांच सीबीआई को देने की बात की जा रही है।
9: देखिए ये जो पेपर है ये पहले भी लीक हुआ, उसके दोषी कौन थे आज तक पकड़ में नहीं आए हैं। सीबीआई, ईडी सब इनकी एजेंसियां जो है सरकार के दबाव में काम करती है। हमें संदेह है कि इसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है बहुत सारे भाजपा के जो लोग हैं उनके बड़े कॉलेज हैं उनके पास पहले से ये गैस पेपर आ गया था। हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है, 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। सरकार इस पे कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रही है।
8: यूजी मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते दिख रहे हैं, शिक्षा जो मंत्रालय है उसको घेरते दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा गया कि हर साल कहीं ना कहीं नीट यूजी का जो पेपर है लीक हो जाता है। कई बच्चों को नीट पीजी के पेपर के लिए दूर तक सेंटर दे दिए जाते हैं। तो एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है हमेशा विवादों के घेरे में रहती है, उसी को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। 3 मई को नीट का एग्जाम होता है जहां देखा जाता है कि 410 सवालों वाला एक जो गेस्ट पेपर है बच्चों में बहुत वायरल हो जाता है, जिसमें देखा जाता है तकरीबन 100 से लेकर जो 120 सवाल एग्जैक्ट जो पेपर से हैं वो मिलते हैं। तो इस मामले को लेकर फिर राजस्थान पुलिस को भी जांच दी जाती है और अब इसमें सीबीआई को भी शामिल किया गया और साथ ही 3 मई के पेपर को रद्द भी कर दिया गया है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
3: तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा हमारे सहयोगी कह रहे थे सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, अब सीबीआई के अधिकारी राजस्थान एसओजी टीम से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई एक्शन में देखी जा रही है और राजस्थान एसओजी के अधिकारियों से सीबीआई की टीम मिलने पहुंची है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कागजात, डॉक्यूमेंट और जो भी दस्तावेज है इस मामले के अब सीबीआई को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सके। और देखिए ये दायरा अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नासिक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से केरल, जम्मू कश्मीर, ये मामला, ये पेपर लीक अलग अलग राज्यों तक इसका दायरा बढ़ता गया था। लेकिन अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये खबर है कि केस दर्ज होने के बाद एसओजी से फाइलें लेगी सीबीआई। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मौसमी के पास, इस वक्त राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ में। मौसमी,
10: लाइव लाइव बात करते हैं। हमारे साथ सचिन पायलट है, हिमांशु, और लगातार पेपर लीक के मसले को लेके राजस्थान में भी पदयात्रा कर चुके हैं। जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है?
11: क्या कार्रवाई की सरकार ने?
10: सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर,
11: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, किसको दंडित किया गया है, किसको सजा दी गई। तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी, कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता।
10: जो बात सामने आ रही है कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में ये छपते हैं और उसके बाद हरियाणा लाए जाते हैं पेपर, हरियाणा से फिर गुड़गांव के एक टीचर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास, और उसके बाद पूरी तरीके से लीक होता है। एक मोडस ऑपरेंडी,
11: आप मुझे ट्रेल बता रहे हैं। जब लीक हुआ तो कहीं या तो पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने, कंडक्ट करने वाले में, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो एजेंसी बनाई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका उद्देश्य क्या था? पेपर लीक को बंद कर सकें, एक एयरटाइट मैकेनिज्म हो ताकि व्यवस्था को आप नियंत्रण कर सकें। अब वो एजेंसी कोलैप्स कर गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि जिन 22-25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है उनके जवाब कौन देगा? सदन में आप जवाब देते नहीं है। आज तक सरकार ने सिर्फ जांच ऑर्डर कर दी है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगते?
3: बिल्कुल, देखिए विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है, यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास एक बड़ी खबर है। जी शरद बताइए।
4: देखिए हमारे पास ये खबर आ रही है कि एसओजी ने जो वहां पर अभी नासिक में हिरासत में जिस शख्स को लिया है, थोड़ा सा असहयोग वहां मिल रहा है नासिक पुलिस का, और राजस्थान पुलिस चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इसमें सीबीआई आए। नासिक पुलिस को पूरा नेटवर्क बता दिया गया है, एक व्यक्ति को लेकर ये आ भी गए हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि सुबह से राजस्थान पुलिस एसओजी बैठी है, सहयोग नहीं पूरा मिल रहा है, पूरा नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, सारे नेटवर्क को नासिक के पुलिस अधिकारी को बता दिया गया है, इसके बावजूद अभी तक वो सारे भाग जाएंगे, इनको इस बात का डर है। जल्दी से अगर नासिक पुलिस कार्रवाई करती है तो जो नेटवर्क राजस्थान पुलिस बता रही है उसे पकड़ा जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि आप तो मुकदमा दर्ज किए हो, वो दिखा वरना हम छोड़ देंगे। अब यही तो समस्या है, 4 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो उसको कब तक हिरासत में रखें? तो अपनी नासिक पुलिस भी अपनी जगह सही है कि हम 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में रख नहीं
3: सकते। जिसको हिरासत में लिया गया है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है और राजस्थान एसओजी चाहती है इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहें आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
15: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: चौबीस घंटे के भीतर पीएम मोदी ने देश के नाम दो दो पैगाम जारी किए। दोनों संदेशों में कमोबेश एक ही बात थी, युद्ध से संकट पर चिंता थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से कैसे निपटा जाए, इसका सवाल था। विदेशी मुद्रा कैसे बचाई जाए, इस पर गंभीर चिंता थी। पीएम मोदी की इन अपीलों का भी अपना अंदाज था। अनुशासन देशभक्ति से जोड़ते हुए उन्होंने दोनों दिन अपनी अपील में यही कहा।
17: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके
16: शब्द एक साल तक सोने की खरीदारी से बचें, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम से कम करें, तेल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें, मेट्रो में सफर, कार पूलिंग और ईवी गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हर परिवार में खाने के तेल का इस्तेमाल कम से कम हो, रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने की सलाह दी। शादियों, छुट्टियों और विदेश यात्रा टालने को भी पीएम ने देश हित में बताया।
17: जय सरदार, जय सोमनाथ।
16: इन तमाम अपीलों का एक ही मकसद है कि इन पर देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक असंतुलन हो रहा है, देश का घाटा बढ़ रहा है और इसका असर महंगाई के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी की एक के बाद एक दो अपीलों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए होता है। जंग के बाद से अब तक करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसे देखते हुए अलग अलग रिपोर्ट्स में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए लीटर बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है। तेल पर राजनीति का खेल हमेशा से होता रहा है, इस बार भी राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार अनुशासन की बात कर रही है, विपक्ष कह रहा है 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को सरकार तैयार है। आज तक ब्यूरो।
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, come home. It's supper time.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Hey Jack, could you play that one song with the words?
4: Jack FM, playing what we want.
7: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
8: लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की।
9: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
8: इस बयान के बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी अपील करनी ही क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गईं कि पीएम सोना खरीद पर देशवासियों से साल भर का समर्थन मांग रहे हैं? ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का ये बयान और उसके बाद बाजार का गिरना क्या संकेत दे रहा है? इस पर चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या और इस बयान के पीछे की असल वजह क्या है।
9: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
8: देश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील का सबसे बड़ा मकसद आयात खर्च को कम करना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट के चलते कच्चा तेल पहले ही आसमान छू रहा है। ऐसे में सोने के आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, और ये दबाव बना रहा तो देश के सामने महंगाई का संकट पैदा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है और इसके लिए एक साल तक सोना न खरीदने की मांग की है। माना जा रहा है कि इसका असर हुआ तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात बिल में कमी होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार से कम खर्च करना होगा। बात अगर विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो इस पर अमेरिका ईरान युद्ध का सीधा असर दिख रहा है। 27 फरवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर था, जो 1 मई को घटकर 690 अरब डॉलर पहुंच गया। ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल और सोने चांदी के दाम में अस्थिरता देखी जा रही है। युद्ध के चलते दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे समय में निवेशक जोखिम उठाने की बजाय पारंपरिक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग में भारी इजाफा हो रहा है, जिसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब दुनिया जंग की विभीषिका की मार झेल रही है, हर दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो इस चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अपनी कोशिशों में लगी है। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना न खरीदने की अपील की है। इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों से सहयोग की मांग की है। आज तक ब्यूरो रिपोर्ट।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर पेपर लीक का सच दिखाने के बाद नीट 2026 का परीक्षा रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया ऐलान। राजस्थान में पहुंचे पेपर का आज तक ने किया था खुलासा। 45 हिरासत में लिए। परीक्षा से पहले ही नासिक से होते हुए पूरे देश में पहुंचा नीट का पेपर। सीबीआई करेगी लीक की जांच। जल्द घोषित होंगे परीक्षा की नई तारीख। परीक्षार्थियों से नहीं ली जाएगी अतिरिक्त फीस। दोबारा नहीं करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच में लगातार दूसरे दिन पीएम की देशवासियों से अपील। फिर कहा तेल बचाएं, विदेश घूमने ना जाएं, गोल्ड खरीदने से बचें। पवार ने कहा कि बुलाएं सर्वदलीय बैठक, खुद मौजूद रहें पीएम। असम में हुआ हिमंता सरकार की दूसरी पारी का आरंभ। चार मंत्रियों के साथ हिमंता ने गुवाहाटी में ली शपथ। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री रहे मौजूद। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर दर्ज हुआ केस। पीएम मोदी के बारे में कही थी आपत्तिजनक भाषा, जबरदस्त विरोध।

नमस्कार, मैं हूँ राजीव ढोंडिया। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन के सुपर फास्ट अंदाज में। आपको दिखाते हैं आपके शहर की खबर, सौ शहर सौ खबर। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, एनटीए का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के बाद नई परीक्षा होंगी आयोजित। छात्रों के लिए बड़ा झटका, नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेगा एनटीए। एडमिशन कार्ड जारी करने का शेड्यूल और दूसरी जानकारियां जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी, अनाधिकारिक माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 45 लोग हिरासत में लिए गए, सीबीआई इस मामले की अब करेगी इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन, शास्त्री भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन। असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण, हिमंत बिस्वा सरमा ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। हिमंत बिस्वा सरमा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और एक महिला नेता अजंता नियोग बने मंत्री। रणजीत कुमार दास बनाए गए असम विधानसभा के स्पीकर, पहले मंत्री रह चुके हैं रणजीत कुमार दास। शपथ समारोह में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन नवीन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, कई राज्यों के सीएम भी आए। शपथ ग्रहण के बाद पीएम ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को हाथ मिलाकर बधाई दी, पीएम ने सभी मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। सीएम विजय एक्शन में, मंदिर स्कूल और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक। विजय सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों, स्कूलों और बस स्टैंड के पास 717 शराब की दुकानें बंद होंगी। कर्नाटक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बेंगलुरु में निकाय चुनाव जून की जगह अब 30 सितंबर तक करवाने की इजाजत दी जाए, जनगणना और वोटर लिस्ट संशोधन के को इसका कारण बताया गया। टीबी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति ने गृह आयोग द्वारा करवाए गए फ्लो टेस्ट में भाग लेने से क्या इनकार, टीबी के विधायक के डीएमके के पेरिया करुप्पन को एक वोट से हराया। एम के सलन की पार्टी 14 मई को जिला सचिवों की एक अहम बैठक करने जा रही, इस बैठक में संगठनात्मक रणनीति और आगामी मुद्दों पर चर्चा की संभावना। बंगाल में बीजेपी की सरकार, मंत्री ताबड़तोड़ एक्शन, भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर ईडी का शिकंजा, स्पेशल कोर्ट में आज पेशी। दिलीप घोष पर बड़ा हमला, सुजीत बोस की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी के कई नेताओं के भ्रष्टाचार के खुलेंगे केसेस। सीबीआई ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अपने हाथ में ली है, कोलकाता पुलिस के एफआईआर को फिर से दर्ज किया गया, आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी सीबीआई की टीम। पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील पर बीजेपी के नेता का दर्जनों गाड़ियों वाला एक काफिला, चर्चा में गाड़ियों का काफिला लेकर आए बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा लीक पर बड़ा एक्शन, पूर्व आरपीएससी चेयरमैन को एसओजी की टीम ने पूछताछ के लिए तलब किया। पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच अब तेज, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद से शेर सिंह मीणा और शिव सिंह राठौर की भी उनसे भी पूछताछ। बलिया में हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, हाईकोर्ट वकील दीप शिखा और राज सिंह की बहन गिरफ्तार। नई दिल्ली में धूल प्रदूषण पर सख्ती, निर्माण स्थलों पर अब 100 जीएसएम ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य किया गया। सीएम मोहन यादव की कल मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की 36वीं किश्त करेंगे जारी, 1835 करोड़ रुपए की राशि 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि बिजनेस चीफ का रीडर कथित भ्रष्टाचार मामले में फरार है। रंधावा ने कहा कि पंजाब बिजनेस मुख्यालय की सीबीआई जांच और छापेमारी हो रही, कार्यकाल में दर्ज सभी बिजनेस मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सीबीआई की रिश्वतखोरी मामले में पंजाब बिजनेस ब्यूरो मुख्यालय पर छापेमारी की गई, जांच के दायरे में विजिलेंस विभाग के एक और अधिकारी बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। पंजाब में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बीच में सियासत, विपक्ष का आरोप, आम आदमी पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करती थी खुद भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष के आरोपों में गिरी। प्रताप सिंह बाजवा का आरोप, पंजाब बिजनेस ब्यूरो में कथित 20 लाख रुपए की रिश्वत डील, 13 लाख रुपए की बरामदगी से सिस्टम की पोल खुली है। शरद पवार ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है, पीएम मोदी से उसमें मौजूद रहने की अपील की गई है। मोदी सरकार की कल सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज तक के हाथ में लगे एक्सक्लूसिव वीडियोस पाकिस्तान के दामों की पोल खोल रहे हैं, लश्कर के आतंकवादियों और कमांडर्स ने खुद स्वीकार किया है। लश्कर के आतंकियों ने कहा कि भारतीय सेना के हमलों में मुरीद के समेत तमाम आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। लश्कर कमांडर हफीज अब्दुल रऊफ ने माना कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, चीफ सेक्रेटरी और बड़े अधिकारी शामिल हुए थे।
आतंकियों ने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय ड्रोन और एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान रोक भी नहीं पाया। नूर खान शोरकोट और रहीम यार खान एयरबेस पर हमलों की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस और राजस्व विभाग ने आरोपों से जुड़ी सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। मेहसाणा में लग्जरी बस और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। अयोध्या में सफाई वाहन और ट्रक की टक्कर, 1 कर्मचारी की मौत, कई लोग घायल। पानीपत में बहू से परेशान होकर सास ससुर ने जहर खाकर जान दे दी, पुलिस ने बहू पर दर्ज किया केस। कोटा में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, लॉक तोड़कर भागे और फिर 1 मिनट के बाद से लौटे 2 बदमाश, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट करके ले गए बाइक। आगरा में हॉर्न बजाने को लेकर बवाल, पथराव, फायरिंग, आगजनी में गांव में तनाव। खेड़ा में ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग से हड़कंप, बड़ा हादसा टला, जांच कर रहा है प्रशासन। सावरकांठा में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। कोटा में घर के पानी के एक टैंक से निकले 11 सांप, 20 मिनट तक चले रेस्क्यू में, परिवार में भी दहशत दिखी। चंदौली में 24 घंटे में 3 हत्या करने वाला सीरियल साइको किलर, पुलिस एनकाउंटर में ड्रीम, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। राजगढ़ के पचौर पेट्रोल पंप पर भीषण आग, पेट्रोल टैंकर चपेट में, 11 लोग झुलस गए, 1 की हालत गंभीर है। पीएम श्री सरकारी स्कूल में बड़ा विवाद आया सामने, जहां पर कथित तौर पर हिंदू छात्राओं को हिजाब और छात्रों को स्कूल कैप पहनाने का मामला सामने आया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षकों को किया गया सस्पेंड, FIR भी दर्ज। कानपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल, पुलिस की टीम पर भी हमला। जालंधर में युवती की कार में गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके इस्तेमाल की गई

0: हैदराबाद, दूसरे तो गुजरात तीसरे नंबर पर। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेले गए 7 मैच, जिनमें 5 बार जीटी की टीम जीती है। पैट कमिंस के लौटने के बाद सनराइजर्स की टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गई है और इस बात की संभावना कम है कि दोनों टीमों प्लेइंग 11 में किसी तरह का कोई बदलाव करें। गुजरात को अपने कप्तान शुभमन गिल पर काफी भरोसा और उम्मीदें, हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी से आस लगाए हुए। धुरंधर के बाद बड़े पर्दे पर अब महादेव में दिखाई देंगे रणवीर सिंह, फिल्म प्रलय में शिव के किरदार में दिखाई देंगे। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का जलवा जारी, फिल्म ने 54 दिनों में कमाई 1800 करोड़ से ज्यादा की है। फिल्म दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग पूरी 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म लॉरेंस ऑफ पंजाब पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद बदलेगा फिल्म का नाम। 3 शादियां टूटने पर ट्रोल हुई शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम, बोली फायदे के लिए शादी नहीं की। अनन्या पांडे लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर आउट, लव इमोशन और अग्रेशन से भरपूर। करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश का नया रियलिटी शो देसी ब्लिंग ओटीटी पर मचाएगा धमाल, 20 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। रैपर और सिंगर हनी सिंह का नया गाना बॉडी रोल रिलीज, नौरव फतेही ने गाने में दिखाए बेहद बोल्ड और स्टाइलिश डांस मूव्स। बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई के बाद भूत बंगला ओटीटी पर देगी दस्तक, 12 जून को नेटफ्लिक्स पर हिंदी तेलुगु कन्नड़ मलयालम में स्ट्रीम होगी। रिलीज से पहले रामचरण जानवी कपूर के स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी के टिकट की रिकॉर्ड बिक्री, 4 जून को फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक तरफ पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में संयम की अपील करें, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही उसका मखौल उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसी ही 2 तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े काफिले हैं और काफिले में कितनी गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां चल रही हैं।
1: चाहे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट हो, चाहे युद्ध के बीच हालात चिंताजनक हो, चाहे पीएम मोदी बार बार पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करते रहें, लेकिन इन नेताओं का जलवा जलाल ना घटे। समर्थकों के बीच पोजीशन बनी रहे, लाव लश्कर मेंटेन रहे, लोगों के बीच धार जमी रहे और इसी टशन के साथ बीजेपी के नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए तो काफिला लेकर उज्जैन से भोपाल की ओर रवाना हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, बीजेपी नेता के काफिले में करीब 50 गाड़ियां हैं, जगह जगह काफिला रुक रहा है, फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ नेताजी का जमकर स्वागत सत्कार हो रहा है। ना तो बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह को इस बात की फिक्र है कि लगातार 2 दिन से पीएम मोदी लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं और ना ही उनके समर्थकों को इस बात की कोई परवाह है। पीएम मोदी की अपील से बेपरवाह बीजेपी नेता की केवल एक तस्वीर नहीं है, भोपाल से ही एक और नेताजी की ऐसी ही मनमानी सामने आई है। नाम है राकेश सिंह जादौन, जिन्हें खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया तो पद का जलवा भोपाल की सड़कों पर काफिले के तौर पर दिखाई दिया। 15 से ज्यादा गाड़ियां लेकर राकेश सिंह पद संभालने के लिए भोपाल पहुंचे।
2: मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को उनकी पार्टी के नेता ही बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने भोपाल आए सौभाग्य सिंह ठाकुर सैकड़ों गाड़ियों के साथ पहुंचे थे, काफिलों की तस्वीरें सबने देखी, लेकिन अकेले सौभाग्य सिंह ठाकुर ही नहीं, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी 2 दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये 2 गाड़ी और अब आप देखिए

0: ये गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी, और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर।
1: तो पीएम की अपील का असर बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद भारत।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best putty.
4: JK Wall Max.
2: Best paint.
5: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
6: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
7: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
8: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: Character, the taste of success.
12: Like I said before, we better own the sins.
13: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: Hint, bade aaram se.
13: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
15: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
16: Samakul Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
17: Vimal, bolo zubaan kesri.
18: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
19: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
20: तेईस और 29 अप्रैल वोटिंग।
21: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
22: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
20: 4 मई काउंटिंग।
21: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।
23: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
20: 8 मई सीएम का ऐलान।
24: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
20: 9 मई शपथ।
25: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
20: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
5: जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
6: चौबीस घंटे के भीतर ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से किफायत की अपील कर रहे थे।
5: ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाए, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाए, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए।
6: देश जब पश्चिम एशिया की जंग की वजह से संकट से गुजर रहा है, तो विदेश में शादी और छुट्टी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पीएम ने बेहद दिलचस्प अंदाज में लोगों से अपील की।
5: मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे, और वहीं पर आपने जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए।
6: पीएम मोदी ने आज के हालात की तुलना कोरोना काल से की है, और उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह इस संकट पर भी देश काबू पा लेगा।
5: अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।
6: मोदी ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पर जोर दिया, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और इसके आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचे।
5: डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जय सरदार।
7: अभी भूल गए हम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, नीट 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक का सच दिखाने के बाद एनटीए का बड़ा फैसला, राजस्थान से 45 हिरासत में लिए गए। नीट लीक मामले में नासिक से पूरे देश में फैला था जाल, अब सीबीआई करेगी जांच, दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं, जल्द जारी होगी नई तारीख। वैश्विक तेल संकट के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से लगातार दूसरे दिन बड़ी अपील, तेल बचाएं, सोना और विदेश यात्रा टालें। पवार ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, कहा खुद मौजूद रहें प्रधानमंत्री। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, गुवाहाटी में चार मंत्रियों के साथ ली शपथ, मोदी संग एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस दर्ज, आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ फूटा गुस्सा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
2: ये जो पेपर है ये पहले भी लीक हुआ, उसके दोषी कौन थे आज तक पकड़ में नहीं आए हैं। चारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है, 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है, पीछे कौन लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
3: इधर से ऐसी न्यूज आ रही है कि ना 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है।
4: हाँ, हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर।
5: तो कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो उसके ऊपर नजर रखती हैं उनकी कहीं लापरवाही है।
4: हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया।
3: इसको जल्द से जल्द कराया जाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द कराने के लिए छात्रों को फिर से तैयारी नहीं।
4: रद्द जो हो रहा है, जो जितना मेहनत किया है उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ कि वो इतने साल से मेहनत कर रहा था। उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट
6: ऐसी न्यूज आती है कि पेपर कैंसिल हो गया और लीक हो गया तो एक बड़ा सेटबैक तो सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक।
7: बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे सीनियर्स बहुत मेहनत कर रहे थे और अब दोबारा रीअपियर होना पड़ेगा।
8: एनटीए जो पूरा एक सेटअप बनाती है, एनटीए ने बोला था बहुत सिक्योर है और आप देखिए कुछ दिन पहले ट्वीट भी करा था कि किस तरीके से वो पेपर बनाते हैं और बच्चों को कैसे तैयारी करनी है।
9: पेपर भी कॉम्प्रोमाइज है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश की।
10: पूरे देश के विद्यार्थी जो है सड़कों पे है, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है।
0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का और आज की सबसे बड़ी खबर देश भर के 23 लाख छात्रों के गुस्से से जुड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर कटघरे में है, वो संस्था जिसने 3 मई को नीट परीक्षा आयोजित करवाई और जिसे आज रद्द करने का ऐलान किया। ये फैसला पेपर लीक होने के आरोप के चलते लिया गया, सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। आज तक नहीं, सबसे पहले इस खबर को उठाया, उसका असर हुआ, पेपर लीक का सच दिखाने के बाद नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस सबसे बड़े पेपर लीक के तार नासिक से जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नासिक क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस से मिली जानकारी के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नासिक के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई है। राजस्थान पुलिस का कहना है कि नासिक से नीट पेपर हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुंचे।

0: नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने जो लगातार अपनी जांच कर रही थी उसके तहत 45 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। तार अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं और जब ये एक पूरा मामला, ये पूरा जंजाल नजर आया जहां पर नासिक से लेकर राजस्थान तक इस मामले के तार और लीक किया हुआ पेपर अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि इसे कैंसिल किया जाए। नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, फिर ये नासिक से हरियाणा आया, गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास इसके पहुंचने की बात कही जा रही है, यहां वो सीकर के एक व्यक्ति के पास आया और वो पूरे अलग अलग प्रदेशों में गया। एसओजी के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि पिछले 15 दिन से पेपर लीक था। देश भर के 23 लाख छात्रों में नीट परीक्षा रद्द होने के बाद भारी गुस्सा है। छात्रों का सवाल यह है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, सरकार नीट के पेपर को लीक होने से क्यों नहीं बचा पा रही।
1: नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उनके लिए बड़ी सेटबैक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। लाखों जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपेयर होते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी सेटबैक है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है?
2: मेरा नाम मुकेश सियाल है जी।
1: मुकेश जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आप हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है। पहले ये बताइए कि ये जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए?
2: देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स इसमें अपना मोमेंटम बनाते हैं और अपनी 2 साल की जर्नी होती है उनकी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर दिन रात एक करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देने जाते हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपीयर होते हैं। मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हर पेरेंट के ऊपर। एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब एक बच्चा नीट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा होता है। तो फाइनली जब वो अपीयर होता है, सब कुछ हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है उसके लिए भी, और जिसका रिजल्ट अगर कुछ 19-21 भी होगा उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो नीट कैंसिल हो जाता है।
1: तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का आपको फीलिंग है?
3: हम तो अभी पढ़ ही रहे थे, हमको तो अभी पता चला कि नीट का जो पेपर है वो ऐसे लीक हो गया। हमें तो जैसे सेटबैक या जो प्रेपरेशन कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, तो हमें भी अभी डर ही रहेगा कि जब हम पेपर देंगे कहीं तब अगर लीक हो गया पेपर तो तब क्या होगा।
1: तो इससे आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा?
4: ये ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए, फिर हम एक ऐसी पाथ पे चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो वो फिर ऑफकोर्स हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील कराता है।
1: ये सब इनके लिए जो है जो सेटबैक है भी, किस तरह ये जो पेपर जो है पहले लीक हुआ, कैंसिल हुआ, और जो रेगुलरली ये जो लीकेजेस हुई हैं, किसी न किसी एग्जाम की हो जाती है किसी न किसी स्टेट से, सो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत जाती है इस पूरी तैयारी में और इस तरह कैंसिल हो जाना एक डेफिनेटली सेटबैक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसई आज तक।
5: सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो परीक्षा है कैंसिल की जाएगी, कैंसिल की गई, और धांधली की जो खबरें आ रही थी, तो क्या मतलब बच्चों के लिए तो एक सेटबैक ही मानेंगे?
6: बहुत ज्यादा सेटबैक है, और मैं समझता हूँ कि एनटीए ने जिस तरीके से एनटीए में जो धांधली हो रही है उसको बहुत गलत हो रहा है, और स्टूडेंट्स को खास करके जितना प्रॉब्लम हो रहा है, रात दिन एक करके स्टूडेंट पढ़ता है।
5: जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे क्या लगता है, मतलब नुकसान होगा छात्रों का या फिर एक मौका मिलेगा?
7: नुकसान होगा, हर छात्र का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है, और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है, तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा। बट
5: जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है, इसको कैसे ले रहे हैं आप?
7: ये रद्द जो हो रहा है, जो जितना मेहनत किया है उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ कि वो इतने साल से मेहनत कर रहा था और एग्जाम दिया उसके बाद लीक हो गया, वो लोग के लिए तो बहुत बुरा हुआ ना जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे। तो उस पे बहुत हम लोग भी आएंगे तो हम लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी को बुरा लगेगा कि हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे थे वो तो सब वेस्ट हो गया।
8: अमित जी कितना बड़ा झटका है छात्रों के लिए और आप जो कोचिंग चलाते हैं उसको?
9: काफी ज्यादा एक बहुत ही मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत से है ना नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग गांव से, पेरेंट्स किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन कराने के लिए भेजते हैं और जब बार बार कंटिन्यू थ्री ईयर से ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ। 2024 में भी एक स्कैम जैसा हुआ था जिसके ऊपर काफी ज्यादा हद तक मतलब इतने सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आते हैं ये जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट ईयर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड हार्ड आया था कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि IIT के पेपर से भी ज्यादा नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। और इस साल फिर से पेपर तो इंटरमीडिएट आया बट फिर से मतलब थर्ड ऑफ मेरे को एग्जाम हुआ है और आज मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और आज फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि ना 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और वो जांच एजेंसियों ने भी पाया है।
7: सर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है। ऐसे नीट में बार बार ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर, थोड़ी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगले साल ऐसा कर देते हैं कि पेपर टफ कर देते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते एनटीए वाले।
10: जी यहाँ पे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं साल भर जो है 12 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं लगातार। 15 घंटे तक जो है बच्चे लगातार मतलब मेहनत करते हैं, कोई कुछ बच्चे तो सोते नहीं लास्ट के कुछ दिनों तक, उनका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलते हैं। और उसके बावजूद अगर बच्चों को ऐसा सुनने में मिले कि यार हमारा जो पेपर था जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं वो
8: लापरवाही किसकी मानते हैं,
10: इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जो उसके ऊपर नजर रखती हैं उनकी कहीं लापरवाही है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो है इसकी
8: बार बार लीक क्यों हो रहा है।
10: कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रखी गई है और क्या है कि जो हालात मतलब जो जिनके हाथों में चीज दी गई है शायद वो उसके लिए सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर के कि उन्हें वो किस चीज को संभाल रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को बीजेपी की व्यवस्था ने कुचल दिया।

0: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर लीक होने के बाद जांच के आदेश देने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
1: जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले ही बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है? सर,
2: क्या कार्रवाई की सरकार ने?
1: सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर।
2: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, किसको दंडित किया गया, किसको सजा दी गई। तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी, कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता।
1: जो बात सामने आ रही है कि नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में ये छपते हैं और उसके बाद हरियाणा लाए जाते हैं पेपर, हरियाणा से फिर गुड़गांव के एक टीचर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास, और उसके बाद पूरी तरीके से लीक होता है। मोडस ऑपरेंडी
2: आप मुझे ट्रेल बता रहे हैं जी। जब लेक हुआ तो कहीं या तो पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने, कंडक्ट करने वाले में, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो एजेंसी बनाई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका उद्देश्य क्या था? कि पेपर लीक को बंद कर सकें, एक एयरटाइट मैकेनिज्म हो ताकि व्यवस्था को आप नियंत्रण कर सकें। अब वो एजेंसी कोलैप्स कर गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल ये है कि जिन 22-25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है उनके जवाब कौन देगा? सदन में आप जवाब देते नहीं हैं। आज तक सरकार ने सिर्फ जांच ऑर्डर कर दी है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा जिन लोगों ने आज इतना कुछ खोया है? और ये सरकार का जो ध्यान है, अब सीबीआई जांच करे, फुर्सत का सीबीआई को? सीबीआई को तो कांग्रेस नेताओं को जांच करनी है, छापे डालने हैं, विपक्ष का मुंह बंद करना है। सीबीआई निष्पक्ष है ही नहीं, पहली बात। तो मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि एक जुडिशियल प्रोब हो जो सरकार के दायरे के बाहर हो ताकि सच आ सके, और टाइम बाउंड हो, 30 दिन, 25 दिन, 60 दिन, जो भी एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि लोगों को व्यवस्था में विश्वास कायम रहे।
0: नीट परीक्षा रद्द होने के बाद एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के छात्र विंग, एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस समय वहीं से जुड़ रहे हैं। अनमोल, दिखाएं तस्वीरें, बताएं।
3: श्वेता, इस समय मैं एनटीए मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनएसआईसी बिजनेस पार्क, जहां फर्स्ट फ्लोर पर एनटीए का मुख्यालय। वहीं दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कुछ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, यानी कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, यहाँ पर पूरा उग्र होकर अपना विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं और हाथ में तख्तियां लेकर वो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि पहली बार नहीं, 2024 में भी श्वेता देखने को मिला था कि कैसे जो पेपर लीक के कारण, नीट यूजी के पेपर लीक के कारण राजनीति गरमाई थी। उसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हाथ में तो तख्तियां लेकर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर डिग्री ऑन सेल। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके खिलाफ जो इनका बड़ा धरना प्रदर्शन है, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जाना, क्या है बड़ी मांग आपकी यहां पर?
4: हमारी बड़ी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से वो छात्रों को ठग रहे हैं, जिस तरीके से कोई विद्यार्थी वर्ग मेहनत करके खून पसीने की कमाई से वो कोचिंग करता है, 2-3 साल की मेहनत करता है, और ये कहते हैं कि हम उसकी जांच सीबीआई से करवाएंगे। सीबीआई और ईडी तो आधे से ज्यादा बीजेपी के दफ्तरों में बैठी रहती है। हम देखते हैं कि कहां वो जिम्मेदारी। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी की टिकट पाने वाला एक विधायक का प्रत्याशी की कोचिंग से पेपर लीक होता है, 600 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 5,000 रुपए में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ये पेपर बिक रहे हैं। इन चीजों को लेकर के हम आज एनटीए में शांतिपूर्ण चेताना चाहते हैं और हम ये बता देना चाहते हैं कि एनटीए का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी आकर के और हम छात्रों से बातचीत करें। हम शांतिपूर्ण यहाँ आए, लेकिन ये लोग उसी तरीके से
3: पेपर रद्द करने की बात की गई है।
0: अनमोल बाली हमारे संवाददाता वहां पर प्रदर्शनकारी एनएसयूआई के जो संगठन के छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बवाल के बीच एलन करियर इंस्टीट्यूट के को फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने छात्रों से फिर से होने वाली नीट परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।
5: हेलो मेरे प्यारे फोर्थकमिंग डॉक्टर्स, एनटीए ने भी अपनी साइट पर डिक्लेयर कर दिया है, स्क्रिप्ट भी कर दिया है कि नीट एग्जाम वापस से कंडक्ट होगा। जल्दी आपको इसकी डेट बता दी जाएगी। सभी टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई, लेकिन आप इसको देखने के लिए माइंड टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो। अपने 3 मई के एग्जाम को डेट से मान के चलो, उसका एनालिसिस करो और देखो उसमें क्या क्या कमी रह गई, तो उसको दुरुस्त करने का आपको एक अच्छा अवसर मिला है। अपने एनटीए के निर्णय को सकारात्मक मान के चलना, इसका एक बेहतर करने का अवसर मिला, ये लेकर अपने दिल से मन से पढ़ाई चालू कर दो। अंडरग्राउंड हो जाओ और कहीं पर आप टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो। जो जल्दी लग जाएगा आगे निकल जाएगा, पक्की बात है। मुस्कुराते शुरू करिए नई शुरुआत। विश ऑल द बेस्ट विजय भाव।
0: 3 मई को देशभर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस पेपर मिला था, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें सीकर की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा करियर काउंसलर भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। इस वक्त इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में फिलहाल तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा है कि एलपीजी का उत्पादन 35,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन किया जा चुका है और फिलहाल 69 दिन का पेट्रोल और एलएनजी स्टॉक देश में मौजूद है। इसके अलावा 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक भी देश में मौजूद है।
6: No problem on the supply management side, no shortage of anywhere, and I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. So why this panic since yesterday or day and a half? Please see what the Honorable Prime Minister has actually said.
0: खबरें सरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
11: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
10: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
12: You're listening to MSNBC.
10: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
15: एकोजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today. And let us surprise you.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffeehouse. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उनके लिए बड़ी सेटबैक है क्योंकि पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है. लाखों जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपीयर होते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी सेटबैक है. हमारे साथ टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो बात करेंगे. हाँ जी सर, क्या नाम?
4: मेरा नाम मुकेश याल है जी.
3: मुकेश जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आप हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है. पहले ये बताइए कि ये जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए?
4: देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स इसमें अपना मोमेंटम बनाते हैं और अपनी दो साल की जर्नी होती है उनकी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर दिन रात एक करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देने जाते हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपीयर होते हैं. मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हर पेरेंट के ऊपर. एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब एक बच्चा नीट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा होता है. तो फाइनली जब वो अपीयर होता है, सब कुछ हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है उसके लिए भी, और जिसका रिजल्ट अगर कुछ 19-21 भी होगा उसके लिए भी, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो नीट कैंसिल हो जाता है.
3: तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का आपको फीलिंग है?
5: हम तो अभी पढ़ ही रहे थे, हमको तो अभी पता चला कि नीट का जो पेपर है वो ऐसे लीक हो गया. हमें तो जैसे सेटबैक या जो प्रेपरेशन कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, तो हमें भी अभी डर ही रहेगा कि जब हम पेपर देंगे कहीं तब अगर लीक हो गया पेपर तो तब क्या होगा.
3: तो इससे आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा?
6: ये ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए. फिर हम एक ऐसी पाथ पे चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो वो फिर ऑफकोर्स हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील कराता है.
3: ये सब इनके लिए जो है जो सेटबैक है भी, किस तरह ये जो पेपर जो है पहले लीक हुआ, कैंसिल हुआ, और जो रेगुलरली ये जो लीकेजेस हुई हैं किसी न किसी एग्जाम की हो जाती है किसी न किसी स्टेट से, सो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क भी है. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत जाती है इस पूरी तैयारी में, और इस तरह कैंसिल हो जाना एक डेफिनेटली सेटबैक है. चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसई, आज तक.
7: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले. अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, नीट 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक का सच दिखाने के बाद एनटीए का बड़ा फैसला, राजस्थान से 45 हिरासत में लिए गए। नीट महालीक मामले में नासिक से पूरे देश में फैला था जाल, अब सीबीआई करेगी जांच, दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं, जल्द जारी होगी नई तारीख। वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से लगातार दूसरे दिन बड़ी अपील, तेल बचाए, सोना और विदेश यात्रा टाल दे। पवार ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, कहा खुद मौजूद रहे प्रधानमंत्री। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, गुवाहाटी में चार मंत्रियों के साथ ली शपथ, मोदी संग एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस दर्ज, आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ फूटा गुस्सा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
3: I would say the ceasefire is on massive life support. The doctor walks in.
4: Life support पर ceasefire. तेल संकट से त्राहिमाम. दुनिया में तेल का आपातकाल, भारत का क्या हाल? सुलगती हॉर्मोन्स की मजबूरी, विदेशी मुद्रा बचत जरूरी। युद्ध से जख्मी करेंसी, कहां कहां ऑयल इमरजेंसी। एशिया यूरोप अमेरिका हर जगह खतरे की दस्तक है।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। दुनिया एक ऐसे महासंकट की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता इस साल आना मुश्किल है। साल 2027 तक यह वापसी का रास्ता खिंच सकता है, और यह हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के जो सीईओ हैं अमीन नासिर, वो कह रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकेबंदी है, पूरी दुनिया की नसों में दौड़ने वाले तेल की रफ्तार पर उसने ब्रेक लगा दिया है। अरामको ने अब चेतावनी दी है कि यह इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई शॉक है, इतना बड़ा एनर्जी सप्लाई शॉक जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आज हॉर्मुज खुल भी जाए तो बाजार को संभलने में अगले कई महीने लग जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि अगर और देर हुई, कुछ और हफ्ते, हम कुछ और महीने भी नहीं कह रहे, अगर कुछ और हफ्ते देर हुई तो तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी। यह तस्वीर कितनी भयावह है, मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, शुरू होने से अब तक 100 करोड़, जी हाँ 1, 2, 3, 10 नहीं, 100 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है, इसमें कमी आ गई है। हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल का अतिरिक्त नुकसान, हर हफ्ते ये नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम के जो निर्यातक देश हैं, इसका जो संगठन है ओपेक, ओपेक देशों का जो उत्पादन है पिछले 20 सालों के सबसे निचले स्तर पर इस समय आकर गिर गया है। दूसरी तरफ अमेरिका में पेट्रोल इस समय $4.55 प्रति गैरल, यानी प्रति गैलन, $4.50 प्रति गैलन के पार पहुंच गया है, और यह औसतन कीमत है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने उनको खुद सुना, तेल बचाने की उन्होंने अपील कर दी है। लेकिन इस भीषण संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को कूड़ा बताकर खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सीजफायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यानी किसी भी वक्त सीजफायर टूट सकता है। ऐसे में दुनिया एक लंबे आर्थिक मंदी की आग में जो बहुत तेजी से जा रही है, उसमें बहुत तेजी से पूरी तरह से झुलसने वाली है। यह इस समय सबसे बड़ा खतरा है। आरामको के सीईओ ने जो चेतावनी दी है, यह दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और ऐसे मौके पर पूरी दुनिया को एकजुट होकर अमेरिका और ईरान दोनों से समस्या का समाधान तलाशने के लिए दबाव डालने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। क्या है आरामको के सीईओ की चेतावनी, आप खुद सुनिए।
3: I would say I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
5: Bad prognostic.
3: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
0: ये बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो सीजफायर है समय, वो लाइफ सपोर्ट पर है, और ऐसे इतनी गंभीर स्थिति में कि अब बचने की उम्मीद महज 1% है। क्या इस दहलीज से दुनिया वापस आ सकती है या जंग एक बार फिर शुरू होने वाली है? और ये बात सिर्फ सीजफायर की नहीं है, ये बात दुनिया की अर्थव्यवस्था की है जो इस समय उसी लाइफ सपोर्ट पर पहुंचती दिख रही है, बेहद गंभीर हालत में। और इसके बावजूद अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की लगभग तैयारी कर चुका है। और ये बड़ी खबर CNN के हवाले से आ रही है। CNN के मुताबिक कुछ हफ्ते बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हमले पर गंभीरता से समय विचार कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस समय बेहद निराश हैं कि ईरान युद्ध को खत्म करने वाली बातचीत को लेकर उनके मुताबिक बिल्कुल गंभीर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी अब ये कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ एक निर्णायक हमले पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो धैर्य है, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और ईरान में बटे हुए नेतृत्व के कारण फैसला लेने में देरी को लेकर भी खत्म हो रहा है। पेंटागन के एक अधिकारी ने ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की अब सलाह भी दे दी है। दूसरी तरफ जो लोग कूटनीति का समर्थन कर भी रहे हैं, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की मांगों को बिना किसी लाग लपेट ईरान को बताए, क्योंकि अब अमेरिका में सोच ये है कि पाकिस्तान चिकनी चुपड़ी बातें करता है, ईरान से वो बातें करता है जो ईरान सुनना चाहता है और अमेरिका से वो बातें करता है जो अमेरिका सुनना चाहता है, और सच्चाई इसकी वजह से बाहर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को सहयोगियों से ये राय मिल रही है, सहयोगियों का मानना यह है कि पाकिस्तान ईरान के अब पाले में जा बैठा है, ईरान के साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पाकिस्तान पेश आ रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक बार फिर ईरान पर विस्तृत चर्चा की है कि अब आगे क्या हमला होगा या बातचीत को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ईरान को भी अगर हम ईरान की भी चर्चा करें तो ईरान इस समय झुकने के मूड में नहीं है। ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उनके नेता हो या फिर उनकी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। गलीबाफ ने चेतावनी यह दी है कि अगर अमेरिका या इसराइल दोनों में से कोई भी अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान की सेना अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गलीबाफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि खराब रणनीति और खराब फैसले का नतीजा हमेशा खराब ही होता है। गलीबाफ का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के प्रस्ताव को कचड़ा बताए जाने और अस्वीकार्य कहकर खारिज किए जाने के बाद आया है। मोहम्मद बागेर गलीबाफ ईरान की ओर से अमेरिका से बातचीत के लिए बनाई गई टीम के मुखिया भी हैं। ऐसे में उनकी यह चेतावनी साबित करती है कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सीज फायर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी किसी भी वक्त सीज फायर खत्म और मिसाइलें एक बार फिर ईरान के आकाश में दिखाई दे सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दो टूक कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर एक तरफा मांगे नहीं थोप सकता। ईरान अमेरिका की ऐसी मांगों के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। इस्माइल बगई ने तेहरान में मौजूद आज तक संवाददाता गीता मोहन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईरान का जो रुख है उसे दो टूक साफ कर दिया। सुनिए,
5: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। ये सब कुछ उसी अन्यायपूर्ण अभियान का हिस्सा है जो ईरान के खिलाफ युद्ध से शुरू हुआ था। ये हमला पूरी तरह से गैरकानूनी था। फिलहाल अमेरिका की ओर से घोषणा की गई है कि वो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए हमें मौजूदा स्थिति की बेहतर जानकारी मिल सकती है।
6: Assessment of the situation through Pakistani mediators.
0: तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो लगभग बंद है। दुनिया का करीब करीब 20% तेल, और तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो LPG और LNG जो गैस

इंडियन बैरल तेल ये समय बाजार में डाला तो है, लेकिन आईए का ये कहना है कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड रिलीज है, ये इसलिए की जा रही है ताकि दुनिया में जो समय समस्या है कुछ हद तक उस पर काबू किया जा सके, लेकिन इसका मकसद बाजार में जो आग लगी है तेल में उस आग को शांत करना है, कीमतों पर कुछ हद तक अंकुश लगाना है और गर्मियों में ईंधन की कमी ना होने दे, इससे जो परेशानी दुनिया में हो रही है उसको थोड़ा कम करना है। अमेरिका हो, यूरोप हो, अगर एशिया की बात करें तो जापान हो, कोरिया हो, इन देशों के पास तेल का बड़ा भंडार है, बड़े बड़े रिजर्व हैं, लेकिन अब रिजर्व जिसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में या आपात स्थिति में या युद्ध में किया जाता है, अब उसका इस्तेमाल देशों ने शुरू कर दिया है। कंपनियां इस क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी बनाकर बाजार में उतार रही हैं, लेकिन ये इमरजेंसी है, ये स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि देशों के जो रिजर्व है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, वो घट रहे हैं और अभी तक जो 20% स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसका कई देशों ने इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो और रिलीज करना पड़ेगा। अगर हॉर्मूज और लंबे समय तक बंद हुआ तो रिजर्व खत्म हो जाएगा और फिर दुनिया के लिए और बड़ी समस्या हो जाएगी। भारत को भी अपने रणनीतिक रिजर्व का इस्तेमाल और डाइवर्सिफिकेशन, यानी अभी तक जो आप मध्य पूर्व से ज्यादा तेल ले रहे थे, अब भारत को अमेरिका से ज्यादा लेना पड़ रहा है, वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है, रूस से लेना पड़ रहा है और देशों से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि सऊदी या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था तेल, उस पर बहुत हद तक अब अंकुश लग गया है और यह दिखाता है कि दुनिया इस समय एक इमरजेंसी मोड में काम कर रही है। रिजर्व में तेल डालकर कीमतों को काबू में रखने की जो कोशिश है ये कुछ समय तक तो काम कर सकती है, लेकिन जो मूल समस्या है वो मूल समस्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना और युद्ध की आशंका कि युद्ध एक बार फिर भड़क जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर यह मामला नहीं सुलझा, तो या तो और बड़ा रिलीज करना पड़ेगा या फिर आर्थिक मंदी किसी एक देश को नहीं, इस बार पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर ले आएगी। और अब दुनिया तेल की कमी से किस तरह जूझ रही है, ईरान के समंदर में आप सोचिए, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, हजारों बैरल तेल बहता नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर खार्ग द्वीप से जुड़ी है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल के निर्यात का सेंटर है। हम आपको सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाएंगे, खार्ग द्वीप के पास एक बड़े तेल के रिसाव के सबूत मिल रहे हैं। 6 से 8 मई के बीच यह रिसाव यूरोप की सैटेलाइट के कैमरे पर कैद हुआ था। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, आप और हम तेल के लिए तड़प रहे हैं लेकिन यहां पर तेल का रिसाव हो रहा है। तस्वीरों में खार्ग द्वीप के पश्चिमी तट पर 45 से 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह तेल का एक बड़ा धब्बा या निशान दिखाई दे रहा है और कुछ अनुमानों के मुताबिक 80,000 बैरल तक तेल बस ऐसे ही बह जा रहा है। इस रिसाव का कारण औपचारिक तौर पर तो नहीं बताया गया है इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से यह तेल का रिसाव हो रहा है। साथ ही रखरखाव में कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि या तो जो पुराने टैंकरों में तेल लादा गया वो लीक हो रहा है, पुरानी पाइपलाइनों में खराबी आ रही है, पाइपलाइन प्रेशर में है। दूसरी तरफ सबूतों के बावजूद ईरान की जो ऑयल टर्मिनल जो कंपनी है वो इस खबर को सिरे से नकार रही है। वो तो दावा कर रही है कि ईरान में सब कुछ ठीक है, लेकिन तेल रिसाव को समंदर में पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी आपदा के रूप में भी देखा जा रहा है और यह बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात पूरी दुनिया के लिए है। अब जब तेल पर दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, तब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसी खबर दी है जिससे ईरान और खाड़ी के एक बड़े देश के बीच जंग छिड़ सकती है। बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले लगभग 39 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान पर गुप्त हमले, सीक्रेट अटैक कर दिया है। यूएई ने ईरान के फारस की खाड़ी में स्थित लवान आइलैंड में एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। यह हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, ठीक उसी समय जब ट्रंप
सीज फायर की घोषणा करने ही वाले थे। यूएई ने इन हमलों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ने

0: यूएई की इस भूमिका का स्वागत किया है क्योंकि खाड़ी के अन्य देश युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से अब तक बच रहे थे, लेकिन 39 दिनों के युद्ध में ईरान ने जो सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो संयुक्त अरब अमीरात में मचाई और यूएई के अनुसार ईरान ने उस पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन पर हमले किए। अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने पलटवार ईरान पर कर दिया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
4: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: The Tailgate Top 20.
7: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
6: The Tailgate Top 20.
8: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
7: Try to keep up.
9: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: जेके मैक्स पेंट्स।
15: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: यार
18: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रो फाइबर है।
18: माइक्रो फाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
18: हमारे सीमेंट में नहीं है,
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Hint, bade aaram se.
3: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Summer Cool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
7: Vimal, bolo zuba kesri.
8: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: एक बजे अचानक अपने बॉस को कौन मैसेज करता है? नहीं करता है ना। अगर करेगा भी तो एक आध दो मिनट बात करके रख देगा ना।
10: वैसे भी तो कुछ फूट रहा था।
11: कुछ भी नहीं फूट रहा था।
12: छुपा के रखा है वो बच्चे को।
13: नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड दैट वुड बी इलीगल।
14: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
15: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
16: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
14: 4 मई काउंटिंग।
15: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
17: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
14: 8 मई CM का ऐलान।
18: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
14: 9 मई शपथ।
19: शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते थी जे।
14: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट। सर्च में नंबर 1। गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1। लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो डिजिटल हो यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.

0: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
1: धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है।
2: जब दुनिया जंग की विभीषिका में जल रहा है, तेल का संकट भीषण शक्ल ले रहा है, कोई नहीं जानता कि तेल की सप्लाई चेन कब सामान्य होगी, तो भारत ने इन चुनौतियों का जवाब अपने अंदाज में निकाला है। संकट का समाधान अनुशासन से निकालने की ठानी है। पीएम मोदी ने देश से अपील की है, एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, एक साल विदेश यात्राओं पर जाने से बचें। और ये सब अपील इसलिए कि देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार इन सब चीजों के आयात पर खर्च न करना पड़े, क्योंकि देश को इस वक्त बेहद महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है।
0: साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
2: पीएम मोदी ने अपनी अपील में कोरोना संकट की याद दिलाई, देश को याद दिलाया कि कोविड जैसे वैश्विक संकट का भारत ने कैसे अपने तरीके से सामना किया, और ये भी याद दिलाई कि एक बार फिर वही त्याग और एकजुटता दिखाने का वक्त आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-26 में भारत ने 4.89 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया, 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए का आयात रहा, 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है, ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं।
0: हमारी धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाएं, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें।
2: देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पेट्रोल डीजल की जरूरतों को पूरा करना है। ये वो सेक्टर है जहां जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अमेरिका ईरान की जंग की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं, सप्लाई ठप पड़ी है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत रखना ही होगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

आज तक की खबर का बड़ा असर, नीट 2026 परीक्षा रद्द, राजस्थान से 45 लोग हिरासत में लिए गए, सीबीआई जांच के आदेश, दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं, जल्द जारी होगी नई तारीख।

छपा था पेपर, दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, सरकार पर भड़के सचिन पायलट। वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से लगातार दूसरे दिन भी बड़ी अपील, तेल बचाए, सोना और विदेश यात्रा टाले। शरद पवार ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, कहा खुद मौजूद रहे प्रधानमंत्री। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, गुवाहाटी में चार मंत्रियों के साथ ली शपथ, मोदी संग एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस दर्ज, आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ फूटा गुस्सा।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। महायुद्ध ईरान और अमेरिका के बीच क्या फिर शुरू होगा? अटकलों के बीच आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा वास्तविकता की धरातल पर उतर रहा है। पिछले दो महीनों में यह कई बार टला, अब आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कई मुद्दों पर उनकी बातचीत होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। इस बातचीत को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 28 फरवरी के बाद से ही चीन ईरान पर हुए हमले को लेकर अमेरिका की लगातार आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, और अब हॉर्मूज की नाकेबंदी के बाद चीन पर भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। साथ ही ईरान के साथ चीन के जो रिश्ते हैं वो खासा दोस्ताना संबंध है, रिश्ते हैं, और जो दोनों के बीच संबंध है, जो तलखी चीन और अमेरिका के बीच बढ़ी थी, अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से उसे कम करने में कुछ मदद मिलेगी, और इसीलिए भी ये जो यात्रा है अमेरिका के राष्ट्रपति की चीन की यात्रा, इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर ईरान ने इस दौरे को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा है और कहा है कि ट्रंप को इस युद्ध के विजेता के तौर पर चीन जाने की गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। उधर अमेरिका लगातार इस कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह IRGC जो है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की सेनाएं हैं, आर्थिक नेटवर्क पर किसी तरह चोट पहुंचाया जा सके, और इसीलिए अमेरिका ने $15 मिलियन के इनाम का ऐलान कर दिया है। खैर, इस युद्ध में जीतेगा कौन ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस दौरान हारा कौन ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जो हारा है उसे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का जो दो मुहापन है ये एक बार फिर सबके सामने जग जाहिर हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान शांति दूत बनने का ड्रामा करता है, ट्रंप को खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ उसने खुफिया तरीके से ईरान के जंगी जहाजों को अपने एयरबेस पर, और वो भी नूर खान एयरबेस पर, रावलपिंडी से सटा एयरबेस है वहां पर छिपा कर रखा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि ट्रंप का चीन दौरा अब शुरू होने वाला है कुछ ही समय में, लेकिन ईरान ने इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप विजेता का भाव लेकर चीन नहीं जा सकते। इसकी वजह यह है कि ईरान की जो मौजूदा शांति है, जो स्थिति है किसी भी कीमत पर, ये इस समय की जो जमीनी स्थिति है यह डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है। उन्होंने तो दावा यहां तक किया कि युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका को कई बार मात दी, इसीलिए ट्रंप इस दौरे पर किसी गलत फहमी में ना रहे और चीन जाते समय यह ना सोचे कि एक विजेता देश का राष्ट्रपति चीन गया है। ईरान का कहना है वो किसी तरह चीन की मदद चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे का इंतजार सिर्फ अमेरिका, चीन या ईरान को नहीं है, बल्कि निगाहें तो पूरी दुनिया की इस समय टिकी हुई है। दुनिया भर में जो तेल का संकट है उसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। शांति वार्ता की पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान का दोमुहापन, भारत तो लगातार ये जानता ही था, इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने यह कह दिया था कि हम दलाल नहीं है, हम दलाली नहीं करते, जो दलाली कर रहा है वो करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की दलाली इस समय दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई है। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है और पाकिस्तान अपना मुंह काला कर चुका है। अब सबको यह लग रहा है कि ट्रंप के आने पर चीन अपनी आर्थिक उम्मीदों का परवान उसे तो चढ़ाएगा ही, अपने दोस्त ईरान की मुश्किलें कम करने में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगाकर दुनिया को दबाने की कोशिश की थी, चीन खड़ा रहा, चीन ने काउंटर टैरिफ लगाया अमेरिका पर, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन जाना पड़ रहा है, जिसमें अमेरिका मीठी मीठी बातें तो करेगा लेकिन मीठी छुरी से ही चीन अमेरिका को हलाल भी करेगा। देखिए ये रिपोर्ट।
1: आखिरकार चीन जा रहे हैं ट्रंप। आज रात बीजिंग पहुंचेंगे ट्रंप। होगा शुद्ध व्यापार या मुद्दा होगा ईरान वॉर? महायुद्ध फिर छिड़ने से पहले महामुलाकात का इंतजार। बीजिंग की सड़कों पर दौड़ती ये गाड़ियां हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सुरक्षा बेड़े की। द बीस्ट के अलावा सीक्रेट सर्विस ने चीन में मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि आज रात ट्रंप अपने 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ट्रंप का चीन दौरा टाल दिया गया था। वैसे भी ईरान के साथ चीन के दोस्ताना और व्यापारिक रिश्ते जग जाहिर हैं। युद्ध छिड़ते ही चीन ने अमेरिका की आलोचना की थी और दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। जैसे जैसे हुर्मुज में हाहाकार बढ़ने लगा, ईरान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होने लगा, क्योंकि तेल का निर्यात रुकने से उसके बाजारों पर असर हो रहा था। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये शक भी था कि चीन दोहरे इस्तेमाल वाला सामान पाबंदी के बावजूद ईरान में भेज रहा है, जिससे ईरान सस्ते और असरदार ड्रोन बनाने में कामयाब हो रहा है। दोनों के बीच रिश्तों में तल्खी इस कदर बढ़ने लगी कि मामला कई बार संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूएन में चीन के राजदूत ने तो इतना तक कह दिया था कि ट्रंप के चीन दौरे तक हुर्मुज ना खुला तो दोनों देशों के बीच बातचीत में ये बड़ा मुद्दा होगा।
2: I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship.
1: माना जा रहा है कि ट्रंप के इस दौरे पर ईरान युद्ध पर अहम बातचीत हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बाजारों पर इस जंग का अच्छा खासा असर हो रहा है। वैसे बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा चीन दौरा होगा। अपने पहले कार्यकाल में 2017 में वो बीजिंग गए थे, उस समय शी जिनपिंग ने उनका शानदार स्वागत किया था और दोनों के बीच $250 बिलियन की बिजनेस डील का ऐलान हुआ था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं चीन की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये एक अद्भुत देश है जिसके नेता राष्ट्रपति शी का सभी सम्मान करते हैं। दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। ट्रंप के साथ कई बिजनेस और टेक लीडर भी चीन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक इनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, बोइंग के सीईओ केली ऑटरबर्ग, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल बीबैक और मेटा की एग्जीक्यूटिव डीना पॉवेल भी शामिल हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है ट्रंप के चीन दौरे का भी और महायुद्ध का भी। आज तक ब्यूरो।
0: क्या चीन यात्रा से शांति का मार्ग निकलेगा या फिर युद्ध फिर भड़केगा, यही इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है। वैसे इतने हमले होने के बावजूद जो ईरान की सेनाएं हैं और खासतौर पर अयातोला की जो सेनाएं हैं, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये इतनी मजबूत कैसे है? आखिर उसकी ताकत को बढ़ाने वाला सिस्टम क्या है? जो आर्थिक मदद जो मिल रही है वो कहां से मिल रही है? और इस प्रश्न को लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है और इसीलिए अब इसके बारे में जो खुफिया जानकारी अमेरिका को देगा कि IRGC की आर्थिक कमर कैसे तोड़ी जाए, उसको $15 मिलियन इनाम देने का अमेरिका ने ऐलान किया है। डील के लिए तेहरान पर दबाव बढ़ाने और ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने की लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे IRGC अपनी प्रॉक्सी शाखाओं को, आतंकी संगठनों को लगातार फंड मुहैया करा रहा है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 12 लोगों और एजेंसियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थी जो चीन को ईरानी तेल बेचने और आवाजाही को आसान बनाने में IRGC की मदद कर रहे थे, पैसे की आवाजाही को। और उसके बावजूद चीन को और IRGC को कमजोर करने में अमेरिका सफल नहीं हुआ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चीन के दौरे पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य एजेंडे पर है, और 5 इसमें मुख्य बातें हैं। सबसे बड़ा और दुनिया की नजर इस पर है ईरान का युद्ध। दूसरा, टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि एक बार उन्होंने टैरिफ लगाया तो दुनिया उनके कदमों में झुक जाएगी। चीन ने वापस टैरिफ लगा दिया और फिर अमेरिका को भी ठिठकना पड़ा। फिर जिस डील की वो बात कर रहे हैं, क्या बड़ी डील कर पाएंगे वो अलग अलग मुद्दों पर, या फिर कुछ उनके साथ सीईओ तो जैसा हमने आपको बताया कई जा रहे हैं, कुछ डील्स को वो आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि उनकी कोशिश यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लेकर आए और मैन्युफैक्चरिंग चाइना की सबसे बड़ी शक्ति है। फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति की कोशिश यह है कि चीन जबरदस्ती ताइवान को हड़पने की साजिश को आगे ना बढ़ाए। वैसे क्या 2027 तक चीन ऐसा कर सकता है या 2046 के प्लान को उसे फिर रिवाइव करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा मुद्दा है, रेयर अर्थ मटेरियल एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अमेरिका की कोशिश यह है कि जिस तरह से चीन ने अमेरिका को पकड़ के रखा है, अमेरिका के पास भी कोई ऐसी नस वो चीन की दबा सके। और क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कि अगर रेयर अर्थ मटेरियल वो अमेरिका को नहीं देगा तो ईंधन अमेरिका चीन को नहीं देगा, क्या ये इस तरह की बातें आगे बढ़ सकती है। अब एक और आपको चौंका देने वाली बड़ी खबर जो पाकिस्तान के दो मुहेपन को दुनिया के सामने उजागर करती है, क्योंकि अमेरिका ने भी अब कहना शुरू कर दिया और अमेरिका में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो दोगलापन लगातार दिखा रहा है। यह खबर ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ईरान के विमानों को अपने सैन्य हवाई अड्डों पर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी से सटा एयरबेस है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ठोक दिया था, उसी नूर खान एयरबेस पर ईरान के जहाजों को खड़ा किया गया है। CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अप्रैल के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस भेज दिए ताकि अगर युद्ध फिर शुरू होता है तो विमानों को ईरान में निशाना न बनाया जा सके, वो पाकिस्तान में सुरक्षित रहे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने जिन विमानों को नूरखान एयरबेस पर तैनात किया उसमें ईरान की वायुसेना का एक RC-130 तो ही विमान भी शामिल है। कहा यह जा रहा है ईरान अपने बचे हुए सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में छिपा रहा है। और अमेरिका में अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो इससे पाकिस्तान का दो मुहापन दुनिया के सामने उजागर हो जाता है और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को कार्रवाई के बारे में अब सोचना चाहिए। लेकिन ये एक इकलौता मुद्दा नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पाकिस्तान पर आरोप यह लग रहा है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए आसिम मुनीर वही बातें करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं। और फिर यही बात ईरान का भी कहना दावा है कि जब आसिम मुनीर ईरान गए थे तो वो अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बना रहे थे और ईरान का पक्ष लेकर वो अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। और यह दिखाता है कि पाकिस्तान ना ईरान का सगा है ना अमेरिका का सगा है, पाकिस्तान केवल दोनों का इस्तेमाल करके अपनी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और यह पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। कहीं से वो बातचीत करके अपने लिए पैसे जुटा लेना चाहता है, अमेरिका से हथियार ले लेना चाहता है और ईरान से ईंधन ले लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.
8: Yeah, I tried to.
7: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
9: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: ग्रैंड बाजार 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है. इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है, जहां पे सब कुछ बसता है या फिर या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था. जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं वो भी इसी जगह से शुरू होता है. इतना इम्पोर्टेंट है ये ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी. बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पूरे बाज़ार को बनाया गया है. एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है. कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाजार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का. खूबसूरती की बात करें तो तेहरान की का कोई जवाब नहीं. यहाँ के लोग, यहाँ की जगह, लेकिन यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं. जहाँ एक ज़माना था जब यहाँ पे बहुत पर्दा होता था, अब आपको दिखेंगे अलग अलग किस्म के लोग, कुछ जो करते हैं, कुछ जो नहीं भी करते हैं. और वो रिलैक्सेशन आया है बड़े ही जद्दोजहद के साथ. What is interesting यहाँ पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आप सामान यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इटालियन ब्रांड है, Videlmi, right? This is Videlmi. इटालियन ब्रांड है जो लाइसेंस के साथ ईरान में बेच रहे हैं. हमने हर जगह जाके देखा, कई सारे मॉल्स में भी देखा, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आराम से अपने लाइसेंस के साथ बेच रहे हैं. तो सैंक्शंस का जो मकसद है वो क्या रहा? जब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, जब हम यहाँ पे फरवरी में आए थे तो हमने आपको दिखाया था और फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ नाम बदलकर, कुछ नाम के साथ यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं. बहुत ही बड़ा मार्केट है ईरान. बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हर ब्रांड आपको ईरान में नजर आएगा.
9: जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का, मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है. हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए. भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं. बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है. साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है. इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो. अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है. आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी. इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बड़ा असर, नीट 2026 परीक्षा रद्द। सीबीआई ने जांच की शुरुआत की, सवालों के जवाब से बचते दिखे धर्मेंद्र प्रधान। कांग्रेस ने साधा निशाना, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपा था पेपर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एनटीए महानिदेशक बोले किसी को भी बच्चों के भविष्य से नहीं करने देंगे खिलवाड़। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, गुवाहाटी में चार मंत्रियों के साथ ली शपथ, मोदी संग एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका, 2000 कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, अर्जी में हिंसा को लेकर जांच की मांग। पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस दर्ज, आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ फूटा गुस्सा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि देश के नौनिहालों की तकदीर के साथ हो रहा खिलवाड़ कब तक चलेगा और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्योंकि देश की करीब 1 करोड़ की आबादी यानी करीब 22 लाख बच्चों के परिवार के लोग आज की एक खबर से सदमे में है। और खबर यह है कि 9 दिन पहले यानी 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट की परीक्षा रद्द हुई थी की गई थी वो आज रद्द कर दी गई है। रद्द इसलिए की गई है क्योंकि इस परीक्षा का पर्चा लीक हो चुका है। अब उस पर्चा लीक केस की सीबीआई जांच कराई जा रही है, धरपकड़ कराई जा रही है। 40-45 लोग पकड़े जा चुके हैं। राजस्थान की एसओजी की जांच में पता चला है कि नासिक में जहां पेपर छापे थे वहीं से लीक हो गए। वहां से गुरुग्राम, जयपुर, सीकर, कश्मीर, बिहार और केरल, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक, पूरे देश में वो पर्चा गेस पेपर के नाम पर यानी अनुमानित पेपर के नाम पर बेचा जा रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, 28 लाख रुपए तक में पेपर बेचने का खुलासा हो रहा है। और पर्चे में भी 1-2 सवाल लीक नहीं हुए हैं। बायोलॉजी के पूरे 90, केमिस्ट्री के पूरे 45, हूबहू कॉमा फुल स्टॉप के साथ सारे सवाल लीक किए गए। अब राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 10 से 12 वर्षों में दाखिले से लेकर भर्ती तक की 80-90 परीक्षाओं में पर्चे लीक हो चुके हैं, लेकिन वो गैंग अभी तक पकड़ा नहीं गया। सरकार ने पर्चा लीक करने के लिए एक नया सख्त कानून भी बना दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काया पलट कर दिया, एक रिफॉर्म उसमें करवाया गया, लेकिन पर्चा लीक अभी तक नहीं रुका। एनटीए की कराई गई 14 में से 5 परीक्षाओं में गड़बड़ी हो चुकी है, यानी रिफॉर्म होने के बाद जो 14 परीक्षाएं हुई उसमें से 5 जो परीक्षा है उसमें लीक हो गई है। 2024 में इसी नीट के पेपर को जो लीक हुए थे उसकी सीबीआई जांच कराई गई थी, लेकिन अब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाई है। ऐसे में 2 बड़े सीधे सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। एक तो यह कि हर इम्तिहान, हर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो रहा है, यह कैसे रुकेगा और आखिरकार यह लीक क्यों हो रहा है? क्या सरकार के पास कोई और उपाय नहीं है? दूसरा यह कि आज तक किसी भी गुनहगार पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? हमारे साथ चर्चा में विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं और कुछ सवाल हम एनटीए के डायरेक्टर जनरल से भी पूछेंगे, लेकिन पहले जरा आप ये रिपोर्ट देख लीजिए।
1: जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
2: जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम सब ने 2 साल पूरी मेहनत की है, हम लोग तो रीनीट डिजर्व नहीं करते।
3: अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था वैसे तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा शायद।
4: जग के मेहनत करना फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लाइक लॉजिक नहीं बन रहा है।
5: 2 बरस की तपस्या, 200 मिनट का इम्तिहान, 22 लाख उम्मीदें, अनगिनत अरमान, सब के सब चकनाचूर कर दिए गए।
6: हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मींस ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है।
7: हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर।
8: हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है।
5: कहां तो 3 मई को परीक्षा देकर बच्चे घर लौटे थे कि 7 मई को परीक्षा के पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख, जगह का इंतजार करेंगे, फिर वही तैयारी, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद और फिर वही पेपर लीक का डर, क्योंकि मुट्ठी भर संगठित अपराधियों के गिरोह के सामने 140 करोड़ की ताकत वाली हुकूमत का इंतजामिया एक इम्तिहान तक को महफूज नहीं रख सकता। नीट का पेपर लीक हो गया।
9: ये पेपर केवल राजस्थान में आउट नहीं हुआ है, पूरे देश में आउट हुआ है। तुरंत भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि इसे रद्द किया जाए। पूरे देश में 15 दिन से नीट का पेपर आउट था। एजेंसियों को झांसा देने के लिए ये जो है 410 सवालों का या फिर कह लीजिए कि 80 पेज का एक पीडीएफ बनाया गया था ताकि कोई शक न कर पाए इसमें घुस। पूरा नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, सारे नेटवर्क को नासिक के पुलिस अधिकारी को बता दिया गया है।
5: भंडाफोड़ हुआ कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल 1,000 रुपए से लेकर 28 लाख रुपए तक में गेस पेपर के नाम पर भंडारे के प्रसाद की तरह बट रहे थे। पता चला कि पर्चे नासिक में छपे तो गुरुग्राम पहुँचे, गुरुग्राम से जयपुर, जयपुर से जमवा, रामगढ़, वहाँ से सीकर, सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरलम, केरलम से उत्तराखंड। मतलब ईमानदार मेहनती विद्यार्थी पढ़ लिख कर आँखें फोड़ रहे थे और लीक पर्चाधारी उनके सपनों के परखच्चे उड़ा रहे थे। वो तो किसी ने एनटीए को शिकायत कर दी और राजस्थान के एसओजी ने भंडाफोड़ कर दिया और नासिक से राजस्थान तक ताबड़तोड़ 40-45 लोग हिरासत में ले लिए। मामला मल्टी स्टेट बड़े सिंडिकेट का समझ में आने लगा तो जांच सीबीआई से कराने का फैसला हुआ। अब छात्र संगठन प्रदर्शन करें, कुछ पिछड़ गए कोचिंग वाले इंसाफ की मांग करें, कुछ टीचर मास्टर सख्ती की मांग करें, कुछ एक्सपर्ट सलाह दें, लेकिन इस पेपर लीक से उन 22 लाख परिवारों के करोड़ से अधिक लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी वही जानते हैं।
8: उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट वो नहीं हो पाता है।
10: ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ।
11: पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है।
5: इधर पर्चा लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर राजनीतिक सवालों की बौछार हो गई।
12: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
13: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
14: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
15: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
5: राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया। विपक्ष गिनाता है कि 1-2 नहीं 89 पर्चे लीक हुए। मजाल है कि एक मामले में भी दोषियों को सजा मिल पाई। पर्चा लीक का आतंक इतना बढ़ गया था कि मोदी सरकार ने नया कानून तक बना दिया। कि अगर कोई इसका दोषी साबित होता है तो उसे 3-5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा है। अगर प्रेस वाले ने पर्चा लीक किया तो उस पर 4 साल का बैन, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ परीक्षा का खर्च वसूलने का प्रावधान। अगर परीक्षा में मदद करने वाली एजेंसी के लोग पर्चा लीक करते हैं तो 3-10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना है, और अगर गिरोह पर्चा लीक करता है तो 5-10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ जुर्माना है। लेकिन मजाल है कि इतने सख्त कानून का रत्ती भर भी डर उस गैंग को हो, क्योंकि पर्चा लीक उस गैंग के लिए गुनाह नहीं, धंधे की परंपरा हो गई। क्योंकि मोदी राज की बात कर ले तो 2016, 2021, 2024, 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए या लीक का दावा हुआ। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया है, लेकिन अब तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली।
16: अपने इस एनटीए के निर्णय को सकारात्मक मान के चलना, इसका एक बेहतर करने का अवसर मिला ये लेकर अपने दिल से मन से पढ़ाई चालू कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ और कहीं पे अब टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो।
5: हालांकि परीक्षा कराने वाले अब यही दलील देकर बचने की कोशिश करते हैं कि कम से कम पेपर लीक कांड का खुलासा, भंडाफोड़, सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा जैसे कदम तो सरकार उठा रही है, वरना अक्सर तो बरसों बरस फले फूले पन पे पसरे ये पेपर लीक गिरोहों की करतूतों तक का पता नहीं चलता। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने 2024 में कानून, सख्त कानून बना दिया और कहा कि अब इसके बाद पेपर लीक रुक जाएगा, क्योंकि 30-10 साल की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो पेपर की चोरी करने वाले, लीक करने वाले जो लोग हैं, जो गिरोह हैं, उस पर सरकार किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं ला पाई और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि 3 तारीख को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो सवाल कई है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर विशाल मिश्रा एनालिस्ट है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में शामिल होंगे। ब्रजेश महेश्वरी फाउंडर डायरेक्टर है एलन करियर इंस्टीट्यूट के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार जांच एजेंसियां इसमें क्या कर सकती है। 3 सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहला सवाल, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद रोकने वाला भारत, पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि बाकी सारी चीजों पर तुरंत कार्रवाई, लेकिन पेपर लीक पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं इस पर रोकथाम हो पा रही है? दूसरा सवाल, 22 लाख से अधिक बच्चों की मानसिक प्रताड़ना की परेशानी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या एनटीए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तीसरा सवाल, पेपर लीक के गुनहगारों की फास्ट ट्रैक पे सुनवाई और सजा क्यों नहीं होती है? 2024 में 600 से ज्यादा लोग पेपर लीक मामले में पकड़े गए थे, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई चल रही है, किसी को भी सजा नहीं हो पाई है। और बड़ी खबर पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि 3 तारीख की परीक्षा रद्द हो गई है। अब डीजीए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह कहा गया है कि एनटीए का यह बयान आ गया है कि 6 से 8 दिन में जो पेपर का जो नया डेट होगी वो डिक्लेयर की जाएगी। अभिषेक सिंह है, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह है, उनका यह बयान है और उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए, 22 लाख विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी घोषणा, जरा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले
17: 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा?
18: आप क्या कर रहे हैं सर?
17: पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर?
19: एंटायर प्रोसेस विल बी ओवर विद इन 14 डेज।
20: प्रोसेस
17: अभिषेक जी पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक।
20: पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे, यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो टॉलरेंस है, परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा।
18: 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या

0: मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। उस मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा, तब ये चीजों को सामने जो है इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। मैं तो कहूंगा कि ठीक है, 7 तारीख को मैंने एनटीए का देखा कि उन्होंने शाम को उनको सूचना मिली कि कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं, 8 तारीख की मॉर्निंग में उन्होंने लॉ एजेंसीज को अप्रोच किया, फाइनल डिसीजन हुआ, सरकार ने भी इसको सीबीआई को सौंप दिया, परीक्षा कैंसिल हुई कि ताकि इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल ना उठे। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब जीपीएस लगा था, जो ट्रैक जो जिन व्हीकल्स में पेपर जा रहा था, जो सीसीटीवी लगे थे वो एआई असिस्टेड थे, 5G जैमर्स लगे थे, ऐसी सुरक्षा को कौन है जो भेज सकता है? सवाल ये उठता है साहिल जी, इसकी तकनीकी पहलुओं पर जाइए।
1: नहीं, सवाल ये भी उठता है
0: तो मेरा ये कहना है,
1: विशाल मिश्रा जी, सवाल ये भी उठता है, 3 तारीख को परीक्षा होती है, पेपर लीक जो हो रहा है उसकी शिकायतें 1 महीना पहले से आ रही थी, 1 महीना पहले से पूरे देश भर में अलग अलग जगह से यह कहा जा रहा था कि भाई ये एक पेपर आया है और कहा जा रहा है कि अनुमानित पेपर है, 1 महीने से शिकायत आ रही थी, आज तक के पास भी ये पेपर आया था, हमने उस खबर को दिखाया था।
0: हाँ सर,
1: उसके बाद आज 12 तारीख को आखिरकार जाकर सरकार कहती है कि नहीं नहीं हम उसको रद्द कर रहे हैं, एनटीए कह रही है कि हम उसको रद्द कर रहे हैं, ये कहां का न्याय है, कौन कर रहा है, इससे ज्यादा कैसे हो रहा है, ये भी तो सवाल उठता है ना यहां पर,
0: ये मार्केट। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है कि जब ये चीजें न्यूज में आई उसी टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इस बात का इंतजार हो रहा हो कि पेपर को, असली पेपर को देख लिया जाए, एक संभावना बनती है ना कि हो सकता है एक जो है पेपर को देख लिया जाए। सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा सेंट्रलाइज एग्जाम है तो क्यों ना सेंट्रलाइज जो है प्रिंटिंग हो। अभी आप न्यूज में चला रहे थे कि वहां से निकला वहां गया, इसका मतलब कि जहां पेपर छपा या उसके आसपास की कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, ये तो कहिए थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि जो बच्चों के कैरियर से तरीक भी खिलवाड़ नहीं कर रही, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए,
1: क्या बात है?
0: एक फेयर सिक्योर क्रेडिबिलिटी बनाए रखने
1: कम से
0: के
1: कम
0: लिए,
1: आज कोई बीच बचाव नहीं होगा,
0: निर्णय हो गया कि हाँ चलो एग्जाम कैंसिल किया जाता है,
1: आज कम से कम कोई बीच बचाव नहीं होगा। अतुल लोंडे पाटिल यहाँ पर प्रोफेसर मिश्रा कह रहे हैं थैंक्स टू गवर्नमेंट कम से कम लोग पकड़े जा रहे हैं,
0: साहिल जी
1: थैंक्स टू गवर्नमेंट कम से कम लोग पकड़े जा रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल।
0: हाँ
2: नहीं नहीं, थैंक्स टू गवर्नमेंट तो है,
1: अदा करिए सरकार का।
2: 19 राज्यों में 62 पेपर लीक हुए हैं थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट। इतना एआई सिस्टम, 5G, जीपीएस, सैटेलाइट सब लगाने के बाद पेपर लीक हुए थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि लोग पकड़े गए, है ना। बिना सरकारी आश्रय के, बिना संरक्षण के क्या इतना बड़ा पेपर लीक हो सकता है? ये दूसरी बार हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के, पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, अभी उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है शिक्षा मंत्री के। क्या खेल शिक्षा महिला युवा संबंधित जो केंद्रीय संसदीय स्थायी समिति है उसने इस बारे में क्या संशोधन नहीं किया था? 5 पेपर में अनियमितता हुई थी ये बताया नहीं था? क्वेश्चंस वापस लेना कॉमन नहीं हो गया? 12 क्वेश्चंस आपने जेडब्ल्यूई के एग्जाम से वापस लिए, ये क्या हुआ नहीं है? 65 पेपर लीक होने के बाद अगर कोई सरकार को धन्यवाद देता होगा तो अभी तो सब चरण वंदन है सरकार का, लेकिन ये सरकार माफी के लायक नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों बैठे हैं वहां पर, ये क्यों इस्तीफा नहीं देते, सिस्टम पे प्रेशर क्यों नहीं आता? मंत्री का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए कि सिस्टम में एक मैसेज जाता है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये लफाजी जो है ना ये बंद करो, ये लफाजी है सब कि सरकार ने
1: प्रोफेसर मिश्रा जवाब दीजिए,
2: और इस्तीफा लेने से क्या होगा? सुनिए एक मिनट साहिल जी प्लीज, मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आया हूं, तो ये जो लफाजी है ना कि सरकार ने इस्तीफा लेने से क्या होगा, इस्तीफा लेने से ये होगा कि सिस्टम में एक मैसेज जाता है कि भाई कोई भी गलती करे आपको वहां से हटना पड़ेगा, आप पे कार्रवाई होगी, ताकि सिस्टम पे एक वचक बना रहे। क्या कर रहे हैं अभिषेक सिंह एनटीए के डायरेक्टर डीजी, क्या कर रहे हैं वो, क्यों पद पे बैठे अब तक? उनका अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। ये सारी व्यवस्थाएं कुचल दी गई है क्योंकि इसको राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण के बिना हो नहीं सकता।
0: मुझे
2: कितने लोग पकड़े गए अकेले बिहार में, 21 पेपर लीक हुए हैं अकेले बिहार में
0: साहिल जी,
2: 10वीं और 12वीं के।
1: प्रोफेसर मिश्रा, कुल मिलाकर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि डर इसलिए भी नहीं बैठ रहा है, पहले तो आपने कानून बना दिया लेकिन डर इसलिए भी नहीं लग रहा है किसी को क्योंकि सिस्टम में दबाव नहीं आ रहा है। जब तक किसी का इस्तीफा नहीं होता है तब तक सिस्टम पर दबाव नहीं बढ़ता है, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सिस्टम में क्यों बैठे हैं? विपक्ष का सवाल यह है
0: साहिल जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए या जहां से मानसिकता

0: निकलकर आ रही है पेपर लीक करने की, ये जो मास्टरमाइंड बैठ रहे हैं इस मानसिकता को कुचलना होगा, इसका सलूशन ये होगा। यहां पर बैठकर कांग्रेस को राजनीति बहुत सारे मुद्दे हैं करने के लिए। कम से कम आप ये चीज तो देखिए ना कि सरकार ने एग्जाम तुरंत कैंसिल किया ना, बच्चों के हित को देखते हुए। आपके यहाँ राजस्थान सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। आपने कितने लोगों का रिजर्वेशन करवाया था? आपने कितने लोगों का रिजर्वेशन करवाया था?
1: अरे
0: बात करिए ना, आपका घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? देखो जो सरकार कर रही है उसको एप्रिसिएट करिए। सरकार ने बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ ना होने पाए इसके लिए एग्जाम कैंसिल किया, सीबीआई को इंक्वायरी सौंपा, लोग पकड़े जा रहे हैं और इसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये कह देना इस्तीफा राजनीतिकरण करना, आपके यहाँ राजस्थान में 19 एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, आपके यहाँ किसने इस्तीफा दिया? हर बात पे राजनीति करनी होती है आपको। ये तो नहीं कहेंगे आप, ये तो नहीं कहेंगे कि इसका बैठ कर सोल्यूशन निकाला जाए, इस मानसिकता को कुचला जाए, राजनीति करने चले आते हैं। अरे बच्चों के कैरियर का सवाल है ये।
2: ठीक है, ठीक है, अतुल लोंडे पाटिल, एक मिनट, प्रोफेसर मिश्रा, चलिए राजनीति दूर रखते हैं, राजनीतिक सवाल दूर रखते हैं। मेरा सवाल सिंपल है, प्रोफेसर मिश्रा, एक मिनट अतुल लोंडे पाटिल, नहीं, एक सेकंड अतुल लोंडे पाटिल, मेरा सवाल सिंपल है, विशाल मिश्रा जी, मेरा सवाल सिंपल है। देखिए, 15 जून 2024 को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ने एक रिपोर्ट रखी थी, जो रिपोर्ट सरकार ने एक्सेप्ट की हुई है। उस रिपोर्ट पे क्या कहा गया था कि जेईई मेंस की एग्जाम जो होती है उसमें 12 सवालों को बदलना पड़ा। यही एनटीए वो सवाल बना रही थी, यही एनटीए वहां पर ये परीक्षा ले रही थी। दूसरा, उस रिपोर्ट पे क्या कहा गया, सीयूईटी जो सरकार ने शुरू की गई परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट है, वो टेस्ट कभी भी, ये रिपोर्ट है मेरे साथ, वो जो टेस्ट है वो कभी भी, उसका आयोजन और परिणाम कोई समय सीमा नहीं होती उसकी, कभी भी आयोजन होता है, कभी भी परिणाम निकलता है, क्योंकि आगे का पूरा जो कैलेंडर है उससे डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि एनटीए की वार्षिक रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वो एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट नहीं करती। आप बताइए मुझे कि एनटीए का क्या करना चाहिए? सरकार ने इस बात को माना कि एनटीए में सुधार की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल हो गए, आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि एक पेपर लीक हो गया 3 तारीख को और 12 तारीख को हम उस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, 6 से 8 दिन में नया पेपर हम जारी करेंगे या तारीख जारी करेंगे। अब प्रोफेसर मिश्रा, अब आप मुझे जेन्युइनली बताइएगा, यह रिपोर्ट होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ लीक का मामला नहीं है
0: साहिल जी मैं बिल्कुल ये बात स्वीकार करता हूं कि कहीं पर किसी भी प्रकार की जो भी कमी है उसे तत्काल प्रभाव से दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर मैं ये सवाल, जो विपक्ष उसका राजनीतिकरण कर रहा है, मैं कह रहा हूं इसका बैठकर अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी ना होती साहिल जी, तो पेपर लीक कैसे होता? ये बात तो फैक्ट है कि पेपर लीक हुआ, सीबीआई को, एजेंसी को सौंपा गया। लेकिन ये बात भी तो देखनी पड़ेगी कि सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर बात का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है, कमियां होंगी उस पर सवाल करिए, बट हर चीज का पॉलिटाइजेशन मत करिए। एक बात, दूसरी बात साहिल जी, ये भी तो देखना
2: होगा, कैसे अतुल लोंडे पाटिल पॉलिटाइजेशन कैसे कर रहे हैं आप? अतुल लोंडे पाटिल जवाब दीजिएगा,
0: लगभग 240 एग्जाम बनाए हैं
2: अभी, मैं ये विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है,
0: एग्जाम दिया है
1: साहिल, अभी सुनो अभी
2: भविष्य से जुड़ा हुआ मामला
0: है, सवाल है जो बच्चे आपको सुन रहे होंगे। नहीं, एक सेकंड प्लीज,
1: 2014 जुलाई,
0: एक सेकंड साहिल जी, प्लीज,
1: 2015
2: उनको जवाब दे दीजिए ना,
0: क्योंकि
2: जब
0: प्लीज
1: सुन लीजिए।
2: चलिए एक मिनट, जरा सबको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी ना जिनको सवाल पूछने वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा सबको शांत कर दीजिएगा, क्योंकि डीजी है अभिषेक सिंह, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एनटीए के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह जी, सबसे पहले आप बच्चों को क्या कहेंगे? 12,97,000 छात्र हैं, उनका 3 तारीख को परीक्षा हुई थी और एंग्जाइटी होती है परीक्षा की, कैंसिल कर दी गई है, क्या कहेंगे उनके लिए?
3: हम उन सभी 22,69,000 बच्चों से यह कहना चाहेंगे कि यह दुर्भाग्य है, यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस निर्णय पे लेना पड़ा कि जो परीक्षा 3 तारीख को सुचारू रूप से कंडक्ट की गई थी उसे हमें कैंसिल करना पड़ा, उसे हमें री एग्जाम करना पड़ा। हमें उन सब की भावनाओं से, उन सब के गुस्से से, उन सब के एंगर से को समझ सकता हूं, मैं खुद एक पिता रहा हूं, मेरे बच्चे इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो इस तरह की सिचुएशन किसी भी तरह से अनुमन्य नहीं है। पर साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि परीक्षा की इंटीग्रिटी को जो क्रिमिनल्स, जो स्कैमस्टर्स, जो फ्रॉडस्टर्स वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको भी कामयाब होने नहीं दे सकते। हमें उन्हें सजा देनी जरूरी है, हमें उन्हें पनिश करना जरूरी है, ताकि जो बच्चे अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस परीक्षा में अपीयर होते
2: ये
3: हैं।
2: ये तो बात की बात हो गई ना अभिषेक जी, लेकिन क्या इस बात की जांच होगी कि इस तरीके का पेपर लीक होता क्यों? और अब सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये सिस्टमैटिक फेल्यूर हम मानकर चले, क्योंकि 2024 में सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये सिस्टमैटिक फेल्यूर है। क्या हम ये मानकर चले, चूंकि परीक्षा रद्द हुई है, क्या हम ये मानकर चले कि ये सिस्टमैटिक फेल्यूर है?
3: हमने ये कमिटमेंट दिया था सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को कि हम जीरो एरर परीक्षा कराएंगे विद जीरो टॉलरेंस। तो उस क्रम में अगर जरा सा भी कमी होती है और जरा सा भी अनियमितता होती है, तो हम उसके लिए उसकी जिम्मेदारी को समझते हैं। और उसी क्रम में हमने सीबीआई को इंक्वायरी दी है कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो कोई भी इस परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए, इस परीक्षा के इंटीग्रिटी को वायलेट करने में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई लेंगे। सीबीआई की इंक्वायरी करा करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई जरूरत न करे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए।
2: अभिषेक जी, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले की? कहां से लीक हुआ है, कौन जिम्मेदार है, क्या ये गिरोह है या कोई और मामला है, या एक हाथ कोई हुआ मामला आप कह सकते हैं? 3 तारीख का मामला सामने आया, इसके लिए रद्द हुआ, लेकिन ये पेपर पिछले 1-1.5 महीने से गैस पेपर के नाम पर घूम रहा था सब जगह पर।
3: देखिए, इसकी जानकारी हमें 7 तारीख को मिली, जैसा हमने बताया। 3 तारीख के पहले इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं आई थी, हमने हर वैसी सूचना को वेरीफाई किया था, एक्शन लिया था, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए थे। और ये जानकारी परीक्षा 3 तारीख को सुचारू रूप से कंडक्ट होने के उपरांत आई है। 3 तारीख को जब परीक्षा खत्म हुई तो किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी थी, और हमारा ये उद्देश्य था कि हम परीक्षा को, परीक्षा के उपरांत भी कोई कंप्लेन आएगी उसको भी वेरीफाई करेंगे। तो जब हमें 7 तारीख को यह मैसेज मिला एक विसल ब्लोअर के द्वारा, तो हमने उसकी तत्काल जांच कराई, और इस हद पे जांच कराई 2 मुद्दों पे कि क्या उस पीडीएफ में कोई भी प्रश्न हमारे प्रश्नपत्र से मैच कर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या
2: यह पीडीएफ। बहुत लेट जानकारी मिल पाई आपको, जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गया था, और जैसे मैंने कहा कि 1-1.5 महीने पहले से गेस पेपर के नाम पर, अनुमानित पेपर के नाम पर ये पेपर घूम रहा था बाहर, कहीं ना कहीं ये जानकारी भी तो लेट मिली है। झारखंड
3: की इस पेपर की पहली जानकारी,
2: तब ये कहा गया था ये तो लोकलाइज्ड मामला है, लेकिन आज तो हम पूरा नेशन वाइड नेटवर्क देख रहे हैं ना, केरल से लेकर नासिक से लेकर गुरुग्राम से लेकर सीकर तक पूरा नेटवर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं।
3: सीबीआई इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगा ये कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, परंतु हमारे पास इस पीडीएफ की घूमने की जानकारी और किसी भी चैनल पे इस पीडीएफ के घूमने की जानकारी 7 तारीख, हमने रिपोर्ट दिया है एजेंसीज को, और उसके बाद उसकी जांच हुई है, उसके बाद आई है जो रिपोर्ट्स आई थी 8-9 तारीख को। तो अगर सीबीआई की इंक्वायरी से सिद्ध होता है तो क्लियर हो जाएगा कि कौन शुरू किया था, कहां से शुरू किया था। एनटीए इसकी जिम्मेदारी लेता है, और इसलिए एनटीए ने जो दोबारा परीक्षा होगी उसके लिए कोई शुल्क नहीं चार्ज करने का निर्णय लिया है, जो पिछली परीक्षा हुई थी उसके भी जो फीस है उसको रिफंड करने का निर्णय लिया है
2: एनटीए। अभिषेक जी, नीट को लेकर ही इतना विवाद हमेशा क्यों होता है, नीट को लेकर ही इतने सारे सवाल क्यों उठते हैं बार बार? 2024 में भी यह मामला उठा था, थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देख रहा था, 14 में से 5 परीक्षाएं लीक हो चुकी है, 14 परीक्षाएं कंडक्ट की गई, 5 परीक्षाएं नीट लीक हो चुकी है अब तक। और आपके वेबसाइट पर मैंने देखा कि आपका घोषवाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप परीक्षाएं कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट क्या दिखाता है, 14 में से 5 परीक्षाएं लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है उसमें। जेई के एंट्रेंस टेस्ट में 12 क्वेश्चन जो है वो बदलने पड़ते हैं। स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट देती है कि वार्षिक रिपोर्ट नीट का नहीं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसका नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक फेलियर तो है ना एनटीए के भीतर, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा अभिषेक जी।
3: जी बिल्कुल, जहां
2: भी बच्चों का भरोसा हो सके इस पर।
3: देखिए, जहां भी फेलियर है, जहां भी कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचने की कोशिश कर रहा है। एनटीए ने कमिटमेंट लिया था कि हम बिना एरर के करेंगे, वो विश्वास वो तोड़ा गया किसी के द्वारा, किसने तोड़ा वो सीबीआई बताएगी, परंतु हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम एग्जाम दोबारा कराएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है और अपने एश्योरेंस पे कि हम जीरो एरर एग्जाम कराएंगे उस पर अडिग रहने की बात है।
2: अभिषेक, एक और अभिषेक जी, और एक सवाल मेरा है, क्योंकि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, पेपर लीक के बाद में एक हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट थी और उसमें कहा गया था कि परीक्षा में अटेम्प्ट की सीमा लागू की जाए, उसके जो अलग अलग उन्होंने पैरामीटर्स रखे थे, जो सुझाव दिए थे, उसमें निजी नहीं सरकारी संस्थाओं में परीक्षा केंद्र बने, यह भी उस रिपोर्ट में कहा गया था। परीक्षार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए उनको बायोमेट्रिक से पहचान कराई जाए, पेपर इंक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट पे भेजे जाए, यह भी उसमें कहा गया था। नासिक प्रिंटिंग प्रेस से रिपोर्ट लीक हुआ है, कहा जा रहा है हाइब्रिड मॉडल में कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो, परीक्षा में प्री मेंस के 2 चरण लागू हो, इस तरीके के तमाम उसमें सुझाव दिए गए थे। कितने सुझाव लागू किए गए हैं और कितने सुधार इस राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हो चुके हैं 2 साल के भीतर?
3: जी, जैसे इस बार की जारी परीक्षाएं हुई वो सरकारी केंद्रों पे हुई, बायोमेट्रिक कंप्लीट किया गया, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करी गई, और जैसा मैंने बताया परीक्षा के दिन 3 तारीख को परीक्षा के कंडक्ट करने में, परीक्षा के कंप्लीट होने में कहीं इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि सारे जो बच्चों ने परीक्षा दी उन्होंने कई चैनलों पर कहा, यूट्यूब पर कहा कि इस बार की परीक्षा बड़े सुचारू तरीके से हुई, परंतु हमारी जिम्मेदारी परीक्षा का पूरा क्रम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक रहता है। तो 3 तारीख तक भले कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ, परंतु हम 7 तारीख की रिपोर्ट को भी उतनी गंभीरता से लिए और उसको इंक्वायर कराए, और उसके बाद जो कमी पाई गई उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, और सरकार और एनटीए वचनबद्ध है कि हम इस बीमारी को, इस समस्या को जड़ से दूर करेंगे, और उसी क्रम में आज का निर्णय है। यह निर्णय कठिन है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, एनटीए के लिए, इतने व्यापक स्तर की परीक्षा दोबारा कराना।
2: 2 साल में कम से कम इतना बदलाव जरूर हम कह सकते हैं कि 2 साल पहले जब सरकार इस मानने को भी तैयार नहीं थी कि सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, हम पेपर रद्द नहीं करेंगे जो परीक्षा हुई है, कम से कम आज ये जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द, वो पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल फिर भी रहेगा, 6 से 8 दिन के बाद आपने कहा है कि नया डेट आप जारी करेंगे, क्या इस बार जो विद्यार्थी है वो आप पर भरोसा करें, क्योंकि आगे का टाइम टेबल भी उससे अफेक्ट हो सकता है, जो बाकी परीक्षाएं उनको देनी है या एडमिशन का प्रोसेस है, वो सारी चीजों का अफेक्ट उस पर हो सकता है। आप उन विद्यार्थियों को, बच्चों को क्या कहेंगे, क्या आप पर भरोसा करें,
3: बच्चों पर भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें? बच्चों को बस मैं यही कहूंगा कि हम उनके समस्या को, उनके दर्द को, उनके उनकी जिस परिवेश में है वो उसको अच्छे से समझते हैं, बस उनसे यही गुजारिश है कि इस बार जब हम डेट अनाउंस करें उस परीक्षा के लिए अपनी मेहनत के ऊपर एग्जाम पे आए, और अगर कोई असामाजिक तत्व, तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट, कोई स्कैमस्टर्स, कोई फ्रॉडस्टर, कोई क्रिमिनल अगर क्वेश्चन पेपर देने की बात करता है तो उसके झांसे में ना आए, प्रलोभन में ना आए, ग्रीड पे ना जाएं, उसको रिपोर्ट करें। हम सब मिलकर के इस समस्या को दूर कर सकते हैं जब तक इस तरह के लोगों को हम बढ़ावा देंगे, इस तरह के लोग प्रोत्साहित होते रहेंगे। हमें मिलकर के इन लोगों को जेल भेजना है, इन लोगों को सजा देनी है।
2: अभिषेक जी, और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की जो संस्थाएं हैं, 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री वो बन चुकी है, और हर बार जब भी पेपर लीक होती है तब उसमें से किसी न किसी कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट का नाम सामने आ जाता है, सीकर के भीतर, महाराष्ट्र में लातूर के भीतर भी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक टाइटनिंग होना चाहिए उसका, थोड़ा पेच कस देना चाहिए उसका?
3: अभी हमने इंक्वायरी सीबीआई को दी है, मैं प्रीजज नहीं करना चाहता हूं कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें दोषी नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से हम इसके मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, और सीबीआई की जो भी रिकमेंडेशन होगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, और इस किसी भी अभिभावक को, किसी भी बच्चे को कोई और भी जानकारी है तो उसे हमें कृपया हमारे तक पहुंचाइए, पुलिस तक पहुंचाइए। हम लोग सब वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को सजा दिला पाए।
2: अभिषेक जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा कि अगली परीक्षा जो होंगी ना, कम से कम वहां पर इस तरीके की कोई शिकायत ना आए, और कम से कम टाइम टेबल फॉलो हो, सीयूईटी का टाइम टेबल हो या जेईई मेंस का टाइम टेबल हो, उसमें आने वाले सवाल हो वो बाद में बदल लेना पड़े, क्योंकि हर वक्त हर विद्यार्थी परीक्षा के लिए जो जाता है परीक्षा केंद्र पर, वो एक अलग माहौल में होता है, अलग मानसिक स्थिति में होता है, और दोबारा उसमें उसको जाना पड़े तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ अभिषेक जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: अतुल लोढ़े पाटिल, आपने सुना। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इंस्टेड ऑफ मतलब अपनी बात कहने की बजाय हम जो कार्य है वो करके अपनी बात को सिद्ध करेंगे।
2: ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं। अतुल लोंडे पाटिल, अभिषेक सिंह यहां पर हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, कुछ सिस्टम्स बदलने की तैयारियां वहां पर चल रही है। आपकी प्रतिक्रिया?
4: मुझे एक बात बताइए कि एनटीए जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं करता? ये जो रिपोर्ट आया है सिलेक्ट कमेटी का वो 2024 का है। आज बैठ के अभिषेक सिंह जी यहां पर ये बात कर रहे हैं। मैं भी देख रहा था, क्लैट का पेपर लीक हुआ, जेडब्ल्यू का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर डबल तीसरी बार लीक हुआ है, एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं, 10वीं 12वीं सारी सारी एग्जाम जो है ये सारी एग्जाम लीक हुई है। 62 पेपर 19 राज्यों में 65 पेपर लीक हुए हैं और ये पूरा नेक्सस जो दिखता है उसमें कोचिंग संस्थानों का तो रोल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बिना गवर्नमेंट के सुरक्षा के वहां जो लीक होता है उसके बजाय ये पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट में किसी के भी ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, चाहे बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो, 21 पुलिया गिरे, ना किसी चीफ इंजीनियर पे एक्शन, ना किसी मंत्री पे एक्शन, ना किसी ठेकेदार पे एक्शन, किसी पे कोई एक्शन नहीं होता है। रोज रोज खबरें आती है, बलात्कार की भी खबरें आती है, बीजेपी तो किसी का निकालती नहीं है, चाहे कोई फौजी जो
2: विशाल मिश्रा जी
4: कहते आतंकी के बहन उसके ऊपर
2: एक्शन की मांग है, कहीं ना कहीं किसी का तो सर चाहिए। जल्दी से विशाल मिश्रा जी जवाब, उसके बाद ब्रजेश महेश्वरी से मुझे सवाल पूछने हैं। चलिए विशाल मिश्रा जी।
5: देखिए देखिए साहिल जी, जो हमारे कांग्रेस के शायद प्रवक्ता जी बोल रहे हैं ये पूरी तरह राजनीतिकरण की भावना से बोल रहे हैं।
4: इसमें क्या
5: नंबर एक बात, ये सरकार की संवेदनशीलता ही तो है। नहीं नहीं, अब बोले दीजिए, या तो आप बोल लीजिए। नहीं आप बोले तो मैं चुप रहना, नहीं नहीं आप बोले तो मैं शांत रहना। अरे सुनेंगे, अरे सुनेंगे, अरे सुनेंगे, मैं आपका ही। अरे
2: सुन लीजिए ना अतुल लोंडे जी, जवाब दे रहे, सुन लीजिए, आपने बात रखी, उन्होंने सुना, समय इसी में निकल जाएगा।
5: आप अरे आप जब बोले तो मैं
4: बिलो स्टैंडर्ड्स है, आज हमारे आईआईटी के प्रोफेसर जो है वो बिलो।
2: चलिए जरा दोनों को शांत करिए। ब्रजेश महेश्वरी जी, नहीं एक मिनट जरा प्लीज शांत हो जाइए जल्दी से। ब्रजेश महेश्वरी जी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप करियर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, आपको पता है कि बच्चों पर मानसिक दबाव किस तरीके से होता है, किसी भी परीक्षा के लिए जाते हैं, क्या कोई सिस्टम में चेंज की गुजारिश आपको लगती है, कोई गुंजाइश है कि जो सिस्टम में बदलाव होने चाहिए जिसके वजह से इस तरीके का पेपर लीक ना हो पाए? और आपकी आपका क्या अनुभव रहा है एनटीए जिस तरीके से परीक्षाएं लेती है उसको लेकर?
6: मेरा इतना सा कहना है, सबसे पहले कि एनटीए एग्जाम्स दो तरह से कंडक्ट करे, कि एनटी एग्जाम करती जेई में सीबीटी पैटर्न पर, वहां उसके दो राउंड होते हैं, जनवरी राउंड अप्रैल राउंड, ठीक है। एक एनटी एग्जाम कंडक्ट करती बहुत बड़ा एग्जाम मेडिकल का, नीट का, लेकिन वो ऑफलाइन मोड होता है, पेपर पेन मोड होता है। हम देख रहे हैं हर बार गलती इसमें कुछ ना कुछ हो रही है, मतलब उसी रास्ते पे चल रहे, बारी बार एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों नहीं हम इस पैटर्न को चेंज करें, हम इसको अगर सीबीटी पैटर्न कर लें, जब एनटी अपने लिए जेई मेंस के अंदर दो राउंड होते हैं जिसमें 11-12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जनरली इसमें बच्चे वापस रिपीट भी करता है, तो लगभग 21 लाख बच्चों को जब सीबीटी पैटर्न पे इवेल्युएट कर सकती तो इसपे क्यों नहीं कर सकती? पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा, हम चाहे तो इस एग्जाम को दो स्टेज का कर दें, प्री और मेंस का कर दें, ये भी तरीका अच्छा हो सकता है। तीसरा, ये भी कर सकते हैं कि एनटी के पास अगर दो तरह के एग्जाम है और उसको लोड दिख रहा है, सीयूटी भी वो कंडक्ट करती है, तो क्यों नहीं हम इसके लिए एजेंसी चेंज कर दें, जैसे पहले ऑल इंडिया पीएमटी को सीबीएसई कंडक्ट करती थी, क्यों नहीं हम सीबीएसई को इसको आपस से दे दिया जाए? सुझाव है मेरा ये।
2: तो कई सारे सवाल है जिसको लेकर सरकार के पास करने के लिए एक स्कोप भी है, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें नहीं हो पाई है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास नहीं है जिसके आधार पर सरकारी आस्थापनों में यह परीक्षाएं हो सके। लेकिन एक बड़ा अनसुलझा सवाल यह भी है डॉक्टर विक्रम सिंह, कि नया कानून बनने के बाद भी हम देख रहे थे कि व्यापक घोटाला हुआ था 2008 में, सजा हुई 2024 में आकर, इतने साल लग गए इस पूरे मामले पर सजा होने में। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस संजीदगी से कानून का भी काम होना चाहिए, जो स्विफ्टली काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाए, ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि ये चीजें बढ़ती जा रही है।
7: साहिल जी, कानून बनाना एक चीज है, हथियार रखना एक चीज है, उसका प्रयोग करना बिल्कुल अलग चीज है। दिखाई ये पड़ रहा है कि गिरफ्तारियां तो हुई हैं, सजाएं बिल्कुल नहीं हुई हैं, और सजा ही नहीं, दोषमुक्त पूरी तरीके से सब हो रहे हैं, और उसके बारे में न किसी विवेचक को दंडात्मक कार्रवाई हुई, न किसी प्रोसिक्यूटर को दंडात्मक कार्रवाई हुई। संदेश ये जा रहा है, मूक सहमति, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी को कोई भ्रम ना है, मूक सहमति होना ये चाहिए था कि दोनों को बर्खास्त होना चाहिए था, प्रोसिक्यूटर को भी इन्वेस्टिगेटर को भी। आपने किया धरा कुछ नहीं, 58,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और सब कुछ जो है माला माल है, दोनों हाथ में लड्डू सर कराएंगे। मैं ऐसी कटु बात, क्योंकि मैं फिर ये बातें करने का आदि नहीं हूं। साहिल जी इसमें अगर आप करना चाहते तो 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके 30 दिन में कन्विक्शन करा सकते थे, आपने नहीं किया। आपने 10 साल में 89 पेपर लीक्स हुए, कितने कन्विक्शन करा पाए ये हमें जरा और बता दें, और याद छोड़ दीजिए सुबह की मोटी बात।
2: यही सबसे बड़ी बात है कि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग इस तरीके की चीजें करने से अपने आप को नहीं रोकेंगे। सरकार इस पर क्या करती है, इस पर नजर बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
11: It's my music and it's my station.
10: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Hint, bade aaram se.
11: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
14: Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
15: Vimal, bolo zubaan kesri.
16: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
17: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
18: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
16: 4 मई काउंटिंग।
17: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
19: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
16: 8 मई CM का ऐलान।
20: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
16: 9 मई शपथ।
21: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
16: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।
22: जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है? सर
23: क्या कार्रवाई की सरकार ने?
22: CBI इंक्वायरी का ऑर्डर।
23: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले CBI की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, किसको दंडित किया गया है, किसको सजा दी गई। तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी, कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता।
22: जो नासिक में जिसको हिरासत में लिया है वहाँ पे काफी टेंशन है, असहयोग हो रहा है और पुलिस गई है वहाँ पे, राजस्थान पुलिस और तमाम पुलिस, तो भी उस काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
23: भाई ये तो देखो, पावरफुल लोगों का संरक्षण अगर नहीं हो तो ना तो पेपर लीक करने की कोई हिम्मत कर सकता है। और बार बार हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप पेपर लीक होगा हम कैंसिल कर देंगे, जांच बिठा देंगे, फिर अगली बार फिर पेपर होगा। अब सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। और मैं तो कहता हूँ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप विपक्ष पे उंगली उठाते हैं बार बार, 12 साल से सरकार, केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जाँच के नाम पर ये डिले करना चाह रहे हैं।
24: ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
8: जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम सब ने 2 साल पूरी मेहनत की है, हम लोग तो रीनेट डिजर्व नहीं करते।
9: अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, वैसे तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा शायद।
10: जबकि मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लाइक लॉजिक नहीं बन रहा है।
11: 2 बरस की तपस्या, 200 मिनट का इम्तिहान, 22 लाख उम्मीदें, अनगिनत अरमान, सबके सब चकनाचूर कर दिए गए।
12: हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मींस ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता
13: है। हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर।
14: लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है।
11: कहा तो 3 मई को परीक्षा देकर बच्चे घर लौटे थे कि 7 मई को परीक्षा के पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख जगह का इंतजार करेंगे। फिर वही तैयारी, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद और फिर वही पेपर लीक का डर, क्योंकि मुट्ठी भर संगठित अपराधियों के गिरोह के सामने 140 करोड़ की ताकत वाली हुकूमत का इंतजामिया एक इम्तिहान तक को महफूज नहीं रख सकता। नीट का पेपर लीक हो गया, भंडाफोड़ हुआ कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल ₹1,000 से लेकर 28 लाख रुपए तक में गेस्ट पेपर के नाम पर भंडारे के प्रसाद की तरह बट रहे थे। पता चला कि पर्चे नासिक में छपे तो गुरुग्राम पहुंचे, गुरुग्राम से जयपुर, जयपुर से जमवा, रामगढ़, वहां से सीकर, सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरलम, केरलम से उत्तराखंड। मतलब ईमानदार मेहनती विद्यार्थी पढ़ लिख कर आंखें फोड़ रहे थे और लीक पर्चाधारी उनके सपनों के परखच्चे उड़ा रहे थे। वो तो किसी ने एनटीए को शिकायत कर दी और राजस्थान के एसओजी ने भंडाफोड़ कर दिया और नासिक से राजस्थान तक ताबड़तोड़ 40-45 लोग हिरासत में ले लिए। मामला मल्टी स्टेट बड़े सिंडिकेट का समझ में आने लगा तो जांच सीबीआई से कराने का फैसला हुआ। अब छात्र संगठन प्रदर्शन करें, कुछ पिछड़ गए कोचिंग वाले इंसाफ की मांग करें, कुछ टीचर मास्टर सख्ती की मांग करें, कुछ एक्सपर्ट सलाह दें, लेकिन इस पेपर लीक से उन 22 लाख परिवारों के 1 करोड़ से अधिक लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी वही जानते हैं।
15: उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट
9: वो नहीं हो पाता है।
15: ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ।
16: पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है।
11: इधर पर्चा लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर राजनीतिक सवालों की बौछार हो गई।
17: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
18: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
19: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
20: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
11: राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया। विपक्ष गिनाता है कि 1-2 नहीं 89 पर्चे लीक हुए। मजाल है कि एक मामले में भी दोषियों को सजा मिल पाई। पर्चा लीक का आतंक कितना बढ़ गया था कि मोदी सरकार ने नया कानून तक बना दिया। कि अगर कोई इसका दोषी साबित होता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा है। अगर प्रेस वाले ने पर्चा लीक किया तो उस पर 4 साल का बैन, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ परीक्षा का खर्च वसूलने का प्रावधान। अगर परीक्षा में मदद करने वाली एजेंसी के लोग पर्चा लीक करते हैं तो 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना है। और अगर गिरोह पर्चा लीक करता है तो 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ जुर्माना है। लेकिन मजाल है कि इतने सख्त कानून का रत्ती भर भी डर उस गैंग को हो, क्योंकि पर्चा लीक उस गैंग के लिए गुनाह नहीं, धंधे की परंपरा हो गई। क्योंकि मोदी राज की बात कर ले तो 2016, 2021, 2024, 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए या लीक का दावा हुआ। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गए, 48 आरोपी, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया है। लेकिन अब तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली।
21: अपने एनडीए के निर्णय को सकारात्मक मान के चलना, इसका एक बेहतर करने का अवसर मिला, ये लेकर अपने दिल से मन से पढ़ाई चालू कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ और कहीं पे अब टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो।
11: हालांकि परीक्षा कराने वाले अब यही दलील देकर बचने की कोशिश करते हैं कि कम से कम पेपर लीक कांड का खुलासा, भंडाफोड़, सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा जैसे कदम तो सरकार उठा रही है। वरना अक्सर तो बरसों बरस फले फूले पनपे पसरे ये पेपर लीक गिरोहों की करतूतों तक का पता नहीं चलता। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
22: सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य का सवाल है और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा।

0: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, नीट 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई ने जांच शुरू की, सवालों के जवाब से बचते दिखे धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस ने साधा निशाना, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपा था पेपर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आज तक से बोले एनटीए महानिदेशक 7 से 10 दिन में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा। असम में हेमंता बिस्वा सरमा की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, गुवाहाटी में 4 मंत्रियों के साथ ली शपथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका, 2000 कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, अर्जी में हिंसा को लेकर जांच की मांग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर केस दर्ज, बीजेपी का फूटा गुस्सा, अखिलेश यादव ने अपने सांसद की भाषा को बताया गलत।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

0: सलाह दिए और खुद ही विदेश चले गए, तो इनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा?
1: There are a lot of myths going around. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel. LPG supply is more than enough.
2: ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा. इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि स्पेशल परिस्थितियां पूरे विश्व में है और उसी के अनुसार भारत भी एक स्पेशल रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। हम ले जाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब पूरा देश एक साथ आए। सवाल उस राजनीतिक युद्ध पर है जो अभी कुछ सुझाव देने पर ही खड़े हो गए हैं। आज सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने इस तरफ ध्यान ले जाने में देरी कर दी। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन सात बातों की चर्चा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें वो तेल की खपत को बचाने के लिए कह रहे हैं या विदेशी मुद्रा के लिए वो कह रहे हैं कि भाई आप सोना कम खरीदिए, एक साल सोना खरीद और बेच ना करे, खरीदे नहीं, खरीदने से बचे, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें अगर वो कह रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल घटाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा दें, उस पर ज्यादा निर्भरता बढ़ाएं, खाद्य तेल की खपत को भी आप कम करें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी के साथ वो एक साल विदेश यात्रा भी कम करने की बात कर रहे हैं, कार पूलिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देश को हमको विदेशी ब्रांड कम इस्तेमाल कीजिए, मेड इन इंडिया का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। अब ऐसे में ये एक सच्चाई है कि ये जो हम वेस्ट एशिया में जबरदस्त इस वक्त युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि ये सीज फायर अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, तो कभी भी परिस्थिति वहां भड़क सकती है। ऐसे में अगर देश एक साथ अपनी, एक तो हम ऊर्जा को बचाएं, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी किसी तरह से हम संरक्षण दे पाएं, ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है। दूसरी तरफ ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि चुनाव खत्म और संकट सामने, आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आ जाइए संजीव झा जी, आप भी आ जाइए, बैठ जाइए हमारे साथ। सभी खास मेहमान आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव झा जी प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ जराबी हमारे साथ ग्रुप एडिटर बिजनेस टुडे के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप उस राजनीतिक युद्ध को समझ पाएंगे और उसके तापमान को भाप पाएंगे जिसके जरिए इस विपक्ष इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है मोदी सरकार को घेरने के लिए, और इधर सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे समझाए कि भाई ये सुझाव है, क्योंकि माहौल पूरे देश में बन चुका है। रिपोर्ट देखिए।
1: बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
0: ये पहली बार नहीं है जब संकट काल में सरकार ने सीधे जनता से सहयोग की अपील की हो।
1: पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है।
0: संकट काल में देश और मजबूत होकर आगे बढ़ा, लेकिन क्या अब की बार राजनीति आड़े आ रही? विपक्ष के लिए क्या ये मौका है?
2: इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे, लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते हैं, उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुली घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब सब हो रहा है।
0: शरद पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री को स्वयं की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में सभी दलों के नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना देश के हित और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं।
3: सलाह दिए और खुद ही विदेश चले गए, तो इनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा? और इसलिए हमने खत लिखा उनको कि आपसे शुरुआत करिए और आप, लेकिन आप ही विदेश में जा रहे हो। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में नहीं रहेंगे, आज तक के जो भी उनकी मीटिंगें हुई वो प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री को अपोजिशन के लोगों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप के राजा हैं, तो उसके लिए अब क्या करें।
0: इस बात में दो राय नहीं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सुझाए गए प्रधानमंत्री के उपाय तभी कारगर होंगे जब आम या खास हर कोई इसे अपनी आदतों में शामिल करे। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने उज्जैन से भोपाल तक दर्जनों गाड़ियों के काफिले में आए। यही हाल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने आए बीजेपी नेता राकेश सिंह जादौन का भी था। उनके काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां थीं। वैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सत्येंद्र भूषण भोपाल में ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और ई रिक्शा से ही लघु उद्योग दफ्तर पहुंचे। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जज जस्टिस डीडी बंसल अपने घर से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे।
4: एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 2 किलोमीटर जाने के लिए।
0: इस बीच केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उत्तराखंड के रुड़की में अपने आधिकारिक दौरे में पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। उधर जब सरकार विपक्ष के निशाने पर है तब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गोल्ड खरीद से बचने की प्रधानमंत्री की नसीहत का समर्थन किया है।
5: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. So he's right that gold imports must be curbed.
0: बीजेपी चिदंबरम का 2013 का वो बयान भी पोस्ट कर रही है जिसमें चिदंबरम ने सोना खरीदने से बचने की अपील की थी।
6: प्लीज रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू बाय गोल्ड एंड वी कैन हैव इट फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर।
0: संकट से बचने के प्रधानमंत्री के उपाय कड़वी दवा की तरह है।
7: एक बार इस पर पूरा विचार करने की जरूरत है।
8: हम लोग का भी ख्याल हमारे देश के प्रधानमंत्री को रखना चाहिए।
9: अगर हम सब ज्वेलर्स के साथ उन्होंने बैठ लिए होते और इसका एक रोड मैप तैयार कर लिए होते।
10: हम तो छोटे दुकानदार हैं, हमारी बिक्री पहले ही कम है और जीरो हो जाएगी।
0: हालांकि देश भर के सर्राफा बाजारों में मायूसी भी दिख रही है। आज तक ब्यूरो, चलिए बताया जा रहा है कि प्रदीप भंडारी की गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है तो इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपके पास आते हुए, विपक्ष कह रहा है कि गजब आप लोग हैं और चुनाव चलता रहा, जनता को पता ही नहीं चलने दिया कि इतना भार आने वाला है, इतना संकट आने वाला है। रिजल्ट आया और उसके बाद सब दुनिया के सामने संकट ले आए। क्या जानबूझकर ये दबाव बना? और बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यही कदम आपको युद्ध के 28 फरवरी को शुरू होने के फौरन बाद उठाना चाहिए था। क्या ये बात सही नहीं है?
11: नहीं, जब युद्ध शुरुआत हुई थी ऐसा नहीं लगा था कि युद्ध इस तरह खींचेगा या उसको समझ नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री महोदय ने, जब ट्रंप जी कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो शांति वार्ता है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, इसका मतलब कभी भी कुछ वहां बिगड़ सकता है, वो चीन जा रहे हैं पता नहीं क्या डिस्कस करेंगे, तो मोहल्लों में जब आग लगी हो तो घर वालों को क्या कहेंगे, आग में कूद पड़ो? तो दुनिया में लगी है आग, तेल की आग लगी है, तो प्रधानमंत्री महोदय इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता से उन्होंने अपील की है, ये उनकी जिम्मेदारी है, हक बनता है। और बहुत छोटी सी अपील है, कुछ दिन के लिए अगर लोग कम खर्च कर लेंगे तो कुछ बिगड़ना नहीं है ऐसे। लेकिन विपक्ष अगर इसको इस कदर देख रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी का कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्मूला है या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो विपक्ष को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। जब मनमोहन सिंह कहते थे पेड़ पर पैसे नहीं उगते, चिदंबरम कह के गए सोना मत खरीदो, जवाहरलाल नेहरू कह गए कि वैश्विक संकट में अलग अलग राष्ट्र पर उसका असर पड़ता
0: है। जल्दी
11: ये असर खाड़ी युद्ध के समय भी पड़ा था। खाड़ी युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री थे याद है कि नहीं, उपाध्याय जी को पता नहीं, राजीव जी थे, तो उस समय उन्होंने अपील नहीं करी और लोग कंटर लेके घूम रहे थे कि कहीं किरासन तेल मिल जाए, हम लोग उसमें बिहार में रहते थे। तो स्थिति अगर दुनिया की विपरीत हो तो भारत उसका कैसे चुनौती से मुकाबला करे जब उसके पास 703 अरब डॉलर हो और पिछले साल का डेटा हो कि 41 अरब डॉलर सोना आयात करने में खर्च हुआ है और 85% तेल बाहर से आता है, तो हम करें क्या? तेल को जला दें, उड़ा दें, सोना ही सोना कर दें? प्रधानमंत्री हैं वो, चौकन्ना रहने की बात कही है, सतर्क रहने की बात कही है।
0: बिल्कुल,
11: एक चुनाव किसी के एक शब्द है चुनाव को लेकर कि चुनाव था तो नहीं बताए। इस देश में हर साल चुनाव होता है, वन नेशन वन इलेक्शन पे तैयार हो जाए कांग्रेस, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, 5 साल में एक बार चुनाव होगा हर जगह, फैसले आते रहेंगे और राष्ट्रहित में फैसला है। तो क्या राष्ट्रहित में नरेंद्र मोदी जी अपील ना करे, ये चाहता है विपक्ष?
0: जल्दी से।
12: बड़ा अच्छा कहा, मैं तो सोना बाबू को बहुत सलाम कर रहा हूँ।
0: सोना बाबू कौन?
12: सोना बाबू प्रधानमंत्री जी हैं। सोना बाबू इतना अच्छा सजेशन
0: है ना कि सामने से भी अलग अलग भांति भांति के नाम आएंगे आपके नेता के लिए,
12: इसमें कोई सी बुराई नहीं। सोना बाबू तो बहुत, सोना बाबू हमारे घर में भी बोलते हैं हम लोग, अपने बच्चे को बोलते हैं, अपने
0: घर नहीं है ना, ये टीवी है,
12: देश के हमारे
0: प्रधानमंत्री।
12: तो जो हमारे साथी ने कहा, अभी इसी सरकार ने 168 टन सोना साल भर के अंदर खरीदा है। और क्यों खरीदा है? ताकि वो रिजर्व उसका जो है, सोने का रिजर्व बढ़ाया जाए, 6% से वो 16% के लगभग रिजर्व को किया है डॉलर के अगेंस्ट में। अब जनता को नहीं खरीदना भाई, जनता के पास है क्या कि खरीदेगी? सच्चाई तो ये है

0: के प्रवक्ता आएंगे वो इसका जवाब देंगे,
1: का उस पे कोई चर्चा नहीं
0: ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे जवाब देंगे, दीप्ति तनेजा इकोनॉमी के टर्म्स में इसका क्या मतलब है जल्दी से बताएं।
2: नमस्कार अंजना जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। इकोनॉमी के टर्म में सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो रुपी है वो क्योंकि गिर रहा है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि सीधे सीधे टर्म्स में बात करें तो जितना हम अपने इंपोर्ट पे खर्च करते हैं और जितना हम अपने एक्सपोर्ट से कमाते हैं डॉलर, उसका गैप बहुत बढ़ रहा है। उसमें अगर हम समझें कि 2013 में जिसकी बात आप कर रहे हैं, चिदंबरम साहब ने इसका क्यों समर्थन किया उसका जवाब मैं देती हूं, क्योंकि चिदंबरम साहब के समय में भी 2013 में यही स्थिति थी और इससे कहीं गंभीर स्थिति थी। उस समय हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 4.5% ऑफ जीडीपी था और आज की डेट में ये 1 से 1.3% है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि हम इस समय कितनी सेफ पोजीशन में थे। इसके चलते हमें ड्रेकोनियन स्टेप्स नहीं लेने पड़े और ड्रेकोनियन स्टेप्स का भी मैं अजय जी आपको जवाब दे देती हूं। उस समय 2013 में अंजना जी एक 80-20 स्कीम निकाली थी। 80-20 स्कीम का क्या मतलब था कि आप जितना इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड उसमें से 20% री एक्सपोर्ट कीजिए। और उसके चलते अंजना जी ये 2014 की कैग की रिपोर्ट है और आपने जितनी सियासत करनी है अजय जी कर लीजिएगा, 2014 की एक कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है इलेक्शन से पहले की, कि उससे 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ जो ये स्मगल्ड 80-20 स्कीम के तहत गया। उसके अलावा FCNR-B स्कीम थी। तो ये सारे जो सख्त स्टेप्स हैं वो ना लेते हुए अभी जनता को ये आवाहन करना, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था अंजना जी। क्योंकि अगर हम इसका सीधा सीधा समझें, अगर इंपोर्ट जो है हमारे गोल्ड का वो तकरीबन आधा अगर होता है तो उससे $4-5 billion का पर एनम पर मंथ का हम सेव कर सकते हैं, जिससे आप समझ लीजिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ेगा। और आपने जो ये बात बोली अजय जी उसका एक आंसर और दूंगी कि क्यों गोल्ड हमने अपना इंपोर्ट बढ़ाया। भैया जब पूरी कंट्री पूरा वर्ल्ड जब डीडॉलराइजेशन पे जा रहा हो ना तो इसको डाइवर्सिफाइंग स्ट्रैटेजी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं कि सब कुछ गोल्ड सब कुछ डॉलर में मत रखिए, उसको डाइवर्सिफाई।
0: ठीक है, अब प्रदीप भंडारी भी आ गए हैं भाई, माइक लगा दीजिए उनको जल्दी से। अब मुझे लगता है रास्ते में सुन ही रहे होंगे कि आप अजय उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं। भंडारी जी साइकिल से आ रहे थे क्या?
3: नहीं
0: नहीं, लेट्स ऑल गो ऑर्गेनिक, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो प्रशंसा कर, मैं तो ताली बजाना चाहती थी कि आप लेट आई है बहुत सिर आंखों पर, लेकिन पता चला आप कार से ही आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे थे।
4: मैं एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य मेट्रो गया, उसके बाद मैंने गाड़ी ली। अब मैं एक साइकिल से आता थोड़ा सा लेट हो जाता।
0: दूरबीन लगा के रिवर्स में आपका पूरा ट्रिप देखा जाएगा, लेकिन जल्दी से अजय जी की बातों का जवाब दीजिए जल्दी से।
4: अजय जी को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो अजय जी स्वीकारें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और तमाम कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आए थे वो सब गलत थे, तो अजय जी की तार्किक बात में मैं विश्वास रखूं। पर एक गौर करने वाली बात यह अंजना जी कि आज देश 2 महीने हो चुके हैं पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड में। जर्मनी में 27%, जापान में 30%, चाइना के अंदर 25%, फ्रांस के अंदर 15%, तेल के जो दाम है और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ है जिसमें 0% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। मतलब कोई ना कोई तो सरकार ढंग का काम कर रही होगी।
0: आप कंडीशन कर रहे हैं दिमाग को, कुछ बड़ा करने वाले
4: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही हरदीप पुरी जी ने CIA की मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास सब कुछ रिजर्व प्रॉपर है। हम तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस शासन काल में जैसे डबल डिजिट महंगाई हुई थी वो ना हो, हम जनता की भागीदारी चाह रहे हैं। कांग्रेस जब भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात आती है या पेट्रियोटिक नेशनलिज्म की बात आती है, भले वो युद्ध स्तर पर हो या इकोनॉमिक स्तर पर हो, कांग्रेस हमेशा राजनीति को चुनती है ना कि राष्ट्रनीति को। प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला लॉकडाउन लग रहा है, प्रधानमंत्री ने तो वही बोला जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते आ रहे 1960 के दशक से। अब कांग्रेस को कांग्रेस की बात ही खराब लग रही, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
0: क्या आपको कांग्रेस को कांग्रेस की बात क्यों खराब लग रही है?
5: वो तेल की बात करें भैया, तेल जनता का तो इतना तेल हो गया, अब तेल की जरूरत ही क्या है? 200 रुपये तो पहले ही पार कर दिया था खाने पीने वाला, और इस तेल को कर ही दिया। कह रहे हो कि ये तेल बढ़ा नहीं, वाकई तेल नहीं बढ़ा। जब सबसे सस्ता कोरोना के टाइम में मिल रहा था तब से लेकर के पिछले 3 साल तक, तो आपने तो जनता को बड़ी छूट दिए थे क्योंकि वो मार्केट रेगुलेशन हो रहा था, मार्केट डिसाइड करता है तेल का दाम। आज आप स्वीकार रहे हो ना कि सरकार करती थी ये सारी काम, आज भी सरकार करने जा रही है। दूसरी बात, 4 मई से पहले सब चंगा से, सब चंगा से
0: बढ़ेंगे,
4: कोई 100%
5: बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, वही नहीं है भूमिका बनाई जा रही
4: है। आप सरकार में नहीं हो भैया, आप
5: भूमिका बनाई जा रही
4: है, सरकार में नहीं है।
5: अरे भाई
4: एक बड़ी बात,
5: अच्छा गैस की 10 सेकंड मैंने आपके जवाब, गैस सिलेंडर के तो दाम बढ़े ही नहीं है, कमर्शियल वाले
4: डोमेस्टिक के नहीं,
5: कमर्शियल वाले वो तो बड़े बड़े लोग ही लेते हैं, बेचारे ठेले वाले तो लेते नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 93% लोग तो रोड पे घूम रहे हैं। वो तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई सच्चाई ये है कि सोना का मामला तो अब जरूरत ही नहीं है गरीब आदमी को लेने की, बड़े बड़े लोग ही आपके ले रहे हैं मित्र।

0: अब मैं उनको, जवाब उनको उनके लिए मोदी जी कहा कि हमारे आप जैसे लोग
1: अजय जी एक जवाब देता जी
0: उनके लिए कहा
1: अजय जी
0: तो उनको रुकवा दीजिए
1: जी एक लॉजिकल बात आपने 10 सेकंड बोले बस एक लॉजिकल में
0: एक और
1: नहीं अब आप ऐसे तो बोलती जाएंगे बोलने
0: क्वेश्चन दे देता हूं उसको याद कर लीजिए और वो घर से काम करने वाली बात है। हाँ वाकई घर से काम तो होना चाहिए, काम धंधा रहा किसी के पास, इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, घर में रहिए और प्याज लेकर के बाहर मत निकलिए, ये सुझाव है मोदी जी का।
1: अब लॉजिकल
0: क्योंकि उससे क्या होगा, लू लग जाएगी ना,
1: अब लॉजिकल
0: तो बाहर क्यों जाना चाहिए,
1: मैं
0: बाहर जाना
1: चाहता हूँ अजय जी।
2: हाँ दुनिया का मस्करी कर रहे
0: हैं
1: जब
0: सरकार जो है जनता का
1: पहले बार बार
0: बड़े बड़े पूंजीपतियों और उसको आप कह रहे हैं कि
2: अच्छा गुरुजी चलिए
0: भाई सांस का भी त्याग करवा दीजिए ना किसी
1: देर तक। आपको मैंने 1.5 मिनट कर्सी ऑफ टाइम दे दिया, 30 मिनट सुन लीजिए। ये ऐसा होता है अंजना जी, 30 सेकंड ऐसा होता है जब 17 राज्यों में सरकार नहीं होती तो आदमी मस्करी की बात करता है, लॉजिकल बात नहीं करता। मैं वापस से कहूंगा जराबी जी, आपके इतने बड़े इकोनॉमिक एडिटर हैं, दुनिया का एक मुल्क बता दीजिए जिसने 2 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इनके समय में 6% था, आज 2% से कम है। इनके समय महंगाई 10% थी, आज महंगाई दर 3% से कम है। 140 करोड़ देश में जब 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले, अगर वहां पे जनता तक राहत पहुंच रही है तो ये सरकार की ही कामयाबी है। आजकल तो अखबार ये सब कह रहे हैं कि भाई रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ, कांग्रेस के अखबार जो कह रहे हैं कर रहे हैं। मुझे बताइए
0: दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां एक महीने के अंदर $38 बिलियन जो है फॉरेन रिजर्व
1: कर दिया, $700 बिलियन हमारा फॉरेक्स
0: रिजर्व है, एक देश बताओ जो पिछले इतने कम जब तेल का दाम था तो उस देश ने तेल का दाम कम नहीं किया,
1: परसेंटेज से ग्रो किया।
0: दुनिया का एक देश सिर्फ बता दो जहां 12% एक महीने में डॉलर के बना रुपया गिरा जो करेंसी तुर्की का गिरा है।
2: सिद्धार्थ जराबी एक सेकंड प्लीज,
1: वही है
2: सिद्धार्थ जराबी
1: जी,
2: एक वैलिड जो क्रिटिसिज्म इस पूरे मामले में लग रहा है, मतलब फैक्ट्स पे बात करते हैं, बस यही लग रहा है कि भाई आप 2.5 महीने भाप क्यों नहीं पाए जब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा था ऊर्जा संरक्षण करना है तो आप पहले से भी ये कर सकते थे। वैलिड क्रिटिसिज्म एक ही दिख रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि इससे पहले भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, सोने को लेकर जिस विदेशी मुद्रा रिजर्व की वो बात करें, अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं, 1 मई को विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो है $690 अरब के आसपास, और जिस $38 अरब की घटाओ की वो बात करें वो 27 फरवरी को 28 से युद्ध शुरू हुआ था। अब ऐसे में क्या हम थोड़े और पहले से सतर्क हो सकते थे, ये क्रिटिसिज्म तो समझ में आता है, बाकी क्या क्रिटिसिज्म आपको विपक्ष का समझ में?
3: देखिए दो तीन बातें, पहले हल्ला बोल रहे हैं परंतु फैक्ट्स के साथ हल्ला बोलना चाहिए। पहले जो अजय जी ने 168 मेट्रिक टन की बात की, वो नई खरीद नहीं थी, वो हमारा ही सोना विदेश में रखा हुआ था, उसको वापस लाया गया 2025-26 वित्तीय वर्ष में, और लगातार पिछले 3 साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सोना वापस ला रहा है, लगभग 380 मेट्रिक टन अपना वापस लाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में जिसकी इन्होंने चर्चा की उसमें 1 मेट्रिक टन से कम नई खरीद हुई, इसलिए आरबीआई को ऐसी स्थिति में दोष ना दें। दूसरा विषय जो प्रदीप जी ने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट का, फैक्ट ये है कि 2% का जो नंबर इन्होंने बताया वो सही है, पर लगातार पिछले 3 साल से हमारे एक्सचेंज रेट पे बहुत बड़ा प्रेशर आया है और पिछले दिनों में ये एक्सचेंज रेट बढ़ा है क्योंकि लगातार विदेशी निवेशक हमारे बाजार से और वैसे इंडिया से वापस अपना पैसा ले जा रहे हैं। उसके कारण क्या है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, समय कम होगा। इन दोनों के कारण जो सबसे बड़ा प्रेशर आया है वो हमारी करेंसी पे आ रहा है, और करेंसी पे जो अगर हम देखें पिछले 5 महीने में लगभग 10% का हमारा जो अगर हम रुपी टर्म्स में देखें 95-96 और इतनी बड़ी जो हमने वॉलिटिलिटी देखी है ये अनयूजुअल वॉलिटिलिटी है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेके कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है। अब रही बात इसकी टाइमिंग की, टाइमिंग के बारे में या तो हमें और जानकारी दी जाए पत्रकार के नाते तो हम शायद उस पर एक ठोस तरीके से कह पाएंगे, परंतु एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वेस्ट एशिया में सीज फायर है अंजना जी, परंतु उस सीज फायर के कारण ऑयल एंड गैस की अवेलेबिलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ है,
2: वो चेन शुरू नहीं हुआ,
3: वो चेन नहीं शुरू हुआ। और आप ये समझ लीजिए, दो महीने ढाई महीने पहले तक तो हमने कभी ये आकलन भी नहीं किया था कितनी सैकड़ों टैंकर उस स्ट्रेट से रोज निकलती थी, आज एक भी निकली है तो वो हेडलाइन बन गई है।
2: हाँ।
3: दूसरी शायद रिजेक्ट हो गई है क्योंकि उसमें ईरानियन गैस है, ये हेडलाइन बन रही है, शायद टाइमिंग उसको लेके कहा जाते। और एक आखिरी बात ना, ये चौथा वर्ष है कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। दिसंबर 2024 के आसपास अगर मेरी मेमोरी सही हो, ₹2 का पेट्रोल और डीजल में कट हुआ था। अब बड़ा सवाल ये आता है कि 4 साल तक अगर आपने चीजों को नहीं बढ़ाया तो आज अगर बढ़ने की स्थिति आ रही है तो फिर इस पे हो हल्ला क्यों मचा
2: रहा है? बताइए संजीव जी, क्यों हो हल्ला मचा रहे हैं? और अभी तो बढ़ा भी नहीं है, पहले से कह रहे बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा।
4: चलिए मैं पहले वही शुरुआत करता हूं, लेकिन अभी मैं इनको सुन रहा था और पेट्रोल मिनिस्टर सुन रहा था, कहीं कोई संकट नहीं है। तो पहली बात, संकट है या संकट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़ा संकट है। उन्होंने कई सारी निवेदन किया है देश के लोगों से, अपील किया है कि भाई इस पर आप कंट्रोल करो। मैं पेट्रोल की प्राइस की बात करता हूं, एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़े, तो मुझे लगता है फिर और अलग अलग कंट्री की आप एग्जांपल दे रहे हैं। इंडिया में लोगों का जो एक्सपेंडिचर है पेट्रोल पर 17-19% है, किसी भी कंट्री का 5% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से इतना बढ़ा दिए हुए हैं कि आप अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी लोग खर्चा ज्यादा हो रहा है। अलग अलग कंट्री में इतने प्रपोर्शन में रेट नहीं बढ़े, पहली बात। दूसरी बात,
5: नहीं रेट तो बढ़े ही नहीं 4 साल में,
2: अलग अलग दूसरी बात, रेट बढ़े ही नहीं, इसीलिए रेट भी निकाल लिया ताकि आप रेट देखें और इंक्रीज देखें,
4: आप उसको प्रोपोर्शन में देखिए, ऐसे मत देखिए। एक एक आदमी का
3: नहीं, आमदनी भी बढ़ी है,
4: डीजल पे कोई भी बढ़े
3: भाई साहब, परसेंट की बात नहीं,
4: परसेंटेज आप 17% की बात कर रहा हूँ,
3: अगर भी रेवेन्यू अगर 4 साल पहले
4: बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है।
3: सर आपकी अगर आमदनी ₹100 थी 4 साल पहले और वो ₹200 हो गई तो 19% तो घटा है,
4: कहीं
3: ना कहीं मानना पड़ेगा 4 साल से दाम नहीं बढ़े,
4: बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप कह रहे थे
3: इस बात को,
4: आज अचानक जब सभी स्टेट का चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, तो क्या प्रधानमंत्री 2 महीना पहले
3: चुनाव हरवाने के लिए कोई थोड़ी, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लिखा गया है कि आप चुनाव हारने के लिए स्टेप लेंगे?
4: ये मेरी बारी, मैंने किसी बारी बोला मेरी बारी है ना।
2: संजीव जी ने किसी
4: का बताया, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की देशभक्ति चुनाव से कम है, चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देशभक्ति कम है। अगर अगर अगर इतनी बड़ी क्राइसिस है, अलग अलग कंट्री ने अपनी प्लानिंग करी, क्योंकि युद्ध 3-4 महीने से चल रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री चुनाव मंत्री ज्यादा है, प्रचार मंत्री ज्यादा है, प्रधानमंत्री कम है। वो पूरे 365 दिन चुनाव की तैयारी करते हैं और उसका नुकसान आज देश झेल रहा है। यही चूंकि बात इतिहास की कर रहे थे, 2013 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे, तब उन्होंने कहा था कि सोना खरीदने से अर्थव्यवस्था खराब होता है, बताइए किसी को गले पड़ेगा? अब समझ में आया 12 साल बाद प्रधानमंत्री को समझ में आया कि नहीं, सोना
2: से भंडारी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बार अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डॉलर हम कहां कहां खर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बताएंगे उसे भंडारी रिस्पॉन्ड जल्दी।
1: कहा कि प्रधान, अगर आप एक काम करिए, एक प्रपोजल हम लेके आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, आप वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दीजिए, जिससे आप हर चीज को चुनावी लेंस से ना देखें। आपने बोला कि चुनाव के समय हम क्या कर रहे थे, 27 कंट्री से पहले हम क्रूड सोर्स करते थे, अब 40 कंट्री से सोर्स कर रहे हैं। पहले हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नील था 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 13,896 थे, अब 25,600 हो चुके हैं, टोटल इंपोर्ट टर्मिनल पहले 11 थे अब 22 हो चुके हैं, हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी और डीजल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जिससे कि जो अंदर ही खपत हो सके, तो हम काम कर रहे थे। दिक्कत यह थी आप शीश महल के अंदर व्यस्त थे तो आपको समझ में नहीं आया। मैं बड़ी बात कहूंगा, आपने आपने जितनी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए उससे कम मोदी सरकार ने परसेंटेज बेसिस पे बढ़ाए, तब आज क्रूड $717 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। 1973 के क्राइसिस के अंदर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। ओपेक के चेयरमैन ऐसा कह रहे हैं कि पहली बार पोस्ट पिछले 70 सालों में ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है।
3: प्रदीप, एक सवाल है, बीजेपी से भी सवाल पूछा जाए, अब तो और राज्यों में सरकार आ गई, इतनी प्रचंड बहुमत राज्यों में भी बंगाल भी है, जीएसटी क्यों नहीं लग रहा है पेट्रोल डीजल पे?
1: नहीं, ये तो जीएसटी काउंसिल आप जानते हैं,
2: इसको गिरा। अरे नहीं, नहीं, उसका तो तीन राज्य चार राज्य कितने बचे हैं?
3: कुछ नहीं बचा, आपको गिनती नहीं है।
1: जब ये जीएसटी काउंसिल में आएगा अंजना जी, तो इस पे विचार करेंगे।
3: साल से क्यों नहीं हो रहा है?
1: कंसेंसस से होता है।
3: क्यों नहीं? अब क्या बचा?
1: नहीं, अब तो आएगा ना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो जाने दीजिए। पर जरा भी जी एक चीज आप बताइए, हमने तो किसी ने नहीं बढ़ाया।
3: नहीं,
1: हिमाचल प्रदेश वालों ने क्यों बढ़ाए?
3: आपने टैक्स
2: जवाब दीजिए जल्दी से,
1: ज्ञान दे रहे थे
2: जल्दी से जवाब,
1: पेट्रोल और डीजल पे दाम हिमाचल प्रदेश में क्यों बढ़ाए? आप सैलरी तक नहीं दे पा रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को।
0: हिमाचल प्रदेश में इतना कर्जा ले लिया है ना आपकी पुरानी सरकार ने,
1: पेट्रोल डीजल
0: पता है 38% कर्जा है वहाँ आपकी सरकार ने ली थी।
1: सैलरी तक
0: तो इसलिए सैलरी तो सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, आपकी सैलरी बंद होगी आजकल। सुनिए जरा एक दो बहुत ही क्रिटिकल बात किया, सच पूछिए तो 2014 में जब ये वर्ल्ड में कई बार क्राइसिस भी आए हैं, उस क्राइसिस के दौरान यूपीए की सरकार थी, क्या कभी इस तरह से फियर साइकी क्रिएट करने का काम किया कि जनता जनता को मना करो, जनता को विदेश न जाओ, जनता कुछ खाओ नहीं, जनता तेल न लो, जनता जो है पेट्रोल न लो, ये तो काम नहीं कभी हम लोगों ने किया। हमने देश हित में कुछ काम किए।
2: सुना रहे मनमोहन जी को, सुना दीजिए क्या है,
0: फर्जी वीडियो है।
1: मनमोहन सिंह जी ने, अरे मनमोहन जी थोड़ी फर्जी है, ये वीडियो है,
0: एआई क्रिएट कीजिए, वो आपके चैनल पर सच्चाई नहीं है, ये इसी तरह लाते हैं।
2: अच्छा, अगली बार आप भी दिखाएंगे मोदी जी का तो ऐसे ही रोकूंगी ना,
0: एकदम रोकिए,
2: तैयार हो जाइएगा।
0: ये है कि पुराना
2: पत्रकार है, अरे आप लोग वीडियो डालिएगा तुरंत, देखो अंजना ने रोक दिया,
0: कहीं से ऐसे बोला क्रिएट करना। सच पूछिए अंजना जी, अंजना जी
2: बोला क्या उन्होंने?
0: सच पूछिए तो ये बताइए, दस सेकंड जवाब दे दें। सच पूछिए तो ये इकोनॉमी मैनेज करने का काम किसका है, आपका, इनका, मेरा, या देश की सरकार का, या जनता का? देश की सरकार है ना, फेल्योर सरकार हो रही है और जिम्मेवारी आप पर डाली जा रही है कि आप मत कुछ खाइए, मत पहनिए, पैदल चलिए, आप मत चाहिए गाड़ी से, ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, यदि सरकार इतनी नाकामी हो गई है, नाकामयाब हो गई है, उसको कुछ नहीं है उसका इकोनॉमी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे हम तो विश्व पावर हो गए हैं, हम में तो सबसे ज्यादा शक्ति आ गई है, रुपये को जो गिरा रहे हैं ना, जितना गिरा है रुपये आपके टाइम में, उतना तो सही बात है, नैतिकता किसी की नहीं गिरी है, सरकार की नैतिकता से ज्यादा आपके रुपये गिरे हैं।
1: मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी,
2: प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी,
0: नेहरू जी पर आप चलिएगा,
2: आप लोग भी सोना इकट्ठा कर रहे थे, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, 62 में कितना सोना इकट्ठा कर रहे थे, बताया देश को कहां खर्च किया, सब सब कर रहे हैं ना, युद्ध की स्थिति थी आज भी,
0: दूसरी
2: अरे कोई कम स्थिति है खतरनाक,
0: जो मनमोहन सिंह भंडारी है, डॉलर कितने पर था जरा ये बता दीजिए, मनमोहन सिंह के टाइम
1: एक एक
0: 60 रुपए पर था,
1: एक एक करके
0: कितना पर था?
1: सुन तो लो,
0: आज कितना है?
1: अरे 95 तो सही, अब चार जसनो
0: और फॉरेन रिजर्व मनमोहन सिंह पे 3 गुना बढ़ाया था
1: मनमोहन सिंह ने, विश्वास
0: और आपने 2.25
2: गुना मांगा। अब आप दोनों हाईजैक कर लीजिए, हम लोग चाहते हैं बाहर,
1: मैं तो आपके आदेशों का पालन कर रहा हूँ,
0: देख रहा है
2: मैं डॉलर, जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हो रहा है, गिर रहा
0: है,
1: पहले तो आप मिलने का भी नहीं कर रही है अगस्त, अरे मनमोहन सिंह का
0: गिरना लोगों का सम्मान,
2: सुनिए
0: ये कहां से आई,
1: ये पता नहीं आप सुने, अगस्त मैं डेट भी बता रहा हूँ, अगस्त 30, 2013
0: पहले रहे हैं ना आप, समझिए वहां इसी तरह चलता था, उसी चैनल वा से आए हैं।
1: मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा, अरे मैं कम से कम पंचर थोड़ी बना रहा था आपके पार्टी में, जैसे
0: पंचर पंचर ही देश में सबसे ज्यादा लोग बनाता है, उनका सम्मान मैं करता हूं।
1: मुझे बताइए
0: पंचर बनाने वाले को मैं बहुत इज्जत देता हूं,
1: डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्जी है आपके हिसाब से? आज मैं शॉक दूं कि कांग्रेस का प्रवक्ता डॉक्टर मनमोहन सिंह को
2: सुन लेने दीजिए अजय जी,
1: मनमोहन सिंह से तो पी चिदम्बरम को सुन लो, ये लोग
0: मनमोहन सिंह जी का
1: सुनाइए,
0: आप उन्हीं से चलना चाह रहे हैं, उनसे चले होते तो आज ये हाल ही नहीं होता देश का, आज इतना बुरा नहीं होता हालात,
1: और 6-6 महीने तक गोल्ड मत बाय करो, 1 साल तक गोल्ड मत बाय करो,
0: स्पीकर
1: लाइए बताइए, ये सब गलत थे
0: नहीं, इकोनॉमी
1: डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस
0: मुंह से चल रहा है,
1: कोई हो रहा है, अगर
0: आप ये देश रघुराजन से लेकर
1: महंगाई दर होता है, अरविंद
0: को रमणन पर छोड़ के नहीं
2: जाते,
1: छोड़ के 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे, आइसक्रीम मिडिल क्लास को कहने के लिए मना कर रहे थे, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, आपको खुश होना चाहिए मोदी सरकार की बात, ये सच्चाई की बात यही है। आज आप मैं देख रहा हूँ एक तथ्य
0: उपाध्याय,
2: पूरी तरह
1: जनता को
2: मैं जा रही हूँ, मैं सही में जा रही हूँ, मैं सही में जा रही हूँ, मैंने सोचा मैं ही वॉकआउट
0: करूंगा
1: उपाध्याय जी,
0: तो देश की जनता के लिए काम करना चाह रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए।
3: आपने कहा
0: एआई क्रिएट किया था नीतीश जी की पार्टी
2: की,
3: सुनिए अभी बहुत कुछ बोलेंगे आप। ये एआई क्रिएटेड वीडियो मनमोहन सिंह जी का है, ठीक है?
0: अच्छा,
3: तो मेरे हिसाब से आपके मनमोहन सिंह एआई क्रिएटेड ही थे, ठीक है? आपने शुरुआत करी, सुन लीजिए आवाज मेरी बहुत ऊंची है, फिर बहुत ऊंची है, ये स्टूडियो हिलने लगेगा। अभी रुकिए, अभी रुक जाइए, आपने अभी सोना बाबू कहा था ना, अभी आप
0: कोना पकड़ेंगे, बहुत अच्छा नाम है,
3: अभी आप कोना पकड़ेंगे।
0: अरे सोना बाबू
3: आपके समय के कृषि मंत्री क्या कहा करते थे, आपके समय के कृषि मंत्री शरद पवार क्या कहा करते थे, चीनी का दाम बढ़ जाए।
0: अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री के बारे में नहीं बोलूंगा,
3: आपके समय की शीला दीक्षित
0: वाले का
3: खाना बता रहे थे देश के नागरिकों को मिलता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने सतर्क रहने कहा है, संयमित रहने कहा है, और हमारे पास 700 अरब से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, 60 दिन से अधिक का तेल है, गैस है, सब कुछ है, उस हालात में यदि कहा थोड़ा सतर्क रहिए, संयमित रहिए, आपके पेट में मरोड़ उठ गया क्यों पता है? क्योंकि आपको इस देश की आर्थिक स्थिति, इसकी सुरक्षा, इसके नागरिकों के प्रति संवेदना शून्य मात्र है, आपकी राजनीतिक विचारधारा शून्य हो चुकी है। देश के प्रति थोड़ा सा प्रेम होता प्रधानमंत्री के इस अपील पर आगे बढ़कर स्वागत करते। आर्थिक नीति है, आप अगर थोड़ा आप क्या तेल फूंक रहे हैं,
0: प्याज लेकर जाइएगा रास्ते में,
3: आप तेल फूंकेंगे ना,
0: सिंधिया जी का भी सपोर्टर है, प्याज वो रख लीजिए, प्याज
3: रख लीजिए। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आपके समय में था, अभी क्या है आपको याद शायद नहीं होगा, प्याज आपके जेब में डालूंगा, क्यों? प्याज की खपत ज्यादा है, उपज भी ज्यादा है, देश अगर ऑर्गेनिक खेती में लौटेगा, आपके पेट में मरोड़ क्यों है? राहुल गांधी जी को जितने चेले चपाटी बाजार में घूमते हैं ना, उसको इस देश की अर्थव्यवस्था से शून्य मतलब है। कोविड के समय क्या कर रहे थे आप लोग?
2: एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें कहां कहां पर खर्च करता है, जिस विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की बात हो
3: रही है। आपको बोलने
2: खर्च होती है विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ खर्च होता है, अब आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ मेरी जा रही है। और स्क्रीन पर दिखाइए ये नंबर्स, क्रूड ऑयल पर हम कितना खर्च करते हैं, परसेंटेज में भी हमने आपके लिए लिखा है 17.4%। जो हम डॉलर्स में जो जो खरीदते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, खाद्य तेल, फर्टिलाइजर, तो टोटल हमारा जो है वो है। और कहां कहां से हम डॉलर कमाते हैं, कहां कहां से डॉलर कमाता है भारत, तो आईटी एक्सपोर्ट्स के जरिए जो रेमिटेंस है, फार्मा निर्यात है, सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स हैं उससे हम डॉलर बनाते हैं, एफडीआई इनफ्लो से विदेशी सैलानी जब आते हैं भारत में, पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात होता है, ये रत्न आभूषण एक्सपोर्ट होता है, इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात होता है। तो यही दो तरीके हैं, अब इससे आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना देश के लिए जरूरी है, और ऐसे में ये तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक की खबर इस वक्त आज तक पर आ रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि ये मीटिंग इस बात के लिए है कि ऑनलाइन क्लासेस हो और वर्क फ्रॉम होम, जिस पर ये बैठक इस वक्त हो रही है। प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ अपने घर पर ही पांच कालिदास मार्ग पर बैठक की है, और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम जैसे मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, और प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर संभावित व्यवस्थाओं पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रशासनिक तैयारियों और दिशा निर्देशों पर भी मंथन किया जा रहा है। और यही मैं आपसे पूछ रही थी प्रदीप भंडारी जी, ये संकेत और संदेश तो नहीं आने वाले वक्त में क्या वर्क फ्रॉम होम को और भी बड़े पैमाने पर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, सोने को लेकर, मतलब एक संकेत था क्या ये आने वाले वक्त?
1: अंजना जी, सब कुछ वॉलेंट्री है और सरकार नज कर रही है। इनने कहा कि भाई एआई जनरेटेड है, जून 13 2013 को ये देख लीजिए, पी चिदम्बरम कह रहे हैं स्टॉप बाइंग गोल्ड, डोंट डेयर बाय गोल्ड, ये पी चिदम्बरम। अब मैं बात करता हूँ ये लोग कैसे करते थे सोना के समय, ये तो हिंदू औरतों को कह रहे थे कि स्त्रीधन तक गिरवी रख दो, ये तक इनकी स्थिति आ चुकी थी अजय जी की, मैं वापस से कहूंगा। आज इकोनॉमिक फैक्ट्स क्या है, आज महंगाई दर 3% के कम है, आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से कम के अंदर है, आज करंट अकाउंट डेफिसिट 2% से कम है, आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं, आज पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा है सिवाय हिमाचल प्रदेश के। आज एक्साइज ड्यूटी तक हमने काटा है। अजय जी अगर सच में देशभक्त तो खड़े हो और मोदी जी के लिए ताली बजाओ, बाद में कांग्रेसी हो। और एक मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है अजय भाई हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, बस राहुल गांधी को बोलो मस्कट एक हफ्ते एक महीना जाना
0: बैठ जाओ हॉलीडे की बात। मैं भी हाथ जोड़ के
1: हॉलीडे मत करना,
0: हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। जब सब अच्छा ही है, सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है, तो ये रुपये बेचारा इतना क्यों गिरता जा रहा है?
1: हमारे उसमें नहीं
0: होता है,
1: डॉलर एप्रिशिएट
0: हो रहा
1: है,
0: सुनो आप
2: डॉलर एप्रिशिएट। संजीव बोलिए, दीप्ति तनेजा उसके बाद अरुण जी लास्ट मिलेंगे आप दोनों।
6: अजय जी आपने जितने पॉइंट्स दिए ना उसका पॉइंट का सिर्फ आपको इकोनॉमिक फैक्ट्स दे रही हूँ। फॉरेक्स जो 60 साल में $312 पे पहुंचा वो $690 पे उसके 2026 में पहुंचा। आपने कहा कि तेल की कीमतें क्यों नहीं कम हुई, ऑयल बॉन्ड्स की विरासत आप देके गए थे 2005 में, 1.3 लाख करोड़ को हमने 3.5 लाख करोड़ में वापस किया। टाइमिंग की आपने बात करी, इस संडे को सीज फायर के पूरे होने के हॉर्मोन्स खुलने के पूरे अंदेशे थे, किसी को नहीं पता था और कितना स्ट्रेच करेगा। और झाजी जो आपने बात करी कि उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इतना गोल्ड पे ध्यान मत दो, बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि तब हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स थे $12 बिलियन और अब है $115 बिलियन। जो अभी अंजना जी ने आंकड़ा भी दिखाया कि कितना ज्यादा उससे फॉरेन एक्सचेंज पे हमारे
2: संजीव
6: स्ट्रेस पड़ता है।
4: देखिए आपने वीडियो सुनाया, मैं 2013 का वीडियो सुना देता हूँ आपको।
0: एबीआई जनरेट है
4: ये देश के प्रधानमंत्री हैं।
2: सिद्धार्थ एक साल तक कुछ कर लिया ऐसा लोगों ने और काफी पैसे बचाने में कामयाब हुए, तो ये संकट टल जाएगा क्या है, मतलब इसका इकोनॉमिक्स क्या है,
3: देखिए
2: या कब तक चलेगा?
3: देखिए कुछ समय पहले तक हमारी इकोनॉमी को गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी कहा जा रहा था और बहुत एक अच्छी स्थिति में थी। ये हमें मानना पड़ेगा कि वेस्ट एशिया का जो युद्ध था इसने कई सवाल उठाए हैं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिसी पे। प्रथम पॉइंट, भारत देश के पास हमारी इकोनॉमी के साइज अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से बाकी देशों से देखें तो सबसे कम क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। लगातार कई सालों से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। अब पिछले कुछ सप्ताह पहले सरकार ने फिर से इस तरफ ऑयल मंत्रालय ने शायद प्रयास किया, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो खल रही है। दूसरा सोने के बारे में, जब क्योंकि बार बार बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने नॉन एसेंशियल गोल्ड इंपोर्ट्स के बारे में कहा था, उन्होंने एसेंशियल गोल्ड बंद करने के लिए नहीं कहा था। तीसरी बात जो इससे क्योंकि राजनीतिक डिबेट
2: आ रही
3: है, इनका इनका पर्सपेक्टिव सही है। मैं बस एक आखिर में बात बोलूंगा, मेरा ये मानना है कि सोना और उसके लिए जो खरीद करते हैं ये लोगों की पर्सनल चॉइस है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में अपने रिजर्व्स में से कुछ सोना बेचना चाहिए।
2: ठीक है, जल्दी से एक एक लाइन का कमेंट, एक लाइन अजय जी जल्दी से एक लाइन।
0: सच्चाई है जो अभी मैडम ने भी कहा, अरे ऑयल बंड जो था ना 1,36,000 या बांबे का किया,
1: 4,00,000
2: अल्लाह बोल का अंत करते हैं। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपको विश्लेषण के साथ दिखाएंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी आपने सोना खरीदा तो कुछ होगा या नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ महंगे तेल की मार से कब तक बचाएगी आपको सरकार, क्योंकि अभी तक वो अगर आए हैं तो उसकी वजह क्या रही है। वैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएम बनते ही क्या बड़े फैसले लिए, बंगाल में अब सड़क पर नमाज नहीं होगी। देखते रहिए आज।

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
8: इसमें माइक्रोफाइबर है
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
7: हमारे सीमेंट में नहीं है
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
11: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
12: विक्रम एक हिंट तो देते
13: विक्रम
12: हिंट
13: बड़े आराम से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
13: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
12: आप कैसे कर लेते हो?
14: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
15: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
16: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
20: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
21: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
22: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
25: बहुत टायर्ड हो गई।
26: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
27: लायन डेट नट बाइट्स।
28: Director, the taste of success.
29: Like I said before, we better own the sins.
2: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: Summer Cool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
6: Vimal, bolo zuba kesri.
7: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
8: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
9: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
7: 4 मई काउंटिंग।
8: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
10: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
7: 8 मई CM का ऐलान।
11: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
7: 9 मई शपथ।
12: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
7: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है?
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
1: ये पहली बार नहीं है जब संकट काल में सरकार ने सीधे जनता से सहयोग की अपील की हो।
0: पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है।
1: संकट काल में देश और मजबूत होकर आगे बढ़ा, लेकिन क्या अब की बार राजनीति आड़े आ रही? विपक्ष के लिए क्या ये मौका है?
2: इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे, लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते हैं, उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुली घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब सब हो रहा है।
1: शरद पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री को स्वयं की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में सभी दलों के नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना देश के हित और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं।
3: सलाह दिए और खुद ही विदेश चले गए, तो इनके ऊपर भरोसा कौन रखेगा? और इसलिए हमने खत लिखा उनको कि आपसे शुरुआत करिए, और आप लेकिन आप ही विदेश में जा रहे हो। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में नहीं रहेंगे, आज तक के जो भी उनकी मीटिंगें हुई वो प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री को अपोजिशन के लोगों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप के राजा हैं, तो उसके लिए आप क्या करें।
1: इस बात में दो राय नहीं कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सुझाए गए प्रधानमंत्री के उपाय तभी कारगर होंगे जब आम या खास हर कोई इसे अपनी आदतों में शामिल करे। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने उज्जैन से भोपाल तक दर्जनों गाड़ियों के काफिले में आए। यही हाल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने आए बीजेपी नेता राकेश सिंह जादौन का भी था। उनके काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां थीं। वैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सत्येंद्र भूषण भोपाल में ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और ई रिक्शा से ही लघु उद्योग दफ्तर पहुंचे। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जज जस्टिस डी डी बंसल अपने घर से साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे।
4: एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें छोटे छोटे स्थानों पर 1-2 किलोमीटर जाने के लिए।
1: इस बीच केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उत्तराखंड के रुड़की में अपने आधिकारिक दौरे में पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। उधर जब सरकार विपक्ष के निशाने पर है तब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गोल्ड खरीद से बचने की प्रधानमंत्री की नसीहत का समर्थन किया है।
5: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. So he's right that gold imports must be curbed.
1: बीजेपी चिदंबरम का 2013 का वो बयान भी पोस्ट कर रही है जिसमें चिदंबरम ने सोना खरीदने से बचने की अपील की थी।
6: प्लीज रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू बाय गोल्ड एंड वी कैन हैव इट फॉर 6 months, 1 year।
1: संकट से बचने के प्रधानमंत्री के उपाय कड़वी दवा की तरह है। हालांकि देश भर के सर्राफा बाजारों में मायूसी भी दिख रही है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and...
1: नीट पेपर लीक मामले में आज तक की खबर का बड़ा असर, परीक्षा रद्द, सीबीआई ने दर्ज किया केस, गिरे धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए डीजी, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। नासिक की प्रेस से लीक हुआ नीट पेपर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आज तक से बोले एनटीए महानिदेशक, 7 से 10 दिन में परीक्षा की नई तारीख का होगा ऐलान। असम में ममता का राज तिलक, गुवाहाटी में पीएम मोदी की मौजूदगी में ली शपथ, 4 मंत्रियों के साथ शुरू हुई एनडीए सरकार की लगातार तीसरी पारी। पीएम मोदी की अपील पर योगी सरकार की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम जैसे मुद्दों पर मंथन, प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा। बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया, भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। देश में एक बार फिर नीट पेपर लीक ने सबको हिलाकर रख दिया है। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का दरअसल है। कैसे पूरा ये खेल खेला गया उसे समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ 5 कालिदास मार्च पर अहम बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर संभावित व्यवस्थाओं पर चर्चा हो रही है। बैठक में प्रशासनिक तैयारियों और दिशा निर्देश पर मंथन किया जा रहा है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, दो बार प्रधानमंत्री की अपील और उधर उत्तर प्रदेश में इस पर मंथन भी शुरू हो गया है, आज क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का?
1: बिल्कुल, देखिए नेहा, जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है उसके बाद से ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ये बैठक अहम मानी जा रही है। जो हमारे सोर्सेस हैं जिनसे जानकारी मिल रही है कि साफ तौर से ये जो बैठक है उस पर वर्क फ्रॉम होम हो या फिर जिस तरीके से ईंधन की खपत को लेकर हो या इसके साथ साथ किस तरीके से ऑनलाइन सेक्टर्स को किया जाए, इन सभी मुद्दों पर एक अहम चर्चा भी हो रही है। क्योंकि क्या प्लानिंग हो सकती है, इस तरीके की भी ये चर्चा है जिसमें शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ अन्य आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो ये अहम बैठक पिछले तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गई है, चल रही है, और इसको लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसको लेकर क्या क्या क्रियान्वित किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में और किस तरीके से आगे की प्लानिंग की जा सकती है उस पर भी।
0: और इसमें प्रमुख तौर पर जो बिंदु रहने वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम और इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस, इस पर चर्चा की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में केस दर्ज कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया। FIR में BNS के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और सबूतों को नष्ट करने जैसे अपराधों को शामिल किया गया। CBI ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए CBI की विशेष टीमें गठित कर दी गई और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। तो एक बार फिर लाखों छात्रों के सपनों को रौंदा गया, एक बार फिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ और एक बार फिर शिक्षा विभाग का सिस्टम संगठित अपराध के सामने फेल होता दिख रहा है। करीब 22 लाख बच्चों के परिवार के लोग आज की एक खबर से सदमे में आ गए। और खबर ये कि 9 दिन पहले 3 मई को देश के 552 शहरों में नीट की परीक्षा हुई थी जो रद्द हो गई। रद्द इसलिए हुई क्योंकि उस परीक्षा में पर्चा लीक हो गया था। अब उस पर्चा लीक केस की CBI जांच कराई जा रही है, धरपकड़ हो रही है, 40 से 45 लोग भी पकड़े जा चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में जांच चल रही है और छात्र बेबस होकर सड़क पर इंसाफ मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग कौन है और सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं पा रही।
2: जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
3: जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम सब ने 2 साल पूरी मेहनत की है, हम लोग तो रीनीट डिजर्व नहीं करते।
4: अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था वैसे तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा शायद।
5: जबकि मेहनत करना फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना तो ये कोई लाइक लॉजिक नहीं बन रहा है।
6: 2 बरस की तपस्या, 200 मिनट का इम्तिहान, 22 लाख उम्मीदें, अनगिनत अरमान, सबके सब चकनाचूर हो गए।
7: हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मींस ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है।
8: हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर।
9: लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है।
6: कहा तो 3 मई को परीक्षा देकर बच्चे घर लौटे थे लेकिन 7 मई को परीक्षा के पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ और 12 मई तक परीक्षा रद्द हो गई। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख और जगह का इंतजार करेंगे। फिर वही तैयारी, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद और फिर वही पेपर लीक का डर। क्योंकि मुट्ठी भर संगठित अपराधियों के गिरोह के सामने 140 करोड़ की ताकत वाली हुकूमत का इंतजामिया एक इम्तहान तक को महफूज नहीं रख पाया, परिणाम से पहले सिस्टम फेल हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया।
10: ये पेपर केवल राजस्थान में आउट नहीं हुआ है, पूरे देश में आउट हुआ है। तुरंत भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि इसे रद्द किया जाए। पूरे देश में 15 दिन से नीट का पेपर आउट था। एजेंसियों को झांसा देने के लिए ये जो है 410 सवालों का या फिर कह लीजिए कि 80 पेज का एक PDF बनाया गया था ताकि कोई शक न कर पाए इसमें घुस। पूरा नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, सारे नेटवर्क को नासिक के पुलिस अधिकारी को बता दिया गया है।
6: भंडाफोड़ हुआ कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 प्रश्न पत्र 5,000 से लेकर 28 लाख रुपए तक में गेस्ट पेपर के नाम पर प्रसाद की तरह बंट रहे थे। पता चला कि पर्चे नासिक में छपे तो गुरुग्राम पहुंचे, गुरुग्राम से जयपुर, जयपुर से जम्मू और रामगढ़, वहां से सीकर, सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल, केरल से उत्तराखंड।
11: नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा।
6: मतलब ईमानदार मेहनती विद्यार्थी पढ़ पढ़कर आंखें फोड़ रहे थे और लीक पर्चाधारी उनके सपनों के परखच्चे उड़ा रहे थे। वो तो किसी ने NTA को शिकायत कर दी और राजस्थान के SOG ने भंडाफोड़ कर दिया और नासिक से राजस्थान तक ताबड़तोड़ 40 से 45 लोग हिरासत में ले लिए गए। मामला मल्टी स्टेट बड़े सिंडिकेट का समझ में आने लगा तो जांच CBI से कराने का फैसला हुआ। अब छात्र संगठन प्रदर्शन करें, कुछ पिछड़ गए कोचिंग वाले इंसाफ की मांग करें, कुछ टीचर मास्टर सख्ती की मांग करें, कुछ एक्सपर्ट सलाह दें, लेकिन इस पेपर लीक से उन 22 लाख परिवारों के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी वो वही जानते हैं।
12: उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट वो नहीं हो पाता।
10: ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ।
13: पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है।
6: छात्र अपनी बर्बाद हो गई मेहनत पर रोते हैं और जिन्हें ये अपराध रोकना था वो मस्त चादर तान कर सोते हैं। दिल्ली से अनमोल बाली और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आ रही है। नासिक से पुलिस ने शुभम खेरनार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये MBBS थर्ड ईयर का छात्र बताया जा रहा है। इस बारे में संदिग्ध की जानकारी राजस्थान पुलिस ने दी थी। नासिक पुलिस ने टेक्निकल एनालिसिस कर संदिग्ध के लोकेशन का पता चलाया। संदिग्ध पहचान छिपाने के लिए मुंडन करवाकर नासिक सिटी में मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा, जहां से पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नासिक पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, अरविंद उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
14: देखिए, ये तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो SOG के इनपुट पर हुई हैं नेहा, लेकिन अभी अभी जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी ये है कि CBI ने इस मामले में अब केस दर्ज कर लिया है। जो BNS की अलग अलग धाराएं हैं, जो हमें अभी CBI के जरिए जानकारी मिली है, उसके मुताबिक CBI ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसी संगीन धाराओं में ये FIR दर्ज की है। और साथ ही साथ इसकी जांच के लिए अब CBI की टीम ने एक विशेष टीम बनाई है और वो टीमें अलग अलग जगहों पर, जिसमें जयपुर भी है, वहां पर रवाना हो गई हैं। और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो CBI की टीम करेगी। इसके पहले जो SOG की टीम है उसने जो नीट पेपर में जो पेपर लीक जो मामला था उसमें अलग अलग जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें नासिक से ये शख्स जो अपना हुलिया बदल लिया था, जाहिर सी बात है इसे जानकारी मिल गई थी कि इसका भांडा फूट चुका है, इस वजह से इसने अपना हुलिया बदल लिया था, लेकिन इससे भी पकड़ा गया है। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक CBI ने इस मामले में केस रजिस्टर्ड कर लिया है अलग अलग धाराओं में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचना, इन धाराओं में FIR दर्ज कर लिया और CBI की टीम रवाना हुई।
0: अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सबसे पहले पेपर लीक का खुलासा नासिक से हुआ। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये मालूम चला कि नासिक में जहां पेपर छपे थे वहीं से लीक हो गए थे, वहां से गुरुग्राम, जयपुर, सीकर, कश्मीर, बिहार, केरल, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में वो पर्चा गेस्ट पेपर के नाम पर बेचा गया, लाखों का बंदर बांट किया गया।
15: Yeah.
6: इंसाफ के लिए, अपनी मेहनत के बर्बाद हो जाने के जिम्मेदारों को जानने के लिए, क्योंकि पेपर लीक की सूचनाएं जो सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में दावा किया गया है कि परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को फोन कर कहा गया था कि पेपर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक ये कॉल दिल्ली से आया था और इसके बाद सीकर में तेजी से कथित पेपर का सर्कुलेशन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि शुरुआत में ये सामग्री लाखों रुपए में बेची गई, लेकिन परीक्षा नजदीक आते आते कई छात्रों ने इसे खुद ही 5,000 से 30,000 रुपए तक में आगे बेचना शुरू कर दिया। यानी पूरा नेटवर्क लालच और कमीशन के खेल में बदल गया।
15: नीट का एक गैस पेपर टाइप का पेपर है, एक पीडीएफ है, दो पीडीएफ जो करीब 150 पेजेस की है पीडीएफ। उस 150 पेज की पीडीएफ में अराउंड 410 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो उसके बेसिस पे ये पीडीएफ, पहले था कि 2 तारीख की रात 3 को नीट का एग्जाम था, 2 को आई, फिर पता पड़ा 1 तारीख को भी अवेलेबल थी, फिर उसके बाद में और हमने देखा तो 30 तारीख को भी अवेलेबल थी। अब पता पड़ा कि वहां

0: के बाद एनटीए की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। एक बार फिर नीट के पेपर लीक मामले में संस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनटीए कितना है मैं उसे भी समझ लेते हैं। कौन सी परीक्षाएं एनटीए कराता है? नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जी मेन यानी कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, उसके बाद सीयूईटी यूजी पीजी परीक्षा जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाती है, यूजीसी नेट परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की परीक्षा है, सीमैट परीक्षा जो कि एमबीए प्रवेश परीक्षा है और जीपैट यानी कि फार्मेसी प्रवेश परीक्षा, ये तमाम परीक्षाएं कराई जाती हैं एनटीए द्वारा। इस वक्त एनटीए की भूमिका कटघरे में क्यों है? क्योंकि 2021 में जेईई मेन पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था, फर्जी परीक्षार्थी का रैकेट पकड़ा गया था। तो 2022 में भी जेईई मेन का आपको बता दें संदर्भ कि परीक्षा मैनेजमेंट को लेकर विवाद हुआ था, परीक्षा के दौरान कंप्यूटर फ्रीज जैसी समस्याएं आ रही थी। 2022 का ये मामला है, तब भी विवादों में ये परीक्षा रही थी। अब 2024 की बात कर लेते हैं, यूजीसी नेट परीक्षा, इसमें पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई थी, डार्क नेट पर पेपर लीक का मामला सामने आया था। अब साल 2024 की बात कर लेते हैं, सीयूईटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के चलते परीक्षा केंद्रों में समस्याएं आ रही थी, जिसके बाद परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। हालांकि 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में धांधली के आरोप के बाद केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी प्रशासनिक एक्शन लिया। एनटीए के तत्कालीन महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था, उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नया प्रमुख नियुक्त किया गया, लेकिन हालात नहीं बदले। और इस पूरे मामले में एनटीए कैसे पल्ला झाड़ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
0: तो इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है, कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
2: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते, और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, किसको दंडित किया गया, किसको सजा दी गई। तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें, लेकिन जो 22 थे
3: ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। मिले हुए हैं ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।
4: और रात की ही जानकारी में आ गया था या सुबह भी जानकारी में था लोगों को, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है।
0: शंखनाथ तो मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.

0: Ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: Now in India.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
5: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, anybody can dream।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
3: बड़े आराम से।
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है।
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
6: हमारे सीमेंट में नहीं है।
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
12: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
13: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
14: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
15: नहीं,
14: और म्यूचुअल फंड से
15: सही।
16: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
17: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
22: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
23: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
24: सोच बदलो और बैंक भी।
25: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
26: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
27: लायन डेट नट बाइट्स।
28: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
29: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
30: Like I said before, we better hold the sin.
31: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
3: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
4: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
3: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
5: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
2: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
3: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
7: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
2: 4 मई काउंटिंग।
3: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
8: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
2: 8 मई CM का ऐलान।
3: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
2: 9 मई शपथ।
9: शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते थी जे।
2: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।
10: सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य का सवाल है और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया, पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा?
11: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances, which Indians abroad send back to their families, is about $135 billion. And nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
12: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: रद्द सीबीआई ने दर्ज किया मामला, गिरे धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए डीजी, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। नासिक की प्रेस में लीक हुआ नीट पेपर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आज तक से बोले एनटीए महानिदेशक, 7 से 10 दिन में परीक्षा की नई तारीख का होगा ऐलान। असम में ममता का राज तिलक, गुवाहाटी में पीएम मोदी की मौजूदगी में ली शपथ, 4 मंत्रियों के साथ शुरू हुई एनडीए सरकार की लगातार तीसरी पारी। पीएम मोदी की अपील पर योगी सरकार की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम जैसे मुद्दों पर मंथन, प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा। पंजाब के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया, भर्ती घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। प्रधानमंत्री ने पिछले दो दिन में देश के लोगों से दो बार अपील की कि वो सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल की कम खपत करें, विदेश से ज्यादा स्वदेश की यात्रा करें। प्रधानमंत्री लोगों से ऐसे सात आह्वान किए हैं। सवाल है कि क्या देश पर कोई बड़ा खतरा है और प्रधानमंत्री की अपील का असर कितना हो रहा है, क्योंकि इस अपील से शेयर और सराफा बाजार दोनों में गिरावट है। खास तौर पर देश भर के सराफा कारोबारी घबरा गए।
1: देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है।
2: प्रधानमंत्री मोदी देश से सोना बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के क्या मायने हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा है? दो दिन में मोदी ने दो बार देश से ऐसी अपील की है। शेयर मार्केट से लेकर सर्राफा मार्केट तक हड़कंप मच गया। हिंदुस्तानियों का सोने से प्रेम कुछ ज्यादा ही है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, लोग बुरे वक्त के लिए भी सोना खरीद कर रखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोने की खरीद कम कर दो। मोदी कह रहे हैं कि एक साल तक सोना न खरीदें तो लोग चिंता में तो आ ही जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे एक बड़ा कारण है, डॉलर बचाना। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% सोना आयात करता है। सालाना 700 से 800 टन की खपत है, जिसमें घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन का होता है। 2024-25 में भारत ने 58 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, लेकिन उसके अगले ही साल यानी कि 2025-26 में भारत ने 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया। आयात बिल में गोल्ड का हिस्सा 9% का है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो या सोने की खरीद को टाल दो। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर के सर्राफा कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। पटना में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा बाजार ठप पड़ा है। कारोबारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद उनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी।
3: प्रधानमंत्री की इस बयान से थोड़ी अस्तब्धता आई है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4 से 5 करोड़ की संख्या में हम लोग स्वर्णकार हैं, और अगर मान लिया जाए कि हम लोग सोना नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? शुरू से पूर्वज लोग 3 पीढ़ियों से इसी में चलते आ रहे हैं, तो थोड़ी सी कल से घबराहट हुई है। EMI है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोगों को परेशानियां आगे आने वाले समय में दिख रहा है।
4: मोदी जी ने कल स्टेटमेंट दिया है परसों, वो वाकई बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप एक व्यवसाय को लेकर ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। ताकि हम इससे 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, आखिर हम लोग परिवार हमारे कहाँ जाएंगे? और हम जैसे नए यंग जनरेशन इससे जुड़ रहे हैं, वो आने वाले बच्चे फिर नहीं जुड़ेंगे इससे।
5: आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि सोना एक्सचेंज करने की बात उन्होंने कही कि सोना एक्सचेंज करने से आपको फायदा होगा।
4: हाँ, एक्सचेंज करने से फायदा होगा, पर हमारे पास भी कैश तो हो तब तो, और जब हम सेल नहीं करेंगे तो मेरे पास कैश कहाँ से रहेगा, तो फिर हम एक्सचेंज क्या कर पाएंगे?
2: कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पहले ही ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है, और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इम्पोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना न खरीदें, ताकि उसे सोने को दूसरे देशों से आयात न करना पड़े और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। ये अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, उनमें चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। 2025 में चीन ने 591 टन सोना खरीदा था और भारत ने 462 टन, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर था जिसने 109 टन सोना खरीदा था। हालात सामान्य थे तो भारत सोने का इंपोर्ट बिल सह पा रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है तो मोदी को कहना पड़ रहा है कि एक साल तक लोग सोना न खरीदें। देश के तमाम बड़े शहरों में प्रधानमंत्री मोदी का अपील का असर दिख रहा है। नागपुर में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा व्यापार पर बड़ा संकट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ लाखों लोगों के रोजगार पर सवाल खड़ा हो सकता है।
6: इस इंडस्ट्री में करीब करीब 50 से 60 लाख कारीगर डायरेक्ट इस पे अवलंबन है, या फिर रोजगार उससे मिलता है, 40 से 50 लाख एम्प्लॉई जो डायरेक्ट शोरूम्स में जो काम करते हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, और उसमें विशेष तौर पे 70% तो महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं एक साल तक अगर ज्वेलरी कोई नहीं खरीदेगा तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पे डायरेक्ट रोजगार का एक बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा हो सकता है इस वजह से। और इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ अलाइन करती है।
2: यही हाल देहरादून में भी है। आम लोग तो प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी कारोबारी चिंता में आ गए हैं। सोना कारोबारियों का कहना है कि दाम बढ़े होने की वजह से पहले ही ग्राहक कम थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मांग और ज्यादा घट सकती है।
7: अच्छा एक स्टेटमेंट नहीं था, बट स्टिल ये मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स एकदम दे देना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है।
8: कितना प्रभाव पड़ रहा है आज मार्केट, आपने देखा कितना असर है मार्केट में, कितना असर पड़ भी सकता है?
7: 25-30% के असर की मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना असर ये जरूर पड़ेगा शायद।
9: ठीक बोला है कि देश जैसे अभी जो लड़ाई लग रही है ऐसा ही स्थिति में, आप जैसे तेल के लिए भी बोला उन्होंने और जो सोने के लिए भी बोला कि लेके मतलब घर में जमा करना है जैसा कुछ, उसके लिए उन्होंने बोला कि कम खरीदी करो भाई, जो जिसकी शादी होगी या कुछ होगा वो तो थोड़ा बहुत अपने लेंगे ही लेंगे, बाकी जो जमा करने के लिए बारे में उन्होंने बोला कि भाई सोना आप लोग।
2: जयपुर के सराफा कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के साथ खड़े हैं, वो इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। जयपुर के कारोबारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील गोल्ड का इंपोर्ट कम करने को लेकर है, बाकी रोजाना के गहनों के खरीद पर इसका असर कम पड़ेगा।
10: हम ज्वेलर को और ज्वेलरी इंडस्ट्री को इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कब कोई नया नियम आ जाए, हो सकता है GST को लेकर आ जाए, हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर आ जाए, लेकिन जहां नारी है वहीं आभूषण है, और जब तक नारी है तब तक आभूषण जरूर है, और हम आभूषण में ही व्यापार करते हैं, ज्वेलरी में व्यापार करते हैं, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइन है। हाँ, हमें इम्पोर्ट कम करना चाहिए, और केवल इस अपील से कम भी 20% इम्पोर्ट कम होना चाहिए, हमारा घरेलू सोना रिसाइकल होगा।
2: दिल्ली के कारोबारियों का भी मानना है कि मोदी की अपील से उनके कारोबार पर असर तो पड़ेगा, बड़ा सवाल यह है कि अगर लोगों ने इस अपील के बाद सोना खरीदना कम कर दिया तो इससे जुड़े कारीगरों और बाकी कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा।
11: तो देखो हम है यहाँ पे एम्प्लॉई है, हम अपने घर से आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे काम नहीं होगा तो फिर मालिक हमें क्यों सैलरी देगा, क्योंकि उनके पास भी रोजगार नहीं है, अगर उनके पास नहीं होगा तो वो हमें भी नहीं दे पाएंगे, फिर अगर हमारा घर उस हिसाब से किस तरीके से चलेगा, हम तो इसी पे डिपेंड है ना, हम इसी काम से ही, क्योंकि मुझे भी इस लाइन में कम से कम 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल मेरा किसी और फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं कहीं नई शुरुआत करूँ, कि मैं गारमेंट्स में चली जाऊँ या किसी और उसमें चली जाऊँ, क्योंकि मेरा तो सारा एक्सपीरियंस इसी में ही है, अगर यहाँ से मैं छूट गई या मालिक हमें वो सैलरी नहीं दे पाया तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, हम तो डिपेंड ही इसी पे है।
12: और काम ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी बेरोजगार ही हो जाएगा, इससे तो ये लग रहा है।
13: कितने सालों से आप काम कर रहे हैं?
12: यहाँ पे तो हम 4-5 साल से कर रहे हैं।
13: और कितने परिवार हैं जिनका आपकी कमाई से पेट भर रहा है?
12: मेरे साथ जुड़े हैं 6 आदमी, 7वां मैं, तो यानी से गुजारा चलाते हैं।
2: आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील से सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये तो तय है कि संकट बहुत बड़ा है, हॉर्मुज संकट बहुत बड़ा है और अभी तक हॉर्मुज नहीं खुला है, आने वाले वक्त में खुलने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है।

0: का उपयोग कम करना होगा, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
1: 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने देश के नाम दो दो पैगाम जारी किए। दोनों संदेशों में कमोबेश एक ही बात थी, युद्ध के संकट पर चिंता थी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से कैसे निपटा जाए इसका सवाल था, विदेशी मुद्रा कैसे बचाई जाए इस पर गंभीर चिंता थी। मोदी ने कहा है कि एक साल तक सोने की खरीदारी से बचें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, तेल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें, मेट्रो में सफर, कारपूलिंग और ईवी गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हर परिवार में खाने के तेल का इस्तेमाल कम से कम हो, रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने की सलाह दी, शादियों, छुट्टियों और विदेश यात्रा टालने को भी पीएम ने देश हित में बताया। इन अपीलों का एक ही मकसद है कि इन पर देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक असंतुलन हो रहा है, देश का घाटा बढ़ रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इन अपीलों पर सियासी संग्राम शुरू हो गया, पूरा विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है।
2: जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कुछ महीनों में या एक साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें, देश के लोगों को बताएं कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई।
3: वो अरविंद केजरीवाल जिनके बाथरूम में सोने का पॉट लगा होता था, सोने का, उनको दिक्कत हो गई, भाई सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो बाथरूम में पॉट पे सोना कैसे लगेगा। जिनका शीश महल अय्याशी का अड्डा बन गया था और दिल्ली की जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया, टोपी भी गायब हो गई आम आदमी की, मफलर भी गायब हो गया और अरविंद केजरीवाल खुद भी गायब हो गए, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, नाम आम आदमी और काम सारे वीवीआईपी कल्चर वाले।
1: सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये है ही कि क्या सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि हॉर्मूज बंद होने से तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए होता है। जंग के बाद से अब तक करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसे देखते हुए अलग अलग रिपोर्ट्स में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए लीटर बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है।
4: संख्या वो कम है, प्रधानमंत्री साहब की जो अपील है वो जनता सुन रही है और फर्ज भी बनता है जनता का कि अगर देश का राजा कोई जनता से अपील करता है तो उस अपील को प्रॉपर जो सहमति देनी चाहिए, तो पब्लिक का भी फर्ज बनता है, अगर राजा ने बोला तो उसका पूरा समर्थन।
5: वक्त ही शुरू से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
10: विक्रम!
4: हिंट
10: बड़े आराम से।
11: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
20: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
22: Like I said before, we better hold this in.
23: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
24: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
25: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
24: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
26: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
23: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
27: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है, उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम एक साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सके।
29: मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है? सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है? कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद एनी नीट की परीक्षा रद्द, सीबीआई ने दर्ज किया केस, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आज तक से बोले एनटीए महानिदेशक, 7 से 10 दिन में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा। पीएम मोदी की अपील पर योगी सरकार की अहम बैठक, सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम जैसे मुद्दों पर मंथन, प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा। सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर पीएम आवास पर बैठक, नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद, मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का 24 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, पुंछ में एलओसी के करीब मारा गया पाक घुसपैठिया, सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में मिली कामयाबी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज देश के 22 लाख परिवारों में बड़ी चिंता पैदा हुई। बच्चे चिंतित हुए क्योंकि 22,79,000 बच्चों ने 9 दिन पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट दी, लेकिन अब पेपर लीक हो गया। कल आज तक नहीं, सबसे पहले इस मुद्दे पर तथ्यों के साथ खबरदार किया था, इसीलिए देश की सबसे अहम खबर, हर परिवार से जुड़ी खबर पर हम सबसे पहले खबरदार करेंगे। बताएंगे कैसे 5 दिन से 7 राज्यों में नीट का पेपर लीक होकर बढ़ता रहा। इसके बाद पेपर लीक मुक्त भारत कब होगा, इस सवाल के साथ बताएंगे कि CBI वाकई पेपर लीक की जांच करके दोषियों को सजा क्या दिला पाएगी। ध्यान से देखिएगा तो इसका जवाब आज आपको चौंका देगा। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को युद्ध के साए के बीच आर्थिक संकट से बचने के लिए पेट्रोल डीजल कम खर्च की अपील की है। यह अपील जरूरी है, लेकिन क्या नेता ही नसीहत को धुएं में उड़ा दे रहे हैं, हैरान करता वीडियो सामने आया है। और फिर आपको पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर के खिलाफ गवाही देते आतंकियों को सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबरदार करता सवाल, क्या पेपर लीक मुक्त भारत नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर नीट का पेपर लीक कैसे हो गया?
1: हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है।
2: बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर।
3: भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है देश की।
4: एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद हुए।
5: ये न्यूज आने के बाद सारा मतलब मूड ऑफ हो गया है, मतलब भाई बहुत ज्यादा दुखी है।
6: एक बड़ा सेटबैक तो सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है।
7: और जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
8: श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए, फिर हम एक ऐसी पाथ पे चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है।
0: नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता दें, नीट पेपर लीक की जांच करने के लिए CBI की टीम नासिक के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 में पहुंच गई है, जहां आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में बुलेगी। शुभम खैरनार मेडिकल का छात्र है, आरोपी है, उससे पूछताछ करके लीक के जो लिंक है वो खंगाले जाएंगे। कार्रवाई अब तेजी से हो रही है। पहले नीट पेपर लीक की इन तमाम खबरों में जांच के बाद फौरन पेपर को रद्द करके यह कहा गया कि जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब CBI की टीम जो पूछताछ के लिए पहुंची है, उम्मीद है कि वहां पर हिरासत में लेने के बाद कड़ियां संपूर्ण रूप से जुड़े। पेपर लीक मुक्त भारत इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। देश में पिछले 12 साल में 75 चुनाव हुए हैं और देश में पिछले 8 साल में करीब 80 पेपर लीक हुए हैं। कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। आज तक ने सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर खबरदार किया है, आज भी हमारी मुहिम इसी से जुड़ी है, क्योंकि कल आज तक नहीं पहले आपको कल बताया कि किस तरह 180 सवाल के नीट के पेपर में 135 सवाल गेस पेपर के नाम पर लीक कर दिए गए। आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ, CBI को जांच दी गई। सरकार कह रही है कि अन्याय नहीं होने देंगे।
9: मई 2024 नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है, आज तक प्रदेश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं।
10: सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है, कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी।
9: लेकिन 2 साल बस पूरे ही हुए, लीक हो गया 22 लाख छात्रों का सरकार पर भरोसा। लीक हो गया सरकार का ईमानदारी से परीक्षा कराने का दावा। लीक हो गया माता पिता का पूरी परीक्षा प्रणाली पर विश्वास। और 2026 की 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, शिक्षा मंत्री सवालों को टाल देते हैं। सुरक्षा घेरा सहयोगी ने बनाया, मंत्री कार में बैठ गए। जबकि मई 2024 में भी नीट पेपर लीक पर ही जब श्वेता सिंह ने पूछा कि क्या ऐसा दौर देश देख सकता है जहां जीरो एरर हो, पेपर लीक बंद हो जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही थी। कहा था, जिम्मेदारी हम लेते हैं।
11: क्या एक ऐसा दौर देख सकता है जहां पर जीरो एरर हो, जहां पर पेपर लीक बंद हो जाए?
10: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जीरो एरर हो। पेपर लीक के ऊपर हमने एक सख्त कानून बनाई है, जल्द ही उसकी रूल्स बन जाने वाले हैं। चुनाव की व्यस्तता के कारण वो थोड़ा नहीं बन पाई होगी, लेकिन इस बीच में मैंने जितना जानकारी लिया है, लॉ डिपार्टमेंट ने उसकी कानून को रूल्स रेगुलेशन में कन्वर्ट कर चुकी होगी इस बीच में। हम पूरा आश्वस्त करते हैं, इस प्रकार की गुनाह में संश्लिष्ट लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े बड़े गिरोह है, रसूखदार लोग उसके पीछे हैं, बड़े बड़े लॉबी उसके साथ काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश की गरीब मध्यवर्गीय सामान्य लोगों की, बच्चे जिनके पास मेधा अकूत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की, जीरो एरर बिना माल प्रैक्टिसेस की दायित्व सरकार की निश्चित बनती है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं।
9: लेकिन सख्त कानून बनाने के बावजूद 15 दिन से नीट का पेपर भंडारे की नुक्ती बूंदी रायते की तरह बढ़ता रहा। देश के 7 राज्यों में नीट का पेपर लीक होकर बहता रहा। दावा है कि जहां प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपा, वहीं से लीक हो गया।
0: सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, जूनियर इंजीनियर भर्ती हो, टीचर भर्ती हो, 10वीं के बोर्ड से मेडिकल कॉलेज दाखिले तक कोई राज्य नहीं बचा। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। इस बार नीट की परीक्षा 22,79,000 छात्र छात्राओं ने दी थी। 3 मई को हुई परीक्षा को 9 दिन में रद्द किया गया। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। पहले जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, न ही कोई फीस दोबारा देनी होगी, बल्कि जो फॉर्म फीस छात्रों ने दी है वो भी बताया गया है कि वापस कैसे किया जा सकता है। 6 से 8 दिन में बताया जा रहा है कि फिर से परीक्षा की नई तारीख आ जाएगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बार पेपर लीक हुआ कैसे। एनटीए ने देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में नीट की परीक्षा कराई। 22,79,000 छात्र बैठे। सामान्य वर्ग के छात्र से 1700 रुपए फॉर्म की फीस ली गई। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटे के छात्रों से 1600 रुपए फॉर्म का लिया गया। एससी एसटी वर्ग के छात्रों से 1000 रुपए फॉर्म के लिए गए। एक मोटा मोटा अनुमान है कि 250 करोड़ से लेकर 350 करोड़ रुपए केवल फॉर्म भरने से एनटीए को मिला। क्या इतना पैसा छात्रों से लेकर ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता था कि लीक प्रूफ सिस्टम बन जाता?
12: मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वॉयलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें।
13: पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 अभी लीक 26 अभी लीक।
12: पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए
14: पूरे इकोसिस्टम के लिए। हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे, यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं।
0: हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, शरद कुमार जयपुर से हमारे साथ हैं, यानी उस जगह से जहां से ये पूरा मामला सामने आया, और दिवेश सिंह नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं, यानी वो जगह जहां से सिरा सबसे इस तरीके से जुड़ा है कि वहीं से निकलकर ये सारा लीक हुआ है, ये अभी फिलहाल बताया जा रहा है। हम दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे 9 साल पहले इस भरोसे के साथ बनाया गया कि पारदर्शिता इसकी सबसे बड़ी ताकत परीक्षा कराने में रहेगी, नीट पेपर कराने से पहले इसी NTA ने यह दावा किया था कि सील बंद प्रोटोकॉल के तहत गोपनीय सामग्री को निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाएंगे, परीक्षा से जुड़े पेपर की आवाजाही के लिए पुलिस सुरक्षा वाली GPS सक्षम गाड़ियां रहेंगी, सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी रहेगी जिसकी फीड सेंट्रल कमांड सेंटर से जुड़ी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले मेटल डिटेक्टर्स से अनिवार्य तलाशी होगी, किसी और की जगह परीक्षा देने से रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम रहेगा। ये तक दावा किया था कि 65 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल्स को नकली प्रश्न पत्र और झूठी अफवाहें फैलाने के आरोप में ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इन सबको धता बताकर देश के 7 राज्यों तक नीट का पेपर बढ़ता रहा।

0: तमाम राज्यों में अब सीबीआई की यह जांच पहुंच रही है, लेकिन इस बीच उन छात्रों का क्या जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद पढ़ाई करके घंटों की इस परीक्षा को दिया था और इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत सफल होती दिख रही है।
1: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
2: 12 घंटे पढ़ते थे सर, इतनी मेहनत करते थे, हमारे टीचर्स भी हम पे इतने मोटिवेट करते थे, हमारे सर जो है कोचिंग के, और सर इतना जी सर बिल्कुल मेरा एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए, सर भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप। हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी कुछ, हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन सर आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
3: डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी नीट होती है और नीट को क्रैक करने के लिए इस तरह की एनसीईआरटी की किताबों के एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को याद करना पड़ता है, और जब नीट जैसी परीक्षा रद्द होती है तो आप अंदाजा लगाइए उन बच्चों पर क्या बीतती है जो सालों साल मेहनत करते हैं।
4: इतना हार्डवर्क के बाद इतना पेशेंस कि चलो फाइनली वी हैव डन समथिंग गुड, अब ये नीट कैंसिलेशन, नीट कैंसिल हो गया,
5: हम लोग हमारे जानने वाले सब इतना मेहनत कर रहे और फिर ऐसा खराब आउटकम मिल रहा है। कुछ लोग को आंसर्स ऑलरेडी पता है, जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की उनका सब वेस्ट हो गया, बहुत खराब लगा ये बात सुनकर।
6: नीट का एग्जामिनेशन जो है वो लीक हुआ, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया और लाखों स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने अपीयर किया था इस एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर थी ये। हम एक कोचिंग सेंटर में हैं चंडीगढ़ में, जहां टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स वो हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस बार नीट की।
7: इतना बड़ा जो एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है, जो असल कितनी एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करता है, वो कैसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है जिसकी वजह से कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ बच्चों को कितना उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है बुरा उनके रिजल्ट पे।
8: विद अपकमिंग डॉक्टर्स, हमने भी अपकमिंग ईयर्स में अपने एग्जाम देने हैं एंड सर वी आर बींग स्केर्ड, मैम मेरे फ्रेंड्स वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल अगर फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया फिर।
9: बहुत इन्होंने गलत किया, बहुत बच्चों ने तो अपने बुक्स वगैरह भी बेच दी होगी इन सब चीज को लेकर, इतने मन में बहुत खुशियां भी बांट रहे होंगे और फिर एट द लास्ट इन्होंने ये कर दिया, ये बहुत गलत हुआ उन लोग के साथ।
10: बहुत ज्यादा आ गई एंजाइटी की क्या पता हमारे भी हो जाए, हम इतना मेहनत करके फिर पेपर का पता नहीं डेट कब आए, उसके बाद लीक हो जाए तो हो सकता है कि हम
11: बच्चे इतने ज्यादा दूर से आ रहे हैं, उन्हें बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई करने, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा वो हो जा रहे हैं कि अब हमें फिर से एक पल की खुशी तुरंत वो चली जा रही है कि हाँ इतना बढ़िया पेपर गया था, उसके बाद फिर से अब देना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा एक मन में थोड़ा डर रह जाता है।
12: अब एक लाइन आपको बताते हैं, ये वो लाइन है जो पेपर लीक केस में सबको बोली गई जब पेपर बांटा गया, यही आएगा, ये वो लाइन है जो पेपर बांटते वक्त सबको बताया गया। अब इसकी पूरी चेन समझ लीजिए, नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने का दावा राजस्थान एसओजी की जांच में अब तक किया जा रहा है। दावा है कि नीट की परीक्षा जहां कुल 180 सवाल होते हैं, वहां बायोलॉजी के पेपर के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के पेपर के 45 सवाल यानी कुल 135 सवाल उस गेस पेपर के नाम पर बंटते रहे जिसे अब पेपर लीक कहा जा रहा है। आज तक के पास एसओजी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बायोलॉजी के सभी 90 सवाल 200 प्रश्नों वाले गेस पेपर में थे, केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस पेपर में थे, 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल वही थे जो नीट परीक्षा में पूछे जा रहे थे। अब आगे का सुनिए, नासिक से यह पेपर गेस पेपर के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा, यहां एक डॉक्टर के पास पेपर लीक होकर पहुंचा, इसके बाद राजस्थान में जयपुर के पास जमवा रामगढ़ ये लीक पेपर पहुंचा, जमवा रामगढ़ से ये सीकर पहुंचा, सीकर से फिर ये पेपर अंधाधुंध बंटने लगा। दावा है कि नीट परीक्षा का ये लीक पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड यानी कुल देश के 7 राज्यों तक फैल गया। बड़ी खबर एक और आ रही है कि सीबीआई ने आरोपी को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है। सीबीआई आरोपी को पकड़कर अब क्राइम ब्रांच लेकर गई है, क्योंकि यहां से समझ में आएगा कि पूरा मामला आखिर चला कैसे। अभी तक एसओजी के सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उनके पुष्ट होने की भी जरूरत है, उसके साथ ही ये भी आवश्यकता है कि एक बार कड़ियां समझ में आए कि कहां से कहां ये पूरा रास्ता रहा है जिससे एक्शन हो और आगे लीक प्रूफ हो सके। तो हम आपको नासिक और राजस्थान दोनों जगहों पर लिए चलते हैं, जहां से हमारे

0: क्योंकि राजस्थान से ये बात सामने आई, लेकिन अब नासिक से जो पूरी सच्चाई है दिवेश, उसे सामने आना है।
1: जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि शुभम खैरनार ये खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है, और पिछले 6 महीनों से उसके पिता जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि पिछले 6 महीनों से शुभम खैरनार नासिक में प्रैक्टिस कर रहा है। वो फाइनल ईयर BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज का स्टूडेंट है। वो मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में पढ़ रहा था, सीहोर के कॉलेज में पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज में, और फिलहाल वो नासिक में पिछले 6 महीने से रह रहा था। अब जो पुलिस को प्राइमरी जांच में पूछताछ में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि शुभम बता रहा है कि उसे जो पेपर मिला वो उसने 10 लाख रुपए में खरीदा है, और वो पेपर उसे टेलीग्राम द्वारा किसी ने भेजा है। यह व्यक्ति जिसने ये पेपर भेजा है वो पुणे में था, ऐसा उसका कहना है। तो आगे की जांच अभी चल रही है, जो पुणे का व्यक्ति है उसे भी पुलिस और CBI ढूंढेगी, पर शुभम खैरनार अभी गिरफ्त में है। शुभम खैरनार ने 10 लाख में ये पेपर खरीद कर हरियाणा के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए में ये पेपर बेच दिया था, ये प्राथमिक जांच में पता चला है। नासिक क्राइम ब्रांच ने आज सवेरे ही शुभम खैरनार को पकड़ा है। शुभम खैरनार वेशभूषा बदलकर, अपने बाल कटवाकर, अपना माथा छिलवाकर, कपड़े बदलकर, ऐसे अपना भेष बदलकर घूम रहा था। उसे शक था कि वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो वेशभूषा बदलकर घूम रहा था। पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी मुश्तैदी से कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ और इंटेलिजेंस इनपुट, टेक्निकल सर्वेलेंस को ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल सर्वेलेंस लगाते हुए शुभम खैरनार को धर दबोचा जब वो एक मंदिर की तरफ जा रहा था, और उसके बाद उसे गिरफ्त में लिया, जो प्राथमिक पूछताछ हुई है। क्योंकि
0: बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है शरद, और बहुत अजीब सी चीज है कि अगर हम इसे इस रूप में देखें कि अगर जब शुरुआती कंप्लेंट्स इस तरह की आ रही थी, उस समय अगर जहां कंप्लेन हो रहा था वो सजग हो जाते वो लोग, तो शायद इस तरह का मामला आगे नहीं बढ़ता। गेस पेपर के नाम पर ये एक पूरा पेपर लीक, उसे करने की कोशिश तो बहुत इंटेलिजेंटली हुई है कि सारे पेपर हूबहू वैसे ना दिखें, लेकिन सारे के सारे सवाल बिना मतलब कॉमा फुल स्टॉप के साथ साथ हूबहू वैसे ही नजर आ गए।
2: आपको पहले सुविधा दिखा दूं कि दिल्ली से लगातार CBI की गाड़ियां, यह 5वीं गाड़ी है जो CBI के अधिकारियों की गाड़ी यहां पर पहुंची है। जयपुर के SOG में लगातार CBI के अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लड़के और लड़कियां रखे हुए हैं जिनसे भी पूछताछ करनी है, जिनको ये पेपर बेचा गया था, और जिसकी वजह से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर टीम जो है एक्सपर्ट टीम भी पहुंच रही है, और पहले भी आ चुकी है यहां पर CBI की टीम जो यहां पर पूछताछ कर रही है और अधिकारियों से मिल रही है। ये वो दृश्य है, सीधे आपको हम जयपुर के SOG से दिखा रहे हैं CBI के अधिकारियों का दृश्य। लेकिन जो आप पूछ रही थी, बिल्कुल सही बात कह रही थी कि जिस तरह से शुरुआती रूप से पता लग गया था, मुस्तैदी से जांच की जाती तो पता चल जाता, मगर देखिए श्वेता, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस बार इन्होंने मोडस ऑपरेंडी बदला है। इस बार इन्होंने काउंसलर के जरिए कोचिंगों से कहा जा रहा है कि पहले साठगांठ कर ली है कि बच्चों को बेचते हैं तो हमेशा पकड़े जाते हैं, इस बार काउंसलर कोचिंग में बेचेंगे, और कोचिंग वाला ये कहेगा कि देखिए हमारा कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, फिर वो पैसा कमाएगा तो इनको देगा, यानी कि आम जनता में बेचना नहीं था, मगर सीकर में जब ये कोचिंग में पढ़ाया जाने लगा यही आएगा, तो वो सीकर के लालची बच्चों ने कुछ पैसे कमाने के लिए आगे बेचना शुरू कर दिया, इसको टेलीग्राम पर फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, और वहीं से केरल पहुंचा, केरल से एक हॉस्टल वाले के पास पहुंचा, हॉस्टल वाले के पास से सारा मामला खुला। इस बार पूरा इन्होंने पिछले 1 महीने से तैयारी कर रखी थी, और 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं। श्वेता, मैं तो आप इंटरव्यू सुना रही थी तो मैं सुनकर आश्चर्य में था, वो कह रहे हैं NTA के DG अभिषेक सिंह कि मैं तो अप्रैल में ही आया हूँ, अप्रैल में ही आए हैं, और दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षा नीट परीक्षा के DG बने हुए हैं। अब तो ये अपने आप में आश्चर्य है कि अब इतनी जल्दी इन्हें परीक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसमें ये प्रोसेस को कह रहे हैं कि अभी मैं समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही तो हुई है। वो कह रहे हैं 2 लाख लोग इस प्रोसेस में थे, 2 लाख फुल प्रूफ लोगों को प्रोसेस में रखना था, क्योंकि 22 लाख केवल बच्चे नहीं हैं, 22 लाख परिवार हैं जो उन बच्चों के पीछे खपते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से पेपर आउट हुआ है, अपने आप में एक तरह से सरकार के लिए आंख खोलने वाला कल दिन

0: बार श्वेता आप भी हमारे साथ जुड़े हुई थी और हमने खबरदार में भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से ये पेपर पूरे देश में बटा है और अब सब कुछ आ गया था, कुछ बचा नहीं था। सभी 45 साल केमिस्ट्री के आ गए, सभी 90 बायोलॉजी के आ गए, हाँ। तो बचा क्या था, बस हाँ। फैसला लेना था। और वही बात कह रहे थे कि फैसले में देरी हो क्यों रही है। आज जाकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि परीक्षा रद्द करे और सीबीआई की जांच कराए।
1: जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं शरद, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई की जो टीम है वो उसका राजस्थान में भी जांच पूरी चल रही है, उस कार्रवाई के लिए वो पूरी टीम वहां पर मौजूद है। शरद वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई की टीम इस समय भी रात के 8 बजे के बाद वहां पर उनका पहुंचना जारी है। जाहिर है कि शुरुआत में भले ही हल्के में लिया गया, लेकिन जैसे ही ये पूरी तस्वीर सबके सामने हुई, आज तक पर हमने दिखाया कि किस तरीके से कितने प्रश्न ऐसे थे और किस तरीके से उन प्रश्नों के ही अगर सही जवाब हो जाते तो कोई भी छात्र जो डिजर्विंग नहीं है वो भी क्रैक कर सकता था नीट। तो खैर, अच्छी बात यह है कि फैसला लिया गया रद्द करने का, और दूसरी चीज ये कि एक साल बर्बाद होने का जो डर छात्रों का है वो न रहे, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के भीतर एक नई तारीख इसकी दी जाएगी जो जल्द से जल्द होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो तू डाल डाल में पात पात, यानी कि एनटीए की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से जब ये कोशिश होती है कि फुल प्रूफ बनाया जाए, लीक प्रूफ बनाया जाए, तो किस तरीके से जो अपराधी हैं वो एक नया तरीका ईजाद कर लेते हैं। अब सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क ये खुला है। नागौर के एक लड़के ने दावा किया कि 28 लाख रुपए में यह पेपर खरीदा था, बाद में यही पेपर कहीं 10 लाख, कहीं 8 लाख से लेकर बाद में 30,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक में बेचा जाता रहा। यह सारी जानकारी राजस्थान एसओजी के दावों पर आधारित है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक शख्स को पेपर मिला तो वो आगे फिर पेपर बांटकर पैसा बटोरता गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस अब सीकर और जयपुर पर है। सीकर को पेपर लीक नेटवर्क का नया अड्डा बनने की आशंका जताई जा रही है। कोटा के बाद सीकर तेजी से देश के बड़े कोचिंग हब के रूप में उभरा है। कोटा में एडमिशन घटने के बाद राजस्थान में बड़ी संख्या में छात्र सीकर की ओर आए, जिससे यहां कोचिंग कारोबार तेजी से बढ़ा। तो क्या कोचिंग नेटवर्क भी इस पेपर लीक में शामिल रहते हैं?
2: बहुत ही पेनफुल था जो भी हुआ। ये बच्चों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी बड़ी हरासमेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने उनको इस चीज के लिए तैयार किया, और कुछ लोगों की गलती का खामियाजा 22 लाख बच्चा भुगतेगा, और ऐसे इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे वीकर पड़ता जाएगा। सो वॉट एवर हैपन्ड इट वॉज वेरी बैड, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी प्लीज रीनीट अगर हो रहा है तो उसकी डेट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर की जाए, ताकि बच्चे इस डायलमा से बाहर आ सके और अपनी स्टडीज को चैनलाइज कर सके। वो इस टाइम जितनी बुरी मेंटल स्टेट में है ना, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
3: देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टैक्सिंग है दोबारा से पढ़ना, पर कहीं ना कहीं अब उनका मोरल बेशक डाउन है, बट एज अ टीचर हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग से जो कॉल्स आ रहे हैं कि आप फिर से ट्राई करो, यू नो लाइक वी हैव टू मेक देम वर्क। तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखो बेटा, आप डिजर्विंग है ना, तो जो बच्चे जिनकी वजह से भी तुम्हें ये पे करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू कम बैक अगेन। तो ये बहुत गलत है वैसे, बट हमारा बच्चा जो है अल्टीमेटली सफर कर रहा है।
4: फिर से उठो कि गिरकर उठने में ही आपकी हिम्मत है। तो इस तरह से आज सुबह से हम शुरू हो गए हैं उनको हिम्मत देने में, बट दिल तो हमारा बहुत दुखता है, क्योंकि पूरे साल देखिए, जब से बचपन से वो एक ड्रीम लेके चल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो ड्रीम सारी खत्म हो जाती है उसकी, और आंसुओं में आज सारा दिन हमारा भी निकल रहा है और हमारे बच्चों का भी।
5: बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहता है इसमें, क्योंकि हम लोग पूरा साल, दो साल, तीन साल बच्चों को मेहनत कराते हैं और इस दिन का वेट करते हैं, और उसके बाद जब ऐसा पता चलता है कि एक एग्जाम कैंसिल हो गया, जबकि ये हर साल हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गया वंस एंड फॉर ऑल, बट ये पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार ये एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो मेरे को लगता है जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं।
6: प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो मोटिवेट करना ही एक तरीका हमारे पास बच रहा है कि हम उन बच्चों को वापस लाएं, जैसा हम ले आए हैं यहाँ पर, मतलब नोटिफिकेशन के साथ ही, और उनको हम दोबारा उसी जिगर के साथ तैयार करें। बट हाँ, मैं भी वही बोलूंगा जो सारे लोग बोल रहे हैं, सिंगल एग्जाम नीट यूजी का अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसे बच्चों के मन के साथ, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ, और मैं बोलूंगा देश के भविष्य के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो इसके साथ नहीं खेलना है हमें।
7: ये बच्चे साल में दिवाली के अलावा इनको छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, तो इन्हें कोई शादियां छोड़ी होती, बहुत सारी चीजें होती है, तो उन सबको छोड़ के अब ये वापस से, उनकी कुछ प्लानिंग थी वापस से लेके यहाँ आना पड़ेगा उनको, और पढ़ना पड़ेगा वापस से, लगना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, वापस से उसी माहौल में आना पड़ेगा जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है।
8: कितना स्ट्रेसफुल होता है फेज ये वाला?
7: बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि 14-15 घंटे की पढ़ाई आप किसी एक काम को कंटिन्यू करके खत्म कर चुके हो, और आपको पता पड़ेगा मुझे फिर से लगना है, वो भी विदाउट प्री प्लानिंग के साथ, तो एकदम से सबके लिए स्ट्रेसफुल होता है, और ये करना मजबूरी है क्योंकि ये कंपटीशन है, आप नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा जो करेगा फिर वो आगे निकल जाएगा।
9: बच्चों को बोलना चाहता हूं, आज मुझसे खड़े कर वो कि जो हुआ है उसका इलाज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये शाश्वत सत्य की एग्जामिनेशन दोबारा होगा। अब या तो हम इस बात को कोसते रहें, किसी को ब्लेम देते रहें, उस किस पे ब्लेम जाना चाहिए, लड़ाई लड़ते रहें, कौन इसके लिए क्राइम करा था, कौन इसके लिए दोषी था, इसके लिए सरकार ने सबसे उच्चतम जो हमारी व्यवस्था है सीबीआई, उसको जांच में के लिए दे दी है, उनसे बेहतर तो हम नहीं कर सकते, तो उसमें समय खराब क्यों करें। हमारा कर्तव्य है इस समय इमरजेंसी में पेशेंट को समझकर इस लड़ाई को दोबारा लड़ना है, मनस्थिति अच्छी रखनी है, मनस्थिति अच्छी रख लोगे तो अच्छे डॉक्टर वैसे ही तुम बन जाओगे।
1: नासिक के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंच रही है, लेकिन अब सवाल है कि क्या सीबीआई नीट पेपर लीक की जांच पूरी करके दोषियों को जेल पहुंचा पाएगी। इसको हम लोग आज 2 साल पहले लीक हुए नीट पेपर के केस और जांच से समझते हैं, जहां संजीव मुखिया वो अपराधी है जिसका नाम सुर्खियों में आया जब 2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जब इस पूरे पेपर लीक कांड का खुलासा करने का दावा कर रही थी, ठीक तभी ये मामला सीबीआई को चला गया। नीट पेपर लीक होने के 11 महीने बाद तक संजीव मुखिया सीबीआई की पकड़ से दूर रहा। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी फिर 25 अप्रैल 2025 को पटना के सगुना मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट से हुई। पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने रिमांड पर लेकर संजीव मुखिया के कई दफा सवाल पूछे, लेकिन हैरत की बात यह रही कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट समय सीमा के अंदर पहले दाखिल नहीं कर पाई थी। 90 दिनों में संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर होने के कारण पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को संजीव मुखिया को जमानत दे दी थी। दावा है कि बाद में संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। संजीव मुखिया तो पेपर लीक मामले में जेल से बाहर आ जाता अगर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज नहीं किया होता। नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले का मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया फिलहाल बक्सर जेल में बंद है, यानी 2 साल हो चुके हैं, जांच जारी है, किसी को सजा नहीं हुई। क्या यही वजह है कि विपक्ष तुरंत पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा और सरकार कहने लगी कि हम तुरंत जांच करा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
10: ये बार बार हो रहा है, ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ में ना, और ये बार बार मध्य प्रदेश यूपी बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है।
11: 4 बार पेपर लीक हो चुका तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिलीभगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां है, उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे लीक लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर?
12: जो राज्य सरकार भाजपा के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार आपके पास है, अब ये अब कहां गया डबल इंजन? अब डबल इंजन फेल हो गया है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और राजस्थान में तो 45 लोगों को डिटेन किया था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया फॉर्मली, क्योंकि दबाव होगा कहीं ना कहीं। कौन वो प्रभावशाली लोग हैं जो दबाव बनाए हुए हैं, कौन जांच नहीं होना देना चाह रहे हैं, और कौन चाहते हैं सीबीआई के पाले में डाल दो, अपना मामला ठंडा हो जाएगा।
13: और रात की ही जानकारी में आ गया था, या सुबह भी जानकारी में था लोगों को, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है।
14: समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीओ को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, ये इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही राजस्थान से आ रही। तब केस SOG को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि FIR तक दर्ज नहीं कर रहे थे।
15: जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा या उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से हो या कश्मीर से हो, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं आएंगे।
16: एक बात पूरा देश समझे, ये मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक ने हमेशा पहले बताया है कि पेपर लीक से कैसे कभी ईमानदार बच्चे की सीट चली जाती है, कभी ईमानदार बच्चे की नौकरी चली जाती है, भर्तियां लटक जाती हैं, भर्ती लटकती है तो असर आम आदमी तक पहुंचता है। लेकिन पेपर लीक कभी पुलिस भर्ती का होता है, कभी SSC का भर्ती का पेपर लीक होता है। एक पेपर देने जब युवा निकलता है तो वो लंबी तैयारी के बाद जाता है, फिर चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी देने की परीक्षा, फिर भी ये लीक रोकी नहीं जा पा रही है। इस मुद्दे पर हम आगे भी खबरदार करते रहेंगे। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं को खबरदार करने की। 24 घंटे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल थी। इस BJP नेता पर PM की अपील का भी असर नहीं हुआ। उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील की, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो उस सोच से आगाह करता है जिन्हें अपने किए का पछतावा तक नहीं।
17: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक BJP नेता खबरदार दिखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी 2 लोगों के साथ ई रिक्शा से BJP कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में BJP मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
19: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए अपील की है?
20: आज प्रधानमंत्री जी ने अगर 1 साल के लिए अपील की है तो 1 साल 2 साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आवाज से पूछ रही
19: हूँ। तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा
20: तो चल सकते हैं, काफिला कोई नहीं रहेगा।
19: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचा है, सोना बचा है,
20: सोना को लेकर
18: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से BJP दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
21: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी 2 दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये 2 गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी, और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ, और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्यपुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
18: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया, लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
21: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहां है, तो इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
0: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
21: पोस्टर
0: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
2: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ देकर रोकते जा रहे हैं, गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में, देख रहे हैं
21: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हमारा तो नंबर भी देख लिया,
2: विदिशा पोस्टिंग सब CNG गाड़ी है।
18: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर ली, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
22: मैं गांव का परिवेश मंगरों का मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
23: जी,
22: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझती है, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश से दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे हम तो निकल पड़े
23: जी।
22: अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे जुड़ से गए, मैं समझ नहीं पाया, मैं आगे रहा
23: जी।
22: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया ठीक है जो भी है।
23: लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्च और आप
22: यही से कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा लेकिन वो आ गए, तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
23: मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है?
22: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
18: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए। रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने न अपने CM की मानी न PM की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
16: नीट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको और खबरदार हम कर दें, SOG ने राजस्थान में SOG ने सौंप दी है लिस्ट CBI को, अब क्योंकि CBI अब आगे इसमें इंक्वायरी करेगी। लिस्ट में 150 छात्र 70 अभिभावकों के नाम है। अभी तक SOG की तरफ से जो जांच हो रही थी कि पेपर कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा, उस मामले में एक पूरी सूची तैयार की गई थी, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। अब वो जो पूरी सूची है, चाहे काउंसलर हो या फिर छात्र या उनके अभिभावक, वो पूरी सूची जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। और अब आपको पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं, जिसकी पोल उसके ही आतंकवादियों ने खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब हुई ये सबने देखा, लेकिन आसिम मुनीर लगातार अपनी हार को जीत में बदलने में तुले रहे। इसके लिए इस बार उन्होंने लश्कर आतंकवादियों का सहारा लिया, लेकिन एक नहीं बल्कि दो दो आतंकवादियों ने कबूल किया कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वहां कोहराम मच गया।
3: They lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. And at the end of the day, if the Pakistanis were to make the same amount of investment in their battle fighting ability as much as they do in the narrative, I think they would have fared much better.
18: Operation Sindoor ke saal bhar pura hone par sena ne bataya ki usne Pakistan ke 11 sainya thikane, 13 Pakistani viman aur 100 se zyada sainikon ko maar giraya.
4: The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus.
18: सेना ने जो कुछ भी कहा उस पर अब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही मुहर लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी पाकिस्तान के आतंकवादियों की जुबानी सुनिए। आज तक को आतंकवादियों की एक ऐसी रैली की तस्वीर हाथ लगी है जिसे एक खास वजह से आयोजित किया गया। इस रैली का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की शिकस्त पर पर्दा डालना। ये लश्कर का टॉप आतंकी सैफुल्ला खालिद है, जो 8 मई को लश्कर के आतंकियों के साथ फैसलाबाद में दिखा। इसी रैली में सैफुल्ला खालिद ने ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर ए तैयबा मुख्यालय में हुई तबाही का खुलासा कर पाकिस्तान की पोल खोल दी।
5: ये फैसलाबाद के भाइयों, पिछले साल ये 8 मई का दिन था जब हम मरकज तैबा मुरीद के की जामिया मुस्लिमुल खुरा और उसकी मुरहका बिल्डिंग से अपने शहीदों की गोटियां, उनके बिखरे हुए टुकड़े, चीथड़े हम इकट्ठे कर रहे थे।
18: पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर आने की बात को नकारता रहा है, लेकिन अब उसके ही आतंकवादी उसकी पोल खोल रहे हैं। इसी से जुड़ा दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें दिख रहा यह आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नमाज जनाजा पढ़वाते हुए सारी दुनिया ने देखा था। हाफिज अब्दुल रऊफ ने सबसे पहले आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना सरकार की साठगांठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया।
6: मैंने जनाजा पढ़ाया, कोर कमांडर भी थे, पता नहीं कितने कितने लोग थे, मैं तो जानता भी नहीं, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और एमएनएस, एमपीएस सब लोग आए। और उनका ये किसी जमात का मसला नहीं, ये रियासत का मसला है, ये जनादा रियासत के, ये हमला मुरीद के पे नहीं, पाकिस्तान पे हमला है।
18: ये वो आतंकी है जिसका वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा था। आज पहली बार इस आतंकी ने अपनी जुबान से खुलासा कर दिया कि कैसे लश्कर के मुख्यालय में हुए हमले में मारे गए आतंकियों के लिए इसने जनाजा पढ़ा था और कैसे आर्मी से लेकर राजनेता तक शामिल हुए। इतना ही नहीं, हाफिज अब्दुल रऊफ ने साफ साफ कहा कि शहबाज सरकार ने कहा कि हमला लश्कर के मुख्यालय पर नहीं पाकिस्तान पर हुआ है। ये बयान पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करता है।
6: जनाजा मैंने पढ़ाया, हिंदुस्तान ने, वो शशि थ्रू मेरी तस्वीरें लेके फिरता उनका, ये दहशत गर्द है। और पाकिस्तान अरशद शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं, नहीं ये पाकिस्तानी है, ये हमारा है। मेरा पूरा इंटरव्यू चीजें चला रहे हैं कि नहीं। और बिलावल यूएन में मेरी तस्वीर लेके खड़ा है कि ये कह रहे हैं कि ये कौन है, ये वो नहीं है जो बताया जा रहा है। इस तरह इन्होंने हमारे मुकदमे लड़े इस कौम ने।
18: तो एक आतंकवादी खुलकर कैमरे पर बता रहा है कि उसकी पहचान को किस तरह से छिपाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना और उसके नेताओं ने की थी, लेकिन इसके बाद जो उसने कहा उसने आसिम मुनीर की सबसे बड़े झूठ की पोल खोल दी।
6: अगले दिन ड्रोन आ गया 8 को, आपके बेबी गुजरात भी आए हो, इस्लामाबाद, पिशावर, लाहौर, ड्रोन की तो छा होगी लाहौर पाकिस्तान में। अब ना हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। 9 की रात फिर हम पे हमला हुआ नूर खान बेस पे और ये शोरकोट बेस पे, रहीम यार खान एयरपोर्ट पे, बहावलपुर पे।
18: तो आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने बताया कैसे उसकी सच्चाई छिपाने के लिए बिलावल भुट्टो तक ने झूठ बोला। भारतीय
16: आज असम में हिमंता बिस्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इससे पहले तमिलनाडु में भी विजय शपथ ले चुके हैं। कल उनके विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश से लगती सीमा पर बाड़ लगाने समेत कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन केरल में अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसा हुआ है। पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद केरल 9 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के बिना है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में खींचतान है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Employers don't hire diplomas, they hire skills. At WGU School of Technology, you'll earn both with a degree backed by industry certifications that prove you're job ready. Learn more at wgu.edu.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
24: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn. Beautiful.
25: कूल फैंस से घर को सजाएं।
26: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
25: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
8: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
10: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, anybody can dream.
9: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
11: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
5: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
9: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
10: विक्रम, एक हिंट तो देते।
11: विक्रम!
10: हिंट।
9: बड़े आराम से।
12: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
13: Take a date, not bites.
14: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
13: Lion Date Nut Bites.
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
19: AU
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: Director, the taste of success.
22: Like I said before, we better hold the sins.
23: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
24: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
25: और वही कहाँ गए थे घूमने?
26: JK मैक्स।
27: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
26: JK मैक्स बेस्ट पुट्टी।
27: JK वॉल मैक्स
26: बेस्ट पेंट।
27: JK मैक्स।
26: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK मैक्स पेंट्स। JK मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
28: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
29: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
30: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
31: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
30: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
32: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
33: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
32: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
33: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
34: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
35: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
36: All sports, all the time, right here on TuneIn.
0: Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: And Talk Sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: जो नीट का पेपर हुआ है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है? क्या उसके बाबत कोई जानकारी आई है? क्या उसको लेकर लीक होने की कोई आशंका है सर जी को?
2: नहीं, नीट का एक गैस पेपर टाइप का पेपर है, एक पीडीएफ है, दो पीडीएफ जो करीब 150 पेजेस की है पीडीएफ। उस 150 पेज की पीडीएफ में अराउंड 410 क्वेश्चंस है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो उसके बेसिस पे ये पीडीएफ, पहले था कि 2 तारीख की रात को, 3 को नीट का एग्जाम था, 2 को आई, फिर पता पड़ा 1 तारीख को भी अवेलेबल थी, फिर उसके बाद में और हमने देखा तो 30 तारीख को भी अवेलेबल थी। अब पता पड़ा कि वहां के ई मित्र केंद्रों के पास में भी अवेलेबल थी और करीब 15 दिन महीने भर से लोगों को मालूम था कि ये चीज वहां पे चल रही है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं को कि आखिर ये गैस पेपर है क्या, ये बना कैसे, इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने देखी।
3: ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि चैन से सोना है तो तेल बचाओ, और तेल बचेगा तभी सोने पर सुहागा होगा। दो दिन से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की अपील की चर्चा है, जिसमें उन्होंने एक साल तक सोना ना खरीदने, तेल की बचत करने के लिए लोगों से सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार हमारी जेब, हमारा पसंद, सब पर पहरा लगाने जैसा कैसे फैसला ले सकती है। विरोध करने वालों को हम 1997 के दक्षिण कोरिया की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर शायद उन्हें राष्ट्रवाद की नई परिभाषा समझ आए। जब एक देश को बचाने के लिए 35 लाख परिवारों ने अपनी शादियों के गहने सरकार को दान में दे दिए थे, आज तो सिर्फ कम खरीद की बात हो रही है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ राजनीति की परतें ही नहीं खोलेंगे, बल्कि आपको उन आंकड़ों के समंदर में ले जाएंगे जहां ईरान युद्ध की आग आपके पेट्रोल टैंक, आपकी तिजोरी तक पहुंच रही है। आज आपको तय करना है आपके लिए सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या देश हित में तेल बचाना। अब दुनिया भर में तेल 50% तक महंगा हुआ है, लेकिन भारत में कीमतें अभी भी स्थिर है। आज सवाल यह है कि महंगे तेल की मार के बाद आपकी कार कब तक यूं ही चलेगी। इसके बाद देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर हुए भद्दे मजाक के बारे में आपको बताएंगे। कैसे नीलाम हुई है हमारे बच्चों की जिंदगी, उनकी मेहनत, उनका भविष्य। जिस नीट परीक्षा को पास कर देश के युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, ना दिन का चयन होता है ना रात को नींद मिलती है, दिन रात एक करके सब कुछ त्याग कर पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी मेहनत के दम पर वो एक दिन डॉक्टर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, अपने परिवार के जो अन्य लोग हैं उनको खुश कर पाएं, जो देश में मरीज हैं उनका इलाज कर पाएं और इस नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़ पाएं। वहां पर उनकी मेहनत पर धांधली फिर से भारी पड़ गई। 3 मई को परीक्षाएं हुई, 4 मई को पता चला कि 150 से ज्यादा सवाल पहले ही लीक हो चुके थे। देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आखिर क्यों हमारे देश में पेपर लीक एक लाइलाज बीमारी बन गया है? मतलब हम आतंकवाद को पीछे धकेलने की बातें करते हैं, हम पाकिस्तान तक पर हमला कर देते हैं, उसके आतंकी ठिकानों तक पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक एग्जाम नहीं करा सकते अपने देश में? आज इसी धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि बंगाल में सरकार बदलते ही सड़कों पर नमाज लड़ने पर बैन लगा दिया गया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु विधानसभा में सनातन को मिटाने की कसम कैसे खाई गई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल, डीजल, वर्क फ्रॉम होम और सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे लेकर अब अलग अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और सूत्रों के हवाले से ही खबर आई है कि इस बैठक का एजेंडा था उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना और वर्क फ्रॉम होम के लिए नई व्यवस्था पर मंथन करना। ये बैठकें भी तब हो रही हैं जब कल सुबह 11 बजे मोदी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसे लेकर भी अटकलें तेज हैं, क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर राजनीति बहुत हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर इतनी राजनीति हो रही है और विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों को सोना खरीदने से मना कैसे कर सकती है, तब हम आपको शुरुआत में ही 1997 की ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ ये नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार है। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल, डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है, उसी से बचने की बात देश में हो रही है। लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर IMF से $58 बिलियन का बेलआउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको IMF से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेलआउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको IMF से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश, सोना दे सकते हैं वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपनी निजी सोना सरकार को देन दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का, लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक साल तो भूल जाइए, ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है। स्वाहा, खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और ये सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। 18,000 करोड़ रुपए और यहाँ तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर ये संकट एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है। और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है, क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला है। जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये समुद्री रास्ता अब भी बंद है, इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है। बड़ी बात यह है कि अब तो ये कागजी सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है। ईरान ने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जो शर्तें बताई थी, उन शर्तों को राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंकने की बात कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस युद्ध में लागू हुआ सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीज फायर कोई कह रहे हैं कि आईसीयू में है, आईसीयू भी नहीं, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, मतलब आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसके बचने की बहुत कम संभावना है। बहुत जल्द ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस धमकी को सुनिए, समझिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जब सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे अपील करना क्यों जरूरी था।
1: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Diagnostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: अमेरिका का मीडिया दावा यह कर रहा है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हकीकत में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। सीएनएन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दोबारा से हमले करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों से नाराज हैं और उन्हें यह लगता है कि ईरान इस समझौते को करने के लिए गंभीर नहीं है। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफ दिया, और इस ब्रीफ में क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके खिलाफ आक्रामक रुख को अपनाना बहुत जरूरी है, और पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर फिर से हमला होना ही चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ना तो सीज फायर का कोई फायदा है, ना ही ये उम्मीद करना सही है कि अगले कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। ना रास्ता तेल गैस का खुला है और ना ही ये सीज फायर परमानेंट दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि जैसे बॉक्सिंग रिंग के मैच में एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक के बाद बॉक्सिंग का मुकाबला फिर से शुरू हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बदलते हुए फैसले को देखते हुए इसकी संभावना जताई जा रही है। आप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।
3: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे।
0: तो अमेरिकी मीडिया का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले 2 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में लगभग एक साल या फिर 8 से 10 महीने लगेंगे। अगर यही हॉर्मूज 6 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, और अगर यही हॉर्मूज 1 साल बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई 3 साल बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी से

थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने यह कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है, लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है। थाईलैंड क्या बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है? बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है, जिसमें दो पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है, लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही है। तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मुज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स, कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश है, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है, 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल, सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी है और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है, लेकिन जब संकट बढ़ रहा है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राएं टाल दें, तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी मुद्दे की राजनीति में और उसकी वास्तविकता में कितना बड़ा अंतर होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ होता है नैरेटिव जो बनाया जाता है और एक तरफ होता है फैक्ट्स। तो युद्ध के बाद गैस तेल की कीमत जो बढ़ी है वो हम आपको हर देश का सिलसिलेवार ढंग से नंबर दिखाना चाहते हैं। तो जब आप ये नंबर्स देखेंगे मुझे लगता है पीला ही रखना चाहिए। ये देखिए, जब आप देखिएगा मलेशिया में 56.3% वृद्धि हुई है और वहां पर आप कीमतें देखेंगे तो हॉर्मुज से उनका सप्लाई कितना है, 38%। अब 38% सप्लाई होने की वजह से हॉर्मुज से उनका 56.3% उनके कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। हमारा सोर्स एक बार दिखा दीजिए, हमारा सोर्स है ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस और वहीं से ये नंबर आपके सामने है, साक्षात है। मतलब मलेशिया में 56.3% का इजाफा ये आपको दिख रहा है। ये देखिए आप 54.9% कहां बढ़ा है, पाकिस्तान में, इनका तो 80% वहां से आता है, 80%। यूएई अपना तेल है फिर भी 52.4% का यहां पर बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका 44.5% की बढ़ोतरी, जबकि सिर्फ 2% यहां पर आता है। तो ऐसा लगता है कि कई देशों ने तो युद्ध का मौके की तरह इस्तेमाल किया है और एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि क्यों ना इस युद्ध में कीमतें साथ के साथ बढ़ा दी जाए। वरना इसकी क्या वजह हो सकती है, या तो फिर हथियारों के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है अमेरिका को, 44.5% बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका देखिए 33.1%, इनका 22% आता है, ये देखिए। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो 5-15% आता है कनाडा का, उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी है 31.9%। चाइना 21.7%, इनका 50% यहां से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका 50% आता है वहां से, फिर भी इन्होंने कीमतें 21.7% बढ़ाई और यही पाकिस्तान की हालत देखिए, 80% वहां से आता है और इन्होंने 54.9%

0: 9% कीमतें बढ़ा दी है। ऐसे ही आप देखिए ब्रिटेन में भी बढ़ोतरी हुई है लगभग 19% की, 10% ये वहां से तेल लेते हैं, 61% दक्षिण कोरिया का आता है वहां से हॉर्मुज से तेल, इनकी कीमतें बढ़ी है 19%, जर्मनी की 13.5%, 5% से कम वहां से आता है। जापान इंटरेस्टिंग है जहां का 95% वहां से आता है लेकिन इन्होंने कम वृद्धि की है, इन्होंने 9.5% के आसपास वृद्धि की है। ब्राजील ने की है 6% के आसपास, स्पेन ने 5%, इनका वही 10-15% आता है। लेकिन भारत जिसका 35-40% वहां से आता है हॉर्मुज से सप्लाई, ये देखिए 35-40% जिनका आता है वहां से सप्लाई, वहां पर कोई वृद्धि नहीं की गई है, यहां पर कोई वृद्धि नहीं की गई। तो ये आप समझ गए, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर आप देखिए तो रेट्स में सबसे ज्यादा मलेशिया, पाकिस्तान और यूएई में की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां से सप्लाई आने के बावजूद सिर्फ 10% के आसपास जापान ने किया है, लेकिन 35-40% वहां से तेल आने वाले भारत ने कोई वृद्धि नहीं की है। तो यह बताता है कि किस तरह की परिस्थिति है और भारत उसका किस तरह से मुकाबला कर रहा है। लेकिन हमारे देश की राजनीति थमती नहीं। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं, सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। और यहां इस बात को नोट करिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह अपील साल 2013 में की थी जब ना तो ईरान जैसा कोई युद्ध चल रहा था ना ही कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट था। लेकिन जो सोना हम खरीदते हैं, जो हम आयात करते हैं, 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए। लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए,
1: देयर हैज बीन अ डिटीरियोरेशन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूज इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड, higher costs of crude oil imports and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports.
0: यूपी की सरकार में ना सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मुज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। सुनिए,
2: डोंट डिमांड गोल्ड एंड वी डोंट हैव टू इंपोर्ट गोल्ड फॉर वन ईयर। जस्ट इमेजिन, फॉर वन ईयर द होल सिचुएशन विल सो ड्रामेटिकली चेंज। यू थिंक यू आर बाइंग गोल्ड इन रुपीज बट एक्चुअली यू आर बाइंग गोल्ड इन डॉलर्स। I would once again appeal to everyone, please resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है. दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है. तो चाइना की बात सुनिए. चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है. जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स. एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है. अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था. यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था. और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है. ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है. 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन से जनता से यह अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था. विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों की को अपनाने की अपील की थी. 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे. पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा. इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसे, होटल रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें. लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया. इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है. उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया. उनकी अपील को पूरे देश ने माना. 1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी लेकिन यह बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं. वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से यह अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो. और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है. सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है. हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं. आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है. और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है.
3: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी. सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है. मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
0: आज यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि लोग तो तेल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, अपनी गाड़ियों की जगह मेट्रो और कारपूलिंग से दफ्तर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे नेता, हमारे माननीय महोदय, हमारे विधायक, हमारे सांसद, उनके काफिले कब छोटे होंगे? क्या वो संकट की इस घड़ी में तेल की कीमत का महत्व समझेंगे? मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पार्टी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इसके बाद जानते हैं माननीय नेता ने क्या क्या समर्थकों के साथ उज्जैन से भोपाल तक कई गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़े साहब, और दावा है कि इस काफिले में 5 से 10 या 50 गाड़ियां नहीं बल्कि 700 गाड़ियां थी। मतलब कैमरा जा ही रहा है, बस गाड़ियों का तांता खत्म नहीं हो रहा है। चैट जीपीटी का अनुमान है कि इस बीजेपी नेता ने सिर्फ अपना पदभार संभालने के लिए 10,000 लीटर तेल खर्च कर दिया होगा, लेकिन सोचे नेताओं से तेल बचाने के लिए कौन कहेगा। देखिए,

और अब इन नेताजी को भी देखिए जरा। इन नेताजी का नाम है राकेश सिंह जादौन। इन्हें भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया। ये भी लंबा चौड़ा काफिला लेकर पद संभालने जा रहे थे, लेकिन इसके बाद आज तक ने इनकी ये तस्वीरें दिखाई और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक रिक्शा पर आ गए। देखिए।

0: इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल है कि जनता तो तेल की बचत कर लेगी, सोना खरीदना बंद कर देगी, क्या ये नेता अपना काम करेंगे, क्या इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? ये जो सादगी आजकल दिखाई जा रही है कि एक दो लोग निकल रहे हैं साइकिलों पर, इसमें हाईकोर्ट जज जस्टिस डीडी बंसल भी हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि लोगों को एक मिसाल पेश करनी होगी और जो नेता होते हैं उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो मिसाल पेश करें। गाड़ियों के साथ टशन से सड़कों पर निकलना, तेल की चिंता ना दिखाना, ये सब कोई अच्छा उदाहरण है नहीं। बदलिए नेताजी। पर बात सिर्फ पेट्रोल डीजल बचाने की नहीं बल्कि आज बात सोने को लेकर भी है। 2016 में एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के पास उस वक्त 710 किलोग्राम सोना था। सोना डिक्लेयर करना पड़ता है ना चुनाव में, तो एडीआर ने सारा सोना ऐड किया और तब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस योजना के तहत सरकार ने यह विकल्प दिया था कि लोग अपने घरों में सोना ना रखकर सरकार के पास इसे जमा कर दें और बदले में सरकार से इस पर ब्याज लेते रहें। लेकिन तब लोग तो कई आए जिन्होंने अपना सोना सरकार के पास रखा, लेकिन ये जो हमारे सांसद थे जिनके पास था 710 किलोग्राम सोना, उन्होंने साफ कह दिया कि वो सरकार के पास अपना सोना जमा नहीं कराएंगे। अमर सिंह ने तो ये कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पत्नी का उनसे झगड़ा हो जाएगा, जबकि उनके पास 13.7 किलोग्राम मतलब लगभग पौने 14 किलोग्राम सोना था। हेमा मालिनी के पास 5.5 किलो सोना था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि वो सरकार के पास अपना सोना रखने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रही। इनके अलावा कई और नेताओं के पास कई किलो सोना था, लेकिन उन्होंने अपना सोना सरकार के पास ब्याज के लिए नहीं दिया और आज ये स्कीम बंद कर दी गई है। इससे सबसे ज्यादा सोना मंदिरों की तरफ से आया है। सवाल उठेगा कि जनता तो मान लेती है, लेकिन क्या हमारे नेता मानेंगे और क्या वो संकट की घड़ी में इन अपील पर अमल करेंगे? आज एक सवाल और है कि क्या देशहित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए। अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ एक साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा? नीट की परीक्षा में एक बार फिर से हमारे देश के 22,79,000 परीक्षार्थियों के साथ धोखा हुआ है। लाखों युवा डॉक्टर्स बनने का सपना लेकर आते हैं और वो ये सपना लिए पूरी ईमानदारी के साथ 3 मई को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। सोचिए धड़कनें किस तरह से चल रही होंगी, किस तरह के तनाव से वो गुजर रहे होंगे। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए बैठ रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन सबके साथ तैयारी के दम पर परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन उन्हें पता चला कि नीट यूजी 2026 के क्वेश्चन पेपर में बताए गए 150 से ज्यादा सवाल पहले से लीक हो चुके थे। यानी इस परीक्षा में ईमानदार परीक्षार्थियों का मुकाबला ऐसे बेईमान छात्रों के साथ था जो पहले से ही 150 सवालों का सही जवाब जानते थे। ईमानदार छात्रों के साथ हुआ यह धोखा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर है और कई छात्र संगठन पेपर लीक के खिलाफ एनटीए का विरोध कर रहे हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस एजेंसी की कार्यशैली, उसके तौर तरीके, उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं कि अब यह विश्वसनीयता खोती जा रही है। फिलहाल एनटीए ने पेपर लीक की शिकायतों के बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी पूरे साल लगन से पढ़ाई, मेहनत, दिन रात एक करना, ये बच्चे 12th के बाद भी लगातार रात रात भर जगते हैं, खाना पीना सब बेसुध, सब कुछ भूलकर पढ़ाई में दिन रात एक करते हैं और ऐसी लगन से पढ़ाई करने वाले छात्रों को एनटीए की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तय ये हुआ है कि छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। सोचिए फिर से वही चक्र। अब परीक्षा के लिए नई तारीख आएगी, नई परीक्षा के लिए छात्रों को नया आवेदन नहीं करना है, पुराने आवेदन से काम चल जाएगा, छात्रों से अलग से कोई एग्जाम फीस नहीं ली जाएगी, नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एग्जाम सेंटर वही रहेगा जहां छात्रों ने एग्जाम दिया था। यानी एक तरह से छात्रों को मजबूरन नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा और परीक्षा की तारीख उन्हें जल्दी ही बता दी जाएगी। नीट परीक्षाएं कराने में एनटीए की लापरवाही देखिए कि पेपर लीक हो चुका था, उसे पता भी नहीं था और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा 1 मई को सामने आया। दरअसल 1 मई को केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को नीट का एक गेस पेपर भेजा। गेस पेपर की भैया इसी के आधार पर मेन पेपर हो सकता है। गेस पेपर का मतलब है अनुमानित सवालों का एक ऐसा सेट जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। 2 मई को यह गेस पेपर सीकर में पीजी चलाने वाले एक व्यक्ति को मिला। उसने ये पेपर अपने यहाँ नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को दे दिया। 3 मई को जब परीक्षा हुई तो पता चला कि असली क्वेश्चन पेपर में 150 सवाल वही थे जो उस गेस पेपर में बताए गए थे और ये बहुत असामान्य बात थी। जब पेपर लीक की शिकायतों पर हंगामा शुरू हो गया तब 7 मई को एनटीए ने गड़बड़ी की बात को गंभीरता से लिया, कहा कि ये मामला राजस्थान और उत्तराखंड में सामने आया है। गेस पेपर के नाम पर नीट के असली एग्जाम पेपर के 150 सवाल जारी हो चुके थे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंची थी। गेस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सारे सवाल हाथों से लिखे गए थे, ऐसा नहीं था कि इसकी फोटोकॉपी की गई हो। नीट के क्वेश्चन पेपर में आए 150 सवालों को पूछे जाने का तरीका भी सेम टू सेम था। नीट की परीक्षा में 4-4 अंकों वाले 180 सवाल आते हैं, मतलब ये है कि सैकड़ों परीक्षार्थियों के पास 720 में से 600 अंक तक हासिल करने जितने सवाल पहले से थे। बहुत से लोगों को संदेह है कि ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि इत्तेफाक का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्सर ऐसा होता है कि असली परीक्षा में गैस पेपर जैसे मिलते जुलते सवाल आ जाते हैं, लेकिन शब्दशः वही शब्द, वही नंबर्स और इतनी बड़ी संख्या, 150 सवालों की बात हो रही है, एक जैसे हो गए, ऐसी संभावना बन गई। ऐसी संभावना ना के बराबर है, हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसीलिए यह केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है क्योंकि इसमें कई राज्यों में फैले नेटवर्क का हाथ भी हो सकता है। अभी तक इस मामले में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नाशिक से शुभम खैरनार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसको ये पेपर टेलीग्राम ऐप पर पुणे के एक युवक के जरिए मिला था। शुभम खैरनार ने ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा, उसके बाद उसने इसे हरियाणा के एक अन्य खरीददार को 15 लाख रुपए में बेच दिया। यानी हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों के भविष्य की बोली लग रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि नीट का पेपर के नाशिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया, यहां से ये पेपर हरियाणा पहुंचा, हरियाणा से जयपुर, जयपुर से सीकर, सीकर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड फैल गया। इसे आप समझ सकते हैं कि 3 मई को कितनी बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों ने एग्जाम दिया होगा जिनको ये 150 सवालों के जवाब रटे हुए थे। ऐसे में ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों का उनसे क्या मुकाबला था। इसी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है, साल दर साल अब तो पैटर्न है। साल 2024 में तो नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस साल नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर लीक होने से कई सेंटर्स पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। एनटीए ने शुरुआत में पेपर लीक की खबरों को नकार दिया था, लेकिन पुलिस जांच में पेपर लीक की बात सामने आई, फिर एग्जाम कैंसिल। पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा रद्द करने की अपील की और तब जाकर ये कैंसिल हुआ। ऐसी कुछ ही सेंटर्स की परीक्षाएं रद्द की गई और 1539 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी थी। उस साल की परीक्षा में अगर आप देखिए तो कितने सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिल गए थे, कई टॉपर्स एक ही सेंटर में थे। मामलों की वजह से एनटीए पर सवाल तब भी उठे। और साल 2024 के पेपर लीक केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और इस केस में 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिलहाल इस केस की फाइल धूल फांक रही है क्योंकि उसके मास्टरमाइंड का आज तक पता नहीं चला। सोचे 2 साल पहले जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो पता नहीं 2026 के परीक्षार्थियों को इंसाफ कब मिलेगा। हमारे देश में पेपर लीक को अपराध माना जाता है, लेकिन गंभीरता से लिया जाता है क्या? पिछले 7 वर्षों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें कई तरह की भर्ती परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। धांधली के मामले में देश के 15 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इसमें मुख्य तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात जैसे राज्य हैं। बावजूद इसके परीक्षा से पहले पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग नेटवर्क को तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां फेल हो जाती हैं और बाद में जब कार्रवाई शुरू होती है तो सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। नीट पेपर लीक की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों को एनटीए गलत बताता रहा। साल 2024-26 को छोड़ दें तो पेपर लीक की खबरें आमतौर पर अफवाह, धोखाधड़ी के तौर पर सामने आई, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या पेपर लीक के खेल को खत्म करने का कोई उपाय है? और इसी के साथ साथ आज सवाल ये भी है कि क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का, वो कितने गंभीरता से इन एग्जाम्स को लें, क्योंकि सिस्टम तो इन एग्जाम्स को गंभीरता से ले नहीं रहा है। ये कुछ लोगों के लिए पैसे कमाई का एक लीक एंड अर्न मॉडल बन गया है।
1: ये जो पेपर है ये पहले भी लीक हुआ, उसके दोषी कौन थे? हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है, 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। इस पे पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
2: सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है।
0: इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए।

0: music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: कोई ऐसा कूलर दिखा पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है,
3: छोटे ऑन कर दे, ऑन कर दे,
2: ऑन कर दे, पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
5: कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: एक हिंट तो देते।
7: हिंट बड़े आराम से
8: मैं करता हूँ ना,
9: मैं करूँगा।
10: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
8: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
10: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड get unlimited domestic and international lounge access, unlimited stays, dining and much more.
8: Cricket mein aap aur banking mein PNB dono hi champion hai.
10: PNB Luxura Metal Credit Card. PNB mera apna bank.
11: Cool fans se ghar ko sajaye.
12: Cool fans bijli bachaye aur kam awaaz kare.
11: Cool fans ghar ki shaan badhaye.
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
15: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
14: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
16: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
17: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
2: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Hint: bade aaram se.
1: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: विमल, बोलो जुबां केसरी.
4: मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है, उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम एक साल ना खरीदें, ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सके.
5: मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदे, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा.
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
7: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
8: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: कोई ऐसा कूलर दिखा. पूरी फैमिली बोले वाह.
11: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
10: ज्यादा बड़ी ना है.
11: छोटे ऑन कर दे.
10: पैक कर दे समर कूल.
11: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल.

0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
1: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा,
2: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और रविवार के दिन ही इंसान रिश्ते संभालता है, बाकी दिन किश्तें संभालता है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों, 13 एमबीबीएस काउंसलर की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर नहीं होगा पेपर लीक। पीएम की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट। योगी का निर्णय, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। बड़े संस्थानों में 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मेरे काफिले में कम होंगी गाड़ियां। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। 2 बीजेपी, 2 सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण में पीएम मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज रहे मौजूद। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर भारत का चीन को कड़ा संदेश। विदेश मंत्रालय का बयान, आतंकवादियों को बचाने के प्रयास पर साक दांव पर लगाने जैसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। 23 लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य आज दांव पर है। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने सजोए थे, पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाएगा। बाजारों में क्वेश्चन पेपर गेस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुल्ला बेच दिए जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा? सवाल सीधा सा है, पेपर लीक को लेकर सरकार के तमाम इंतजाम और दावे हकीकत के धरातल पर फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर सिस्टम के भीतर ऐसी कौन सी नब्ज है जो पेपर लीक माफियाओं के कंट्रोल में है? अगर पेपर लीक को लेकर सिस्टम गंभीर है, तो फिर साल दर साल नीट के नेटवर्क लालों के नए नए नेटवर्क कैसे खड़े हो जाते हैं? आज सवाल नीट के नेटवर्क लालों के नेटवर्क को जड़ से मिटाने का है, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो सके, ताकि लाखों छात्रों के सपने की कोई चोरी न कर सके।

0: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी बानगी इन तस्वीरों में दिखती है। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज 2 साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
1: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बार की सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे
0: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
1: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बार की
2: जांच। 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
3: काफी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
4: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगातार 0 प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है, हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से भाई आज हमने एक्सपेक्ट नहीं।
0: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
5: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड।
6: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
0: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
7: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, न हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
0: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
8: और अब बात नीट पेपर लीक के उस गैंग की जिसने देश भर में पेपर को लीक करवा दिया। 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई, इसी गैंग के चलते अब रद्द हो गई है। आज छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर राजनीति भी बेहिसाब हो रही है। नीट कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक कैसे नीट का पेपर लीक होता चला गया, आज हम उसकी पूरी पड़ताल आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं नीट पेपर लीक गैंग का पूरा सच।
9: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर, पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा? इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
10: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है, अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
11: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
12: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
13: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
9: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
14: देखिए ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
15: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
16: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का, और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
17: मेरा एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए, भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन सर आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
18: सर बहुत डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
3: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
19: छात्रों का भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
20: मैम मेरे फ्रेंड्स वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
21: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
9: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
8: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी यानी कि सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बात की एक बात, बार बार नीट का पेपर आखिर लीक कैसे हो जाता है? तो आइए आपको इस पेपर लीक की पूरी चेन को हम समझाते हैं। आखिर इस पेपर लीक कांड का असली गुनहगार कौन है?
9: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर

0: बूझ को सामने रखते हुए लोगों ने, नरेंद्र चुनी 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
1: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जाँच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
2: ये एनटीए के मुंह पर तमाचा एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके परीक्षा सिस्टम में सेंध हो चुका है। सुबह जब मैं ये लाइव करना शुरू किया था, तभी आपसे कहा था कि ये अब तक का जो नीट परीक्षा अब तक हुई है, सबसे बड़ा पेपर लीक है, सबसे बड़ा। मुझे कल एसओजी के अधिकारी यही बार बार कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा पेपर लीक है इस देश में, जहां देश के कोने कोने में पेपर भेजा गया है और संगठित नेटवर्क के जरिए भेजा गया है।
1: सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस अब सीकर और जयपुर पर है। सीकर के पेपर लीक नेटवर्क का नया अड्डा बनने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि कोटा के बाद सीकर तेजी से देश के बड़े कोचिंग हब के रूप में उभरा है। कोटा में एडमिशन घटने के बाद राजस्थान में बड़ी संख्या में छात्र सीकर की ओर आए, जिससे यहाँ कोचिंग कारोबार तेजी से बढ़ा। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी सीकर विवादों में रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क कोचिंग संस्थानों और करियर काउंसलरों से जुड़ा हो सकता है। एमबीबीएस एडमिशन और काउंसलिंग कराने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप ये भी है कि इस बार कोई पारंपरिक गैंग नहीं, बल्कि कोचिंग और काउंसलिंग नेटवर्क ही पेपर बेचने का माध्यम बना। सूत्रों के मुताबिक पेपर जयपुर से बाहर निकला और उसका सबसे बड़ा सर्कुलेशन सीकर में हुआ। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोच समझकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि मामला करीब 22 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां अब उस पॉइंट ऑफ लीक तक पहुंचने का दावा कर रही हैं, जहां से पेपर बाहर आया था। माना जा रहा है कि सीबीआई के टेकओवर के बाद कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पेपर लीक की पूरी चेन लगभग समझ ली गई है और अब मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।
3: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और उस अपील का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे निर्णय ले लिए हैं। यूपी में सीएम और मंत्रियों के काफिले में अब गाड़ियों की संख्या कम कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को एक दिन सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल की सलाह भी दी है। बड़ी खबर इस समय आ रही है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्णय ले लिया है। योगी आदित्यनाथ के बाद मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के काफिले में कम से कम वाहन हम रखेंगे। भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने भी पीएम की अपील पर निर्णय लिया। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। जब लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के एटम बॉम्ब वाली धमकी। आप देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय

0: पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
4: Gone! Home run!
3: NHL. College basketball.
5: He shoots it immediately.
6: He makes it in!
3: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
7: One lap to go.
3: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
11: Take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
11: Lion date, not bites.
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है,
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
17: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
18: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
19: एक हिंट तो देते।
1: विक्रम!
19: हिंट।
6: बड़े आराम से।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट?
4: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते।
2: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
7: नहीं,
6: और म्यूचुअल फंड से
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: Like I said before, we better hold the sins.
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
17: EU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
8: नीट एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उनके लिए बड़ी सेटबैक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है। लाखों जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपेयर होते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन एक बड़ी सेटबैक है। हमारे साथ टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है?
9: मेरा नाम मुकेश सियाल है जी।
8: मुकेश जी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आप हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट है। पहले ये बताइए कि ये जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए?
9: देखिए, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स इसमें अपना मोमेंटम बनाते हैं और अपनी 2 साल की जर्नी होती है उनकी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, फिर दिन रात एक करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देने जाते हैं, अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसमें अपीयर होते हैं। मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हर पेरेंट के ऊपर। एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है जब एक बच्चा नीट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा होता है। तो फाइनली जब वो अपीयर होता है, सब कुछ हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है उसके लिए भी, और जिसका रिजल्ट अगर कुछ 19-21 भी होगा उसके लिए भी, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो नीट कैंसिल हो जाता है।
8: तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का आपको फीलिंग है?
10: हम तो अभी पढ़ ही रहे थे, हमको तो अभी पता चला कि नीट का जो पेपर है वो ऐसे लीक हो गया। हमें तो जैसे सेटबैक या जो प्रेपरेशन कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, तो हमें भी अभी डर ही रहेगा कि जब हम पेपर देंगे कहीं तब अगर लीक हो गया पेपर तो तब क्या होगा।
8: तो इससे आपका जो मेंटल स्टेट है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा?
11: ये ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आगे 2 साल बाद हम पेपर दें और वो लीक हो जाए, फिर हम एक ऐसी पाथ पे चल रहे हैं जिसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो वो फिर ऑफकोर्स हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील कराता है।
8: ये सब इनके लिए जो है जो सेटबैक है, भी किस तरह ये जो पेपर जो है पहले लीक हुआ, कैंसिल हुआ, और जो रेगुलरली ये जो लीकेजेस हुई हैं किसी न किसी एग्जाम की हो जाती है किसी न किसी स्टेट से, सो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क भी है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि बहुत लंबी मेहनत जाती है इस पूरी तैयारी में, और इस तरह कैंसिल हो जाना एक डेफिनेटली सेटबैक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसई, आज तक।
12: मध्य एशिया में तनाव के हालात का असर पूरी दुनिया पर है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं है, और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए, ऊर्जा की बचत की जरूरत है, खासकर पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम 1 साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं, उसको कोशिश करें, और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके। तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है, और खासकर पिछले 1.5 महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है, खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है, गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है, और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो, क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके। लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है, विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संकट तो 1.5 महीने से गहरा रहा था। जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी तरफ इस पर सियासत है, इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है, जो वैश्विक संकट है, भारत भी अब उसकी चपेट में है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

स्वागत एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना बहुत कम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की तरफ से भेजे गए मसौदे को ठुकरा दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ संभावित समझौता वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है और किसी भी समय अस्थायी युद्ध विराम खत्म हो सकता है। इशारों में ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले के संकेत भी दे दिए, तो ईरान ने अमेरिका को एटमी धमकी दी। ईरान का दावा है कि दोबारा अगर हम पर हमला हुआ तो हम एटमी हथियार बना लेंगे, यानी ईरान ने एटमी हमले की तैयारियां शुरू कर दी।

ट्रंप का ऐलान, वेंटिलेटर पर शांति समझौता। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में अमेरिका,

0: ईरान की तरफ से अमेरिका को भेजे गए शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का पारा हाई है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ सीज फायर की उम्मीद अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। पीस डील होने की संभावना 1% बची है। ट्रंप की नई धमकी के बाद शांति वार्ता फिर पटरी से उतरती दिख रही है क्योंकि ट्रंप की नई धमकी के बाद शांति वार्ता फिर पटरी से उतरती दिख रही है क्योंकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने अमेरिका को एटमी युद्ध की सीधी चेतावनी दी है। इब्राहिम रिजाई ने ऐलान किया है कि ईरान पर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम को एनरिच कर लेगा, यानी ईरान भी परमाणु हथियार बना लेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% एनरिच यूरेनियम मौजूद है। अगर ईरान इसे 90% तक बढ़ा लेता है तो 10 से 16 एटमी हथियार बना लेगा। सबसे पहले सुनिए अमेरिका के नाम ईरान की एटमी धमकी। ईरान के पास एक और हमले की स्थिति में 90% संवर्धन का विकल्प हो सकता है। हम संसद में इसकी समीक्षा करेंगे। ईरान की एटम बम वाली चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के साथ संपूर्ण युद्ध विराम के बजाय महायुद्ध की तरफ बढ़ने के संकेत दिए हैं।
1: After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Diagnostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance.
0: ट्रंप ने जो कहा है उसका मतलब यही है कि युद्ध का सायरन फिर से बजने लगा है। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने इन तस्वीरों को साझा किया है जिसमें ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले को दिखाया गया है। एक तस्वीर में एक अमेरिकी युद्धपोत को एक विमान पर लेजर हथियार से हमला करते हुए दिखाया गया था जिसके साथ कैप्शन है, लेजर बिंग बिंग गायब। वहीं दूसरी फोटो में अमेरिकी ड्रोन के नीचे ईरानी झंडे वाली नावों पर विस्फोट होते हुए दिखाया गया था जिसका कैप्शन है, अलविदा तेज रफ्तार वाली नावें। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को लेकर बड़ा दावा भी किया है। वे बहुत बेईमान लोग हैं, नेतृत्व बार बार अपनी बात बदल देता है। ईरान ऐसे दस्तावेज भेजता है जिन्हें पहुंचने में 20 मिनट लगने चाहिए लेकिन वो 5 दिन बाद आते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर दोबारा हमले को लेकर ट्रंप अपने सलाहकारों से लगातार सैन्य विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ सलाहकारों ने ईरान पर दबाव बढ़ाने और ज्यादा आक्रामक कदम उठाने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति को दी है जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ तेल ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक शामिल है। अमेरिका के पूर्व NSA मैक मास्टर भी मानते हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। मुझे लगता है कि ईरानी शासन फिर एक बड़ी गलती कर रहा है, वो एक और मौके को गवा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में मैक मास्टर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। मतलब यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने किसी भी संभावित हमले को लेकर अपनी नीति और नियत अमेरिका को बता दी है। हमारी सशस्त्र सेना किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गलत रणनीति और गलत फैसले हमेशा गलत नतीजों की ओर ले जाते हैं। पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, वो हैरान रह जाएंगे। 14 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरानी लोगों के अधिकार को स्वीकार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। कोई भी दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से निरर्थक साबित होगा। एक के बाद एक असफलता के अलावा कुछ नहीं। वो जितनी देर तक टालमटोल करेंगे अमेरिकी करदाताओं को उतना ही ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ईरान भी अमेरिका की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं। आज तक से बातचीत करते हुए ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका को भेजे गए शांति प्रस्ताव पर बड़ा खुलासा किया है। बघाई ने बताया कि पीस डील में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है।
2: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। ये सब कुछ उसी अन्यायपूर्ण अभियान का हिस्सा है जो ईरान के खिलाफ युद्ध से शुरू हुआ था। ये हमला पूरी तरह से गैरकानूनी था। फिलहाल अमेरिका की ओर से घोषणा की गई है कि वो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए हमें मौजूदा स्थिति की बेहतर जानकारी मिल सकती है।
0: अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में ईरान के सामने 12 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद करने के साथ साथ 440 किलो एनरिच यूरेनियम को सौंपने को कहा है। ईरान को ट्रंप की ये शर्त मंजूर नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी दबाव में अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, न ही अमेरिका नाकेबंदी के चलते हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ेगा। ऐसे में ईरान की अपनी शर्तें हैं और अमेरिका की अपनी, दोनों की अलग अलग शर्तों के चलते पीस डील अटकी हुई है। अब सहमति बनने की गुंजाइश बहुत कम है, यानी युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध की तरफ अमेरिका और ईरान बढ़ चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको सीधे ईरान की राजधानी तेहरान लिए चलते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि सीजफायर अब वेंटिलेटर पर है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इस बीच हमारी संवाददाता गीता मोहन तेहरान में मौजूद है और वहां की स्थिति को गीता दिखा रही है। क्या लोगों में युद्ध को लेकर कोई डर खौफ है? आज हम आपको तेहरान से हमारी संवाददाता गीता मोहन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में ईरानी सैन्य विमानों को पनाह देने वाली रिपोर्ट भी, जिसने दुनिया को चौंका दिया। देखिए।

0: ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बने पाकिस्तान के चरित्र पर अब सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान पर लांछन लग रहा है कि उसने अपने एयरबेस पर गुपचुप तरीके से ईरान के मिलिट्री विमानों को पनाह दी है। पाकिस्तान के बड़े खेल की पोल सदाबहार दोस्त चीन ने ही खोल दी है। ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले चीन ने कुछ सैटेलाइट फोटोज शेयर की हैं, जिनमें ईरानी विमानों की सही लोकेशन और उनकी साफ साफ तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि चीन की एक प्रतिबंधित कंपनी मिजार विजन ने अप्रैल 2026 की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव नूर खान एयरबेस पर एक C-130 हर्क्यूलस ट्रांसपोर्ट विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। इस विमान का रंग सैंड कैमोफ्लेज है, यानी ये रेगिस्तानी मिट्टी जैसा पीला भूरा है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस रंग के विमानों का इस्तेमाल ही नहीं करती। पाकिस्तान के विमान स्लेटी रंग के होते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस सेंसिटिव लोकेशन पर ये अजनबी विमान क्या कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिकी चैनल CBS ने दावा किया था कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से ईरानी विमानों को अपने यहाँ छिपा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान अपने कीमती सैन्य विमानों को संभावित इजरायली या अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान को एक पार्किंग लॉट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट चीन का रोल है। आखिर चीन की एक कंपनी ने अपने ही दोस्त पाकिस्तान की इतनी गुप्त जानकारी लीक क्यों की? तो क्या चीन ट्रंप के दौरे से पहले ट्रंप को ये बताना चाहता है कि उसके पास सबकी कुंडली है? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये माना है कि ये विमान उसके एयरबेस पर पहुंचे थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी विमान युद्ध विराम के दौरान आए थे और उनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस ईरान पर ट्रंप दोबारा हमले की बात कर रहे हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ ट्रंप क्या करेंगे? हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब आपको ईरान की राजधानी तेहरान लिए चलते हैं। जब ट्रंप ईरान के साथ सीज़फ़ायर को वेंटिलेटर पर बता रहे हैं और फिर से हमलों की रिपोर्ट आ रही है, उस वक्त में तेहरान की ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान में युद्ध को लेकर कोई खौफ नहीं है। तेहरान की दरबान स्ट्रीट की ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, जहां लोग बेधड़क घूम रहे हैं।
1: हम यहां दरबान स्ट्रीट में हैं, तेहरान में। वॉर युद्ध शुरू होने से पहले, बस दो दिन पहले हम यहां पर थे और माहौल ऐसा ही था, जगमगाते हुए लाइट्स, बहुत ही कलरफुल खाना, स्ट्रीट फूड, और लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर आए हुए थे। ये वीकेंड है, थर्सडे फ्राइडे यहाँ पर छुट्टी होती है, तो काफ़ी सारे लोग बाहर आए हुए हैं अपने फैमिली के साथ। वॉर से पहले भी सिचुएशन और हालात ऐसे ही थे, और युद्ध के बाद अभी सीज फायर है, तो इसलिए नॉर्मल सा लग रहा है जिंदगी यहाँ पर तेहरान में। क्या ऐसे ही रहेगा? क्या US और ईरान बातचीत करके इस मसले का हल ढूंढ पाएंगे और ये युद्ध बंद होगा या नहीं, देखना होगा। लेकिन कुछ आपको यहाँ की झलक, दरबान स्ट्रीट की झलक भी दिखाते हुए हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ईरान में और तेहरान में लाइफ वैसा नहीं है जैसे वेस्टर्न मीडिया दिखाता है, जैसे US और इजराइल ईरान को दर्शाता है।
0: और ये है तेहरान का ग्रैंड बाजार। यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, कैसे लोग घूमने फिरने और खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं।
1: ये है ग्रैंड बाजार, 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार, तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है, जहाँ पे सब कुछ बसता है, या फिर या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं, वो भी इसी जगह से शुरू होता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में इस पूरे बाजार को बनाया गया है। एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है, कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाजार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का।
2: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आरएसएस महासचिव बोले हैं पाकिस्तान से वार्ता का रास्ता खुला होना चाहिए लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर दत्तात्रेय होस बोले का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए और लेकिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हुए बातचीत का विकल्प खुला होना चाहिए। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रो फाइबर है।
10: माइक्रो फाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
14: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
15: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
16: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड से
16: सही।
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
18: और वही कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
20: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
22: Like I said before, we better hold the sins.
23: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
24: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
0: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: EU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
16: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
24: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
25: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
24: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
26: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
16: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
27: इन एसोसिएशन विद
28: मोंटे कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
29: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
30: जो नीट का पेपर हुआ है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है? क्या उसके बाबत कोई जानकारी आई है? क्या उसको लेकर लीक होने की कोई आशंका है सर जी को?
31: नहीं, नीट का एक गैस पेपर टाइप का पेपर है, एक पीडीएफ है, दो पीडीएफ, जो करीब 150 पेजेस की है पीडीएफ। उस 150 पेज की पीडीएफ में अराउंड 410 क्वेश्चन है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 120 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो उसके बेसिस पे ये पीडीएफ, पहले था कि 2 तारीख की रात को, 3 को नीट का एग्जाम था, 2 को आई, फिर पता पड़ा 1 तारीख को भी अवेलेबल थी, फिर उसके बाद में और हमने देखा तो 30 तारीख को भी अवेलेबल थी। अब पता पड़ा कि वहां के ई मित्र केंद्रों के पास में भी अवेलेबल थी, और करीब 15 दिन महीने भर से लोगों को मालूम था कि ये चीज वहां पे चल रही है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं को कि आखिर ये गैस पेपर है क्या, ये बना कैसे, इसके बेसिस के ऊपर हम लोग ने देखी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get.
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
11: जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है.
12: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए.
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
14: जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पहले ही बच्चे 4 तारीख को इस बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे. क्या लगता है आपको कि जो कार्रवाई की गई है काफी है और अभी तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है? सर
15: क्या कार्रवाई की सरकार ने?
14: सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर.
15: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है. अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते. और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी. वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? किसको दंडित किया गया है? किसको सजा दी गई? तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें. लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा? उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी? कौन संभालने वाला है? आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी? कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता.
14: जो नासिक में जिसको हिरासत में लिया है वहाँ पे काफी टेंशन है, असहयोग हो रहा है और पुलिस गई है वहाँ पे, राजस्थान पुलिस और तमाम पुलिस, तो भी उस काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
15: भाई ये तो देखो, पावरफुल लोगों का संरक्षण अगर नहीं हो तो ना तो पेपर लीक करने की कोई हिम्मत कर सकता है. और बार बार हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा. ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप पेपर लीक होगा हम कैंसिल कर देंगे, जांच बिठा देंगे, फिर अगली बार फिर पेपर होगा. अब सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी. और मैं तो कहता हूँ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना. आप विपक्ष पे उंगली उठाते हैं बार बार, 12 साल से सरकार, केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जाँच के नाम पर डिले करना चाह रहे हैं.
16: ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है. जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग. इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन. लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा. ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है.
17: डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है. टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आयसिक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी है लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। बड़े संस्थानों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। एमपी के सीएम बोले, मेरे काफिले में कम होंगी गाड़ियां। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की है वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा। लोगों को संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रुकना चाहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चंदौली और आसपास के इलाकों में 24 घंटों में एक एक कर एक जैसे 3 कत्ल होते हैं, 2 चलती ट्रेन में और 1 अस्पताल के बिस्तर पर। खास बात यह है कि तीनों ही मामले में कातिल बिल्कुल करीब से मरने वालों के सिर में गोली मारता है, लेकिन तीनों ही मामलों में मरने वालों की कातिल से कोई दुश्मनी नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कातिल ने ये कत्ल किए ही क्यों। तो जवाब है, वो 24 घंटे का एक ऐसा साइको सीरियल किलर था जो खुद को कुछ अलग समझता था।
2: वो जिधर भी जाता किसी न किसी की लाश बिछ जाती। चौबीस घंटे में वो 3 अलग अलग जगहों पर गया और तीनों ही जगह पर उसने एक एक कर 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। इनमें 2 रेलवे मुसाफिर थे जबकि तीसरी एक अस्पताल में भर्ती मरीज। लेकिन इन तीनों खौफनाक कत्ल के मामले में 3 बातें बिल्कुल कॉमन थी। पहली तो ये कि उसका शिकार बनने वाले तीनों के तीनों लोग बिल्कुल बेकसूर थे। दूसरी ये कि मरने वालों का कातिल से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। और तीसरी ये कि कातिल ने तीनों को बिल्कुल करीब से उनकी कनपट्टी में पिस्टल सटाकर गोली मारी थी। चंदौली से लेकर बनारस और बनारस से लेकर दीनदयाल उपाध्याय नगर के बाशिंदे पूरे 24 घंटे तक इस खौफनाक साइको किलर के घात से लहूलुहान होते रहे, डरते कांपते रहे। लेकिन जब साइको किलर का चेहरा बेनकाब हुआ और पुलिस ने उसकी बातें सुनी तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वर्दी वालों ने भी माथा पकड़ लिया। आखिर तुम लोगों की जान क्यों ले रहे थे? इस सीधे से सवाल पर उसका जवाब था, मैं मन का राजा हूं और जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूं। मैं 2-3 को मारकर यहां आया हूं। ऐसा जवाब कोई साइको किलर ही दे सकता था, लिहाजा उसके शिकंजे में आने के साथ ही पुलिस ने उसका आगा पीछा पता करना शुरू कर दिया। और इसी कोशिश में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। आखिर कौन था ये साइको किलर? क्यों ले रहा था वो एक एक कर बेगुनाहों की जान? और सबसे अजीब ये कि 3-3 कत्ल करने के बाद वो खुद को राजा क्यों बता रहा था? तो आज वारदात में हाल के दिनों की इस सबसे अजीब साइको किलर की पूरी जन्म कुंडली आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं, जब इस साइको किलर ने बिल्कुल पहला वार किया।

गाजीपुर का रहने वाला 34 साल का मंगरू काम के सिलसिले में कर्नाटक गया था। इस दिन वो कर्नाटक से वापस लौट रहा था। वो पहले एक सुपरफास्ट ट्रेन से डीडीयू जंक्शन पहुंचा और वहां से सुबह 6:30 बजे की पैसेंजर ट्रेन से घर के लिए रवाना हुआ। लेकिन डीडीयू ताड़ीघाट पैसेंजर अभी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि मंगरू के सिर पर किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। कातिल यहीं नहीं रुका, उसने गोली मारने के बाद सीधे उसकी लाश को घसीटकर ट्रेन के बाहर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। उधर जब तक गोली की आवाज सुनकर दूसरे मुसाफिर वहां पहुंचते, मंगरू को निशाना बनाने वाला शय फरार हो चुका था।

0: 19 घंटे बीतते बीतते ठीक बनारस में भी ऐसी ही एक और वारदात हुई। इस बार गोली चलती ट्रेन में चली। बिहार के रहने वाले 42 साल के दिनेश साव अपने परिवार के साथ कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस से सीतापुर के नैमिषारण्य धाम जा रहे थे, लेकिन रात करीब 2 बजे जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकले, दरवाजे पर मौत इंतजार कर रही थी। कातिल ने ठीक उन्हें मंगरू की तरह ही बिल्कुल सटाकर सिर में गोली मार दी। और इससे पहले कि ट्रेन के दूसरे मुसाफिर रिएक्ट कर पाते, साव को निशाना बनाने वाला शख्स ट्रेन की धीमी रफ्तार का फायदा उठाकर ट्रेन से उतरकर अंधेरे में गुम हो गया।
1: 11 मई को लगभग मध्य रात्रि के 1:57 पर सूचना मिली कि जम्मू तवी ट्रेन जो डीडीयू से लखनऊ की तरफ जा रही थी, उसमें डीडीयू से लगभग निकलते ही एक आदमी दूसरे व्यक्ति को सर पे गोली मार दी, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित कर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया गया था। जो मृतक है वो उसका नाम दिनेश साहू है, जो गया का रहने वाला बताया जा रहा है और वो लखनऊ की तरफ जा रहा था।
0: बैक टू बैक चलती ट्रेन में एक जैसी 2 वारदातों से रेलवे पुलिस के साथ साथ अब शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके थे। अब तक पुलिस की कई टीमें एक साथ इस सिरफिरे कातिल का पीछा करने लगी थी, लेकिन उस कातिल के बारे में किसी को कुछ पता होता तब ना। यहाँ तो 2-2 कत्ल को अंजाम देने के बाद वो कुछ ऐसे गायब हो चुका था जैसे वो इंसान न होकर कोई और ही शय। अभी पुलिस सिरफिरे कातिल तक पहुंच पाती तब तक बनारस से करीब 2 किलोमीटर दूर सुबह करीब 8 बजे चंदौली के एक प्राइवेट अस्पताल में ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को हिला दिया। यहां एक शख्स ने पहले अस्पताल में पहुंचकर खुद को बीमार बताकर अपना बीपी और पल्स चेक करवाया और फिर वार्ड में पहुंचकर पहले पागलों जैसी हरकतें करने लगा और फिर बिस्तर पर लेटी एक मरीज लक्ष्मीना देवी को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर अस्पताल से निकल गया। 55 साल की लक्ष्मीना बिहार की रहने वाली थी और टांग टूट जाने की वजह से पिछले महीने भर से इसी जीवक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक होकर अपने कदमों पर दोबारा चल पाती, एक सिरफिरे ने उन्हें बिल्कुल बेवजह अपनी गोली का शिकार बना डाला। अब अस्पताल में शूटआउट और कत्ल होते ही सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खतरा भांप कर गोली चलाने वाला सिरफिरा अस्पताल से निकलकर भागने लगा, लेकिन यहाँ किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और एक ऑटो ड्राइवर ने पीछा कर न सिर्फ उसे दबोच लिया बल्कि उससे उसकी पिस्टल भी छीन ली। और कुछ इस तरह पहली बार यूपी पुलिस को इस साइको किलर का चेहरा देखना नसीब। वैसे ये सवाल अब भी अपनी जगह पर था कि क्या अस्पताल में गोली चलाने वाला ये शख्स ही ट्रेन में मुसाफिरों को निशाना बनाने वाला कातिल है या फिर कत्ल की उन वारदातों में किसी और का हाथ है।
2: नगर क्षेत्र में जीवक हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज सूचना मिली कि एक लक्ष्मीना देवी नाम की महिला जो कि भभुआ बिहार की रहने वाली है, वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर एडमिट थी और आज एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आकर के उनको गोली मारी गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। जो व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर जो भी चीजें आती हैं आगे कार्रवाई की जाएगी।
3: सर कल भी एक घटना हुई थी सर, क्या उससे तार ये जुड़े हुए हैं?
2: देखिए अभी इसमें जांच चल रही है, इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। संपूर्ण जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे।
0: हालांकि अब तक इन तीनों ही कत्ल में 3 कॉमन बातें सामने आ चुकी थी। इनमें एक थी मरने वाले तीनों लोग बेकसूर थे, दूसरी ये कि तीनों का कातिल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और तीसरी तीनों को कातिल ने बिल्कुल एक तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया था। पुलिस ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जब पकड़े गए शख्स से पूछताछ की तो उसने जो कुछ कहा उससे काफी हद तक पुलिस को यकीन हो गया कि पिछले 24 घंटे में एक एक कर हुए तीनों कत्ल के केस अब सुलझने के कगार पर हैं, क्योंकि चंदौली में पकड़ा गया ये शख्स ही असल में वो सीरियल साइको किलर है जिसने चंद घंटों में 3 बेगुनाहों की जान ली। पुलिस के सवाल पर उसने छूटते ही कहा, मैं मन का राजा हूँ और जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ। मैं 2-3 को मार कर यहाँ आया हूँ। यानी वो अपनी जुबान से सच कबूल रहा था, लेकिन उसकी कही गई बातों को वेरीफाई करना अभी बाकी था। लिहाजा चंदौली पुलिस ने उससे हिरासत में लंबी पूछताछ की और एक एक कर तीनों ही वारदातों का सच जानना चाहा।
4: आज सुबह जनपद चंदौली में एक आयुर्वेद अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज, उसमें एक महिला भर्ती थी, तो बाहर से एक व्यक्ति आया और इलाज अपना स्वयं का कराने के बहाने आया था। अंदर आकर उसने वार्ड में सामने जिस बेड पे महिला बैठी थी उसके पास में जाकर उसे गोली मार दी। महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण करने में आया था, यहाँ पुलिस द्वारा पहले ही निरीक्षण कर भी लिया गया था। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। उसके पश्चात मैं मुगलसराय स्टेशन पर आज इसलिए आया हूँ क्योंकि कल सुबह एक घटना यहाँ घटी थी। इसमें यहाँ से जो ट्रेन गुजरी थी उस ट्रेन में अंदर एक यात्री को किसी ने गोली मार दी थी और फिर इसी प्रकार की घटना कल रात्रि में भी हुई जो कि GRP के थाने में दर्ज हुई है। तो उसके बारे में भी यहाँ के जो GRP के रेलवे के पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आया था। उनसे बात मैंने की है और अभी इन सभी प्रकरणों में विवेचना की जा रही है।
0: उसने तीनों ही वारदातों का न सिर्फ हूबहू वही ब्यौरा दिया जो हुआ था, बल्कि ये भी बताया कि अक्सर शराब पी लेने के बाद वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और लोगों से उलझ पड़ता था। लेकिन पिछले 24 घंटों में वो लोगों को एक एक कर अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था और ऐसा करने में उसे मजा आ रहा था। तफ्तीश में इस साइको किलर की पहचान पंजाब के रहने वाले 45 साल के गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई, जो सेना से रिटायर्ड था। हालांकि शराबखोरी की लत उसे अब घर से दूर कर चुकी थी, लेकिन ये तो रही उस साइको किलर की पहचान और उसके दिमागी फितूर की कहानी। इस कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। चंदौली पुलिस सोमवार की देर रात को ही उसे लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने दरिया

0: और अपनी पत्नी जिनका नाम सरिता सिंह है उनका उनकी हत्या सुबह 6 बजे करीब कर दी गई है। दूसरा, यह जानकारी हम लोगों को 100 नंबर से मिली थी। तुरंत के तुरंत अग्रतर कार्रवाई करते हुए PCR वैन, थाना प्रभारी सब लोग पहुँचे। मैंने भी प्रारंभिक जांच में यह पाया कि एक हथियारनुमा कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया है और हथौड़े का यूज़ किया गया है।
1: अब सवाल यह है कि आखिर परिवार के मुखिया ने ही अपने कुनबे को क्यों खत्म कर दिया? तो जवाब है दिमागी फितूर। असल में रविंद्र सिंह अक्सर इस बात से परेशान रहता था कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा, और बस इसी सोच ने उससे ये कत्ल करवा दिया। खुद रविंद्र ने पुलिस की पूछताछ में ये बात बताई, जबकि उसके रिश्तेदारों ने बताया कि कुछ ऐसी ही सोच के चलते महज 2 महीने में उसका वजन 10 किलो कम हो चुका था और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन ये सोच इतनी जानलेवा साबित होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक।
2: तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: आज तक।
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
7: सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है, कोई ये पहली बार नहीं है। राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य का सवाल है और सरकार को चिंता ही नहीं है। जिस तरह से अभी टीवी में सब जगह आ रहा है कि साधारण बच्चियों को भी मालूम हो गया, पहले से पेपर लीक हो गया, हॉस्टल में सबको दिया जा रहा है, तो इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। मोदी जी लंबा लंबा भाषण जरूर करते हैं, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह का धोखाधड़ी हो, घपलेबाजी हो, तो बच्चों का क्या होगा?
8: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion. And nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे. ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले. अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें.
3: ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर कि ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी में, सब जानते हैं उसको, लेकिन जो वैश्विक स्थिति है उसके बारे में एक्चुअली में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, उस पूरा एक खुलासा करना चाहिए. अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं तो अब सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं. बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है.
4: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है. ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है. अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं. उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है. तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: सबसे पहले हम जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजय जी हमारे साथ हैं। रंजय जी, जिस तरह से एनटीए ने फैसला लिया कि जो परीक्षा है कैंसिल की जाएगी, कैंसिल की गई, और धांधली की जो खबरें आ रही थी, तो क्या मतलब बच्चों के लिए तो एक सेटबैक ही मानेंगे?
5: बहुत ज्यादा सेटबैक है, और मैं समझता हूँ कि एनटीए ने जिस तरीके से एनटीए में जो धांधली हो रही है उसको बहुत गलत हो रहा है, और स्टूडेंट्स को खास करके जितना प्रॉब्लम हो रहा है, रात दिन एक करके स्टूडेंट पढ़ता है।
4: जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे क्या लगता है, मतलब नुकसान होगा छात्रों का या फिर एक मौका मिलेगा?
6: नुकसान होगा, हर छात्र का नुकसान होगा, क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है, और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है, तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा। बट
4: जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है, इसको कैसे ले रहे हैं आप?
6: ये रद्द जो हो रहा है, जो जितना मेहनत किया है उसके लिए तो बहुत बुरा हुआ कि वो इतने साल से मेहनत कर रहा था और एग्जाम दिया उसके बाद लीक हो गया, वो लोग के लिए तो बहुत बुरा हुआ ना, जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे। तो उस पे ये बहुत, हम लोग भी आएंगे तो हम लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी को बुरा लगेगा कि हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे थे, वो तो सब वेस्ट हो गया।
7: अमित जी, कितना बड़ा झटका है छात्रों के लिए और आप जो कोचिंग चलाते हैं उसको?
8: काफी ज्यादा, एक बहुत ही मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत से है ना नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग गांव से, पेरेंट्स किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन कराने के लिए भेजते हैं, और जब बार बार कंटिन्यू 3 ईयर से ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ। 2024 में भी एक स्कैम जैसा हुआ था जिसके ऊपर काफी ज्यादा हद तक मतलब इतने सारे बच्चे 720 out of 720 लेके आते हैं, ये जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट ईयर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड हार्ड आया था कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि IIT के पेपर से भी ज्यादा नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, और इस साल फिर से पेपर तो इंटरमीडिएट आया बट फिर से मतलब थर्ड ऑफ मेरे को एग्जाम हुआ है, और आज मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और आज फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि ना 720 out of 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, और वो जांच एजेंसियों ने भी पाया है।
9: सर, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है। ऐसे नीट में बार बार ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर, थोड़ी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगले साल ऐसा कर देते हैं कि पेपर टफ कर देते हैं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते एनटीए वाले।
10: जी, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, साल भर जो है 12 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं लगातार।
7: 15 घंटे?
10: हाँ, 15-15 घंटे तक जो है बच्चे लगातार मतलब मेहनत करते हैं। कोई कुछ बच्चे तो सोते नहीं लास्ट के कुछ दिनों तक, उनका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलते हैं, और उसके बावजूद अगर बच्चों को ऐसा सुनने में मिले कि यार हमारा जो पेपर था जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं वो
7: लापरवाही किसकी मानते हैं,
10: इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो उसके ऊपर नजर रखती हैं उनकी कहीं लापरवाही है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो है इसके
7: बार बार लीक क्यों हो रहा है।
10: कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रखी गई है, और क्या है कि जो हालात मतलब जो जिनके हाथों में चीज दी गई है शायद वो उसके लिए सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर के कि उन्हें वो किस चीज को संभाल रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होंगी कमी। बड़े संस्थानों में दो दिन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। एमपी और दिल्ली सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से मंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रहना चाहिए दरवाजा। लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रुकना चाहिए।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे, सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में केस दर्ज कर लिया है। पेपर लीक केस में महाराष्ट्र के नासिक से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को लेकर देश भर में आक्रोश है। लोगों के बीच पेपर लीक करने वाले आरोपियों और सिस्टम की नाकामी ने एक बार फिर से लाखों छात्रों के सपनों को रौंद डाला है। 3 मई को देश के 552 शहरों में नीट की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है।

0: पूरे देश में नीट पेपर लीक मामले में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई शहरों में आक्रोशित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में केस दर्ज कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और सबूतों को नष्ट करने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है।
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेन में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
0: पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र बताया जा रहा है। इस बारे में संदिग्ध की जानकारी राजस्थान पुलिस ने दी थी। आरोपी शुभम ने पहचान छिपाने के लिए बाल मुड़वा लिए थे। अब सीबीआई की टीम आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
2: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था, इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने, क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
0: नीट केस लीक के आरोपियों के तार कई राज्यों तक फैले हैं। बताया जा रहा है कि पेपर नासिक में छपे, फिर गुरुग्राम पहुंचे, गुरुग्राम से जयपुर, जयपुर से जमुआ रामगढ़, वहां से सीकर, सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड पहुंचे थे। हैरानी की बात है कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 45 प्रश्न 5,000 से लेकर 28 लाख रुपए तक में गैस पेपर के नाम पर प्रसाद की तरह पट रहे थे। नीट परीक्षा रद्द होने से छात्र बेहद निराश नजर आ रहे हैं। उनकी कई साल की मेहनत पर पानी फिर गया है।
3: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी की और कह दिया कि इस बार 2026 की जो नीट एग्जाम थी वो कंसिडर नहीं की जाएगी और एग्जाम कैंसिल की गई है। लगभग 20 से 22 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे पूरे देश भर में जो इस एग्जाम को अपीयर कर चुके थे। और सबसे अहम बात यह है, जयपुर से लेकर नासिक तक हर जगह यह कनेक्शन सामने आ रहा है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए और यही एक सबसे बड़ा इसमें रीजन था कि एग्जाम कैंसिल कर दी गई है। मैं पुणे के क्लोचिंग क्लास में हूँ, बात करते हैं यहाँ के छात्रों से। आपको कब पता चला, आप कब, एक तो कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो और ये कब पता चला आपको?
4: मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ और मुझे आज ही उसका पता चला कि इतना बड़ा लीक हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है।
3: लेकिन जब एग्जाम दी थी तब आपके सर्कल में ऐसा कुछ मतलब बातें हुई होगी कि अरे ऐसा कुछ हुआ इस मामले में?
4: कुछ बातें नहीं हुई, ऐसा नॉर्मली हम नीट दे के आए, एग्जाम दे के सब खुश थे, क्लास में आए तो क्लास में भी सब खुश थे। अब इतना बड़ा बॉम्ब फूटा है, लाइक एकदम से हुआ ये सब।
3: तो इस बार पेपर अच्छा गया था?
4: पेपर अच्छा गया था, कंपेरेटिवली इजी था, अच्छे मार्क्स आए थे सबको। आंसर की भी चेक की थी।
5: आज सुबह पता चला कि रीनेट हो रही है। 2 साल से मेहनत की थी, इतना हार्डवर्क डाला था, अच्छे मार्क्स लाए थे नीट में, अब वापस करना पड़ेगा सब, रीनीट देने होंगे। तो
3: एग्जाम वापस कब हो रहे हैं, कुछ बताया?
5: अब तक डेट्स नहीं पता, पर हो जाएगा एक डेढ़ 2 महीने में।
3: हाँ, तो 2 महीने फिर से पढ़ाई शुरू कर
5: वापस। अभी एग्जाम दी थी, अच्छी गई थी, तो अभी वापस वो मोमेंटम गेन करना, वापस पढ़ाई स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। वापस क्या पता कि जितने अच्छे मार्क्स थर्ड में को आए थे उतने ही वापस आएंगे कि नहीं, वो उसका भी गारंटी नहीं है अभी। तो
0: छात्रों के आक्रोश,
6: एनसीपी में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को जो पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट सौंपी थी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के नाम नहीं है, वो गायब थे। फिर बाद में जो संशोधित लिस्ट दी गई उसमें उनके पद का कोई जिक्र नहीं किया गया। विवाद जब बढ़ा तो सुनेत्रा पवार ने इसे टाइपिंग की गलती कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सवाल अब यह है कि क्या वाकई सुनेत्रा पवार पार्टी के दोनों ही बड़े नेताओं को साइडलाइन करना चाहती हैं?
0: अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी में उथल पुथल चल रही है। एनसीपी में अंदरूनी कलह की चर्चा तब और तेज हो गई जब चुनाव आयोग को भेजी गई पदाधिकारियों की सूची से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का पद गायब हो गया। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनित्रा पवार ने 29 अप्रैल को ये लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी थी, लेकिन इसने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की स्थिति के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को लगा है, जहां पटेल को पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिखा जाता था। वहीं आधिकारिक राष्ट्रीय पदाधिकारी अनुभाग से उनके नाम गायब हैं। इसकी जगह दोनों को बिना किसी विशिष्ट पद के सामान्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची में डाल दिया गया है। विवाद बढ़ा तो सुनित्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वायरल सूची को क्लर्कियल गलती बताकर कह दिया कि इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। अब विपक्ष एनसीपी की अंदरूनी कला पर तंज कस रहा है।
7: ऐसा पता चला है कि सुनेत्रा पवार जी ने जो लिस्ट भेजी है केंद्रीय कार्यकारिणी की उनके पार्टी की, उसमें कई बड़े नाम नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आस्तीन के सांपों को उन्होंने पहचान लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी पे कुछ शक हो अजीत दादा के केस के संदर्भ में। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी हड़पने की कोशिश उन्होंने पहचान ली। काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें दिखते हैं और ये सीधे तरीके से पता चलता है कि किस तरह की घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन एक महिला सामने आती है और वो अपना स्पाइन दिखाती है, निर्णय क्षमता दिखाती है।
0: इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक ना होकर जानबूझकर पार्थ पवार को पार्टी का महासचिव बनाए जाने की सोची समझी रणनीति है। आज जब सुनित्रा पवार, पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे, तो आज तक संवाददाता ने पहले सुनित्रा और फिर प्रफुल्ल पटेल से इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा।
8: मैम, प्रफुल्ल पटेल जी को निकाल दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव से, कुछ कारण मैम उनका नहीं होना इस बार इस लिस्ट में? मैम
9: हाँ सवाल है,
8: प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे दोनों
10: प्रफुल भाई
8: सर, सर तो नई लिस्ट आई नेशनल एग्जीक्यूटिव के एनसीपी की, उस पर आप क्या कहेंगे सर? एक कॉमेंट सर।
0: इधर शरद गुटवाली एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक वाली बात हजम नहीं होती।
11: वो नहीं मैं कह सकती, एक तो दूसरे के घर में मैं क्यों झाकू, इसलिए मैं ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन बड़ी विनम्रता से मुझे आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि एक जमाना था जब हम सब साथ में काम कर रहे थे, तो इस पार्टी में पवार साहब के बाद सिर्फ प्रफुल्ल भाई का नाम लिया जाता था और शायद मेरा भी नाम ड्रॉप हो सकता था, लेकिन प्रफुल्ल भाई का नहीं हो सकता था। तो एक फैमिली की तरह सब क्या मान सम्मान रख के पार्टी चलती थी। लेकिन अभी मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकती क्योंकि उनके गट में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक्स कैसी हो रही है, कौन कह रही है, मेरे ख्याल से आपको उनके ही गट के लोगों के पूछना पड़ेगा, उनको ही पता होगा।
0: ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुनित्रा पवार दोनों वरिष्ठ नेताओं को वाकई साइडलाइन करना चाहती हैं या फिर ये प्रशासनिक चूक ही थी।
12: सियासत की इस खेल में टाइपिंग मिस्टेक भी एक बड़ा हथियार बन गई है। चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट से बड़े बड़े नेताओं के नाम और उनका पद गायब होना ये महज एक इस्तफाक नहीं हो सकता। अगर देश की इतनी बड़ी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम कोई लिखना भूल जाए तो समझ लीजिए कि गलती कागज पर नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी स्क्रिप्ट में हुई है। अब ये देखना है कि क्या इस टाइपो को सुधारा जाता है या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और एक पत्ता साफ किया जाता है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महाराष्ट्र के सांगली में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी तूफान आने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अचानक से मंदिर परिसर की दीवार गिरने से तीन शेड के नीचे खड़े हुए 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और वहीं करीब 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम फडणवीस ने दुख जताया है। तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सांगली में धार्मिक कार्यक्रम के बीच हुआ है बड़ा हादसा। ये पूरा का पूरा टिन शेड बहुत जबरदस्त आंधी और तूफान की वजह से भरभराकर गिरा, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 25 बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महायुति में अंदरूनी कलह बढ़ने के बीच समन्वय समिति में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष की जगह मंत्रियों की समिति बनी है, जिसकी जिम्मेदारी महायुति सरकार में शामिल तीनों ही दलों में समन्वय बनाना और तकरार कम करना है।
0: क्या महाराष्ट्र में महायुति सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुति गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए कथित तौर पर संघर्ष कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि अंदरूनी मतभेद और स्थानीय आपसी झगड़े महायुति की स्थिरता के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए महायुति ने अपनी समन्वय समिति में बड़ा फेरबदल किया है। इसमें कई ऐसे प्रमुख नेताओं को हटा दिया गया है जो अपने बयानों से गठबंधन धर्म निभाने की जगह नफरत पैदा कर रहे थे। अब महायुति ने यह जिम्मेदारी राज्य पार्टी अध्यक्षों से हटाकर एक विशेष मंत्री स्तरीय समिति को सौंप दी है। रायगढ़ में जबरदस्त मतभेदों के बाद सुनील तटकरे को समिति से हटा दिया गया है। दरअसल रायगढ़ में एनसीपी और शिवसेना के बीच स्थानीय प्रतिद्वंदिता अक्सर खुलकर सामने आती रही है। इसी तरह बीजेपी के रविंद्र चौहान को कल्याण, डोंबिवली और एमएमआर क्षेत्र में चल रही सार्वजनिक तनातनी की वजह से हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में उनका दबदबा अक्सर शिवसेना के हितों से टकराता रहा है। नई नियुक्तियों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गिरीश महाजन और चंद्रशेखर बावनकुले को शामिल किया गया है, जबकि शिवसेना ने उदय सामंत और दादा भुसे को शामिल किया है। एनसीपी का प्रतिनिधित्व अब अनुभवी नेता छगन भुजबल और हसन मुशरीफ करेंगे। इस फेरबदल के बाद विपक्ष महायुति पर तंज कस रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि महायुति में कोई तकरार नहीं है।
10: महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है, इसमें आपस में इतना बढ़िया समन्वय है कि आपसे क्या कहें। महाराष्ट्र में 3-4 ऐसे जिले हैं जहां के नेता आपस में ही ऐसे भिड़े हुए हैं, चाहे नासिक हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे डोंबिवली कल्याण लोकसभा हो, और वहीं के नेता समन्वय समिति में भी। बताइए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। मतलब बीजेपी अपने सहयोगियों को अमीबा की तरह पहले छोटे छोटे रूप में खा जाती है, उसके बाद कहती है कि हम समन्वय समिति बनाएंगे। तो महाराष्ट्र में समन्वय समिति नाम की कोई भी चिड़िया है ही नहीं, चिड़िया उड़ चुकी है। ऐसा कोई अपना नहीं है जिसका टूटा सपना नहीं है।
13: हम तो साथ साथ है, साथ में रहेंगे और साथ में चलेंगे भी, कोई अड़चन और बेबनाव नहीं है।
0: नई गठित मंत्री स्तरीय समिति का मकसद विवादों को बढ़ने से पहले ही तेजी से सुलझाना है। वहीं शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत ने एक चुनौती भरा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर बीजेपी 2029 में अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है तो शिवसेना भी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।
14: ये बात तो बीजेपी के आला कमान ने एक साल पहले ही कह दी थी कि 2029 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम अकेले जाएंगे, हमें अकेला लड़ना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी उसके आला कमान ये कहते कि हमें 2029 का जो चुनाव है वो अकेले लड़ना है, लड़ सकते। हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है, वो कुछ भी करे। शिवसेना जो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, वो भी अपने दम पर लड़ने की ताकत रखते हैं, अगर वैसा वक्त आया तो। नहीं तो हमारे नेता तो हर आए दिन कहते ही है ना कि हमें आपस में एकजुट होकर, मिलाप रखकर एक साथ लड़ना है। जिस प्रकार से हम पिछले 4 सालों से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ लड़े हम और एक साथ जीते भी, उसी प्रकार से आगे भी लड़ना है। लेकिन अगर किसी ने ये बात कही कि हम अकेले जाएंगे तो हम भी उसी प्रकार से लड़ने के लिए तैयार है।
0: सवाल है कि नई समन्वय समिति से महायुति के बीच मतभेद खत्म होंगे या सिर्फ चेहरे बदलने से महायुति गठबंधन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की खटास पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
12: तो अब आलम यह है कि महायुति के बड़े नेताओं में मचे घमासान ने समन्वय समिति को पूरी तरह से बदल दिया है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि आखिरकार समन्वय बनाने के लिए एक नई समन्वय समिति बनाने की नौबत आन पड़ी है। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या आने वाले दिनों में ये समन्वय समिति सही मायने में सभी महायुति के नेताओं में तालमेल बनाती है या तो फिर सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: मुंबई पुलिस ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा किया है। मीरा भयंदर क्राइम ब्रांच ने मुंबई के मालवणी मनोरी आइलैंड इलाके में ड्रग्स फैक्ट्री और ड्रग वेयरहाउस का पर्दाफाश किया है, जिसमें अब तक 14 करोड़ रुपए तक के ड्रग्स को बरामद किया जा चुका है। जहां पर मालवणी मस्जिद के मुखिया का भाई ड्रग्स सरगना निकला। मालवणी का ही रहने वाला अक्रम खान बड़े नेताओं के साथ संपर्क में बताया जा रहा है। पुलिस ने अक्रम खान के भाई अजमल खान से भी पूछताछ की है।
16: मायानगरी में इन दिनों नशे के सौदागरों पर मुंबई पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। ड्रग्स नेटवर्क की जांच करते समय मीरा भयंदर क्राइम ब्रांच ने मुंबई के मालवणी मनोरी आइलैंड इलाके में ड्रग फैक्ट्री और ड्रग वेयरहाउस का पर्दाफाश किया, जिसमें अब तक 14 करोड़ तक के ड्रग्स और रॉ मटेरियल बरामद किए जा चुके हैं।
17: मीरा भयंदर वसई विरार के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने 4 अप्रैल को एक केस किया था, जिसमें एक महिला को 1 किलो 300 ग्राम के आसपास एमडी के साथ उसको अरेस्ट किया था। उस केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने 11 आरोपियों का अरेस्ट किया था और उनसे टोटल 6 किलो 700 ग्राम के आसपास एमडी जब्त किया था। एक्यूज नंबर 12 और 13 को 2 दिन में अरेस्ट करने के बाद में उनकी पूछताछ की गई और उनके स्टेटमेंट के आधार पर कल क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने मुंबई के मालवणी एरिया में से 2 जगह से 255 लीटर के आसपास केमिकल्स जो एमडी बनाने के लगता है वो सब उन्होंने जब्त किया।
16: पुलिस ने इस केस में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच का ये एक्शन 10 मई की रात मालवणी में हुआ, जहां पर मालवणी मस्जिद के मुखिया का भाई ड्रग सरगना निकला।
6: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
20: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने, अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए, ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
1: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।
21: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
1: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात होगी, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा।
2: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दोबारा से दर्ज किया केस, फिर घिरे धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए डीजी। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले पेपर लीक सिर्फ नाकामी नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा अपराध। नीट पेपर लीक और अनियमितताओं के दौरान राहुल गांधी का एनटीए प्रमुख पर सवाल, कहा बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण और प्रमोशन देती है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले छात्रों के भविष्य की चोरी में साझेदार हैं प्रधानमंत्री। एनटीए महानिदेशक का बड़ा बयान, कहा किसी को भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एनटीए महानिदेशक ने जानकारी दी, बोले 7 से 10 दिनों में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। नीट परीक्षा मामले में नासिक का एक छात्र शुभम खैरनार गिरफ्तार किया गया, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर किया था पेपर लीक। होलिया बदलकर नासिक में छुपा था नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी, राजस्थान पुलिस ने दबोचा। सीबीआई की 4 टीमें नासिक के क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंची। शुभम खैरनार ने नीट परीक्षा का पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा, फिर हरियाणा के खरीदार को 15 लाख रुपए में बेच दिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को सौंपी गई थी 150 छात्रों और 70 पेरेंट्स की सूची, अहम दस्तावेज और सबूत अपने कब्जे में लेने के लिए सीबीआई अधिकारी जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय पहुंचे। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला, बोला कहा निष्पक्ष परीक्षा न करा पाने वाली सरकार देश चलाने में अक्षम है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी वालों की हर परीक्षा गड़बड़ाई हुई है, क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्र और राज्य सरकार पर बार, बोले लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नीट परीक्षा मामले में शिक्षाविद खान सर, बोले नीट परीक्षा के साथ साथ एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। एसएफआई का दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर नीट परीक्षा की कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन, एनटीए को भंग करने की मांग, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। भोपाल में नीट परीक्षा विवाद को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान और नीट चेयरमैन का पुतला दहन करके इस्तीफे की मांग की गई। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थियों में उबाल, अभ्यर्थी बोले कलावा और बेल्ट उतरवा लेते हैं लेकिन सेंटर तक पेपर सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तापस रॉय ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली, 15 मई को होगा नए स्पीकर का चुनाव। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस 10 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजे गए, नगर पालिका भर्ती घोटाले में फंसे टीएमसी के नेता। सीएम शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच तेज, सीबीआई ने दोबारा केस दर्ज करके एसआईटी के 7 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट, मुख्यमंत्री योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पेट्रोल डीजल संकट पर योगी सरकार का फैसला, मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती होगी, बड़े संस्थानों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले मेरे काफिले में कम होंगी गाड़ियां। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय चेन्नई में कांग्रेस के राज्य मुख्यालय पहुंचे, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। तमिलनाडु विधानसभा में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज हुई, मुख्यमंत्री विजय ने एआईएडीएमके के बागी नेताओं और एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम से मुलाकात की। हरचरण सिंह भुल्लर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, सीबीआई बनाम पंजाब अधिकार क्षेत्र का भुल्लर ने उठाया है मुद्दा। पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने की गिरफ्तारी, एफआईआर और जांच को बताया असंवैधानिक, भुल्लर ने एफआईआर रद्द करने, जांच पर रोक और अंतरिम राहत की मांग की है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय पर जांच की और छापेमारी की, जांच के दायरे में विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी और बीजेपी के नेता। पंजाब में सीबीआई ईडी की कार्रवाई के बीच सियासत हुई, विपक्ष का आरोप है आम आदमी पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करती थी, खुद भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष के आरोपों में घिरी। प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में कथित 20 लाख रुपए की रिश्वत डील और 13 लाख रुपए की बरामदगी ने सिस्टम की पोल खोल दिया। सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक, नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद, मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का 24 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में अंदरूनी कलह तेज हुई, चुनाव आयोग को भेजी गई सूची से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के पद गायब होने के बाद संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें बढ़ी। सूची वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सफाई दी, बोली ये तकनीकी खामी है जिसे जल्द ठीक कर दिया जाएगा। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले बोली ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक वाली बात हजम नहीं होती। महाराष्ट्र के सांगली में तेज हवाओं और बारिश के कारण गिरी मंदिर परिसर की दीवार, मलबे में दबने से 6 की मौत हुई, 25 घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दरबार में लगाई हाजिरी, दोनों नेताओं ने दर्शन पूजन करके मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुवाहाटी पहुंचकर मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी परिवार के संग मां कामाख्या के दरबार में माथा टेका। रुड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
हाइड्रोलॉजी में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अहम बैठक, कई राज्यों के मंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पो वायरस फैलने के बाद नागपुर अलर्ट मोड पर है। महाराजाबाग प्राणी संग्रहालय को किया जा रहा है सैनिटाइज। समस्तीपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिवसीय एआई और रोबोटिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। इस टेक फेस्ट में बिहार समेत कई राज्यों के 280 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची की मिठास फिर से पहुंचेगी देश के वीवीआईपी तक। मई के अंत में भेजी जाएगी दिल्ली। सीजन को लेकर अलर्ट मोड में मुजफ्फरपुर प्रशासन। बांग्लादेश सीमा पर लोगों के साथ बेहतर संबंधों के लिए बीएसएफ की खेल कूटनीति। कूचबिहार में स्थानीय युवाओं के साथ एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ महीने में दूसरे बड़े मंगलवार पर देश भर में मंदिरों में लगा आस्था का मेला। अयोध्या प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक के मंदिरों में भारी भीड़ नजर आई। एशियाई शेरों के लिए मशहूर गुजरात का गिर अब अनोखी कला के लिए भी बन रहा है पहचान। यहां यूनिक थ्रेड आर्ट से तैयार की जाती है अद्भुत कलाकृतियां। 600 रुपए से लेकर 15,000 तक में बिकती है ऐसी कलाकृति। पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ इस कला से युवाओं को भी मिल रहा है रोजगार। गिर के जंगल में पर्यटकों के सामने ही शेरनी ने शिकार पर हमला किया। बाद में दूसरे शेर भी इसमें शामिल हुए। रोमांचक नजारा देखते ही पर्यटकों ने वीडियो बनाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशे के खिलाफ पदयात्रा और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आयोजन किया गया था। नशा मुक्ति के खिलाफ आयोजित रैली में शामिल हुए थे हजारों लोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगुवाई की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। भगवान बद्री विशाल के धाम में बदला मौसम। खराब मौसम के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के तैनात किए गए आईटीबीपी के करीब 25 जवान। भीषण गर्मी के बीच देश में मॉनसून तय समय से 4 दिन पहले दे सकता है दस्तक। 25 से 27 मई के बीच केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। पूर्वोत्तर भारत जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश। केरल तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को लेकर भी अलर्ट है। हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। गर्मी के बीच पर्यटकों से गुलजार पहाड़, बागेश्वर के कौसानी और बैजनाथ में मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। झील में नौकायन का आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बारिश हुई। आसमान में छाई धूप। बांदा में चलती कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। बाल बाल बचा ड्राइवर। बिजनौर में कपड़े के शोरूम में लगी थी भीषण आग। लाखों का नुकसान हुआ। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झारखंड के कोडरमा में थोक कपड़ा कारोबारी के घर पर बने गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। जामनगर में एक इमारत में बिजली के मीटर में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात में ओएनजीसी के खेड़ा प्लांट में लगी थी भयंकर आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। टाला बड़ा हादसा। राजस्थान के बाड़मेर में पुराने बिजली घर में लगी थी भयंकर आग। ट्रांसफार्मर ऑयल के ड्रमों में धमाके। आसपास के घरों को करवाया गया खाली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। 1 करोड़ से ज्यादा नकद, AK-47, SLR समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। सुल्तानपुर में मामूली से विवाद के बाद फुफेरे भाई को मारी गई गोली। ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को बचाया सुरक्षित। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया था आमों से भरा हुआ ट्रक। सड़क पर गिरे आमों को लूटने की मच गई थी होड़। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवान बने देवदूत। हार्ट अटैक से जूझ रहे नागरिक की सीपीआर देकर जान बचाई। उधम सिंह नगर में घुसा कई फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर इसे रेस्क्यू किया। बरेली के अस्पताल की एम्बुलेंस नहीं मिलने से बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले पर लेकर लौटा। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग करते हुए 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई थी नाबालिग लड़की। मेरठ में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मायके वालों का ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने के गंभीर आरोप। बिजनौर में बारात के दौरान तमंचा लहरा का डांस को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई और हंगामा भी। 2 युवक घायल हुए। कानपुर में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महाराष्ट्र के कल्याण में एक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला। पार्किंग विवाद को लेकर जमकर मारपीट। धाराशिव में प्याज के बेहद कम दाम मिलने से नाराज किसान को करीब 600 बोरी प्याज में आग लगानी पड़ी। फसल के औने पौने भाव पर बिक्री को लेकर रोष बढ़ा। गुजरात के मोरबी में डेंगू के बढ़ते हुए मामलों से हड़कंप मचा। ग्रामीणों में बुखार के मरीज बढ़े। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर।
धुरंधर के बाद बड़े पर्दे पर महादेव बनेंगे रणवीर सिंह। फिल्म प्रलय में शिव के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग पूरी हो गई है। 2 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड के बाद अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही है अभिनेत्री दिशा पाटनी। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म द पोर्टल फोर्स का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म लॉरेंस ऑफ पंजाब पर हाईकोर्ट सख्त है। पंजाब सरकार की आपत्ति के बाद बदलेगा फिल्म का नाम। 3 शादी टूटने पर ट्रोल हुई शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम। बोली, फायदे के लिए शादी नहीं की। SBI रिसर्च के मुताबिक 2026-27 में देश की आर्थिक विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। खेती और संबंधित कामकाज में बढ़ोतरी से ग्रामीण इलाकों में खरीदारी में मजबूती जारी। वैश्विक उथल पुथल के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में आई है गिरावट। $5 trillion अर्थव्यवस्था का सपना मुश्किल किया। SBI रिसर्च के मुताबिक रुपया गिरने से 2029 और 30 तक टल सकता है ये टारगेट। 2026-27 में अल नीनो और ऊर्जा संकट के असर से RBI रेपो रेट में 2 बार बढ़ोतरी कर सकता है। HSBC के मुताबिक आर्थिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का भी करना पड़ सकता है सामना। AMFI के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश अप्रैल में 5% घटकर करीब 38,500 करोड़ रुपए रहा। SIP के माध्यम से किया जाने वाला मासिक योगदान भी घटकर लगभग 31,000 करोड़ हुआ। JM फाइनेंशियल के मुताबिक पिछले 3 साल में 112 भारतीय शेयर्स में हिस्सेदारी घटा चुके हैं। टेलीकॉम इंफ्रा और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच देश में LPG उत्पादन को लेकर तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। बोले, देश में LPG उत्पादन 35-36,000 टन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हो गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देश में ईंधन की कमी को खबरों को खारिज कर दिया। बीते 3 दिनों में 1.14 करोड़ LPG बुकिंग के मुकाबले 1.26 करोड़ घरों में सिलेंडर पहुंचाने की जानकारी दी गई। सरकारी तेल कंपनियों ने देश में बढ़ रहे LPG डिलीवरी स्कैम को लेकर चेतावनी जारी कर दी। गैस डिलीवरी वेंडर्स बनकर OTP और डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड के जरिए किए जा रहे हैं फ्रॉड। प्रधानमंत्री मोदी की वर्क फ्रॉम होम की अपील के बाद IT सेक्टर में छिड़ी है बहस। सोशल मीडिया पर लोगों ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम के दिए जाने के विकल्प पर विचार करने की मांग करनी शुरू कर दी है। फ्रांस में बढ़े हंता वायरस के मामले, अब तक 22 मामले सामने आए। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस को लेकर कहा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन ने रूस के अंदर 1500 किलोमीटर दूर तक किया है मिसाइल से हमला। रूस के ओरेनबर्ग शहर में मौजूद गैस ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने किया दुनिया का सबसे लंबी दूरी कहे जाने वाले सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण। पुतिन ने कहा, 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है समरथ मिसाइल की रेंज। रूसी सरकार ने यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने का संकेत दिया। कहा, यूक्रेन के

जरूरी है या देश हित में तेल बचाना। अब दुनिया भर में तेल 50% तक महंगा हुआ है, लेकिन भारत में कीमतें अभी भी स्थिर है। आज सवाल यह है कि महंगे तेल की मार के बाद आपकी कार कब तक यूं ही चलेगी। इसके बाद देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर हुए भद्दे मजाक के बारे में आपको बताएंगे। कैसे नीलाम हुई है हमारे बच्चों की जिंदगी, उनकी मेहनत, उनका भविष्य। जिस नीट परीक्षा को पास कर देश के युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, ना दिन का चयन होता है ना रात को नींद मिलती है, दिन रात एक करके सब कुछ त्याग कर पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी मेहनत के दम पर वो एक दिन डॉक्टर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सके, अपने परिवार के जो अन्य लोग हैं उनको खुश कर पाए, जो देश में मरीज है उनका इलाज कर पाए और इस नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़ पाए। वहां पर उनकी मेहनत पर धांधली फिर से भारी पड़ गई। 3 मई को परीक्षाएं हुई, 4 मई को पता चला कि 150 से ज्यादा सवाल पहले ही लीक हो चुके थे। देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आखिर क्यों हमारे देश में पेपर लीक एक लाइलाज बीमारी बन गया है? मतलब हम आतंकवाद को पीछे धकेलने की बातें करते हैं, हम पाकिस्तान तक पर हमला कर देते हैं, उसके आतंकी ठिकानों तक पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक एग्जाम नहीं करा सकते अपने देश में? आज इसी धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि बंगाल में सरकार बदलते ही सड़कों पर नमाज लड़ने पर बैन लगा दिया गया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु विधानसभा में सनातन को मिटाने की कसम कैसे खाई गई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल डीजल वर्क फ्रॉम होम और सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे लेकर अब अलग अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और सूत्रों के हवाले से ही खबर आई है कि इस बैठक का एजेंडा था उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना और वर्क फ्रॉम होम के लिए नई व्यवस्था पर मंथन करना। ये बैठकें भी तब हो रही हैं जब कल सुबह 11 बजे मोदी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसे लेकर भी अटकलें तेज हैं क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर राजनीति बहुत हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर इतनी राजनीति हो रही है और विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों को सोना खरीदने से मना कैसे कर सकती है, तब हम आपको शुरुआत में ही 1997 की यह ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस दौर की है जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार है। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है, धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है, लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर IMF से $58 बिलियन का बेलआउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको IMF से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेलआउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गई कि हमारे जैसा देश, मेहनती स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको IMF से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी।
ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी

0: मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश सोना दे सकते हैं वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या, इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया, जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला, जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन। और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचे, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपने निजी सोना सरकार को देन दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का। लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ज्यादातर लोगों को मोटे तौर पर यह तो पता है कि सरकार ये अपील ईरान युद्ध के कारण कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयानक रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक साल तो भूल जाइए, ये भी हो सकता है कि सरकार को आपसे ये कहना पड़े कि आप 5 साल 10 साल की मुश्किलें सामने ना आ जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी है कि दुनिया में तेल आपूर्ति का संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले कुछ हफ्तों में खुल भी गया तब भी तेल की किल्लत 2027 तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कैसे, उसके लिए आप इन आंकड़ों को जरा गंभीरता से देखिए। इस युद्ध के कारण अब तक 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई खत्म हो चुकी है। स्वाहा। खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस सप्लाई को वापस शुरू होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे। इस युद्ध के कारण हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है, जिसे अगले 6 से 7 महीने में भी रोकना नामुमकिन होगा। इस युद्ध के कारण ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है और यह सब होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $107.5 पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ तब यही कीमतें $68 थी, जो अब प्रति बैरल करीब $40 बढ़ चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है और भारत के लिहाज से तो ये भी और भी खतरनाक स्थिति है। अगर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और यहां तो $40 तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। और सोचिए इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव बढ़ रहा होगा। अगर यह संकट एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने का भी होता तब भी शायद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कभी नहीं कहते कि तेल बचाइए, सोना ना खरीदिए, छुट्टी विदेशों में मत मनाइए। सवाल है कि हमें डॉलर, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का भंडार है, उसको हमें बचाकर रखना है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें उसे सोना, तेल, इंपोर्ट सब पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, वो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे देश के लिए मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को यह अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, शायद बहुत लंबा खींचने वाला है। और अगर युद्ध अभी सीज फायर चल भी रहा है तब भी जो सप्लाई चेन है तेल का, गैस का, वो वापस से सुचारू उसी तरीके से युद्ध के पहले की स्थिति पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। यहां आप कहेंगे कि युद्ध तो रुक चुका है, 7 अप्रैल से सीज फायर है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलती है क्योंकि स्थिति हमने आपको बता दी, युद्ध रुका हुआ है। युद्ध रुका हुआ तब माना जाता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल चुका होता। युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला है, जब तेल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही कर रहे होते तब स्थिति सामान्य होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह समुद्री रास्ता अब भी बंद है, इसकी वजह से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति लगभग ठप है। बड़ी बात यह है कि अब तो यह कागजी सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है। ईरान ने समझौता करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जो शर्तें बताई थी, उन शर्तों को राष्ट्रपति ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में फेंकने की बात कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस युद्ध में लागू हुआ सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सीज फायर कोई कह रहे हैं कि आईसीयू में है, आईसीयू भी नहीं, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, मतलब आखिरी सांसें चल रही हैं, जिसके बचने की बहुत कम संभावना है। बहुत जल्द ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस धमकी को सुनिए, समझिए कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, जब सीज फायर भी दम तोड़ने वाला है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे अपील करना क्यों जरूरी था।
1: It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Bad prognostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: अमेरिका का मीडिया दावा यह कर रहा है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हकीकत में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। CNN के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दोबारा से हमले करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो ईरान द्वारा रखी जा रही शर्तों से नाराज हैं और उन्हें यह लगता है कि ईरान इस समझौते को करने के लिए गंभीर नहीं है। पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफ दिया और इस ब्रीफ में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके खिलाफ आक्रामक रुख को अपनाना बहुत जरूरी है, और पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर फिर से हमला होना ही चाहिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ना तो सीजफायर का कोई फायदा है, ना ही ये उम्मीद करना सही है कि अगले कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। ना रास्ता तेल गैस का खुला है और ना ही ये सीजफायर परमानेंट दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि जैसे बॉक्सिंग रिंग के मैच में एक राउंड खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को एक ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक के बाद बॉक्सिंग का मुकाबला फिर से शुरू हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बदलते हुए फैसले को देखते हुए इसकी संभावना जताई जा रही है। आप ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।
3: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे।
0: अमेरिकी मीडिया का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले 2 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में लगभग 1 साल या फिर 8 से 10 महीने लगेंगे। अगर यही हॉर्मूज 6 महीने बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई सामान्य होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, और अगर यही हॉर्मूज 1 साल बाद खुलता है तो तेल की सप्लाई 3 साल बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी से अच्छी स्थिति में भी यह संकट 2027 तक खत्म होगा और बुरी से बुरी स्थिति में यह 2029 तक खींच सकता है। अब सोचिए 2029 तक अगर कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल भी रही तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना दबाव आएगा। हमें हर दिन उतनी कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना होगा जो युद्ध से पहले की कीमतों से 66% ज्यादा होंगी, और क्योंकि तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य होता है, इसके लिए भारत ज्यादा कीमतों पर भी कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर रहेगा, और फिर हम लोगों की जेब पर जो मार पड़ेगी वो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ये कहा है कि वो तेल का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें जबकि सोने को वो एक साल तक खरीदे ही नहीं। सोना एक लग्जरी आइटम है, इसके ना होने पर गुजारा किया जा सकता है। अगर आप एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? शायद उन परिवारों में थोड़ी मायूसी होगी जिनके घर में शादी है, लेकिन अगर तेल नहीं मिलेगा तो पूरा देश रुक जाएगा। और यही कारण है कि तेल हमें खरीदना ही खरीदना है। तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। तो समझिए ऐसे कि आपके पास अपने घर खर्च के लिए रुपए हैं, वैसे ही देश में जब हमें कुछ विदेश से खरीदना होता है तो हमारे पास फिक्स्ड डॉलर है और वो डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। अब वो हमारे पास फिक्स्ड है, हमें यह तय करना है कि हम उससे सोना ज्यादा खरीद कर देश में लाना चाहते हैं क्योंकि सबको सोना खरीदना है भारत में, या हम उससे तेल खरीदना चाहते हैं क्योंकि तेल के बिना अर्थव्यवस्था थम जाएगी और तेल जरूरी है। ऐसे में हमें वो विदेशी मुद्रा भंडार तेल के लिए ज्यादा रखना चाहिए, तेल के खरीद के लिए, क्योंकि ये खर्च कहां होता है विदेशी मुद्रा भंडार? ऐसे ही क्रूड ऑयल पर होता है, तेल पर होता है, या फिर जो खाने वाले एडिबल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है। तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है क्योंकि तेल, गैस, अभी की स्थिति जितना हम बाहर से आयात करते हैं उस स्थिति में हमें हर हाल में खरीदना ही होगा। हमें जितने डॉलर बचाकर रखेंगे उतना हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रख पाएंगे और तेल को ज्यादा कीमतों पर खरीद कर भी स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत में हो रहा है। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, लेकिन दूसरे देशों में वो हो रहा है जिसके बारे में आपने अभी तक अपने देश में हमने स्थिति नहीं देखी है, सोचा नहीं है। जैसे थाईलैंड, थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि भाई किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है, थाईलैंड क्या बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है जिसमें दो पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है, लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही है। तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मूज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स, कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश है, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है, 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल, सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी है और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है, लेकिन जब संकट बढ़ रहा है इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राएं टाल दें, तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी मुद्दे की राजनीति में और उसकी वास्तविकता में कितना बड़ा अंतर होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ होता है नैरेटिव जो बनाया जाता है और एक तरफ होता है फैक्ट्स। तो युद्ध के बाद गैस तेल की कीमत जो बढ़ी है वो हम आपको हर देश का सिलसिलेवार ढंग से नंबर दिखाना चाहते हैं। तो जब आप ये नंबर्स देखेंगे मुझे लगता है पीला ही रखना चाहिए। ये देखिए, जब आप देखिएगा मलेशिया में 56.3% वृद्धि हुई है और वहां पर आप कीमतें देखेंगे तो हॉर्मुज से उनका सप्लाई कितना है 38%। अब 38% सप्लाई होने की वजह से हॉर्मुज से उनका 56.3% उनके कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। हमारा सोर्स एक बार दिखा दीजिए, हमारा सोर्स है ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस और वहीं से ये नंबर आपके सामने है, साक्षात है। मतलब मलेशिया में 56.3% का इजाफा ये आपको दिख रहा है। ये देखिए आप 54.9% कहां बढ़ा है, पाकिस्तान में। इनका तो 80% वहां से आता है, 80%। यूएई अपना तेल है फिर भी 52.4% का यहां पर बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका 44.5% की बढ़ोतरी, जबकि सिर्फ 2% यहां पर आता है। तो ऐसा लगता है कि कई देशों ने तो युद्ध का मौके की तरह इस्तेमाल किया है और एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि क्यों ना इस युद्ध में कीमतें साथ के साथ बढ़ा दी जाए। वरना इसकी क्या वजह हो सकती है, या तो फिर हथियारों के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है अमेरिका को, 44.5% बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका देखिए 33.1%, इनका 22% आता है। ये देखिए, वैसे ही अगर आप देखिएगा तो 5-15% आता है कनाडा का, उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी है 31.9%। चाइना 21.7%, इनका 50% यहां से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका 50% आता है वहां से, फिर भी इन्होंने कीमतें 21.7% बढ़ाई और यही पाकिस्तान की हालत देखिए, 80% वहां से आता है और इन्होंने 54.9% कीमतें बढ़ा दी है। ऐसे ही आप देखिए ब्रिटेन में भी बढ़ोतरी हुई है लगभग 19% की, 10% ये वहां से तेल लेते हैं। 61% दक्षिण कोरिया का आता है वहां से हॉर्मुज से तेल, इनकी कीमतें बढ़ी है 19%। जर्मनी की 13.5%, 5% से कम वहां से आता है। जापान इंटरेस्टिंग है, जहां का 95% वहां से आता है लेकिन इन्होंने कम वृद्धि की है, इन्होंने 9.5% के आसपास वृद्धि की है। ब्राजील ने की है 6% के आसपास, स्पेन ने 5%, इनका वही 10-15% आता है। लेकिन भारत जिसका 35-40% वहां से आता है हॉर्मुज से सप्लाई, ये देखिए 35-40% जिनका आता है वहां से सप्लाई, वहां पर कोई वृद्धि नहीं की गई है, यहां पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो ये आप समझ गए। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, सबसे ज्यादा वृद्धि अगर आप देखिए तो रेट्स में सबसे ज्यादा मलेशिया, पाकिस्तान और यूएई में की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां से सप्लाई आने के बावजूद सिर्फ 10% के आसपास जापान ने किया है, लेकिन 35-40% वहां से तेल आने वाले भारत ने कोई वृद्धि नहीं की है। तो यह बताता है कि किस तरह की परिस्थिति है और भारत उसका किस तरह से मुकाबला कर रहा है। लेकिन हमारे देश की राजनीति थमती नहीं। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं, सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। और यहां इस बात को नोट करिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह अपील साल 2013 में की थी, जब ना तो ईरान जैसा कोई युद्ध चल रहा था ना ही कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट था। लेकिन जो सोना हम खरीदते हैं, जो हम आयात करते हैं, 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए। लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए
2: There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports.
0: यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए।
4: डोंट डिमांड गोल्ड एंड वी डोंट हैव टू इंपोर्ट गोल्ड फॉर 1 year. Just imagine, for 1 year, the whole situation will so dramatically change. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone, please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन से जनता से अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों की को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसे, होटल रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। 1974 में जब अरब और इसराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी, लेकिन ये बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से ये अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है।
5: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
0: आज यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि लोग तो तेल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, अपनी गाड़ियों की जगह मेट्रो और कारपूलिंग से दफ्तर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे नेता, हमारे माननीय महोदय, हमारे विधायक, हमारे सांसद, उनके काफिले कब छोटे होंगे? क्या वो संकट की इस घड़ी में तेल की कीमत का महत्व समझेंगे? मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पार्टी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इसके बाद जानते हैं माननीय नेता ने क्या क्या समर्थकों के साथ उज्जैन से भोपाल तक कई गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़े साहब। और दावा है कि इस काफिले में 5 से 10 या 50 गाड़ियां नहीं बल्कि 700 गाड़ियां थी। मतलब कैमरा जा ही रहा है, बस गाड़ियों का तांता खत्म नहीं हो रहा है। चैट जीपीटी का अनुमान है कि इस बीजेपी नेता ने सिर्फ अपना पदभार संभालने के लिए 10,000 लीटर तेल खर्च कर दिया होगा, लेकिन सोचे नेताओं से तेल बचाने के लिए कौन कहेगा। देखिए

और अब इन नेताजी को भी देखिए जरा। इन नेताजी का नाम है राकेश सिंह जादौन। इन्हें भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया। ये भी लंबा चौड़ा काफिला लेकर पद संभालने जा रहे थे, लेकिन इसके बाद आज तक ने इनकी ये तस्वीरें दिखाई और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक रिक्शा पर आ गए। देखिए।

0: इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सवाल है कि जनता तो तेल की बचत कर लेगी, सोना खरीदना बंद कर देगी, क्या ये नेता अपना काम करेंगे, क्या इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये जो सादगी आजकल दिखाई जा रही है कि एक दो लोग निकल रहे हैं साइकिलों पर, इसमें हाईकोर्ट जज जस्टिस डीडी बंसल भी हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि लोगों को एक मिसाल पेश करनी होगी और जो नेता होते हैं उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो मिसाल पेश करें। गाड़ियों के साथ टशन से सड़कों पर निकलना, तेल की चिंता ना दिखाना, ये सब कोई अच्छा उदाहरण है नहीं। बदलिए नेताजी। और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल बचाने की नहीं बल्कि आज बात सोने को लेकर भी है। 2016 में एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के पास उस वक्त 710 किलोग्राम सोना था। सोना डिक्लेयर करना पड़ता है ना चुनाव में, तो एडीआर ने सारा सोना ऐड किया और तब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस योजना के तहत सरकार ने यह विकल्प दिया था कि लोग अपने घरों में सोना ना रखकर सरकार के पास इसे जमा कर दें और बदले में सरकार से इस पर ब्याज लेते रहें। लेकिन तब लोग तो कई आए जिन्होंने अपना सोना सरकार के पास रखा, लेकिन ये जो हमारे सांसद थे जिनके पास था 710 किलोग्राम सोना, उन्होंने साफ कह दिया कि वो सरकार के पास अपना सोना जमा नहीं कराएंगे। अमर सिंह ने तो यह कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पत्नी का उनसे झगड़ा हो जाएगा, जबकि उनके पास 13.7 किलोग्राम मतलब लगभग 14.25 किलोग्राम सोना था। हेमा मालिनी के पास 5.5 किलो सोना था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि वो सरकार के पास अपना सोना रखने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रही। इनके अलावा कई और नेताओं के पास कई किलो सोना था, लेकिन उन्होंने अपना सोना सरकार के पास ब्याज के लिए नहीं दिया और आज ये स्कीम बंद कर दी गई है। इससे सबसे ज्यादा सोना मंदिरों की तरफ से आया है। सवाल उठेगा कि जनता तो मान लेती है, लेकिन क्या हमारे नेता मानेंगे और क्या वो संकट की घड़ी में इन अपील पर अमल करेंगे। आज एक सवाल और है कि क्या देशहित में सोने की खरीद का त्याग भी नहीं किया जा सकता। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था ईरान के लिए, अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, यहां तक कि सोने का हार ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब इस देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान में दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो हंगामा हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि जब ईरान के लिए भारत के लोग अपना सोना दान दे सकते हैं, तो अपने देश भारत के लिए सिर्फ एक साल सोना खरीदना बंद करने में कौन सा तूफान आ जाएगा। नीट की परीक्षा में एक बार फिर से हमारे देश के 22,79,000 परीक्षार्थियों के साथ धोखा हुआ है। लाखों युवा डॉक्टर्स बनने का सपना लेकर आते हैं और वो ये सपना लिए पूरी ईमानदारी के साथ 3 मई को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। सोचिए धड़कनें किस तरह से चल रही होंगी, किस तरह के तनाव से वो गुजर रहे होंगे। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए बैठ रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन सबके साथ तैयारी के दम पर परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन उन्हें पता चला कि नीट यूजी 2026 के क्वेश्चन पेपर में बताए गए 150 से ज्यादा सवाल पहले से लीक हो चुके थे। यानी इस परीक्षा में ईमानदार परीक्षार्थियों का मुकाबला ऐसे बेईमान छात्रों के साथ था जो पहले से ही 150 सवालों का सही जवाब जानते थे। ईमानदार छात्रों के साथ हुआ यह धोखा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर है और कई छात्र संगठन पेपर लीक के खिलाफ एनटीए का विरोध कर रहे हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस एजेंसी की कार्यशैली, उसके तौर तरीके, उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं कि अब यह विश्वसनीयता खोती जा रही है। फिलहाल एनटीए ने पेपर लीक की शिकायतों के बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी पूरे साल लगन से पढ़ाई, मेहनत, दिन रात एक करना, ये बच्चे 12th के बाद भी लगातार रात रात भर जगते हैं, खाना पीना सब बेसुध, सब कुछ भूल कर पढ़ाई में दिन रात एक करते हैं और ऐसी लगन से पढ़ाई करने वाले छात्रों को एनटीए की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तय यह हुआ है कि छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। सोचिए, फिर से वही चक्र। अब परीक्षा के लिए नई तारीख आएगी, नई परीक्षा के लिए छात्रों को नया आवेदन नहीं करना है, पुराने आवेदन से काम चल जाएगा, छात्रों से अलग से कोई एग्जाम फीस नहीं ली जाएगी, नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एग्जाम सेंटर वही रहेगा जहां छात्रों ने एग्जाम दिया था। यानी एक तरह से छात्रों को मजबूरन नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा और परीक्षा की तारीख उन्हें जल्दी ही बता दी जाएगी। नीट परीक्षाएं कराने में एनटीए की लापरवाही देखिए कि पेपर लीक हो चुका था, उसे पता भी नहीं था और ये खेल बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा 1 मई को सामने आया। दरअसल 1 मई को केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को नीट का एक गेस पेपर भेजा, गेस पेपर कि भैया इसी के आधार पर मेन पेपर हो सकता है। गेस पेपर का मतलब है अनुमानित सवालों का एक ऐसा सेट जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। 2 मई को यह गेस पेपर सीकर में पीजी चलाने वाले एक व्यक्ति को मिला, उसने ये पेपर अपने यहाँ नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को दे दिया। 3 मई को जब परीक्षा हुई तो पता चला कि असली क्वेश्चन पेपर में 150 सवाल वही थे जो उस गेस पेपर में बताए गए थे और ये बहुत असामान्य बात थी। जब पेपर लीक की शिकायतों पर हंगामा शुरू हो गया तब 7 मई को एनटीए ने गड़बड़ी की बात को गंभीरता से लिया, कहा कि यह मामला राजस्थान और उत्तराखंड में सामने आया है। गेस पेपर के नाम पर नीट के असली एग्जाम पेपर के 150 सवाल जारी हो चुके थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची थी। गेस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सारे सवाल हाथों से लिखे गए थे, ऐसा नहीं था कि इसकी फोटोकॉपी की गई हो। नीट के क्वेश्चन पेपर में आए 150 सवालों को पूछे जाने का तरीका भी सेम टू सेम था। नीट की परीक्षा में 4-4 अंकों वाले 180 सवाल आते हैं, मतलब ये है कि सैकड़ों परीक्षार्थियों के पास 720 में से 600 अंक तक हासिल करने जितने सवाल पहले से थे। बहुत से लोगों को संदेह है कि ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि इत्तेफाक का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्सर ऐसा होता है कि असली परीक्षा में गेस पेपर जैसे मिलते जुलते सवाल आ जाते हैं, लेकिन शब्दशः वही शब्द, वही नंबर्स और इतनी बड़ी संख्या, 150 सवालों की बात हो रही है, एक जैसे हो गए, ऐसी संभावना बन गई। ऐसी संभावना ना के बराबर है, हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसीलिए यह केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्योंकि इसमें कई राज्यों में फैले नेटवर्क का हाथ भी हो सकता है। अभी तक इस मामले में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नाशिक से शुभम खैरनार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसको ये पेपर टेलीग्राम एक्ट पर पुणे के एक युवक के जरिए मिला था। शुभम खैरनार ने ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा, उसके बाद उसने इसे हरियाणा के एक अन्य खरीददार को 15 लाख रुपए में बेच दिया। यानी हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों के भविष्य की बोली लग रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि नीट का पेपर के नाशिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया, यहां से ये पेपर हरियाणा पहुंचा, हरियाणा से जयपुर, जयपुर से सीकर, सीकर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, उत्तराखंड फैल गया। इसे आप समझ सकते हैं कि 3 मई को कितनी बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों ने एग्जाम दिया होगा जिनको ये 150 सवालों के जवाब रटे हुए थे। ऐसे में ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों का उनसे क्या मुकाबला था। इसी वजह से परीक्षा को रद्द किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है, साल दर साल अब तो पैटर्न है। साल 2024 में तो नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस साल नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर लीक होने से कई सेंटर्स पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। एनटीए ने शुरुआत में पेपर लीक की खबरों को नकार दिया था, लेकिन पुलिस जांच में पेपर लीक की बात सामने आई, फिर एग्जाम कैंसिल। पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा रद्द करने की अपील की और तब जाकर ये कैंसिल हुआ। कुछ ही सेंटर्स की परीक्षाएं रद्द की गई और 1539 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी थी। उस साल की परीक्षा में अगर आप देखिए तो कितने सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिल गए थे, कई टॉपर्स एक ही सेंटर में थे। मामलों की वजह से एनटीए पर सवाल तब भी उठे। और साल 2024 के पेपर लीक केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और इस केस में 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिलहाल इस केस की फाइल धूल फांक रही है क्योंकि उसके मास्टरमाइंड का आज तक पता नहीं चला। सोचे, 2 साल पहले जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो पता नहीं 2026 के परीक्षार्थियों को इंसाफ कब मिलेगा। हमारे देश में पेपर लीक को अपराध माना जाता है, लेकिन गंभीरता से लिया जाता है क्या? पिछले 7 वर्षों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें कई तरह की भर्ती परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। धांधली के मामले में देश के 15 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इसमें मुख्य तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात जैसे राज्य हैं। बावजूद इसके परीक्षा से पहले पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग नेटवर्क को तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां फेल हो जाती हैं और बाद में जब कार्रवाई शुरू होती है तो सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। नीट पेपर लीक की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों को एनटीए गलत बताता रहा। साल 2024-26 को छोड़ दें तो पेपर लीक की खबरें आमतौर पर अफवाह, धोखाधड़ी के तौर पर सामने आई, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या पेपर लीक के खेल को खत्म करने का कोई उपाय है? और इसी के साथ साथ आज सवाल यह भी है कि क्या होगा इन बच्चों के भविष्य का, वो कितने गंभीरता से इन एग्जाम्स को लें, क्योंकि सिस्टम तो इन एग्जाम्स को गंभीरता से ले नहीं रहा है। ये कुछ लोगों के लिए पैसे कमाई का एक लीक एंड अर्न मॉडल बन गया है।
1: ये जो पेपर है ये पहले भी लीक हुआ, उसके दोषी कौन थे? हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है, 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। इस पे पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
2: सीकर से ऐसी न्यूज आ रही है कि 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और रविवार के दिन ही इंसान रिश्ते संभालता है, बाकी दिन किश्तें संभालता है। नमस्कार।

0: नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे, पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज 2 साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जी तोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इस बार की सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बार की
3: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगा था 0 प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है, हम तो कंप्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेके, लेकिन वापस से भाई हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं।
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
6: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड।
7: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
1: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी। पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार। फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
9: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा? इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
10: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है, अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
11: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
12: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
13: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
14: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
15: देखिए ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
16: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
17: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का और पीएन ने ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
18: मेरा एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए, भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन सर आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही, सर रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
19: सर बहुत डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
20: छात्रों का भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
21: मैम मेरे फ्रेंड्स वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
22: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
14: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
14: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
23: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव

0: व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है आज सुबह ही। हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
1: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
2: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था, इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
1: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक पे बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
3: एनसीपी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। दरअसल सुनीत्रा पवार ने चुनाव आयोग को जो पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट सौंपी थी, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के नाम नहीं थे। फिर बाद में जो संशोधित लिस्ट सौंपी गई, उनके पद का कोई जिक्र नहीं किया गया। विवाद जब बढ़ गया तो सुनीत्रा पवार ने इसे टाइपिंग की गलती कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में सुनीत्रा पवार पार्टी के इन दोनों ही बड़े नेताओं को साइडलाइन करना चाहती हैं?
4: अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी में उथल पुथल चल रही है। एनसीपी में अंदरूनी कलह की चर्चा तब और तेज हो गई, जब चुनाव आयोग को भेजी गई पदाधिकारियों की सूची से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का पद गायब हो गया। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीत्रा पवार ने 29 अप्रैल को ये लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी थी, लेकिन इसने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की स्थिति के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को लगा है, जहां पटेल को पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिखा जाता था, वहीं आधिकारिक राष्ट्रीय

0: अधिकारी अनुभाग से उनके नाम गायब हैं। इसकी जगह दोनों को बिना किसी विशिष्ट पद के सामान्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची में डाल दिया गया है। विवाद बढ़ा तो सुनेत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वायरल सूची को क्लर्कियल गलती बताकर कह दिया कि इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। अब विपक्ष एनसीपी की अंदरूनी कला पर तंज कस रहा है।
1: ऐसा पता चला है कि सुनेत्रा पवार जी ने जो लिस्ट भेजी है केंद्रीय कार्यकारिणी की उनके पार्टी की, उसमें कई बड़े नाम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आस्तीन के सांपों को उन्होंने पहचान लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी पे कुछ शक हो अजीत दादा के केस के संदर्भ में। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी हड़पने की कोशिश उन्होंने पहचान ली। काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें दिखते हैं और ये सीधे तरीके से पता चलता है कि किस तरह की घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन एक महिला सामने आती है और वो अपना स्पाइन दिखाती है, निर्णय क्षमता दिखाती है।
0: इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक ना होकर जानबूझकर पार्थ पवार को पार्टी का महासचिव बनाए जाने की सोची समझी रणनीति है। आज जब सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और प्रफुल पटेल गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे, तो आज तक संवाददाता ने पहले सुनेत्रा और फिर प्रफुल पटेल से इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा।
2: मैम, प्रफुल पटेल जी को निकाल दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव से, कुछ कारण मैम उनका नहीं होना इस बार किसी इसमें? मैम
3: नमस्ते।
2: हाँ हाँ, सवाल है। प्रफुल पटेल सुनील गडकरी दोनों बाहर
3: हैं इस बार।
2: दादा
4: एक मिनट, दो प्लीज। प्रफुल भाई
2: सर, मतलब जो नई लिस्ट आई नेशनल एग्जीक्यूटिव के एनसीपी की, उस पर आप क्या कहेंगे सर?
0: इधर शरद गुटवाली एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक वाली बात हजम नहीं होती।
5: वो नहीं मैं कह सकती। एक तो दूसरे के घर में मैं क्यों झांकूं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन बड़ी विनम्रता से मुझे आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि एक जमाना था जब हम सब साथ में काम कर रहे थे, तो इस पार्टी में पवार साहब के बाद सिर्फ प्रफुल भाई का नाम लिया जाता था और शायद मेरा भी नाम ड्रॉप हो सकता था, लेकिन प्रफुल भाई का नहीं हो सकता था। तो एक फैमिली की तरह सब क्या मान सम्मान रख के पार्टी चलती थी। लेकिन अभी मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकती क्योंकि उनके गट में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक्स कैसी हो रही है, कौन कह रही है, मेरे ख्याल से आपको उनके ही गट के लोगों के पूछना पड़ेगा, उनको ही पता होगा।
0: ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुनेत्रा पवार दोनों वरिष्ठ नेताओं को वाकई साइडलाइन करना चाहती हैं या फिर ये प्रशासनिक चूक ही थी।
6: सियासत की इस खेल में टाइपिंग मिस्टेक भी एक बड़ा हथियार बन गई है। चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट से बड़े बड़े नेताओं के नाम और उनका पद गायब होना ये महज एक इस्तफाक नहीं हो सकता। अगर देश की इतनी बड़ी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम कोई लिखना भूल जाए तो समझ लीजिए कि गलती कागज पर नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी स्क्रिप्ट में हुई है। अब ये देखना है कि क्या इस टाइपो को सुधारा जाता है या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और एक पत्ता साफ किया जाता है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया। 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई पर क्या? सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई पर
3: क्या? 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगातार जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से भाई आवाज सुनने एक्सपेक्ट नहीं।
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
6: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबल विल बी फिक्स्ड। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
1: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
7: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
8: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक होने कर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
9: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
10: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
11: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
12: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
8: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
13: देखिए, ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
14: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
15: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएनए, ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
16: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही सर। रोके भी किसी को नहीं बता सकते
17: सर। बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
18: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
19: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
20: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
8: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
8: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे, दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गेस्ट पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
2: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंडअप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
8: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
21: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
8: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
0: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
22: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार दिखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
5: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए अपील की है।
6: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आवाज रखूंगा।
5: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी
6: घोड़ा चल सकते, वाहन से चल सकते, काफिला कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
5: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचाए, सोना बचाए।
6: सोना पेट्रोल लेकर
3: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
23: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहां पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
3: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
23: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है, तो इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
24: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
23: पोस्टर
24: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
25: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में देख रहे हैं।
23: MP07 दी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी देख रही है, हमारा नंबर भी देख लिया,
25: वीजा पोस्टिंग और सब CNG गाड़ी है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए है, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
1: परिवेश मंगरोला मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
7: जी,
1: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इतने बड़े व्यक्ति समझते हैं, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश के दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
7: जी।
1: वहाँ भोले से देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गाँव आ गया होगा, मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके, अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवाता रहे तो हम ठीक है चलते। अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे लूट से गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे था
7: जी।
1: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया है, पर ठीक है जो भी है।
7: लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो और आपकी, मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है?
1: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही
3: नहीं। तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए, रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने ना अपने सीएम की मानी ना पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई। लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बारे की बात। सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे।
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बारे की बात।
3: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगातार जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से भाई आवाज सुनने एक्सपेक्ट नहीं।
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
6: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबल विल बी फिक्स्ड। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
1: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा भाग के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
7: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
8: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल। 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक। क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हां, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं। 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है। 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे। फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
9: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
10: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
11: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
12: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
8: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
13: देखिए, ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
14: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
15: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
16: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
17: सर, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
18: छात्रों को बहुत साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
19: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
20: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
8: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गयी, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
8: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है।
2: दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
21: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंडअप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
2: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुड़वाए हुए थे।
22: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने NBI 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
2: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने MBBS काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में MBBS का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, MBBS काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। SOG अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
0: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी। लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
3: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार देखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई

0: ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा। इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
1: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए उन्होंने एक साल के लिए अपील की है?
2: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आवाज रखूंगा।
1: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा तो
2: टीवी भी वहाँ से चल सकते हैं, काफिला कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
1: और गाड़ी कौन सी? उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचाए, सोना बचाए।
2: सोना पेट्रोल
0: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
3: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
0: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
3: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है, तो इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा?
4: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
3: सब पोस्टर लगे हुए हैं,
4: पोस्टर लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती है तो लगा देता है कोई भी।
5: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ देकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में देख रहे हैं।
3: MP07 दी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी देख रही है, हमारा नंबर भी देख लिया,
5: विदिशा पोस्टिंग और सब CNG गाड़ी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा? पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर ली, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
6: मैं गांव का परिवेश मंगरो का मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
3: जी,
6: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण को, आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझती है, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश के दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
3: जी।
6: मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके, अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, मैं

0: सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवाता है तो हम ठीक है चलते। अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे उड़ से गए, मैं समझ नहीं पाया, मैं आगे था
1: जी।
0: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया ठीक है जो भी है।
1: लेकिन लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो, और आप
0: अब मैं अब यही से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो आ गए तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
1: मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है?
0: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
2: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र। तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए, रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे, जिससे जाम भी लग गया। जनता परेशान हुई, कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने न अपने सीएम की मानी न पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी बानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया। 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच।
3: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगा था जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
6: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड।
7: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
1: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
9: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर, पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है, 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर, नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर, बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन। अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
10: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
11: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
12: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप टाइम नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
13: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
9: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
14: देखिए, ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
15: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
16: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएनए, ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
17: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
18: सर, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
19: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
20: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल अगर फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
21: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
9: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
9: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
2: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है। आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंडअप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
9: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
3: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने नंबर चिन्ह 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
9: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
0: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्यपुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
5: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार देखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
22: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए उन्होंने एक साल के लिए अपील की है?
23: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आह्वान करूँ।
22: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा तो
23: भी वाहन से चल सकते हैं, काफिला कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
22: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचा है, सोना बचा है।
23: सोना को लेकर
6: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
24: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिस पे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिस पे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
6: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
24: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है, इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
25: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
24: पोस्टर
25: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
26: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में। देख रहे हैं
24: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हमारा नंबर भी देख लिया,
26: विदिशा पोस्टिंग, सब CNG गाड़ी है।
6: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
1: मैं गांव का परिवेश मंगरोला मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
7: जी,
1: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण को, आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझती है, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश से दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
7: जी,
1: वहाँ से देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गांव आ गया होगा, मुश्किल से 25 एक गाड़ी थी उनके अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवाता है तो हम ठीक है चल। अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे उड़ से गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे रहा
7: जी,
1: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर दिल भी बढ़ चढ़ के बताया गया ठीक है जो भी है बता गया।
7: लेकिन लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्च और आप
1: अब मैं अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा लेकिन वो आ गए तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा,
7: मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है।
1: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
6: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए, रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने न अपने सीएम की मानी न पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने

0: लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
1: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबल विल बी फिक्स्ड।
2: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
0: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
3: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
0: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
4: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
5: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक होने कर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है।

0: अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे। फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
1: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
2: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
3: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
4: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
0: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
5: देखिए, ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
6: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
7: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
8: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही सर। रोके भी किसी को नहीं बता सकते
9: सर। बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
10: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
11: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
12: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
13: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
0: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गयी, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
14: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
0: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है, और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
15: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर का रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
0: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
16: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
0: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
14: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
17: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार देखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
19: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए अपील की है?
20: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आवाज रखूंगा।
19: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा
20: भी वाहन से चल सकते हैं, काबिला कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
19: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचाए, सोना बचाए।
20: सोना पेट्रोल लेकर
18: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
21: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहां पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्यपुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
18: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
21: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है, तो इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
22: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
21: पोस्टर
22: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
23: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में देख रहे हैं।
21: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हम तो नंबर भी देख लिए,
23: वीजा पोस्टिंग, सब CNG गाड़ी है।
18: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
1: परिवेश मंगरों का मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
2: जी,
1: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझते हैं, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश के दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
2: जी।
1: वहाँ से देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गाँव आ गया होगा, मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवाता है तो हम ठीक है चलते। अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे लूट से गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे था
2: जी।
1: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया है, पर ठीक है जो भी है अपने बच्चों के।
2: लेकिन लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो और आपकी,
1: अब यही से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो आ गए तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
2: मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है?
1: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
18: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए, रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने ना अपने सीएम की मानी ना पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
14: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती है। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया। 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच।
3: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उस समय और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगा था जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से भाई हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं।
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे, क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली, लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
6: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबल विल बी फिक्स्ड।
7: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
1: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
8: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
9: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे। फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
10: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
11: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
12: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
13: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
9: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
14: देखिए, बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
15: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
16: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का, और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
17: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
18: सर, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
19: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
20: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
21: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
9: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
9: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है, और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
2: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर का रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
9: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
3: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
9: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
0: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
5: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार देखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
22: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए अपील की है?
23: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आवाज रखूंगा।
22: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा
23: तो चल सकते हैं, काफिला कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
22: और गाड़ी कौन सी? उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचाए, सोना बचाए।
23: सोना पेट्रोल लेके सोना
6: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
24: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं। ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
6: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
24: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है, तो इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
25: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
24: सब पोस्टर लगे हुए हैं
25: तो गाड़ी खड़ी होती है तो लगा देता है कोई भी।
26: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में देख रहे हैं।
24: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हम तो नंबर भी देख लिए,
26: विदिशा पोस्टिंग, सब CNG गाड़ी है।
6: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
1: परिवेश मंगरोला मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
7: जी,
1: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझते हैं, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश के दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां लेके हमको निकल पड़े
7: जी।
1: वहाँ से देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गाँव आ गया होगा, मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवाता है तो हम ठीक है चलते। अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे लुढ़ से गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे रहा
7: जी।
1: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया ठीक है जो भी है।
7: लेकिन लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो और आप मतलब मानते हैं ना कि गलत तो हुआ है।
1: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
6: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए, रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने ना अपने सीएम की मानी ना पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार, राहुल गांधी बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर, योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है। बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या।
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी बानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं, सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बार की जांच। सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं, सर पेपर लीक पे,
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं, सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बार की जांच।
3: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उस समय और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगातार जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है, हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से भाई आज हमने एक्सपेक्ट नहीं।
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12

0: भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
1: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स वेयर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबल विल बी फिक्स्ड।
2: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
0: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
3: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
0: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
4: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
5: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी। और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले

0: 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हां, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं। 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है। 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे। फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
1: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
2: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
3: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप टाइम नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
4: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
0: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
5: देखिए, बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
6: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
7: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएन ने ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
8: मेरा एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
9: सर, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
10: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
11: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
12: मैम, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल अगर फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
13: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
0: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
14: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
0: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहाँ से राजस्थान के जयपुर और जम्वार रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुँचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुँचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
15: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है। आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंडअप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया और सीकर से उसके बाद बिहार गया और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
0: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
16: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
0: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में यह दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
14: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्यपुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
17: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
18: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार दिखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
19: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे एक साल के लिए अपील की है?
20: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उस आह्वान से पूरे
19: तो बिना मतलब नहीं गाड़ी घोड़ा
20: चल सकते हैं, चल सकते हैं, चलिए कोई नहीं रहेगा मेरे साथ।
19: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचाए, सोना बचाए।
18: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
21: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिस पे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिस पे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्यपुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
18: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
21: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहाँ है,
1: इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
2: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
1: पोस्टर
2: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती है तो लगा देता है कोई भी।
22: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ देकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में। देख रहे हैं
1: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी ज्यादा नहीं है, हमारे तो नंबर भी देख लिया।
22: वीजा पोस्टिंग सब CNG गाड़ी है।
18: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
23: मैं गांव का परिवेश मंगरोला मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
24: जी,
23: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इतने बड़े व्यक्ति समझती हूँ, तो वो गाँव के हम चिंतामन गणेश से दर्शन करके हमारे गाँव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
24: जी।
23: अब वो क्या है रास्ते में हर जगह से वो पीछे जुड़ से गए, मैं समझ नहीं पाया, मैं आगे रहा
24: जी।
23: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया है
24: लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्च और आपकी
23: अब, मैं अब यही से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा लेकिन वो आ गए, तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
24: मतलब मानते हैं ना आप कि गलत तो हुआ है?
23: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
18: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए। रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने ना अपने CM की मानी न PM की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
14: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
25: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
26: Your boy,
25: just
26: Jay-Z.
25: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.

0: महज 2 साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
1: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे
0: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
1: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की
2: 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
3: काफी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
4: सर ये बहुत गलत है क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगा था 0 प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है, हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस से
0: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले 23 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से पेपर लीक पर कोई बयान नहीं आता। 3 मई को परीक्षा हुई, 10 मई को परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए पेपर लीक का शक जताते हुए आधिकारिक बयान जारी कर देती है। 12 मई को पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश के भ्रमण में बहुत व्यस्त रहे क्योंकि पेपर लीक उनके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे शायद उनके सामने। 2026 में पेपर लीक के चलते एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक ने एक बार फिर नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में संदेह की दीवार खड़ी कर दी। याद करिए 2024 का पेपर लीक कांड, तारीख बदली लेकिन सिस्टम अब तक नहीं बदला। पेपर लीक पर सरकार के छात्रों के साथ किए गए पुराने वादे और दावे सुन लीजिए।
5: निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए, कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए, जो सत्य है आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं, वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। दिस क्वेश्चन लीक इज ए इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फ्रॉम एनटीए, दैट्स फॉर वी आर अश्योरिंग यू देयर विल बी रिफॉर्म कमिटी, एक्शन विल बी टेकन, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड।
6: सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
0: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई
6: रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
0: खुद दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, ताल ठोक कर माना कि एनटीए की नाकामी थी, पेपर माफियाओं को सीबीआई पकड़ेगी, वादा किया कि पेपर लीक प्रूफ सिस्टम सरकार बनाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार, फिर पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों से बच निकले, लेकिन उनके मातहत फिर वही लिखा लिखाया बयान पढ़ते नजर आए।
7: मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से कर

0: के ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी।
1: आज सवाल सिर्फ पेपर माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच का नहीं, बल्कि सवाल जिम्मेदारों पर कड़े और बड़े एक्शन का भी है, क्योंकि पेपर लीक हुआ तो एनटीए की सीधी जिम्मेदारी है। क्या पेपर लीक पर एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी पर एक्शन होगा? क्या पेपर लीक पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया जाएगा? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए के कर्मचारी अधिकारियों पर कानूनी हंटर चलेगा? पेपर लीक की तस्वीर तभी बदलेगी जब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि हर बार जिम्मेदार बच निकलते हैं। अब देखना है एक बार फिर जांच की फाइल सीबीआई के दफ्तरों में धूल फांकेगी या फिर कानून के लंबे हाथ असल गुनहगारों को भी सजा के दायरे में लाएंगे।
2: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
3: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल, 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा? इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
4: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है, अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
5: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
6: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनडीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
7: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
3: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
8: देखिए ये बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
9: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज है उनसे इसकी निष्पक्ष जाँच करानी चाहिए।
10: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का, और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
11: मेरा एक साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए, सर भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन सर आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, सर किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही, सर रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
12: सर बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
13: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
14: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
15: मैम मेरे फ्रेंड्स वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
16: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
3: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
2: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
3: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गैस पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
17: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंडअप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहा है हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया, और सीकर से उसके बाद बिहार गया, और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
3: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
18: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
3: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है, जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा, जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है, जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से 4 दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, एमबीबीएस काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
2: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है, जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
19: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
20: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार दिखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी 2 लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है, जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
21: केवल आज के लिए है कि अगले पूरे 1 साल के लिए अपील की है?
22: प्रधानमंत्री जी ने अगर 1 साल के लिए अपील की है तो 1 साल, 2 साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आभार से
21: तो बिना मतलब नहीं गाड़ी घोड़ा
0: चल सकते हैं, चलिए कोई नहीं रहेगा।
21: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचा है, सोना बचा है,
0: सोना पेट्रोल
21: बाकी नेताओं से आग्रह करेंगे।
20: तो मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
1: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए हैं उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिसपे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ। और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिसपे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की, राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
20: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी
1: नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
20: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया, लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
1: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहां है, इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
22: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
1: पोस्टर
22: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
23: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रुकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में, देख रहे हैं।
1: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हमारा तो नंबर भी देखिए,
23: विदिशा पोस्टिंग और सब CNG गाड़ी है।
20: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
24: परिवेश मंगरोला मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
25: जी,
24: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण, तो आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझती हैं, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश के दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़िया नीचे तो निकल पड़े
25: जी।
24: वहाँ कुएं से देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गाँव आ गया होगा, मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे हम, ठीक है चल। अब वो क्या है कि रास्ते में रास्ते में हर जगह से वो पीछे लुढ़ते गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे था
4: जी।
24: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया है, पर ठीक है जो भी है।
4: लेकिन लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो और आपकी,
24: अब यही से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा लेकिन वो आ गए, तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
4: मतलब मानते हैं ना आपकी गलत तो हुआ है?
24: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
20: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए। रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने न अपने सीएम की मानी न पीएम की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस। जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर। योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ। दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे। पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती है। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया। 23 लाख छात्रों की जीतोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बार की सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं? सर पेपर लीक पे, सर सीबीआई बार की
3: बात। 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं, एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है।
5: सर ये बहुत गलत है, क्योंकि एनटीए ने खुद इस बार बोला था चैलेंज करके कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें तो लगातार जीरो प्रोबेबिलिटी है कि पेपर लीक भी हो सकता है। हम तो कम्प्लीटली श्योर थे सर इस बार को लेकर, लेकिन वापस
1: ये पूरे सिस्टम का नाकाम होना है, क्योंकि पेपर का लीक होना सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। हर बार पेपर लीक होता है, जिम्मेदार जांच की चादर ओढ़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ माफियाओं का सिंडिकेट नहीं बल्कि सरकारी लीपापोती का भी खेल है। नीट की परीक्षा देने वाले
0: 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई थी, इसी गैंग के चलते अब वो रद्द हो गई है। छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। नीट लीक कैसे हुआ, किसने किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक नेटवर्क फैला हुआ है। रिपोर्ट को देखिए।
6: कैसे लीक हुआ नीट का पेपर, पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? के नटवर लाल का खेल 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर। बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन। अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक, क्या कर रहा है एनटीए। जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हाँ, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं, 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है, 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे, फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद, फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई।
7: सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है, अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते।
8: मिले हुए ये लोग, इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा।
9: 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप टाइम नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी।
10: इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।
6: नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं।
11: देखिए, बहुत गंभीर अपराध है, इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
12: वरिष्ठ कोर्ट के जो जज है उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
13: हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का, और पीएनए ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
14: मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए। सर, भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते।
15: सर, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे, तो फिर काफी डिमोटिवेटिंग होता है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं।
4: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो रीनीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं।
16: छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
17: मैं, मेरे फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्केर्ड कि अगले साल फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का?
18: सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज झेल चुके हैं।
6: लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गई, 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।
0: नीट पेपर लीक पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने माना है कि वो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन 100 बातों की एक बात, बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है?
6: इस दफा जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है उसे सबसे बड़ा पेपर लीक माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता चला कि पेपर महाराष्ट्र से गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से जयपुर, फिर जयपुर से जम्वा रामगढ़ और वहां से सीकर, फिर सीकर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिहार, बिहार से केरल और केरल से उत्तराखंड तक लीक हुआ पेपर बढ़ता चला जाता है। खबरों की माने तो नासिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपता है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आता है और वहां से राजस्थान के जयपुर और जम्वा रामगढ़ होता हुआ सीकर के एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसके बाद तो देश के 7 राज्यों में पहुंचता है। दावा है कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल परीक्षा से पहले ही चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। दावा ये भी है कि नीट का ये लीक पेपर 28 लाख रुपए से 30,000 रुपए तक में बिकता है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इन सवालों को गेस्ट पेपर का नाम देकर सीकर के कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया। मेधावी छात्रों को ये कहकर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया कि इसी में से आएगा।
19: आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार सीबीआई को ये पूरी जानकारी दे दी गई है। ये पेपर जो है जयपुर के रहने वाला एक खटीक नाम का व्यक्ति है जो खरीद के लाया था गुड़गांव के एक डॉक्टर से, और गुड़गांव के डॉक्टर ने ये बताया है कि नासिक में प्रेस के आसपास से वो खरीदा था। तो सीबीआई ने अभी जांच को टेकअप कर लिया है, आज सुबह ही हम लोगों को बाद में बताया गया है कि सीबीआई जांच को टेकअप करेगी। नासिक वाले व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम आज तक पर कि पूरे देश में पेपर बटा था, नासिक से निकला, गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास गया, गुड़गांव के डॉक्टर के पास जमुआ रामगढ़ के एक व्यक्ति के पास आया, जमुआ रामगढ़ से ये जयपुर में आया, जयपुर से सीकर गया, सीकर से जम्मू कश्मीर गया और सीकर से उसके बाद बिहार गया और फिर सीकर से केरल गया। ये 1-to-1 चल रहा था पूरे देश में, मगर जयपुर के व्यक्ति के मन में लालच आया और सीकर वाले ने ये बेचना शुरू किया, जिसके बाद ये नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
6: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर अब जांच एजेंसियों की रडार पर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि सवाल सीधे प्रिंटिंग प्रेस या मूल पेपर सोर्स से लीक हुए थे। नासिक क्राइम ब्रांच ने बीएमएस डॉक्टर को हिरासत में लिया है जिसका नाम शुभम खेरनार है। नासिक पुलिस को इसकी जानकारी सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जरिए मिली थी। इस संदिग्ध ने पहचान छुपाने के लिए बाल भी मुंडवाए हुए थे।
20: आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी, नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहां पे आने वाला है उस एक्यूज्ड को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज्ड को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया।
6: सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सीकर के एक कोचिंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में एक नाम राकेश का सामने आया है जो कथित तौर पर बड़े कोचिंग संस्थानों के सामने एमबीबीएस काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने 30,000 रुपए में पेपर अपने एक साथी को बेचा जो केरल में एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। जांच में राजस्थान, केरल और दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। आरोप है कि राजस्थान के एक हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक भी यही पेपर पहुंचाया गया, छात्रों के बीच यही आएगा कहकर इसे फैलाया गया। सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क खुला। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में छात्रों ने यही पेपर 5,000 से 30,000 तक में बेचना शुरू कर दिया था। जांच में नागौर कनेक्शन भी सामने आया है जहां एक छात्र को कथित तौर पर 28 लाख में पेपर बेचे जाने की बात सामने आई है।
2: सूत्रों के मुताबिक नागौर का एक छात्र परीक्षा से चार दिन पहले सीकर पहुंचा था। पूछताछ में ये दावा भी सामने आया है कि दिल्ली से फोन आया था कि पेपर आ गया है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्तर के कोचिंग नेटवर्क का मामला नहीं बल्कि एक संगठित और मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है। जांच का फोकस प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों, पेपर ट्रांसपोर्ट चेन, कोचिंग संचालकों, MBBS काउंसलिंग नेटवर्क, हॉस्टल और छात्र नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली, सीकर, नागौर, केरल लिंक पर है। SOG अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और असली सोर्स कहाँ है।
0: अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद सत्ता की हनक में रहने वाले नेताओं की। मध्य प्रदेश में पाठ्यपुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने पर सौभाग्य सिंह के काफिले में दर्जन नहीं सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई हैं। सौभाग्य सिंह नाम के इस बीजेपी नेता पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हुआ जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल का एहतियातन इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो सौभाग्य सिंह जैसे नेताओं की सोच से आगाह करता है जिन्हें अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं।
21: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
22: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर पहली नजर में दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी नेता खबरदार दिखते हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आम आदमी की तरह मेट्रो और फिर ई रिक्शा से सफर करते दिखे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी दो लोगों के साथ ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय पहुंचते दिखे। लेकिन क्या यही सच है या फिर नसीहत मानने को लेकर हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर है? ये सवाल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को भोपाल में बीजेपी मुख्यालय तक ले जाता है जहां नेता ई रिक्शा से पहुंचते दिखते हैं। इसमें ये चेहरा और उनकी कही बात याद रखिएगा। इनका नाम है राकेश सिंह जादौन।
23: प्रधानमंत्री जी ने अगर एक साल के लिए अपील की है तो एक साल, दो साल प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान होगा मैं उसको आह्वान करूंगा।
24: तो बिना मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा
23: तो चल सकते हैं, कोई नहीं रहेगा।
24: और गाड़ी कौन सी, उन्होंने कहा पेट्रोल भी बचा है, सोना बचा है,
23: सोना पेट्रोल लेकर सोना
22: तो। मध्य प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन कहते हैं कि उन्होंने ई रिक्शा से बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री की नसीहत पर चलकर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने की है।
25: हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ियों की लंबी कतार है जो लेकर के अपने साथ पहुंचे हैं राकेश सिंह जादौन, जिन्हें मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब हम आपको गाड़ियां गिनवाते हैं और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी दो दिनों पहले पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की, वो अपील क्या वाकई काम कर रही है। तो ये गाड़ी आपने देखी, राकेश सिंह जादौन, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, ये दो गाड़ी। और अब आप देखिए गाड़ियों की एक पूरी कतार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगे हुए उनके, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस अपील का असर कितना बीजेपी के नेताओं पे हो रहा है। ये दो और गाड़ियां हमने आपको दिखाई, चार गाड़ियां हो चुकी हैं, ये पांचवी गाड़ी है जो आप इस वक्त देखेंगे तस्वीरों में, ये फॉर्च्यूनर पांचवी गाड़ी। और साथ ही में अब आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं गाड़ी नंबर 6, इसमें भी ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सातवीं गाड़ी है इस काफिले की जो राकेश सिंह जादौन के साथ यहाँ पे उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ये स्कॉर्पियो एन गाड़ी नंबर 8, इस पे आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिख जाएगा। ये सामने आप महिंद्रा SUV 300 आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नंबर 9 है जिस पे ये पोस्टर लगा हुआ है। ये 10वीं गाड़ी इस काफिले की इस पोस्टर के साथ, और ये हम आपको दिखाते हैं ये गाड़ी नंबर 11, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको आगे भी एक और गाड़ी जिस पे पोस्टर लगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 12वीं गाड़ी है इस काफिले की राकेश सिंह जादौन जो कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी देखिए बीजेपी के नेताओं को कितनी, अध्यक्ष पद जब मिलता है पाठ्य पुस्तक निगम का तो दर्जनों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आते हैं।
22: तो मीडिया को दिखाने के लिए राकेश सिंह जादौन ई रिक्शा से आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में लगी पोस्टरों से पटी दर्जन भर गाड़ियां तो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी दिखी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लेकिन फिर भी सच को नकारने की पूरी कोशिश की गई।
25: आपने कहा ये 15-20 गाड़ियां यहां है, इसमें भी तो पेट्रोल डीजल तो खूब लगा होगा।
1: बिल्कुल लगा होगा, लेकिन ये 15-20 जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए आई हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
25: पोस्टर
1: लगे हुए हैं तो गाड़ी खड़ी होती तो लगा देता है कोई भी।
3: सर हम लोग ट्रेन से आए हैं सर, ये लोग सब भीड़ लेकर रोकते जा रहे हैं। गाड़ी MP04 है, भोपाल की गाड़ी है, सब उत्साह है लोगों में देख रहे हैं।
25: MP07 भी है, विदिशा पासिंग गाड़ी भी है, हमारा तो नंबर भी देखिए,
3: विदिशा पोस्टिंग और सब CNG गाड़ी है।
22: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए गए सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचते हैं। इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पसी तरह चलता रहेगा। पीएम मोदी की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश के एक निगम अध्यक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करनी, ये समझने के लिए आज तक ने उनसे बात की तो उनके जवाब से लग गया उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।
5: परिवेश मंगरों का मतलब एक स्थान चिंतामन गणेश के पीछे उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर
7: जी,
5: तो किसान और एक गांव है जो पूरा परिवार जैसा रहता है ग्रामीण को, आप तो इससे बड़े व्यक्ति समझती है, तो वो गांव के हम चिंतामन गणेश से दर्शन करके हमारे गांव के जो है 10-20 गाड़ियां नीचे तो निकल पड़े
7: जी।
5: वहाँ कुछ देवी के अल्पार करा मतलब मुश्किल से वो पूरा गाँव आ गया होगा, मुश्किल से 25 गाड़ी थी उनके अपने वो पेट्रोल डीजल ले लिया, क्योंकि मैं तो सामान्य परिवार से पेट्रोल डीजल भरवा रहा है तो हम ठीक है चल। अब वो क्या है कि रास्ते में हर जगह से वो पीछे लुढ़ते गए, मैं समझ नहीं पाया मैं आगे रहा
7: जी।
5: वहाँ जाकर मुझे लगा कि ये इतने लोग आ गए, पर फिर भी बढ़ चढ़ के बताया गया है ठीक है जो भी है।
7: लेकिन जो वो मोदी जी की अपील थी पेट्रोल डीजल कम खर्चो और आपकी,
5: अब यही से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो आ गए तो प्रधानमंत्री जी का संदेश के लिए मैं आ गया, तो पूरा अब ध्यान भी रखूंगा।
7: मतलब मानते हैं ना आपकी गलत तो हुआ है?
5: नहीं गलत हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो गलत कैसे हुआ मुझे मालूम ही नहीं।
22: तो निगम अध्यक्ष की हिम्मत देखिए, उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और न ही किसी कार्रवाई की फिक्र, तभी तो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल आए। रास्ते में काफिला रोक रोक कर फोटो खिंचवाते रहे, जिससे जाम भी लग गया, जनता परेशान हुई कितनी गाड़ियों का तेल फूका होगा। लेकिन नए नवेले निगम अध्यक्ष को इससे क्या, उन्होंने न अपने CM की मानी न PM की सुनी, उल्टा उनके समर्थकों ने सौभाग्य सिंह ठाकुर के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर रील बना बना कर पोस्ट किया, जबकि इसी दौरान जनता से उम्मीद की जाती है कि वो किफायत से चले।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: कौन सी धातु धारण करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है? किस धातु का प्रयोग करने से आपको कोल्ड कफ की परेशानियां नहीं परेशान करेंगी? और किस धातु का कैसे प्रयोग करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? अलग अलग धातुओं के क्या हैं चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
9: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
26: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
9: to live sports action.
27: To the near side corner, to wraparound, he scores!
9: and your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn. The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: आज तक की खबर का बड़ा असर, पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा रद्द। सीबीआई ने दर्ज किया केस, जयपुर एसओजी ने 150 छात्रों, 70 अभिभावकों और 13 एमबीबीएस काउंसलर्स की सीबीआई को सौंपी लिस्ट। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार, राहुल गांधी बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम। अखिलेश यादव ने पूछा क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होगा पेपर लीक। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलर्ट पर, योगी का फैसला, मंत्रियों के काफिले में होगी कमी। एमपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने भी कम गाड़ियों के इस्तेमाल का लिया निर्णय। असम में हेमंता की दूसरी पारी का दमदार आरंभ, दो बीजेपी और दो सहयोगी दलों से बने मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के दिग्गज नेता रहे मौजूद। और पाकिस्तान से बातचीत की संघ ने की वकालत, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा बातचीत का खुला रखना चाहिए दरवाजा, लोगों का संपर्क जरूरी, व्यापार और वीजा नहीं रोकना चाहिए। तेईस लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने संजोए थे, पेपर लीक के चलते नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल फिर यही है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो कैसे सकता है? बाजारों में क्वेश्चन पेपर गैस पेपर की शक्ल में लाखों रुपए में खुल्लम खुला बेचे जाएंगे, तो फिर सालों साल मेहनत करने वाले छात्रों का होगा क्या?
1: नीट की जिस परीक्षा को पास करके छात्र देश की सेहत को बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाते, उस इम्तिहान को संचालित करने वाली एजेंसी किस कदर लाइलाज और बीमार हो चुकी है, उसकी वानगी इन तस्वीरों में दिखती। लीक प्रूफ परीक्षा का सरकारी दावा महज दो साल में ही झूठ और छलावा साबित होता है। नीट का पेपर लीक हुआ, 10 दिन के भीतर पेपर रद्द कर दिया गया, 23 लाख छात्रों की जी तोड़ मेहनत पानी में चली गई, लेकिन शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने सवालों के जवाब देने से बचते दिखे।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इस बार की सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे
1: पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी ने अभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। भले ही एनटीए की नाकामी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी हंसी में छिपा ले जाएं, लेकिन 23 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर आप सोचेंगे तो ये हंसी चुभेगी।
2: सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई बार की
3: जांच। 12 से 15 घंटे तक हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मैं ही नहीं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद ऐसे पेपर लीक हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है।
4: काफी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है, फिर आप जब एग्जाम दो आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो।